अपने इन आंखों से क्या क्या देखा, भगवान को इस धरा पर उतरते हुए देखा, उसको महावाक्य उच्चारण करते हुए देखा, सत्य गीता ज्ञान सुनाते देखा। देखा ही नहीं, हमने स्वयं सम्मुख बैठकर उसके द्वारा सुना, हमने उसको कर्म करते देखा, बच्चों को प्यार देते हुए देखा, आत्माओं में शक्तियां भरते हुए देखा, सबका श्रृंगार करते हुए देखा। निहाल हो गए हम, हमारी आंखें भी तृप्त हो गई इस खुशी और नशे में। हम अपने जीवन को आनंदित करें। चारों युगों में जो नहीं देखा गया वो हमने इस अंतिम जन्म में देखा। हमें सद्विवेक प्राप्त हुआ, हमें तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हो गया। हम बहुत भाग्यवान हैं। इस नशे में रहने से हमारी बुद्धि बहुत अच्छी एकाग्र होगी और हम योग युक्त सहज रह सकेंगे। योग युक्त वो नहीं रह पाते हैं जो सारा दिन बातों में बहुत रहते हैं। मात्र शक्ति विशेष रूप से बातों में बहुत समय लगाती है। जो बातों में है, जहां बातें हैं, वहां बाप नहीं रह सकता, क्योंकि बुद्धि उन बातों के चिंतन से भरी रहती है। उसमें स्थान ही नहीं बचता जिसमें भगवान आकर बैठे। तो जिसको योगी बनना हो वो बातों से स्वयं को मुक्त करे। दूसरी बात, मोहममता, ये बहुत बड़ी माया संसार में छाई हुई है। इसमें सभी मनुष्य लिप्त हो गए हैं। किसी को अपने धन संपदा से आ सकती है, ममत्व है, तो किसी को मनुष्यों में, बच्चों में, पोतरों में, धोत्रों में बहुत मोह पैदा हो गया है। ये मोह उन्हें सता रहा है, ये मोह उन्हें दुखी कर रहा है, ये मोह जैसे मीठा जहर बन गया है। ये ऐसी चीज बन गई है जिसको न छोड़ा जा सकता न रखा जा सकता है, लेकिन बाबा ने इसको छुड़वाया है। हमें क्योंकि घर वापिस जाना है, मोह ममत्व लगाव झुकाव यहीं छोड़कर जाना है। अगर हम मोह ममता में फंसे होंगे तो जाना बहुत कठिन हो जाएगा। आत्मा इस देह में उलझ जाएगी और जितना समय उलझी रहेगी अति कष्ट पाएगी। मोह ममता दुखदाई है, प्यार सुखदाई है। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि मोह छोड़ दें, बच्चों की पालना कैसे करेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि मोह और निर्मल प्यार अलग अलग होता है। आत्मिक स्नेह अलग है और ये दैहिक मोह अलग है। मोह का नाता देह से, प्यार का नाता आत्मा से होता है। तो सभी जो निर्मोही बनना चाहते हैं उन्हें आत्मिक प्रेम धारण करना होगा। इसके लिए साथ साथ आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना होगा। आप जिनसे भी आपको मोह है, आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये दृष्टि रखो, ये सब आत्माएं हैं। अभी अंतिम जन्म में हमारे पास आई हैं, इससे पूर्व जन्म में किसी और परिवार में थी, इससे अगले जन्म में किसी और परिवार में होंगी। अब हम इनके माता पिता हैं, अगले और पिछले जन्म में कोई और रहे हैं। तो इस तरह हमारा आत्मिक भाव बढ़ता जाएगा और बहुत अच्छी अनुभूति होगी निर्मोही होने की। निर्मोही तो बनना है, चाहे प्यार से जाएं, चाहे फिर सजा खाकर बने। अभी निर्मोही बनेंगे तो जीवन का सुख मिलेगा, दुख समाप्त हो जाएगा, दूसरों को भी सुख बांट सकेंगे और योग युक्त होने में बहुत मदद मिलेगी। तो आज सारा दिन सभी को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देंगे। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ, इस स्वमान को याद करते हुए सबको आत्मा देखेंगे। घंटे में एक बार अवश्य करेंगे और मुझ आत्मा से किरणें निकलकर इन सब आत्माओं पर पड़ रही हैं। ये बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, ये बहुत सुखदायी अभ्यास होगा। इससे चित्त को चैन मिलेगी, मन एकाग्र होगा। ओम शांति।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अत्यंत साधु भाव के साथ कहा है, जब हम एक लंबे समय तक अपने आप से दूर होकर इस दुनिया की तीव्र रफ्तार और बातों से त्रसित हो जाते हैं तो, और इसकी खुशियों से थक जाते हैं, तब एकांत कितना सुकून देता है। पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब आपने चुप और स्थिर रहने के लिए समय निकाला था? कब ऐसा हुआ जब अतीत में आपने अपने आप को समेटने, सहजने, पुनर्जीवित करने और फिर से अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए, एकांत की शक्ति का आनंद उठाने के लिए समय निकाला था? दुनिया की सब महान विवेकपूर्ण परंपराएं सिर्फ एक निष्कर्ष तक पहुंचती हैं कि हमें अपने स्वयं के दोबारा जुड़ने और उस गौरव के बारे में जानने की आवश्यकता है जो हमारे अंतर मन में छिपा हुआ है। इसके लिए आपको प्रतिदिन एकांत के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। निसंदेह आप व्यस्त हैं, परंतु जैसा थोरो ने कहा है, व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। प्रश्न यह उठता है कि आप क्या करने में व्यस्त थे? एकांत का महत्व एक लाइट हाउस के बूढ़े कर्मचारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उस आदमी के पास अपनी मशाल जलाने के लिए बहुत कम मात्रा में तेल बचा था, जिससे वह आते जाते जहाजों को चट्टानी समुद्र तट से बचाने के लिए आगाह कर पाता। एक रात पास में रहने वाले एक आदमी को एक बहुमूल्य वस्तु की आवश्यकता अपना घर प्रकाशित करने के लिए पड़ी, तो लाइट हाउस के कर्मी ने अपने पास से थोड़ा सा तेल उसे दे दिया। एक और रात को एक यात्री ने अनुरोध करके थोड़ा सा तेल मांगा, जिससे वह अपनी यात्रा जारी रख सके। लाइट हाउस के कर्मचारी ने उसकी भी प्रार्थना स्वीकार करके उसे उसकी जरूरत की मात्रा दे दी। अगली रात उसकी नींद एक माँ के दरवाजा खटखटाने से खुली। उसने थोड़े से तेल की प्रार्थना की, जिससे वह अपने घर में रोशनी कर सके और अपने परिवार को खाना खिला सके। कर्मचारी ने फिर से मान लिया। जल्द ही पूरा तेल समाप्त हो गया और उसकी मशाल बुझ गई। कई जहाज डूब गए और बहुत सी जिंदगानियां खत्म हो गई, क्योंकि लाइट हाउस का रक्षक अपनी प्रधानताओं को भूल गया था। उसने अपने सबसे प्राथमिक कर्तव्य की अवहेलना की, जिसका उसे बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। एकांत का अनुभव अगर दिन में कुछ मिनट के लिए भी किया जाए, तो वह आपको अपना ध्यान अपने जीवन की सर्वोच्च प्रधानताओं पर केंद्रित करने में मदद करेगा, जिससे हम जीवन के किसी भी काम में असावधानी न बरतें। और यह कहना कि आपके पास नियमित रूप से एकांत में बैठने का समय नहीं है, तो वह यह कहने के समान है कि आप गाड़ी चलाने में इसीलिए व्यस्त हैं क्योंकि आपको उसमें पेट्रोल या डीजल भरवाना है या फिर गैस भरवानी है। आखिर में यह आप पर हावी हो जाएगा। कहने का भाव यही है कि अगर हम हर दिन कुछ समय अगर शांत रहने का अभ्यास करें, एकांत में रहने का अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सही दिशा में कार्यान्वित कर पाएंगे, उसे एक सही लक्ष्य दे पाएंगे और अपने जीवन की जो मुख्य जरूरतें हैं उसको समझ पाएंगे और उसे पूरा करने का

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: सुबह जल्दी उठने की आदत एक तोहफा है जो आप अपने आप को देते हैं। कुछ नियम आपके जीवन को एक नया रूप दे देते हैं। उनमें से एक है जल्दी उठने का नियम। प्रातःकाल के कुछ प्राथमिक घंटे अपने आप में विशिष्ट होते हैं। ऐसा लगता है कि समय मध्यम गति से बढ़ रहा है और शांति की महान भावना जैसे आपके वातावरण में भर जाती है। अगर आप 5 बजे की महफिल में शामिल हो जाएंगे तो यह आपको अपने दिन का नियंत्रण लेना सिखाएगा, बजाय इसके कि दिन आपको नियंत्रित करने लगे। बिस्तर के साथ जंग को जीत कर, मन को गद्दे के मजे से ऊपर लाकर और जल्दी उठकर आप अपने आप को कम से कम 1 घंटे की शांति का समय दे सकते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह है दिन की शुरुआत। अगर समझदारी से बिताया जाए तो बाकी दिन अपने आप में अद्भुत होगा। सूर्योदय के साथ उठो, यह सफलता का ऐसा मंत्र है जो वास्तव में अपने जीवन में एक बद्ध करने लायक है। ऐसा करके आप उन प्रभावशाली लोगों की उच्च श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जैसे कि महात्मा गांधी, थॉमस एडिसन, नेल्सन मंडेला, टेड टर्नर और मैरी के एश। जल्दी उठने की आदत का विकास करने के लिए पहली बात जो याद रखनी चाहिए वह है कि आपकी नींद को परिणात्मक न होकर गुणात्मक होना चाहिए। 6 घंटे की बिना विघ्न की नींद 10 घंटे की बिना आराम की और बीच में उचटने वाली नींद से बेहतर है। हम आपको 4 तरीके बताते हैं जिनके द्वारा आप अच्छी नींद ले पाएंगे। अपने पूरे दिन की प्रक्रियाओं को सोते समय दोहराने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा, 8 बजे के बाद कुछ मत खाइए। कुछ खाना भी है तो सूप लिया जा सकता है। तीसरा, सोने से पहले समाचार मत देखिए। और चौथा, बिस्तर पर लेटकर मत पढ़िए। अपने आप को कुछ हफ्ते दीजिए जिसमें आप इस आदत को डाल सकें। ऐसा कहना कि आपने जल्दी उठने की कोशिश की परंतु बीच में छोड़ दिया क्योंकि यह बहुत कठिन था, उसी बात के समान है कि आपने 1 हफ्ते फ्रेंच सीखने की कोशिश की पर बीच में छोड़ दी क्योंकि आप उस भाषा को बोलना नहीं सीख पाए। जीवन में बदलाव लाने के लिए समय, संकल्प और संयम की आवश्यकता होती है, परंतु आप इसके बेहतरीन परिणामों को देखकर शुरुआत में अनुभव होने वाली परेशानियों को भुला देंगे। ये हमारा
1: परमात्मा, the divine master is lord of the universe. He is the controller of all our senses. He is self-existent. His merits and attributes are beyond description.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी, अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

अगर आपसे पूछा जाए कि कौन लोग इस बात से सहमत हैं कि हम अपने सबसे कठिन अनुभवों से सीखते हैं, अनिवार्य रूप से सब इसमें सहमति बताएंगे। हम इंसान अपना अधिकांश समय अपने जीवन के कठिन अनुभवों के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने में बिता देते हैं, यह देखने के बजाय कि वे वास्तव में हमारे महानतम शिक्षक होते हैं। आपके पास विवेक और ज्ञान नहीं होता जो आज आपके पास है, अगर जीवन की त्रासदियों को न झेला होता, परेशानियों को न सहन किया होता और गलतियां न की होती। हमें यह समझ लेना चाहिए कि एक दर्द एक गुरु है और नाकामयाबी सफलता की चौड़ी सड़क। आप गिटार बजाना नहीं सीख सकते जब तक आप कुछ तारों को गलत नहीं बजाते हैं, और आप कभी भी नाव चलाना नहीं सीखेंगे अगर आपकी नाव कुछ बार न पलटे। अपनी परेशानी को एक आशीर्वाद की तरह समझना चाहिए। अपने लड़खड़ाते कदमों को अपना पहला कदम समझिए और वचनबद्ध होइए कि अपनी चोटों को ज्ञान के रूप में बदल देंगे। जैसे जैसे आप अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ेंगे, अपने हिस्से के दुखों का सामना करना सीख जाएंगे। परंतु हमेशा अपने को याद दिलाते रहें कि हमारे चरित्र का निर्माण हमारे अनुभवों से नहीं बल्कि जीवन के कठिन अनुभवों से होता है। जीवन के सबसे मुश्किल वक्त के दौरान ही हम यह खोजते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हम में उन कौन सी असीमित शक्तियों का निवास है। अगर आप वर्तमान में इस प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहे हैं तो हर उस बात पर संयम रखें जिसका हल आपके अंतर में नहीं है। उन प्रश्नों को भी बंद कमरों या उन किताबों की तरह प्रेम करना सीखिए जो विदेशी भाषा में लिखी गई हैं। फिलहाल आप उत्तर की अपेक्षा मत कीजिए, वे आपको नहीं मिल सकते क्योंकि अभी आपने उस जीवन को जिया नहीं है। यह प्रश्न है हर चीज को स्वयं अनुभव करने का। अभी आपको सिर्फ प्रश्नों के साथ जीना है। शायद आपका ध्यान बिना धीरे धीरे आप स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर पा जाएंगे अगर अपने ध्यान को पूरा इन बातों पर एकाग्र।

0: ओए रुक, ओए रुक रुक, कोई सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, जो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

जब आपका जीवन रोशनी के अंतिम कगार पर होगा, आपको अपने जीवन में जोखिमों का सामना करने के लिए जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि आपको खेद और दुख उन खतरों के लिए होगा जो आपने स्वीकार नहीं किए, उन अवसरों के लिए होगा जो आपने अपने हाथ से जाने दिए, और उन डरों को जिनका सामना आपने नहीं किया। याद रखिए कि डर के दूसरी ओर आजादी का निवास है, और सफलता के इस अखंड सिद्धांत को केंद्र बिंदु बनाकर रखिए कि जीवन अंकों के खेल के सिवाय कुछ भी नहीं है। आप जितना जोखिम उठाएंगे उतना ही अधिक फल मिलेगा। या सोफोक्लेक्स के शब्दों में हम कहें कि भाग्य कमजोर दिल वाले लोगों की किस्मत में नहीं होता है। अपना जीवन भरपूर जीने के लिए जोखिम झेलना शुरू करिए, और वह चीजें करना शुरू करिए जिनसे आपको डर लगता है। असुविधा के साथ नाता तोड़ लीजिए, और आसान बिना किसी बाधा के रास्तों से मुख मोड़ लीजिए। अवश्य ऐसा संभव है कि आपके पैरों पर चोट लगेगी अगर आप नए रास्ते पर चलेंगे, परंतु यही एक रास्ता है जिसके द्वारा आप किसी भी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप किसी भी तीसरी जगह अपने एक पैर को दूसरे पर रखकर नहीं पहुंच सकते। या जैसे एंड्रे गाइड ने कहा है, हम नई दुनिया को तब तक नहीं खोज सकते जब तक हम काफी समय तक किनारे के नजारे से दूर नहीं होते। प्रचुरता के जीवन का रहस्य इसमें है कि आप अपने दिन सुरक्षा की खोज में बर्बाद करना बंद कर दें, और उस समय को जीवन के अवसरों के लिए उपयोग करने में लाएं। अवश्य ही आपके हिस्से में परेशानियां भी आएंगी अगर आप सोच समझकर और भावनाओं के साथ जीना शुरू करेंगे, परंतु असफलता विजयी होने की दिशा में एक शिक्षा है। जीवन सिर्फ विकल्पों का नाम है। गहन संपूर्णता और उच्च रूप से वास्तविकता से जुड़े हुए लोग साधारणतः दूसरों की तुलना में अधिक विवेकपूर्ण चुनाव करते हैं। आप या तो यह चुनाव कर सकते हैं कि या तो जीवन के तट पर पूरी सुरक्षा के साथ बैठे रहें, और या गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर उन मोतियों को ढूंढ कर लाएं जो किसी असली साहसिक व्यक्ति की प्रतीक्षा में पड़े हुए हैं। अपने आप को इस बात पर केंद्रित और प्रेरित रखने के लिए कि जैसे जैसे जीवन के दिन आगे जाएंगे, आप व्यक्तिगत सीमाओं के घेरे को बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। किसी भी स्थिति में आलोचक महत्वपूर्ण नहीं है, और नहीं वह व्यक्ति जो यह बताता है कि कोई मजबूत इंसान कहां लड़खड़ाया, या वह कहां अपना काम बेहतर कर सकता था। असली प्रशंसा उस व्यक्ति की है जो वास्तव में मैदान में है, जिसका चेहरा पसीने और खून से भरा हुआ है, और जो वीरता के साथ कोशिश कर रहा है, परंतु थोड़ी सी कमी के कारण वह अपने जो लक्ष्य के पास आते आते रह जाता है, उसमें महान उत्साह है, और वह अपना जीवन एक योग्य तरीके से बिता रहा है, जिसे सबसे अच्छी तरह उस उपलब्धि की जीत के बारे में जानकारी है, और वह यह भी जानता है कि अगर वह हारा तो कम से कम वह महान हिम्मत का प्रदर्शन करके हारेगा, जिसकी उन डरपोक व्यक्तियों ने कोशिश भी नहीं की, और जो विजय और पराजय दोनों से अनभिज्ञ हैं। तो सदा खतरों से खेलने की आदत बना लें। जितना आप इस खेल में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आप उन अनुभवों से बहुत कुछ सीखते जाएंगे जो आपके जीवन में सदा आपकी एक पूंजी के रूप में आपके साथ रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य को सहज बनाना वास्तविकता में सहज है, यह कोई कठिन मार्ग नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, सिर्फ हमारे भोजन पर ध्यान दें, हमारे आहार विहार पर ध्यान दें, तो स्वास्थ्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। हम में से बहुत सारे लोग तब तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते जब शरीर का कोई अंग या स्वास्थ्य से संबंधी कोई चीज गड़बड़ी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती। अब फिर उस चीज को ठीक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी दवाइयां खानी पड़ती हैं, कितने पैसे का खर्चा होता है, कितना वक्त जाया होता है, ये हम सभी समझते हैं। इसलिए क्यों ना हम ये बेहतर कोशिश करें कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में मेहनत करें, ऐसी कोई चीज होने ही ना दें, कमी पेशी रहने ना दें जिससे स्वास्थ्य बिगड़े। सहज स्वास्थ्य की इसी कोशिश में रेडियो मधुबन आपके सामने ऐसी अनेक जानकारियां ले आ रहा है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रहे हैं, मगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ साथ अपने घर परिवार के सदस्यों को, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे समाज को स्वस्थ रखने के लिए भी अपनी अहम भूमिका को समझें। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से ये एक ऑस्टियोपैथ हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में ये प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर अनेक इनके परिवार के सदस्यों ने पीढ़ियों तक लोगों को शफा दिलाई है। आज करते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो हम ये बात समझते हैं कि जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सभी चीजों को समझते आए हैं, और आजकल के बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं, स्कूलों में, वो इसके साथ साथ विटामिन्स की भी बात सुनते आते हैं। विटामिन्स शरीर के लिए आवश्यक है, हालांकि वो बहुत कम मात्रा में हमारे लिए जरूरी है, मगर वो कम मात्रा में होते हुए भी अगर वो ना मिले तो फिर स्वास्थ्य में गड़बड़ियां होती हैं, ये बात हम समझते हैं। विटामिन्स में लोग ये कहते हैं कि भाई फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। थियरी में तो हम इन चीजों को समझते हैं, मगर ये विटामिन कौन से हैं, कहाँ से ये विटामिन मिलता है, इत्यादि चीजों को समझा जाए। अक्सर विटामिन्स की बात कही जाती है तो लोग ये कहते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ये अल्फाबेट्स के हिसाब से ये सुनने को मिलता है। तो सर्वप्रथम मैं इसी विटामिन से शुरू करना चाहूंगा, जो विटामिन ए जिसका नाम है, ये विटामिन ए क्या है, ये क्यों ये सबसे पहले इसका नंबर आता है, क्या इसके पीछे भी कोई वजह है, ये भी समझनी चाहिए।
1: ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये चार विटामिन में से एक है जो फैट में हमारे शरीर में घुलता है, विटामिन ए, डी, ई और के। हमारे शरीर के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला कि हमको ये विटामिन्स बहुत कम मात्रा में चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और हमको चाहिए इसलिए क्योंकि हम इसको अपने शरीर में बना नहीं सकते। सबसे पहले ये बात की जाए कि ये किनको नहीं मिलता है या इनकी कमी किसको हो सकती है। सबसे पहला, या तो आप भोजन में जो ये विटामिन सप्लाई करते हैं उसका प्रयोग एकदम नहीं करो। जिस चीज में विटामिन ए है, और सबसे कॉमनली विटामिन ए को गाजर के साथ जोड़ा जाता है, मतलब गाजर, पालक और स्वीट पटेटो, या हम लोग जो कहते हैं, इन तीन सब्जियों के साथ इसको जोड़ा जाता है, और नॉनवेज खाने वाले इसको अंडा और मछली से जोड़ देते हैं। मगर सबसे पहले हम ये माने कि या तो हम ये जो भोजन है उसको एकदम नहीं करते हैं, दूसरा या तो हम बीमार हैं, हमारा पाचन तंत्र खराब है, हमको डायरिया है, हमारा एब्जॉर्प्शन पूरा खराब है, या लिवर हमारा गड़बड़ है, और या एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक है, तो हमारा ये एब्जॉर्प्शन पार्ट पूरा खराब। सबसे ज्यादा इससे कौन इफेक्ट होता है, तीन आदमी, प्रेग्नेंट लेडीज, क्यों? क्योंकि वो अपने साथ एक शिशु का भी जीवन बढ़ा रही, तो उनको अपनी मात्रा इसकी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक जीवन नहीं दो जीवन को संभाल रही। दूसरा, छोटे बच्चे जो माँ का दूध छोड़ दिए हैं, बाहर जो ऊपरी भोजन है उसको बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं, वो बाहर मिट्टी में खेल रहे हैं तो उनके पेट में बहुत कीड़े और गंदगी है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ठीक से इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और तीसरा, महिलाओं में जिनको लिवर का कोई कैंसर है या उनको लिवर डिजीजेस है, जिसकी वजह से ये विटामिन उनके शरीर में जा नहीं पाता। हम लोग को भैया जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हम उसका निवारण नहीं ढूंढेंगे। हम लोग ने जो पुराने एपिसोड में जब पानी की बात की तो आप ही ने एग्जाम्पल दिया था कि ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं कि जो सामने पानी रखा होता है तब भी नहीं पीते हैं, और जब गला सूख जाएगा एकदम आप परेशान हो जाएंगे तब पानी पिएंगे। तो उसी तरह से विटामिन हम एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन मतलब खा ही नहीं रहे हैं हफ्तों तक, तो समस्या होना शुरू। और इसका सबसे कॉमन जो सिम्टम मिलता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आदमी एकदम ठीक से देख रहा होता है और शाम होते होते उसको धुंधला दिखना शुरू होता है, या जब रोशनी कम होती है तो उसको साफ नहीं दिखता है। बड़े आदमियों में तो तुरंत आइडेंटिफाई किया जाता है, तुरंत दिखता है। छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते हैं उसमें जब देखते हैं कि बच्चा चलते चलते किसी चीज से लड़ जा रहा है, दिन में तो वो एकदम अच्छे से घर में दौड़ रहा है टेबल से, पर शाम के समय वो चलते चलते किसी भी ऑब्जेक्ट से लड़ जा रहा है, तो कहते हैं अरे यार ये क्या, वो अपने हाथ से डोर को फील करने के लिए का पता चलता है, वॉल को पुश कर रहा है, तो लोग कहते हैं यार ये क्या हो गया। तो ये सबसे बड़ी कॉमन जो परेशानी होती है कि वो उसको शाम के समय दिखता नहीं है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसकी आंखें सूखने लगती है, ये सबके साथ हो सकता है, जो आपकी त्वचा है वो सूखने लगती है, आपको फोड़े फुंसी होने लगते हैं, आपका जो शरीर में घाव है वो ठीक से वो भर नहीं पाता है, आपको अगर कहीं कोई कट गया है तो वो ठीक से हील नहीं हो पा रहा है। और इसकी डेफिशिएंसी भैया यंग कपल्स में भी मिलती है, जो बच्चा पैदा करना चाह रहे पर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी में भी विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है, तो इसकी डेफिशिएंसी से ये समस्याएं होने लगती
0: है। ये बात समझ में आती है कि विटामिन ए, विटामिन ए के नाम से शुरू होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। दोस्तों गौर करने वाली बात है कि अगर लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, अगर आपके लीवर में समस्याएं हैं तो भी इस विटामिन की कमी महसूस होती है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो कहाँ से ये विटामिन मिलता है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके स्रोत क्या हैं, गाजर पालक इत्यादि चीज़ें हम सुनते हैं, अगर आप इन चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं करते तो क्या नुकसान होता है। डॉक्टर साहब यही प्रश्न मेरा भी है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, व्यक्ति इसका सही मात्रा में सेवन नहीं करता है, तो जैसे आपने कहा नाइट ब्लाइंडनेस होता है, छोटे बच्चों में तो ये चीज समझ में आती है, तो क्या व्यक्ति हर दिन इन चीजों का सेवन करना शुरू करे, या कैसे हमें पता चले कि भाई हम विटामिन ए का सेवन कर रहे हैं, कितनी मात्रा में हो रहा है?
1: सबसे पहली चीज, जो भी फल बहुत हरा है, सब्जी जो भी बहुत हरी है, या फल जो भी ऑरेंज या नारंगी रंग का है, वो आपको सबसे अच्छा विटामिन ए का आपको पूरक होगा, वो सोर्स होगा विटामिन ए का। तो स्वीट पोटैटो जैसे गंजी हो गई, आम हुआ आपका, एप्रिकॉट्स हुए, और कैरेट हुआ, कद्दू हुआ, फलों में मस्क मेलन या खरबूजा हुआ, आजकल भैया रेड और येलो बेल पेपर भी, मतलब जो शिमला मिर्च होता है वो भी लाल और पीले रंग का आ गया है, वो हुआ,
2: हमारी ब्रोकली जो हरी है, स्पिनच, पालक हुई, ये इसको हमको अपने भोजन में किसी न किसी रूप में लेना चाहिए। और रोज अपने भोजन में कुछ लाल जो है उसको जरूर प्रयोग कर लें। गाजर खा लीजिए, आम खा लीजिए, आप पालक का इस्तेमाल कर लीजिए, ब्रोकली का इस्तेमाल, जो नॉनवेज खाते हैं वो मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, बहुत सारी चीजों में उनको मिल सकता है। तो सबसे पहले अपने भोजन में या कोई भी लाल चीज को जोड़ लीजिए। अगर आपने लाल चीज अपने भोजन में ले ली तो आपको विटामिन ए की कोई भी कमी नहीं होगी। कोई साइंस, कोई नंबर, कोई भी चीज छोड़ दीजिए, तो हमको अपने भोजन में लाल या नारंगी चीज जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। और नारंगी जैसे आम हुआ, संतरा हुआ, इसका प्रयोग, या हरी जैसे ब्रोकली हुआ या पालक हुआ, उसमें इसका बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है।
0: डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आती है कि भोजन बनाते समय या भोजन को जब हम खा रहे हैं, भोजन में इन चीजों को इंक्लूड कर देने मात्र से ही ये चीजें हमको मिलने लगती हैं, और ये कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है कि हम भोजन में पालक हो या गाजर हो, ये आसानी से मिलने वाली चीजें। और अलग अलग जो आपने अभी बात बताई कि सीजन में जो अलग अलग फल मिलते हैं जो नारंगी रंग के होते हैं, उन सब चीजों का इस्तेमाल करना तो कोई मुश्किल नहीं है, और ना ही ये कोई महंगी चीजें हैं। मैं नहीं समझता कि भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो आम ना खा सके। प्रकृति प्रदत्त ये भारत का फल है, फलों का राजा है, और गरीब से गरीब इंसान भी कम से कम आम तो खा ही सकता है। ये सभी के लिए मुहैया होने वाली चीज है। अब दूसरे विटामिन के बारे में हम बात करें, कौन सा ऐसा और विटामिन है जिसके बारे में हम समझें कि ये भी विटामिन आवश्यक है और इस चीज को अच्छी तरीके से समझें। दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है कि विटामिन ए बहुत ही आवश्यक है, और प्रकृति से हमें विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है ये चीज हमें समझ में आ रही है। हम में से अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, गाजर नहीं खाता या पालक नहीं खाते हमारे बच्चे, जब ये चीज कहते हैं तो माओं के पास अलग ऐसे तरीके हैं जो गुप्त तरीके से या किसी चीज में मिलाकर इन चीजों को ऐसे बना देती हैं जिससे बच्चों को समझ में ही ना आए और वो उनके भोजन में नेचुरल तरीके से चला जाए, उनके पेट में चला जाए और वो शरीर में अब्सॉर्ब हो सके। अक्सर मैंने ये चीज होते हुए देखा है यहाँ हमारे ग्रामीण परिवेशों में भी, ऐसे बच्चे जब पालक नहीं खाते या गाजर नहीं खाते तो माँ अक्सर उसे कद्दूकस करके या पीस के रोटी के आटे में मिला देगी और उसी आटे से रोटी बनाकर वो बच्चों को खिला देती है। तो इन तरीकों को भी सीखना जरूरी है ताकि हम अपने परिवार में विटामिन ए की कमी को ना होने दें। और खासकर जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि बच्चों में अगर विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात्रि के समय बच्चों को नहीं दिखना, शाम होते ही वो चीजों से टकराने लगे, दीवार को पकड़कर चलने की कोशिश करें, सब कुछ होता है और इन चीजों के प्रति भी जागरूक रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कुछ और चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे विटामिन ए की कमी, ये तो आपने नाइट ब्लाइंडनेस बच्चों में जो आसानी से हम समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो बात आपने बताई। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कोई चीजें हैं जो शरीर में होती हैं जो विटामिन ए की कमी से होती है, उन चीज को समझें।
2: सबसे पहले भैया, कोई भी हो उसको बड़ी थकान लगेगी, और बच्चों में लंबाई बढ़ना या उसमें थोड़ी कमी आएगी, रात की नींद डिस्टर्ब होगी भैया, उससे पिंपल या जो हमारे एक्ने कहते हैं वो शरीर में निकलने लगेगा, और हमारा इम्यून सिस्टम इससे डिस्टर्ब होता है, मतलब आदमी बड़ी जल्दी जल्दी उसको सर्दी जुकाम खांसी होने लगेगी, वो बीमार रहने लगेगा। और जो इस समय सबसे बड़ी समस्या इनफर्टिलिटी की, मतलब जो महिला पुरुष एक बच्चा चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है, वो इस विटामिन की कमी से इनफर्टिलिटी भी होती है। तो विटामिन ए का बहुत अच्छा रोल है, और ये हमारे जो बाल है उसमें भी सूखापन ला देता है। तो खासकर महिलाएं जिनकी बाल बड़े सूखे रहते हैं उनमें भी ये माना जाता है कि विटामिन ए की कमी है जिसकी वजह से उनके बाल ड्राई या सूख रहे हैं। एक इसको मोटा मोटी ये समझिए कि विटामिन ए अगर शरीर में कम होगा तो सूखापन आ जाएगा, आंख सूख जाएगी, त्वचा सूख जाएगी, बाल सूख जाएगा, इम्यूनिटी सूख जाएगी आपकी। तो इसलिए अगर हम इसको पूरा लेंगे तो हमारी त्वचा भी अच्छी हो जाएगी, हमारे बाल भी अच्छे हो जाएंगे, हमें पूरी तरोताजा हम फील करेंगे, हमारी रात की नींद बड़ी अच्छी हो जाएगी और नाइट ब्लाइंडनेस की जो मैंने बात की वो नहीं होगी।
0: आजकल ये समस्याएं हम देखते हैं कि प्रायः लोग ऐसा भोजन कर लेते हैं जिसमें क्या चीज पड़ी है इस बात का ध्यान नहीं होता है डॉक्टर साहब। जैसे बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट से कोई चीज मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, कभी कभार तो लोग मैगी इत्यादि ऐसी फास्ट फूड जो पैकेट्स में बनकर आती हैं उन चीजों को खा लेते हैं। अब उसमें कोई ताजा सब्जी की बात हो या विटामिन की बात हो, विटामिन ए जो आप कह रहे हैं, पालक की बात हो, गाजर की बात हो, या ऐसी कोई चीज तो उसमें होती ही नहीं है। और कई बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनके टेस्ट बड्स के हिसाब से भोजन जो मेस में बनता है या हॉस्टल में बनता है वो पसंद नहीं आता, तो इसलिए वो ऐसा ही फास्ट फूड खा लेते हैं और इसकी वजह से ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में इन विटामिन्स की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना भी बहुत आवश्यक है।
2: हॉस्टल में रह रहा बच्चा हो या कहीं कोई काम कर रहा हो, प्लीज हफ्ते में एक दो दिन कोई भी आपको फ्रूट अच्छा लगे उसको जरूर खा लीजिए। और सबसे इजी जो फ्रूट खाना है वो बनाना है, मैंगो बहुत अच्छा विटामिन ए के लिए, तो मैंगो बहुत अच्छा है। गाजर सड़क पे बिकने लगा है, जिस तरह से खीर बिकता है उस तरह से गाजर को हल्का सा धो के छील के नमक और नींबू डाल के दे दे रहा है, उसको खा लीजिए। आपको अपने शरीर में फाइबर डालना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य कोई पैकेट में आपको बेच नहीं सकता है, इसे आपको खुद अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली बार बोला था ना कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि कोई दूसरा जिम करे और हमको उसका फायदा हो, ये नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
2: व्यापार में हो सकता है कि कोई दूसरा काम करे उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा हो, मगर शरीर के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा, आपको अपने मुंह में खुद उस भोजन को डालना पड़ेगा, आपको खुद चलकर उस भोजन को जलाना पड़ेगा। तो जो भी माताएं बहनें, जो भी स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हो, एक चीज पर ध्यान दें, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए उनको नारंगी रंग का कोई फल हफ्ते में एक दो बार जरूर खाना है। उनको पालक ब्रोकली जरूर खाना है। विटामिन ए को कॉमनली रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल को किसी भी रूप में खा लेना है। प्लीज गोली खाने से पहले कोई फल खा लीजिए, कोई सब्जी खा लीजिए, क्योंकि जो नेचर आपको देना चाहता है वो कोई दवा की कंपनी आपको नहीं दे पाएगी। और हमारा पूरा शरीर डिजाइन किया गया है उस नेचर में से उस चीज को निकाल कर अपने शरीर के इस्तेमाल के लिए बनाने के लिए। तो प्लीज कोई भी फल, कोई भी जो सब्जियां जिसमें विटामिन ए है, प्लीज उसको खा लीजिए।
0: बहुत ही आवश्यक आज की ये बातचीत रही है जिसमें हम ये समझ पाए हैं कि विटामिन ए की आवश्यकता शरीर के लिए कितनी है, विटामिन ए कहाँ मिलता है, विटामिन ए की कमी से हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये चीजें आज हमने डॉक्टर साहब से सुनी है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज की चर्चा में जो बातें हमने सुनी है सिर्फ उन्हें सुनना ही नहीं है मगर उसे जीवन में ले आना है। हमारे आहार पद्धतियों में जो गड़बड़ियां हम करते आए हैं, अगर कोई भूल चूक हुई है या कई लंबे समय से हम उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो शायद ये सही समय है कि हम उस भूल को सुधारें, फिर से अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोकने के लिए, अगर वो बिगड़ गया है तो उसको सुधार करने के लिए, अगर आप स्वस्थ हैं ही तो आपके स्वास्थ्य को उसी रीति बरकरार करने के लिए ये चीजें बहुत आवश्यक है। विटामिन्स कम मात्रा में आवश्यक हैं मगर फिर भी इनका सेवन क्यों जरूरी है ये बात हमने समझा। विटामिन ए के सोर्सेस के रूप में जहां से ये स्रोत हैं विटामिन ए के, उनको समझ कर उनको हर दिन भोजन में या हफ्ते में एक दिन नारंगी फल, नारंगी रंग के जो फल हैं उनका सेवन करना जरूरी है। गाजर और पालक तो भारत के लगभग हर प्रांत में मिलते हैं दोस्तों, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने। आम, जब आम का सीजन है तो आम को खाएं, या फिर जो खरबूजा है जब उसका मौसम है तो उसको खाएं। इन सब चीजों पर ध्यान देने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सहज रीति से हासिल कर सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही दोस्तों। आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
2: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज की बातचीत में विटामिन ए की आवश्यकता के बारे में हमने बात की और आशा करते हैं कि आप सभी भी विटामिन ए की महत्ता को समझेंगे। खासकर हमारे घर में भोजन बनाने वाली माताएं बहनें, या अगर भाई भी भोजन बनाते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि भोजन में कैसे न कैसे करके इस विटामिन को शामिल करने के लिए इसके स्रोतों को भोजन में ले आएं और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। आज की चर्चा में इतना ही। सेहत स्वास्थ्य में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हम बात कर रहे थे जीवन की सिचुएशंस के बारे में। जब देखा हमने कि परिस्थितियां हमसे ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं और आने वाले वक्त में तो ऐसा और दिखता जा रहा है। ग्लोबली अगर हम देखें या पर्सनल लाइफ में भी देखें कि सिचुएशंस आती जाएंगी और मुश्किलें, मुसीबतें, और अभी तक हम ये भी बातें करते आ रहे थे कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। लेकिन रियल सेंस में जब हमने देखना शुरू किया, हमें पता चला कि कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली एक परिवर्तन, एक चेंज है। और उसको हैंडल करने के लिए या उसको कैसे उससे गुजरना है, उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास हम दो तरीके अभी तक कर रहे थे। या तो हम उससे भिड़ जाते थे उस सिचुएशन से, या फिर हम अपने आप को गिव इन करके उसके साथ बह जाते थे। लेकिन अगर हम जहाँ हम खड़े हैं वहीं खड़े रहें और उस सिचुएशन को गुजर जाने दें, दैट इज़ वेयर यू नो द राइट सेंस हमारे पास आती है। ऐसे में अगर देखें तो पिछली कड़ी में ही हमने बात की थी कि सही सोच हमारी बहुत मदद करती है, पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके बारे में कितना कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसे सही तरीके से कैसे लेना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे भी हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने यही कहा था कि हमारा ही क्रिएट किया हुआ थॉट हमारी डेस्टिनी तय करता है। आप जैसे हम एक जर्नी हमने की थी आपके साथ,
1: आपको सब दर्शन याद है पूरे।
0: मैं ट्राई करती हूँ कि वो जो एक सोच मेरी, एक थॉट मेरा फीलिंग को क्रिएट करता है, और जब बार बार वो फीलिंग आती है, हम मुसीबत ये ना समझकर परिवर्तन समझें, चैलेंज समझें। अब परिवर्तन तो होता ही है, हर पल परिवर्तित हो रही है ज़िंदगी, हम सब बिलीव करते आ रहे हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। उस परिवर्तन में गुडनेस कैसे देखनी है, उस परिवर्तन को रिस्पॉन्ड कैसे करूँगा, उसमें मेरा क्या रिएक्शन होगा, ये मैं खुद तय कर सकता हूँ, मैं खुद सक्षम हो सकता हूँ। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक बार फिर से हम सिस्टर शिवानी उस बात को लेते हैं कि जो जिंदगी में हो रहा है, आज ही नहीं, कल ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में भी, वो सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आधा वक्त भय में गुजर रहा है मेरा, आधा वक्त उससे जूझने में गुजर रहा है, आधा वक्त और एनर्जी, और आधा वक्त उसे एक्सेप्ट करने में ही, आधे से ज़्यादा वक्त कि ये मेरे साथ हो गया। चाहे वो डिवोर्स केस की बात की थी, चाहे हमने ये देखा था कि बच्चा मेरा जो है वो, अच्छा इनफैक्ट हमने डेथ की भी बात की थी, लेकिन एक और बहुत बड़ी सिचुएशन, बच्चा मेरी ज़िंदगी से कहीं और जा रहा है, वो चेंज हो रहा है, या उसके जीवन में कुछ ऐसा घट गया है जो मेरे लिए स्वीकार नहीं हो पा रहा, तो इन सब में जो मेरा वक्त जा रहा है, एक थॉट जो है वो उसे चेंज कर सकता है।
1: तो वही जो आपने कहा ना, जूझना, जूझना भी रिस्पॉन्स है। परिस्थिति तो आ गई, अब हम ट्राई करेंगे कि अब हम परिस्थिति को एक तरफ रखते हैं, अब हम रिस्पॉन्स पर चलते हैं, क्योंकि येस वी हैव अंडरस्टूड दैट इट्स वेरी बिग, बट नाउ स्टिल व्हाट डू आई हैव टू डू, आई कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, नाउ लुक, लेट मी लुक एट द अदर साइड ऑफ द टेबल, एंड द अदर साइड ऑफ द टेबल आई एम स्टैंडिंग, यू नो, सिचुएशन वहाँ है, दिस साइड आई एम स्टैंडिंग, यू आर नॉट इन माई कंट्रोल, इज दिस इन माई कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं पहले अपने फोकस को हम शिफ्ट करें कि परिस्थिति है, मान लिया, अब एक साइड पर उसको रखते, बट एनी सिचुएशन, एनी चैलेंज, फर्स्ट थिंग डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। परिस्थिति आएगी तो रिस्पॉन्स होना ही है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। कोई भी परिस्थिति आपके बिना रिस्पॉन्स के नहीं आगे जाती है, लेकिन अब रिस्पॉन्स क्या और कैसा, दैट्स इन माई हैंड।
0: और तो, उसमें एक मेरे जो दिख रहा है, मुझे समझ में आई एक बात कि जैसी परिस्थिति आती है, पहली चीज होती है जो रिस्पॉन्स की बात करती है, पेन। पेन हिट्स अस, और कितनी बार
1: पेन हिट्स अस, नाउ पेन हिट्स अस, सी सच अ कॉमन सेंटेंस, लॉट ऑफ ऑफ, वो दर्द मेरी तरफ आ गया, या दैट पेन हिट मी, नाउ व्हेन आई से पेन हिट्स अस, दैट मींस आई एम सेइंग इट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। पेन हिट्स अस मतलब, तो जैसे कि किसी ने मुझे मारा आकर, तो पेन हिट्स अस मींस द पेन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। या हमने अभी देखा कि परिस्थिति बाहर से आएगी, एंड जैसे ही परिस्थिति आएगी, आई हैव टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स किसने क्रिएट किया? आपने क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया। अब रिस्पॉन्स क्रिएट करना मतलब क्या? क्रिएट करना
0: थॉट, क्रिएट
1: थॉट, क्रिएट करना। इमीडिएट परिस्थिति थॉट, परिस्थिति थॉट, दिस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. अब परिस्थिति आई कितनी भी बड़ी, थॉट किसने क्रिएट किया?
0: एक्चुअली मुझे तो पता नहीं चलता ना कि मैंने क्रिएट किया.
1: बट नाउ द व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट कि फोकस, यस सिचुएशन वेरी बिग, नाउ रिस्पॉन्स किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स मतलब क्या कि फर्स्ट चीज मैंने क्या क्रिएट की, जैसे आपने कहा एक थॉट क्रिएट की, थॉट क्रिएट की, फीलिंग्स क्रिएट हुई, एक्शन में आ गया. अब एक्शन किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया. दर्द क्रिएट किया किसने? क्रिएट किया
0: मैंने. क्रिएट किया
1: क्योंकि दर्द इज द रिस्पॉन्स ना, और फिर वो एक्शन में आया. अब जैसे ही एक्शन में आएगा उसका रिजल्ट फिर सिचुएशन के रूप में फिर मेरे सामने आएगा. लेकिन फिर जब सिचुएशन मेरे सामने आएगी फिर क्या क्रिएट किया? अगेन आई क्रिएटेड अ थॉट. नाउ बिकॉज इट्स लाइक टू पीपल आर हियर, सिचुएशन रिस्पॉन्स, सिचुएशन रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरा सारा टाइम इसको देखने में जा रहा है सिचुएशन को, तो मेरा ध्यान इस तरफ तो जा ही नहीं रहा कि आपका रोल क्या है इसमें प्ले करने में. तो इसलिए हमने समझा कि रिस्पॉन्स तो ऑटोमेटेड है,
0: नेचुरल रिएक्शन है. नेचुरल रिएक्शन, सो मेनी टाइम्स वी से दैट कि इट्स अ नेचुरल रिएक्शन.
1: नेचुरल रिएक्शन क्यों? क्योंकि मैंने सोच समझ के रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट किया, एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स क्रिएट किया. यू नो, एक जैसे हमारे पास ईमेल्स आते हैं, एक है कि उस ईमेल को पढ़ के उसके ऊपर बैठकर सोचकर एक आंसर हम लिखेंगे, और एक है कि एक ऑटोमेटेड रिस्पांस क्रिएट कर दिया है.
0: मुझे आता है.
1: यस, सो एवरी ईमेल व्हेयरएवर वी सेंड टुडे आउट इनटू द वर्ल्ड, आपको इमीडिएट ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आता है ना. आपकी वहां पहुंची नहीं होगी, अभी आपने सेंड बटन दबाया होगा, 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपको वहां से जवाब आया. सोचा समझा हुआ जवाब नहीं था, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स था. तो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मतलब जो एक मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग बहुत पहले से फिक्स करके रखी हुई है सिस्टम के अंदर, उसने क्वेश्चन को समझा भी नहीं, उसने परिस्थिति को देखा भी नहीं, लेकिन उसके पास उसका रिस्पॉन्स फिक्स्ड है. एंड दैट इज दैट रिस्पॉन्स, वेदर इट्स ऑफ पेन और फियर और व्हाटएवर, बट इट्स एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स. व्हाई? बिकॉज आई डिड नॉट टेक आउट टाइम internally to look at whether I have a choice to create a response, whether I need to sit and think what has to be my response. I just said natural response. Gussa, natural response. Dard, natural response. Stress, natural response. तो उसको फिर हम reaction कहते हैं. जैसे दो words है हम बार बार use कर रहे हैं, reaction, response. तो reaction है
0: ऑटोमेटेड. हम बार बार ये भी देखते हैं शिवानी कि दूसरा कोई होता तो वो क्या करता. हम ये भी कहते हैं ऐसे ही तो रिस्पॉन्ड करता, ऐसे ही तो उसका रिएक्शन.
1: क्योंकि ज्यादातर फिर हम किसको देख रहे हैं? मेजोरिटी अराउंड अस आर लिविंग विद ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस. और क्योंकि फिर मेरे आसपास मेजोरिटी लोग ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स पे चल रहे हैं, तो फिर मैंने एक और बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लिया कि दिस इज द राइट वे टू लिव. कि अगर एक कुछ गलत करेगा तो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है कि गुस्सा तो आएगा ही. मैंने अपने आप को ऑप्शन नहीं दिया बीच में कि डू आई हैव अ चॉइस, कितना गुस्सा करना है, कब तक करना है, किस पर करना है, कितने समय तक उसको पकड़ कर रखना है. ये सिचुएशन पर डिपेंडेंट है.
0: नहीं, इनफैक्ट यस, बट मेरे ऊपर है, आई कैन मेक इट आउट. बट एक्चुअली अगर मैं देखूं तो अभी तक जिंदगी में यही हो रहा था कि इट जस्ट टेक्स ओवर.
1: टेक्स ओवर बिकॉज आपने इस पर अटेंशन ही नहीं दिया ना. आप यहाँ जिसकी एनर्जी, जहाँ अटेंशन जाएगी एनर्जी फ्लोज. वी हैव वर्कड विद दिस लॉ थ्रू आउट, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. तो जहाँ आप ध्यान देंगे, जिस साइड पर आप अटेंशन डालेंगे, आपकी सारी शक्ति, जितनी भी शक्ति आपके पास, वो उस साइड पर जाएगी. अब ये दो साइड ऑफ द टेबल है, सिचुएशन, माय स्टेट ऑफ माइंड व्हिच इज रिस्पांस. इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है
0: पूरा. हाँ,
1: इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है क्योंकि इसको तो कह दिया कि ये तो ऑटोमेटिक है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि हमने सोचा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. ये तो गुस्सा तो आना ही है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. मेरे कंट्रोल में मुझे लगा कि वो है, वो परिस्थिति मेरे कंट्रोल में है. तो जो चीज मेरे कंट्रोल में है, मैंने अपना सारा ध्यान किस तरफ लगाना शुरू कर दिया? उस तरफ कि मैं इस सिचुएशन को किसी तरह चेंज कर दूं. और सिचुएशन को चेंज करना मतलब सामने वाले लोगों को चेंज करना,
0: और वो टेंशन में ही मैं सब कुछ कर. ओह यस,
1: सो नाउ राजयोगा मीन्स, स्पिरिचुअलिटी मीन्स शिफ्ट फोकस दिस साइड. Situation, yes, not in my control. हर सिचुएशन में, भले उस टाइम नहीं भी याद रहे लेकिन बाद में भी बैठकर, क्योंकि जो बाद में बैठकर आप इंट्रोस्पेक्ट करके स्टडी करोगे वो आपको नेक्स्ट सिचुएशन में हेल्प करेगी. कई बार ठीक है ये सिचुएशन आई, मैंने नहीं ठीक से हैंडल किया, आई वेंट थ्रू पेन, लेकिन इफ आई सिट बैक एंड आई थिंक ओवर इट, आई विल बी रेडी फॉर माई नेक्स्ट सिचुएशन एंड दैट इज वॉट इज इन माई कंट्रोल. जैसे फॉर एग्जाम्पल बीमारी फैल गई, लेट्स से अभी ये जो स्वाइन फ्लू फैल गया, यू ट्राई टू स्टॉप दैट, यू कैन स्टॉप दैट, तो वट आर बी ट्राइंग टू डू, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो आप लोगों को देखेंगे वो लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, लोग हर जगह टेम्परेरी वट एवर मेजर्स दे आर टेकिंग, वो फ्लू को तो नहीं रोक सकते ना, वो किसको बचा सकते हैं, हम अपने को बचा सकते हैं. सो दिस इज इंटेलिजेंस ना. अगर आप सोचें आप वायरस को ढूंढ के उसको रोकने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट हैपनिंग. तो एवरी कंट्री एवरी नेशन व्हाट हैव दे डन, हमें क्या करना है जिससे हम अपने को बचा सकें ताकि ये एपिडेमिक फैले नहीं. अब जिस समय एंगर और स्ट्रेस और ये डिप्रेशन हिट कर रहा था, हमने सारा ध्यान किस पर दिया,
0: सिचुएशन
1: वायरस. वो सारा वायरस का, मैं उसको वायरस को ही रोक दूं तो मुझे दर्द नहीं होगा. अगर हमने ध्यान अपने ऊपर उसी समय से देना शुरू कर दिया तो बीमारी कैच ही नहीं होगी ना, बीमारी भी पकड़ ली और उसके बाद भी बीमारी को ना ध्यान देते हुए परिस्थिति को ही देते गए, तो परिस्थिति तो क्योंकि मेरे कंट्रोल में थी नहीं तो वो आई नहीं, लेकिन बीमारी मेरी दिन ब दिन
0: बढ़ती
1: गई. वी स्टार्टेड 20 ईयर्स बैक विद अ वर्ड कॉल्ड टेंशन, चिंता. स्ट्रेस वर्ड नहीं था 20 साल पहले. आई रिमेम्बर व्हेन वी वर इन स्कूल देयर वाज नो सच वर्ड एज स्ट्रेस. स्ट्रेस हमारे लिए सिर्फ साइंस में आता था कि मेटल का स्ट्रेस कितना होता है. पर्सनल का स्ट्रेस ऐसा कोई शब्द नहीं था, इट वाज नॉट देयर इन द वोकैबुलरी. इस 8-10 साल के अंदर स्कूल के बच्चे बच्चे को ये शब्द मालूम है, स्ट्रेस. आज स्कूल के बच्चों को डिप्रेशन मालूम है, एंड नॉट जस्ट एज अ वर्ड, एज एन एक्सपीरियंस. दे आर एक्सपीरियंसिंग इट. क्यों? क्योंकि जब वो बीमारी स्ट्रेस के लेवल पर थी, रोका नहीं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, सिलेबस को क्या करे, कॉम्पिटिशन को क्या करे, बाहर बैग्स को हल्का कर दो, विच इज ओके, इट्स इम्पोर्टेंट, बट बीमारी कहाँ है, फेस किसको करना है उस सिलेबस को, उसकी ताकत को बढ़ाए. नो वन वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, बिकॉज जो लोग सोच रहे थे वो भी तो खुद भी तो
0: depleted.
1: अपने ही दर्द में है. तो वो वर्ड स्ट्रेस से बढ़कर आज डिप्रेशन पर आ गया है. टुडे डिप्रेशन इज ग्रेजुअली बिकमिंग अ वेरी, यू नो, जैसे कि एक आम बुखार की तरह है, किसी को भी हो रहा है.
0: शिवानी, बहुत लोग ये बोलने वाले हैं, मतलब मेरे, मैं भी अगर सोचूं कि जब सिचुएशन आ रही है तो उसको ग्रैपल करने का कोशिश करूं, उसको सेव करने की कोशिश करूं, या अपने ऊपर काम, मतलब अपने ऊपर देखने लग जाऊं, यू नो, दिस इज लाइक, उस वक्त मेरा पूरा फोकस इस कि मेरे को सिचुएशन को उस पर कैसे सेव करना है.
1: सिचुएशन आपके कंट्रोल में है नहीं. दैट्स द फर्स्ट बॉटम लाइन. यस, हमें करना है कि व्हाट विल गेट द बेस्ट रिजल्ट. तो बेस्ट रिजल्ट के लिए मुझे दोनों में से फर्स्ट चूज करना पड़ेगा, विच वन इन माई कंट्रोल, विच वन आउट ऑफ माई कंट्रोल. अभी क्या हो रहा है, दो साइड्स है, सिचुएशन रिस्पॉन्स. हो क्या रहा है, चैलेंजेस जैसे आपने कहा, दिन ब दिन बहुत फास्ट स्पीड से चेंज की भी जो गति है ना, चेंज की भी एक स्पीड होती है. चेंज तो यस है, लेकिन चेंज जो अब हो रहा है, इट इज़ एट अ वेरी फास्ट रेट. अब ये भी तो हो सकता है इससे आगे आने वाली परिस्थितियाँ और कुछ लेकर आएंगे. हमें लग, इट्स नॉट टू गेट स्केयर्ड, अगेन दिस इज नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, हम डर नहीं रहे हैं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड बाहर है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी भी स्पीड पर जा सकता है, मेरे कंट्रोल में ये. लेकिन अब क्या हुआ, ये फास्ट बढ़ता गया, ये फास्ट घटता गया, तो जो गैप है उसके बीच में, चेंज और रिस्पॉन्स के बीच में, वो गैप बहुत बढ़ता गया. और क्योंकि ये गैप बढ़ता गया, क्या फीलिंग आई, मेरे अंदर शक्ति नहीं है टू फेस दिस,
0: गिव अप, देन यू नो लाइक यस,
1: अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, यू नो, शक्तिहीन, कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे से ये दैट्स व्हेन वी हैव दोज काइंड ऑफ थॉट्स के मेरे से नहीं फेस होगा, मेरे जीवन जीने का कोई लक्ष्य नहीं. इतनी एकदम नेगेटिव थॉट क्रिएट करना कि मेरे जीवन का कोई फिर लक्ष्य नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं है, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस. क्यों? क्योंकि वो गैप वॉज टू मच टू फेस. उसकी वजह से जो मुझे रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, जब मैंने अपने आप को बता दिया कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है इस परिस्थिति को फेस करने के लिए, तो जो मुझे रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट. एंड देन कम्स द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, बिकॉज आई कैन डू इट, आई स्टार्ट ब्लेमिंग यू. कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये सारा जो मुझे फेस करना पड़ रहा है, इसके लिए आप और पूरी दुनिया इसके लिए जिम्मेदार है.
0: भगवान तो आता
1: है. हाँ, वो तो जब when I don't get anyone to blame, तो ऐसे ये उसकी वजह से हो रहा है, ये भगवान कर रहा है. तो ये तीन बहुत डीप चीज़ें सेट हो जाती हैं, फीलिंग ऑफ पावरलेस, शक्तिहीन, दूसरा नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, एंड तीसरा ब्लेम. क्योंकि जैसे ही हम ब्लेम मोड में चले जाते हैं और उनकी तरफ उंगली उठाना शुरू करते हैं, तो फिर मेरा अपने पर काम करने वाला प्रोसेस तो बंद हो जाता है. आई स्टॉप इमिडिएटली. तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी सिचुएशन आती है, जितनी भी परिस्थितियां हमने देखी, जो आज हम जिसको नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल नहीं है लेकिन जो एक बहुत कॉमन हो गया है, जो हमारी थॉट क्रिएट होती है, फर्स्ट थॉट उस सिचुएशन को लेकर, वो ज़्यादातर आज नेगेटिव हो रही है. नेगेटिव थिंकिंग, बिकॉज वी सॉ कि आपको रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, रिस्पॉन्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ थॉट. एक थॉट क्रिएट करनी है, दैट इज रिस्पॉन्स, और कुछ भी नहीं करना. और वो थॉट फिर एक्शन में आ जाएगी और वो एक्शन फिर आपका अनुभव बन जाएगा. लेकिन वो थॉट की क्वालिटी वो बहुत नेगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही है. जैसे कि अपने लिए हम किस तरह की थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये बहुत मुश्किल है. मेरे से नहीं हो सकता है ये, दूसरे लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए फिर उन्हें मेरा काम भी पसंद नहीं आता है, मैं ही सिर्फ क्यों बदलूं,
0: अब क्या होगा
1: मेरे साथ,
0: यू नो, ओह माय गॉड, इट्स द एंड, यू नो. ऐसे जो थॉट्स, एक्चुअली आई कैन मेक इट आउट नाउ, द मोमेंट देयर इज अ सिचुएशन, सपोज हमें कुछ भी पता चलता है, पहला जो वो है कि इट्स लाइक व्हाट टू डू नाउ.
1: ट्रू. सो दैट्स दैट नेगेटिव थॉट. एक है सेट ऑफ नेगेटिव थॉट्स फॉर माई सेल्फ, अपने प्रति हम नेगेटिव हो जाते हैं, मेरे से नहीं होगा, ये लोग मुझे कोई लाइक ही नहीं करता, मैं तो हुई ऐसी, मेरे से सब, मैं जो करना शुरू करती हूँ घर से गलत हो जाता है. सो अपने लिए एक नेगेटिव थॉट अपने से स्टार्ट हुआ, उसके बाद औरों के लिए नेगेटिव थॉट. ये कोई काम करने का तरीका है? ऐसे थोड़ी करना होता है, ये इनको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था मेरे साथ, यू नो. अगेन I'm going to look at everyone around.
0: In fact, यहाँ पे बहुत बड़ी एक बात होती है कि मैं जब भी कोई काम शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे परिवार का साथ नहीं मिलता. There is nobody understands me.
1: Nobody understands me.
0: मैं कितना काम करना चाहती हूँ, मेरे किसी भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं मिलता. परिवार का ही सपोर्ट नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगा.
1: Now see the whole series of thoughts. किस क्वालिटी के हैं ये. अब अगर थॉट, क्योंकि बिकॉज वो बीज है आपका, बाकी आगे जो भी आपके साइकिल में होने वाला है, लेकिन बीज इस क्वालिटी का बो देंगे, फिर औरों के प्रति भी, विश्व के प्रति. टुडे द वर्ल्ड इज इन अ मेस, दैट इज वन कॉमन थॉट. माय कंट्री, इट सीम्स टू बी गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. इस देश का कुछ नहीं हो सकता.
0: अच्छा, और वो जो दुनिया में हो रहा है वही तो मुझे मिल रहा है.
1: वो तो फिर साइकिल आ गया ना, क्योंकि मेरी तो गलती वैसे भी नहीं थी. इट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. अच्छा, दुनिया में इतना सब हो रहा है, एक मैंने अगर चेंज कर भी लिया अपने आप को, उससे क्या फायदा होगा. सो ये इस क्वालिटी की जब थिंकिंग हमारी शुरू हो जाती है, एंड इट इज सच अ विशियस साइकिल, कि ये एक बार थिंकिंग का एक जो मैकेनिज्म बैठ के अंदर, तो एक से अगली थॉट फिर नेगेटिव ही होनी है, उसके बाद नेगेटिव ही होनी है. एंड आफ्टर सम टाइम नाउ वी आर नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल. पॉजिटिव थिंकिंग इतना कॉमन शब्द हो गया है आज, एवरीवन इज सेइंग पॉजिटिव थिंकिंग. किताबें देखो तो सबसे ज्यादा किस टॉपिक पर है आज मार्केट में? पॉजिटिव थिंकिंग. दैट मीन्स समवेयर देयर इज अ वेरी डीप डिजायर कि मुझे अपनी थिंकिंग की क्वालिटी को बदलना है. लेकिन किताब पढ़ते समय, या सपोज ये सेशन देख रहे हैं, ये देखते समय ठीक लगेगा, लेकिन वो बदलेगा कौन? आई विल हैव टू कॉन्शियसली सिट डाउन, एंड व्हेन आई क्रिएट द नेगेटिव थॉट, इवन इफ उस समय नहीं हुआ मेरे से, चलो वो स्टेज को क्रॉस करे, बाद में बैठकर कौन करेगा? थिंकिंग अपने आप तो नहीं चेंज हो जाएगी. इट विल नॉट हैपन ऑन इट्स ओन. इट हैज गॉट इनटू अ वेरी डीप साइकिल. क्योंकि थॉट नेगेटिव होगी तो फीलिंग भी
0: नेगेटिव होगी, कंप्लीट.
1: लेट्स से अ सिंपल चीज जो आपने बोला कि मुझे अपना बॉस पसंद नहीं है, जहां मुझे काम करना है, आई डोंट लाइक माय बॉस. वन थॉट, आई डोंट लाइक माय बॉस. अब या तो जॉब चेंज करो, वो तो आज करने की हालत में नहीं है. अब आप उसी जॉब में हैं, उन्हीं लोगों के साथ हैं, लेकिन थॉट कौन सी शुरू हो गई है साइकिल में? I don't like my boss. I can't stand my boss. You know, the way people will say, I just can't stand that person. So I don't like my boss. Feeling kaisi wali create hogi automatically?
0: Repel. Yes. Repel. I cannot be with
1: you. Kyunki meri thought hai, I can't stand you. Ye sentence itna common hai. I can't stand you. So feeling kaun si aayegi? एंगर,
0: हेट्रेड,
1: रिजेंटमेंट, यही आएगा. तो जो मेरा आपके साथ व्यवहार होगा जब वो ऐसी थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स पर बेस्ड होगा, तो वो व्यवहार कैसा होगा? नॉट कोऑपरेटिव. देयर विल ऑलवेज बी दैट, यू नो, टेंशन.
0: एंड इनफैक्ट वो जेन्युइन भी मुझे कुछ कहेंगे करने को, माय आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट. आई विल फील कि वो ही इज ट्राइंग टू पुट मी डाउन.
1: नाउ द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, व्हाट विल हैपन टू यू? आप काम तो उसी ऑफिस में कर रहे हैं ना, आपके साथ आपका सीनियर तो वही है, लेकिन क्योंकि ये थॉट और ये फीलिंग के साथ काम चल रहा है, एक थॉट सिर्फ, आई डोंट लाइक माय बॉस, यू सी हाउ इट विल कम आउट इनटू द रिजल्ट. और आपके करियर पर इसका इम्पैक्ट

0: टू माई सेल्फ, एटलीस्ट मैं अपने आप से सच तो बोल रहा हूँ.
1: भले वो ठीक है, लेकिन फिर अगर आपका जेन्युइन नेगेटिव होने वाला है, यू सी, क्योंकि हर एक में प्लस एंड माइनस, अंडरस्टैंडेबल, वो तो अभी हमें समझ में आया कि एवरीवन विल हैव देयर शेयर ऑफ वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, एंड सो डू आई, जस्ट शेयर ऑफ माई वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स. बट इफ माई सिचुएशन डिमांड्स कि मुझे उस व्यक्ति के साथ उस क्षेत्र में कार्य करना है, नेक्स्ट इज वॉट इज द चॉइस, द थॉट. आई कॉन्ट चेंज माई बॉस, अगेन कौन सी चीजें कंट्रोल में हैं, कौन सी चीजें कंट्रोल में नहीं हैं. जॉब आई कॉन्ट चेंज, बॉस आई कॉन्ट चेंज, हु कैन आई ओनली चेंज,
0: माई सेल्फ.
1: ओनली इफ आई वॉन्ट टू क्रॉस दिस होल थिंग विदाउट पेन. दर्द के साथ जीना है, दर्द में जीना है,
0: कॉम्प्रोमाइज, मजबूरी, ये सब कुछ,
1: सफोकेशन अंदर. एंड फिर सिर्फ वो अंदर की बात नहीं रहेगी, वी सॉ दैट द रिजल्ट विल कम आउट ऑन द परफॉर्मेंस. फिर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब वो परफॉर्मेंस पे आपके हिट करेगा और वो रिजल्ट आपको वापस आएगा, बी रेडी टू टेल योर सेल्फ, आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दिस वॉज ऑल माई क्रिएशन. लेकिन वहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेने क्योंकि वो डाल दिया आपके ऊपर. तो अगर हम ये देखें कि ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मेरे कंट्रोल में है, माई थॉट. Is it possible that I work on myself, look at my negative thoughts and try to convert? देखो हम नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव वर्ड में कन्वर्ट करते हैं. आप सारा दिन में देखो हम ये बहुत काम करते हैं. अंदर भले मैं आपके बारे में अच्छा नहीं भी सोच रही हूँ, ठीक है, पर भी मैं आपसे बात तो बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ. तो हमने क्या किया, कन्वर्ट किया ना, क्योंकि वो नेगेटिव आपको नहीं सुनाई देना चाहिए तो उसको अंदर ही रखा. लेकिन आपसे बात कैसे की,
0: तो अपने आप से तो मैं सच्ची रही ना, ये मैं कहती हूँ.
1: यस, लेकिन अगर कन्वर्ट करना ही है जेन्युइनली, तो कन्वर्ट वर्ड लेवल पर करने के बजाय क्यों ना थॉट लेवल पर कर दिया जाए. क्योंकि जो एनर्जी क्रिएट होकर आप तक पहुंचने वाली है, इट्स नॉट ऑफ द वर्ड्स. कई लोग बोलते हैं मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है, इधर ही काम करना पड़ेगा. अगेन दैट्स पेन. I have a choice, and the choice is start seeing the other side of the person, start changing myself. आप उनको नहीं चेंज कर सकते.
0: That's what I'm saying ना, कि मुझे उन्हें लाइक करने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए मुझे उनकी पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी.
1: लेकिन उसके लिए मुझे पहले अपने दर्द से निकलना पड़ता है. जब मैं दर्द में हूँ, मुझे आप क्यों अच्छे लगेंगे? आप क्यों अच्छे लगेंगे? क्योंकि मैंने ये समझा कि मेरे दर्द का कारण आप हैं, तो फिर आप कैसे अच्छे लग सकते हैं मेरे को उसके बाद? जब तक मेरा वो दर्द हील नहीं होता ना, तो आप मुझे अच्छे नहीं लग सकते, क्योंकि यू आर द वन हु कॉज्ड मी पेन. यू नो, ये जो मैं जिस चीज से आज गुजर रही हूँ ना, सारी इसका सारा
0: आप हैं जिम्मेदार. ऑफ कोर्स.
1: तो देन हाउ कैन आई लाइक यू? व्हेन व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड वाज द कॉज इज मी. आप वहां हैं, आप अभी भी उस कुर्सी पर हैं, आप यहाँ नहीं हैं. और दर्द जो सारा क्रिएट हो रहा था, वो यहाँ क्रिएट हो रहा था. आप वहां से बैठकर कुछ कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, मुझे फिजिकली भी मार सकते हैं, उतना ही आपके कंट्रोल में है. लेकिन यहाँ जो क्रिएशन होती है सारी,
0: वो मेरी है. ओह वाओ,
1: वो सारी मेरी है.
0: आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू रब इन एक्चुअली टू अंडरस्टैंड.
1: दिस इज द ओनली थिंग कि ठीक है, यू आर व्हाटएवर यू आर, ओके, बट स्टिल हु इज क्रिएटिंग द पेन? हु इज क्रिएटिंग द पेन? मी, नॉट द अदर पर्सन. कब तक? Stop, ask yourself, who's creating the pain? I. कब तक?
0: I can stop it now.
1: Whenever. आप जब रोकना चाहे. आपको एक साल बाद दर्द खत्म करना है, आपको 6 महीने बाद खत्म करना.
0: No, I want to do it now.
1: Finish it then.
0: Yes,
1: right,
0: finish.
1: Now. That's what it is. जब focus यहाँ आएगा, तब तो finish होगा ना. That's why we always rubbing this in, focus self, self, self. क्योंकि सिर्फ वही है जहां आप बिंदी लगा सकते हो. आपको नहीं बिंदी लगा सकती मैं. अगर आपने मेरे से रूडली बात करनी है तो करनी है, मैं बिंदी नहीं लगा सकती आपको. बिंदी जहां लग सकती है.
0: Very true, actually. It's so clear now. In fact, हमारे पास वक्त नहीं रहा है, लेकिन अब ये बहुत बिंदी लगानी कैसे है. How to finish, actually, you know, what to really do. पर पहली बात तो यही समझने की थी कि ये जो सब कुछ है, जहाँ तक सिचुएशन है वो वहाँ है, लेकिन जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मेरा क्रिएट किया हुआ है. दीज आर द टू पैरामीटर्स विच वी नीड टू वर्क ऑन. थैंक यू सो मच शांति. और इस पर हम आगे आने वाली कड़ियों में ज़रूर बात करते रहेंगे. अब आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे, बार बार यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम इस प्रोग्राम में कह रहे होते हैं, वो सिर्फ हम बात कर लें अच्छा लगता है,

0: जैसे शिवानी ने कहा, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन अगर हम रियल में अपनी लाइफ में देखें, हम सबके सामने सिचुएशंस आती हैं, हम सबके सामने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरा अनुभव क्या है, मैं कितना दर्द में हूँ, कितनी परेशानी में हूँ, कितना मैं उसके कारण अपने आप को बंधा हुआ या जो भी वो इमोशंस हैं वो मैं फील करता हूँ, वो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। इट मीन्स सिचुएशन और फीलिंग्स एक्चुअली अलग अलग हो गई
1: है ही अलग।
0: आपके पास कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो इस कड़ी से जुड़ी हुई है या पूरा जो ज्ञान आपके साथ है इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि हमारी कोशिश है ये प्रोग्राम आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए, जो हमारा सफ़र है उसमें हर कदम पर आपके साथ हो। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0999-344-666, 0-9873-666-555, 0-9999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में इन दिनों हम बात कर रहे हैं खुद की। वैसे तो हर बार हमारा प्रयत्न रहता है, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने कहा कि फोकस इज ऑन सेल्फ, खुद पर। हम से ज़्यादा सेल्फिश लोग नहीं हो सकते कि बार बार हम ये कहते हैं कि फोकस हम पर होना ज़रूरी है, लेकिन बाहरी के बात बावजूद जो अंदर मैं हूँ, जो बहुत कुछ काम करता है, जो सोचता है, जो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। आगे हम बहुत सी और बातें करेंगे सिचुएशंस को देखते हुए, लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हम शांति।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है, तो आप सभी को पूरे हफ्ते के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और आज 22 जून है 2026, आज का तारीख है। भारतीय समय के अनुसार राष्ट्रीय शके 1948 शके 1 गते 8 शुद्ध ज्येष्ठ सोमवार आज है। विक्रम संवत 2083 शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी सोमवार उत्तरा फाल्गुनी आज है। इस्लामी हिजरी 1448 6 मोहर्रम पीर सरफा आज है। इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी आज है। और आज के दिन विशेष लोगों का जन्मदिन है जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज अभी ले चलता हूँ मैं एक शिवजी का प्यारा सा गीत। सोमवार का दिन है तो निश्चित तौर पे आप सभी को बड़ा अच्छा लगेगा कि आज सोमवार शिवजी को याद करते हुए एक सुंदर अनुभूति हम लोग करेंगे। जीवन में अनुभव सबसे बड़ा चीज़ है। जब आप किसी अच्छे चीज़ की अनुभूति करते हैं तो वो लंबे समय तक आपको जीने का सहारा बन जाता है। तो वहीं ऐसा ही एक गीत ओम नमः शिवाय, इसकी अनुभूति ही आपको जो है लंबे समय तक जीने का सहारा बना देती है। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं, ऐसी सुबह ना आए। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति की यही कामना रहती है, हर इंसान के हृदय, बस हमें जो है परमात्मा के साथ कनेक्ट होने पर ये एहसास होना शुरू हो जाता है। और जीवन में हम सभी लोग चाहते हैं सबका भला हो, सब खुश रहे और हम भी खुश रहें, है ना। बस इस भावना को अगर सही तरीके से हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पर ईश्वर के बिना वो संभव नहीं है। क्योंकि जब भी हम लोग कुछ ऐसी अच्छी चीज़ों का कम्प्लीशन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने परिवार, अपनी बातें, अपने स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी इस चीज़ों में फंस जाते हैं। लेकिन जब ईश्वर के पास चले जाते हैं या ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमारी नहीं रह जाती हैं। हम विश्व की दृष्टिकोण से देखते हैं कि परमात्मा सबका है, ईश्वर सबका है, तो सबका मालिक जब एक है तो फिर हम आपस में क्यों परेशान हो गए, ये भाव उठ कर आता है। और इसको अनुभव करते ही हमारे जीवन से सारे दुख मिट जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश आपके लिए था, और सोचिए और अनुभव कीजिए। तो इसके बाद मैं एक शख्सियत के बारे में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको ले चलता हूं एक और खूबसूरत सुंदर गीत आपके लिए। अभी सुनते रहो, मुस्कराते रहे।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत, आप जो है जिंदगी के मतलब को समझाने वाला ये खूबसूरत गीत मनोज कुमार और जीना तमान पर पिक्चराइज किया गया। रोटी कपड़ा और मकान इस एल्बम का आप सुन रहे थे, निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फटाफट फ़ोन करके आप बता सकते हैं 9914151415 इस नंबर पर, और कल योग दिवस पर आपने क्या किया है इस पर भी आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। 8:23 हो रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आरजे रमेश। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम में आइए बात करते हैं अब एक शख्सियत के बारे में, गणेश घोष के बारे में। जी हाँ, बंगाली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और राजनीतिक थे गणेश घोष। मणिकलता बम कांड के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था 1928 में। वे जेल से बाहर निकले और कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया। फिर उसके बाद 1946 में गणेश घोष कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए और 1952 में बंगाल विधानसभा के 1967 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। तो इस तरह से अपने क्रांतिकारी जीवन शहरी को अपनाते हुए अपने जीवन को इन्होंने पूरा किया। तो आइए इनके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। गणेश घोष जी का जन्म आज ही के दिन 1900 में ब्रिटिश कालीन बंगाल भारत में हुआ और विद्यार्थी जीवन में ही आज़ादी के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे और 1952 में किया गया बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार कर गए और वो गणेश घोष और उनके साथी अनंत सिंह ने नगर का सबसे बड़ा विद्यालय बंद करा दिया। इन दोनों युवकों ने चिटगांव की सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल की भी अगुवाई की और उसे सफल बना। तो इस तरह से इन चीज़ों को अंजाम देने में गांधी जी के असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया तो गणेश कोलकाता के जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो गए और 1923 में उन्हें मणिकतला बमकंड के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। परिणाम ना मिलने के कारण उन्हें सजा तो नहीं हुई पर सरकार ने 4 वर्ष तक नज़रबंद कर दिया था इन्हें। इस तरह से ये अपना जो है विद्यार्थी जीवन से ही संघर्षमय आंदोलन के साथ जुड़ गए और अपनी जीवन शैली को एक अलग तरीके से जीते हुए रहे। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ। आशा करूँगा आपको ये गीत भी बड़ा पसंद आएगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, गुलजार साहब के दो गीत बैक टू बैक आप सुन रहे थे, बड़े प्यारे से गीत। और आइए, बातें हो रही थी विशेष गणेश घोष जी के बारे में, और गणेश घोष जी के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। एक देशभक्ति क्रांतिकारी बंगाल से बिलोंग करने वाले व्यक्ति। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, बोलिए गोरीलाल जी।
1: हमारी कली कली गली गली खुल जाती है। क्या कह रहा है आपके साथ में, हमारे को हमेशा मिल करके रहना है।
0: जी जी जी जी जी,
1: अभी सभी शादी है जो हम तुम्हारे को अपेक्षा करते रहते हैं। तो एक मेरा गणेश गाना सर, वो भी सुना दे, मेरा अच्छा रहेगा। दिल के अंदर भावनाएं हमारे बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: हरि संग संग प्रीत लगा देना, प्रभु प्रभु के गुण गा लेना मलवा।
0: अच्छा,
1: तो गाना हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, और हमारे भी मन लग जाएगा आपके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार जन।
0: जी जी,
1: नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सुनाए हैं रेनुवाद वन 107.8 एफएम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे गणेश घोष जी के बारे में, कमलेश जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्ते, ओम शांति कमलेश जी।
2: नमस्कार रमेश भाई जी, ओम शांति सभी को, सुनने वालों को प्यार भरी नमस्कार।
0: जी जी,
2: तो
0: जी,
2: बहुत ही अच्छा लगता है मधुबन रेडियो सुन के और मधुबन रेडियो पे प्रोग्रामों में शामिल होके।
0: बिल्कुल,
2: आप सबके साथ। तो आज क्या खास खास दिन है उनके बारे में आप बात कर रहे होंगे?
0: जी, गणेश घोष जी का जन्मदिन है, जो क्रांतिकारी थे बंगाल से, और सूर्य सेन से इनकी संपर्क हो जाती है 1928 में बाहर निकलते ही, क्योंकि इनको जेल में डाल दिया जाता है बार बार, तो सभी क्रांतिकारियों से इनकी पहचान हो जाती है। फिर क्रांतिकारी सूर्य सेन के संपर्क में आए 1928 में, और शस्त्र बल से अंग्रेजों की सत्ता समाप्त करने चिटगांव में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की तैयारी करने लगे, और पूरी तैयारी के बाद इन क्रांतिकारियों ने वहां के शस्त्रगार और टेलीफोन तार और अन्य महत्वपूर्ण जो स्थान है उस पर एक साथ आक्रमण कर दिया था। और इनका इरादा ये था कि ब्रिटिश सरकार के सैनिकों का सामना करना था, और इस अचानक आक्रमणकारी जो चीज़ें हुई, अधिकारी एक बार तो सकते में आ गए, परंतु क्रांतिकारियों को विशेष रूप से शस्त्र तो मिल गए, पर गोला बारूद जिसे अंग्रेजों ने दूसरी जगह छिपा रखा था नहीं मिल सका। इसलिए क्रांतिकारियों की घोषणा करने के बाद भी ये कायम नहीं रख सके, और इन्हें सूर्य सेन के साथ जलालाबाद की पहाड़ियों में चले जाने का और कोई रास्ता नहीं बचा।
2: देशभक्ति का जो जज्बा इन लोगों में था, इन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद देश में, आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं। तो इन्हें याद करना हमारी ड्यूटी बनती है, और जो कौम जो देश अपने शहीदों को याद रखता है वो हमेशा जिंदा रहता है।
0: जी जी
2: जी। तो
0: आइए, एक हरी जी हरी संग प्रीत लगाई ये गीत सुनना चाहते हैं हमारे गुड़ीलाल जी, उनको सुनाते हैं ये।
2: इनकी हरी संग बहुत प्रीत लगी हुई है, तभी इनको इतनी हंसी आती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

जो आप ठुकराओगे तो प्यारे हम और कहां फिर जाएंगे, छान कर खाक जमाने भर की फिर लौट यहीं पर आएंगे। क्यों लौट आएंगे, क्या कारण है?

ये मेरी विशेषताएं हैं, मैं मनुष्य हूं ना, ये मेरी खासियत है, मेरी स्पेशलिटी है। नीच अधम कामी कुटिल, नीच अधम कामी कुटिल।

अभी हरी मैं अधम आती हूँ नीच। बन गई तेरी प्रेम दीवानी, बन गई तेरी प्रेम, ऐसे दीवाने हुए कि आवाज ही नहीं निकली है।

और इस भरोसे रह जाएं कि पड़ोसी गा रहा है, ये गाने वाले इतनी दूर से आए, हम क्या करेंगे गाकर। कि जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, और शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। तो बात अच्छा, उधर थोड़ी ज्यादा पुण्य आत्माएं बैठी। जब गलतियां करना शुरू

0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM। हरी जी मैंने तुम संग प्रीत लगाई, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सत्संग के साथ सुन रहे थे। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए, गणेश घोष जी के बारे में बातें कर रहे थे। कारावास उनको होता रहा, लास्ट में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बन गए और धीरे धीरे 1946 में जेल से छूटने के बाद वो इस कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन में आ गए और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और 1952 में बंगाल विधानसभा के और 1967 में लोकसभा के सदस्य चुने गए और 16 अक्टूबर 1994 को कोलकाता में इनका निधन हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें गणेश घोष जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप जी। कमलेश जी, क्या बताना चाहेंगे आप?
1: नई किरण प्रोग्राम सुनने वालों को एक बार फिर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है उनका
0: जी।
1: तो अभी आप देशभक्तों के बारे में बात कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो रेडियो मधुबन इसके लिए हम उनके आभारी हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, अपने परिवारों को छोड़कर, अपनी सारी जो तमन्नाएं उनको होती हैं जीवन में, हर इंसान को होती हैं, उनको त्याग कर तपस्या की, उन्होंने हमें आज़ादी मिली। तो हम इस आज़ादी का कैसे इस्तेमाल करते हैं
0: जी, जी।
1: हम देखें कि हमारे देश में जब बहुत सादगी थी, बहुत सादे लोग थे, सिंपल खाना खाते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास पैसा आया या हमें आज़ादी मिल गई कह लीजिए, है ना, मर्जी करने लगे, तो बहुत सी जो विकर्म हमारे जीवन में शामिल हो गए हैं। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए अपने जीवन से पहले तो हम जैसे बाबा से जुड़े हों तो बहुत सारी चीज़ें हमारे में ख़त्म हो जाती हैं। तो उन शहीदों को ज़रूर याद करना चाहिए, अपने माँ बाप को, अपने पूर्वजों को, उनकी वजह से हम हैं। तो घर में माँ बाप हैं, उनको हम उनकी कदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनको सुनते नहीं, उनके पास बैठते नहीं। बुजुर्ग इसीलिए बेचारे घरों में परेशान भी हैं और बहुत सारे सीनियर सिटीजन होम खुल गए जहाँ पे वो अपने बच्चों को मिलने के लिए तरसते हैं, बच्चे उनको देखने नहीं आते जब बीमार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं और अपने आने वाले बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं यही हमने देखना है। समाज में जो कुरीतियाँ होती हैं उनकी वजह से बहुत से नुकसान होते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे काम करते हैं, कहते हैं ना कि कुछ ईमानदार लोग अभी भी बाकी हैं जिनकी वजह से ये देश चल रहा है,
0: जी, जी, जी।
1: तो उनको सल्यूट है, उनकी जो सोच को सल्यूट है। अच्छी सोच और अच्छा जो है उसको अमल में लाना, जो आप सोचते हो वो करो, जो बोलते हो वो करो, उसी के पे अमल करोगे तो हम खुश रहेंगे, हमारा देश दुनिया में नाम कमाएगा। और हर चीज़ की बचत करना, पैसे की बचत करना, पानी की बचत करना, बिजली की बचत करना, क्योंकि देश की आबादी बहुत बढ़ रही है रमेश भाई। तो इसके लिए हर इंसान का फर्ज बनता है कि जब ज़रूरत है उस चीज़ की तब उसको आप यूज़ में लाओ, नहीं तो उसको उसकी बचत करो, है ना। ये हमने बच्चों को सिखाना है। और ज़्यादा पैसा खर्चा करके आप एक दिन ज़रूर परेशान होते हो, आपके पास समय पर, आप जब बीमार होते हो, जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके पास पैसा नहीं होता तो आप परेशान होते हो। एक आदमी घर में परेशान होगा तो पूरा परिवार परेशान होता है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जीवन में बहुत ज़रूरी है इन पर अमल करना। ये नहीं कि अपनी मर्जी से चलें, मन मर्जी से चलें, मन मना भव हमें बाबा भी सिखाता है ना। तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, अपने आप के साथ जुड़िए, आप कैसी आत्मा है। कल हम एक गुरुजी से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि हर आत्मा जो है ना अच्छी बाबा से जब आती है, परमात्मा से आती है, जब उसका जन्म होता है ना तो एकदम पवित्र होती है, वो शुद्ध होती है। लेकिन जब वो जिस संस्कारों में रहती है, जिस माहौल में पलती है, जिस माहौल में वो हमेशा लोगों के बीच में रहती है, वैसे ही संस्कार उसमें भरने शुरू होते हैं। जो अच्छे संस्कार होंगे तो वो सुखी रहेगी आने वाले समय में, और अगर बुरे संस्कार मिल गए तो वो पूरा जीवन दुखी रहेगी, है ना।
0: तो बिल्कुल बिल्कुल,
1: बस यही कहना है सुनने वालों को। कहते हैं कि ज्ञान देना बहुत बड़ा आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। कोशिश कीजिए, आप जरूर कामयाब होंगे।
0: बिल्कुल कमलेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से हम लोग आज आज़ाद भारत में रह रहे हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं ही चीज़ें जो है, हम जिस तरह से जिन चीज़ों को उस समय देखे थे, आज उसे पूरा करने में फिर भी टाइम लग रहा है। कहीं ना कहीं हमारी आस्था में कमी आ गई। तो आइए एक बहुत ही सुंदर हमारी आस्था को इम्प्रूव करने वाला गीत, तुझ संग प्रीत लगाई, ये गीत अभी आप सबके लिए। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बड़ा ही प्यारा सा आध्यात्मिक गीत आप सुन रहे थे। चलिए बात करते हैं अनीता पिल्लई पलदुराई के बारे में। ये एक भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान है। 18 साल भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम में इन्होंने काम किया। 2000 से लेकर 2017 के लिए इन्होंने खेली। अनीता जी 9 एशियन बास्केटबॉल कैफेडरेशन ABC चैंपियन खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जो लगातार राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करती है। अनीता के नाम नेशनल चैंपियनशिप में 30 पदक है। तो ये कुछ खास बातें अनीता जी के बारे में। चेन्नई की रहने वाली अनीता जी ने 11 साल की उम्र में ही बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और उन्हें वॉलीबॉल और एथलेटिक्स ज़्यादा पसंद थे, लेकिन उनके स्कूल के बास्केटबॉल कोच ने उन्हें इस खेल को चुनने की सलाह दी थी और उनके करियर के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ। 19 साल की उम्र में अनीता पलदुराई सीनियर्स टीम का एक नेतृत्व करने वाली सबसे कम उम्र की कप्तान बनी थी। अनीता ने 2013 में पहला 3x3 FIBA एशियन बास्केटबॉल चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतकर 2012 में हयांग चीन के तीसरे एशियाई बीच गेम्स में स्वर्ण पदक इन्होंने फिर जीता। 2011 में श्रीलंका के दक्षिण एशियाई बीच गेम्स में स्वर्ण पदक और 2009 में वियतनाम के एशियाई इंडोर गेम्स में रजत पदक जीता। तो कमलेश जी, क्या बताना चाहेंगे आप अनीता जी? जो
1: देखिए, उन्हें भारतीय अंडर 16 बास्केटबॉल टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया। उसके बाद 2018 में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो इससे ये साबित होता है कि अगर हमें मौके दिए जाएं या हमें सही गाइडेंस मिल जाए तो महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी आजकल एक कदम आगे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो क्योंकि उनमें लगन, मेहनत करने की आदत जो उनको होती है और स्पिरिचुअली थोड़ा आगे होती है बाकी लोगों से, तो ये चीजें बस उनको जो मौके दिए गए और मौकों के मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढाला तो इस मुकाम तक वो पहुंची है। और बहुत सी और महिलाओं के लिए वो एक कहते हैं कि उनके लिए मिसाल बन गई है। और जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा करने का मन है, तो उन्होंने अपने माता पिता से, अपने ससुराल में भी, बल्कि शादी के बाद भी ये चीजें हो सकती हैं अगर उनको थोड़ा सहयोग मिले, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियों को खेलने का शौक होता है लेकिन परिवार वाले और घर वाले या फिर समाज वाले क्या सोचेगा, इस भावना से जो है वो पीछे रह जाती हैं।

0: बाकी
1: जी
0: उनके अंदर अगर उन्हें खेल में रुचि है तो माता पिता को आगे आना चाहिए और बच्चे को जो है उस खेल के
1: बहुत
0: प्रति उनको जो है एक माहौल तैयार करके देना पड़ता है। जैसे किसी भी गेम को खेलना वाला उसके पीछे थोड़ी सी खर्चा भी होता है, समय भी जाता है और आपको अटेंशन देना पड़ता है।
1: जी,
0: तो अगर ये तीनों चीज़ें आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके घर में एक अच्छी खिलाड़ी निकल सकती है। जी
1: बिल्कुल। और खाने पीने का ध्यान बच्चे का रखना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: शुरू से ही, बल्कि उससे पहले भी ये है कि जब बच्चे का जन्म होना होता है तो आजकल तो वो टेस्ट बंद हो गया कि बेटा होगा या बेटी होगी, ये फर्क भी
0: जी
1: लोगों में
0: जी
1: काफी कम हो गया, लेकिन अभी भी लोगों की सोच इसमें है थोड़ी सी कि बेटा होना चाहिए जरूर घर में। तो अगर हम जब बच्चा पैदा होना हो तो उससे पहले माँ का ध्यान रखा जाए, वुड बी माँ का, उसके खान पान का ध्यान रखा जाए तो बहुत सी जो मुश्किलें सेहत की आती हैं बच्चों को बाद में, है ना,
0: वो चीजें भी
1: उसमें
0: नहीं
1: वो
0: आएगी।
1: नहीं होंगी। और उसके बाद जब जन्म होता है, बेटा हो या बेटी, उसको खुराक, उसको डाइट, उसको खाना, माँ बाप का फर्ज है अच्छा खाना देना, अच्छे संस्कार देना, गाइडेंस देना, जो उनके अंदर परमात्मा ने एक ताकत भेजी है, एक एनर्जी भेजी है। बेटे और बेटी में बराबर होती है,
0: बिल्कुल
1: बल्कि
0: बिल्कुल
1: ज्यादा होती है बेटियों में, है ना, क्योंकि वो तो शिव की शक्ति कहा जाता है
0: जी जी
1: उसको,
0: जी जी
1: तो उसमें शक्ति ज्यादा होती है, सहन शक्ति ज्यादा होती है, सहनशीलता होती है, समझने की ताकत ज्यादा होती है, बारीकी से सोचने की ताकत ज्यादा होती है, हर चीज को मिन्यूटली जो ऑब्जर्व करने की उसमें ताकत है। तो ये गुण उसमें है, इनबिल्ट है उसके, तो उनको उजागर करने के लिए माँ बाप का, टीचर्स का बहुत सहयोग चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और बड़ी
0: बिल्कुल
1: सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, हर बात को बड़े ध्यान से सुनती है, ध्यान से उसको करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसको लेट डाउन आप करते हो या उसको कुछ बुरा भला कह देते हो या आप अपना हक समझते हो कि बेटियों को हम कुछ भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वो लड़की है, तो लड़कों को हम ऐसा संस्कार देते हैं कि वो बेटी को डांट सकता है, लेकिन आज आप देखिए बहुत सारी बेटियां हैं जो वो अपने परिवार को चला रही हैं, अपने भाई बहनों को गाइड कर रही हैं और समाज में अच्छा नाम कमा रही हैं जहां भी उनको मौका मिला। तो मैं तो गुजारिश ही कर सकती हूँ कि ध्यान दीजिए अपनी बेटियों पर, वो जरूर आपका नाम रोशन करेंगी, आपको सहयोग करेंगी, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी जी जी,
0: बहुत ही अच्छी बात है आपने बता दिया। और अनीता जी जो है खास करके 2017-2018 में इन्हें सम्मान तो मिला ही, लेकिन 2021 में एक बड़ा परिवर्तन आया, भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो कहने का भाव ये है कि अगर उन्हें बचपन से ही अगर आकार देने में हम लोग अगर पूरा परिवार लग जाती हैं तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम सभी सपने देखते रहते हैं या दुनिया उस चीज़ को देखना चाहती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को सीधे, अब वक्त हो गया है समाचारों का, समाचारों की तरफ हम लोग चलेंगे और दिल्ली से अब समाचार डाउनलोड हो चुका है और आपको सुनाएंगे। समाचारों के बाद फिर हम लोग बात ही करेंगे। और आज एक विशेष एक्टर का जन्मदिन है, अमरीश पुरी जी का, दमदार आवाज और बहुत ही जो है ना एक ऐसे कलाकार जिनको आज भी लोग आइकन कलाकार, और आपको पता भी हो अमरीश पुरी, हेमा मालिनी, ये दोनों माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी स्केच कॉन्फ्रेंस में भी आए थे
1: जी जी, जी।
0: और बहुत ही अच्छा उनका जो है उस समय ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से जुड़े नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के फिलॉसफी को और राजयोग को अपनाया उन्होंने अपने जीवन में, और वो पर्सनली इन चीज़ों को करते रहे क्योंकि वो एक ऐसे आइकॉन थे कि जहाँ भी जाए तो वो चीज़ें उनको अच्छी लगते हुए भी वो नहीं कर पाते,
1: फॉलो करते हैं
0: तो चीज़ें जो है थोड़ी सी उनको।
1: भाई साहब की अगर बात करें कलाकार की, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया जीवन में,
0: जीवन में जी,
1: और यहाँ तक पहुँचे उनकी दमदार आवाज जो इन
0: बिल्कुल। हम आगे समाचारों के बाद उनके बारे में जिक्र करेंगे, आप सीधे चलते हैं समाचारों की तरफ।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
3: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
2: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
3: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
3: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
2: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
6: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ MIF 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
7: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले JD वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। JD वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
8: हम लिख के गया ऐसा करते करते रेले खोप का दर्जा मिल गया।
9: सोनागाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
10: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
11: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
2: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
12: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
2: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज धाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आर जे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे, शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का? हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। समाचारों के बाद आइए बात करते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने कहा था अमरीशपुरी के बारे में बात करेंगे, तो लीजिए उनकी कहानी अभी आपके लिए।
1: दमदार आवाज के मालिक, जबरदस्त एक्टर, चाहे रंगमंच हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, हर जगह अमरीश पुरी ने अपना लोहा मनवाया। जब ऑडियंस ने इनकी तारीफ की तो इन्होंने दोहराया, मोगैम्बो खुश हुआ।
2: तुम्हारे जोश और तुम्हारी मासूमियत पर मुझे तरस आता है, लेकिन जिस दिन अदालत में तुम मेरे सामने आ गए, ये सारा घमंड हमेशा के लिए भूल जाओ।
1: अमरीश पुरी का जन्म पंजाब के नवन शहर इलाके में हुआ। तारीख 22 जून सन 1932। माँ का नाम सरदारनी वेद कौर और पिता सरदार निहाल सिंह पुरी। पांच बच्चों में अमरीश पुरी चौथे नंबर पर थे और इनके दो बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी भी मशहूर एक्टर्स रहे। अमरीश पुरी ने अपनी ग्रेजुएशन BM कॉलेज शिमला से की और अपने बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी के नक्शे कदमों पर चलते हुए ये पहुंच गए मुंबई। ये वो वक्त था जब इनके बड़े भाई मदन पुरी ने अपने आप को बतौर विलेन एस्टैब्लिश कर लिया था, पर अमरीश पुरी की किस्मत कुछ और ही बयां कर रही थी। पहले ही स्क्रीन टेस्ट में अमरीश पुरी फेल हो गए और नतीजतन इन्हें एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में नौकरी करनी पड़ी। पर एक अच्छा हुनर आखिर कब तक छिपा रहता। सन 1961 में थिएटर के स्टॉलवर्ट इब्राहिम अलकाजी ने अमरीश पुरी को प्रोत्साहित किया कि वो रंगमंच पे काम करें और सन 1961 में अमरीश पुरी एक्टिवली थिएटर में आ गए। बाद में महान रंगकर्मी सत्यदेव दुबे के साथ अमरीश पुरी बतौर असिस्टेंट काम करने लगे। अपने कई इंटरव्यूज में अमरीश पुरी साहब ने सत्यदेव दुबे को अपना गुरु माना है। ये स्टेज पर जरूर काम कर रहे थे पर सिल्वर स्क्रीन इनसे कोसों दूर थी।
3: लड़का बहुत होशियार है।
1: और भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमरीश पुरी 21 साल तक सरकारी नौकरी करते रहे। रंगमंच पर इन्होंने अपनी धाक ऐसे जमाई कि इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया और धीरे धीरे टीवी कमर्शियल्स में इनकी एंट्री हुई और 40 साल की उम्र में इन्होंने पहली फिल्म की।
3: देखा, उन्होंने बुक कर लिया, आप भी फौरन साइन कर लीजिए वरना पिक्चर लगते ही आसमान पे चढ़ जाएगा।
1: एक मशहूर किस्सा ये भी है कि एक नाटक के मंचन के दौरान एक मशहूर डायरेक्टर की नजर अमरीश पुरी पे पड़ी और फिर इन्हें फिल्म रेशमा और शेरा के लिए साइन किया गया।
2: मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, बिल्कुल मुफ्त। सरकार ने बहुत सारे अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, भेज दीजिए कहीं।
1: अमरीश पुरी उन अभिनेताओं में से रहे जो सिर्फ अपनी एक्टिंग एबिलिटीज के लिए ही नहीं जाने जाते थे बल्कि एक भारी भरकम आवाज के लिए भी।
2: अगर ये बात है तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
1: ये बात कम लोग जानते हैं कि अमरीश पुरी तकरीबन 3 से 4 घंटा रोज आवाज को और मजबूत बनाने का रियाज किया करते थे।
2: और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने 75 सबूत पेश कर सकता हूँ।
1: जहाँ एक तरफ ये जबरदस्त विलेन बनकर सामने आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पैरेलल सिनेमा में भी इन्हें खासी शोहरत हासिल हो रही थी। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत, मंथन, भूमिका और सूरज का सातवां घोड़ा के लिए अमरीश पुरी को बहुत सराहा गया था।
2: आपकी मोहब्बत है जो ऐसा कह रहे हैं।
1: इनके हुनर की चर्चा इतनी बढ़ी कि हॉलीवुड के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को भी इनके दरवाजे पर आना पड़ा था। इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बात दरअसल यूं रही, अमेरिकन डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग अमरीश पुरी का स्क्रीन टेस्ट लेना चाहते थे और अमेरिका का इनवाइट भी इन्हें भेजा गया था, पर अमरीश पुरी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर स्क्रीन टेस्ट लेना ही है तो उन्हें हिंदुस्तान आना होगा। और ठीक वैसा ही हुआ, अमेरिकन्स को अमरीश पुरी के लिए हिंदुस्तान आना पड़ा और चंद दिनों में ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया। फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी का किरदार जबरदस्त तरीके से सराहा गया।
3: अच्छा अच्छा,
2: अकेले खेलने में कम से कम हारने का डर तो नहीं होता।
1: अमरीश पुरी एक कंप्लीट एक्टर थे। उन्होंने सिर्फ विलन के ही किरदार नहीं निभाए बल्कि कुछ ऐसे पॉजिटिव किरदार निभाए जिन्हें देख आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिल्म घातक इसका एक अनोखा एग्जाम्पल है। फिल्म गर्दिश मुस्कुराहट और विरासत में भी अमरीश पुरी ने जबरदस्त किरदार निभाए थे। फिल्म विरासत का किरदार जो इन्होंने निभाया था, दरअसल वो दिलीप कुमार और राजेश खन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था और बाद में इनकी झोली में आया। पर वो किरदार जिसने अमरीश पुरी की विलनी को अमर बना दिया, वो था मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो। हिंदी फिल्मों के मशहूर विलन्स में मोगैम्बो ने एक अमर जगह बना ली थी। अमरीश पुरी एक ऐसे विलन रहे जिनके सामने बड़े से बड़े हीरो को टक्कर देने में खासी मुश्किल आती थी।
2: मगर ऐसा हो जाए तो अरुण वर्मा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा।
1: अगर हम रुख करें अमरीश पुरी साहब के निजी जीवन की तरफ, तो हमें पता चलता है कि उनका विवाह उर्मिला दिवेकर से हुआ था, जिनसे उन्हें दो बच्चे हुए, बेटा राजीव और बेटी नम्रता। 12 जनवरी सन 2005 में ब्रेन हैमरेज से अमरीश पुरी का देहांत हो गया। इनकी उम्र 72 साल थी। भले ही सिल्वर स्क्रीन पर अमरीश पुरी ने 40 साल की उम्र में शुरुआत की, पर बतौर कलाकार उनकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। और जैसा भी माध्यम रहा हो, अमरीश पुरी ने अपना लोहा मनवाया। एक वक्त वो भी आया जब भारतीय सिनेमा में विलन का जिक्र होता तो पहला नाम अमरीश पुरी का ही आता।
2: दरअसल बात यह है कि इतने लोगों से मिलना जुलना रहता है कि सारे चेहरे याद रखना भी मुश्किल हो जाता है।
1: महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM। जी हां साथियों, अभी अमरीश पुरी की जीवन कहानी से आप रूबरू हो रहे थे और जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की, लोगों को काफी पसंद आया। कमलेश जी बताइए थोड़ी सी बातें उनके बारे में।
4: देखिए, जब कोई बहुत खुश होता है ना, कोई बहुत देर बाद आपका दोस्त मित्र मिल जाता है, सखी मिल जाती है, तो कहते हैं मोगैम्बो खुश हुआ। तो ये उनकी कामयाबी रही कि हर दिल अजीज वो बन गए अपनी अदाकारी से ना।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: उनकी बहुत सी फिल्में जो है उनमें उनकी आवाज का जादू, उनकी एक्टिंग का जादू। वैसे अगर देखें तो जैसे ये सारी एक्टर, अमरीश पुरी हो गए, ओम पुरी हो गए, मनोज बाजपेयी हो गए, नसीरुद्दीन शाह हो गए, शुरू में इनको चाहे ये इसमें कामयाबी नहीं मिली, फेल भी हुए, लेकिन थिएटर के आर्टिस्ट थे ये सब। तो थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जो आपका टैलेंट है उसको शो करने का मौका मिलता है, और उसमें अगर लगातार आप जुड़े रहते हो थिएटर से, तो फिर वो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हो इमोशंस को समझने में, दिखाने में।
0: बिल्कुल।
4: और एक आर्टिस्ट जो वो खुद वो अपने आप को भूल ही जाता है, थिएटर का आर्टिस्ट है ना जो, कि वो खुद क्या है, वो तो उस आर्टिस्ट में इतना रम जाता है कि दुनिया उसको उसी नाम से जानने लगती है ना। तो ये सारी चीजें जो अमरीश पुरी के जीवन में रही थिएटर के आर्टिस्ट होने के बाद में उनको फिल्मों में भी जगह मिली, और एक उनमें खुददारी का जो गुण था कि जैसे अमेरिका के फिल्म नगरी से उनको फोन आया कि आपका स्क्रीन टेस्ट लेना है, तो उनको ये पता था कि बहुत मजा हुआ आर्टिस्ट और अपने देश में मैंने नाम कमाया है, तो क्यों ना उनको बोले कि हमें यहाँ आके मिले, है ना, हम क्यों जाए उनके सामने काम मांगने के लिए, क्योंकि उनके पास काम की कमी नहीं थी। तो ये खुददारी, ये आत्म सम्मान और अपने रोल में रम जाना, उसको समझना, और कई बार ना जो इन चीजें होती है, जो आप कामयाबी जो आपके सिर पे चढ़कर बोलती है, तो वो आर्टिस्ट को नीचे गिराने में बहुत ले जाती है ना। तो अगर आपका वो कलाकारी है जो एक आम आदमी की तरह आप रहते हो, तो लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं। अमरीश पुरी का जहाँ नाम आएगा वहाँ पे लोग उनको सत्कार भी देंगे, आदर सम्मान भी देंगे, है ना।
0: तो आइए आगे बढ़ते हैं। अमरीश पुरी ने कुछ गाने भी गाए थे, आज शायद बहुत सारे हमारे श्रोता बंधुओं को नहीं पता होगा कि क्या ये विलन होकर गाना भी गाता है, तो उनका ही गाना आपके लिए अभी।
5: जिस आवाज ने करोड़ों दर्शकों को डरा दिया, उस आवाज को शुरुआत में पत्थरों जैसी भारी कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के उस दिग्गज की जिसके बिना 80 और 90 के दशक की फिल्में अधूरी थीं। बॉलीवुड के किंग ऑफ विलेंस अमरीश पुरी।
6: मोगैम्बो खुश हुआ,
7: जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो।
5: आज के वीडियो में हम उनकी अनसुनी कहानियों और उनके भारी भरकम सुरीले गीत सुनेंगे। अमरीश जी अपने भाई मदनपुरी के नक्शे कदम पर हीरो बनने मुंबई आए थे। पहला स्क्रीन टेस्ट फेल हुआ क्योंकि मेकर्स को लगा कि उनका चेहरा हीरो जैसा नहीं है। उन्होंने हार नहीं मानी और पृथ्वी थिएटर से अपने अभिनय की धार तेज की।
6: अब तो मैं तुम्हें सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में अपनी मलकाए।
5: साथ ही उन्होंने अपनी आजीविका के लिए बीमा निगम में नौकरी भी की। आखिरकार 38 साल की उम्र में उन्हें प्रेम पुजारी से ब्रेक मिला। विलेन के रूप में मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो का किरदार अमर हो गया। उनकी ड्रेस, उनका अंदाज और वो तकिया कलाम आज भी चर्चा में रहता है।
2: मोगैम्बो खुश हुआ।
5: फिल्म गदर में अशरफ अली के रूप में उन्होंने जो नफरत पर्दे पर पैदा की वही उनकी कामयाबी थी।
6: हमारे वतन में पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाए।
5: पॉजिटिव और सीरियस रोल में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में चौधरी बलदेव सिंह के रूप में एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता का किरदार निभाया। जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी आज भी युवाओं की जुबान पर है।
2: जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी जा बेटा जा।
5: फिल्म विरासत में राज ठाकुर का किरदार जिसने दिखाया कि वो केवल चिल्ला कर नहीं बल्कि अपनी आँखों से भी अभिनय कर सकते हैं।
2: मेरे बच्चों
5: अमरीश पुरी साहब मुख्य रूप से अपनी भारी आवाज और खलनायक की भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे लेकिन उन्होंने फिल्म तहलका के लिए जबरदस्त गाना भी गाया था। तहलका अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 1992 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिकाओं में धर्मेंद्र, नसरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली, जावेद जाफरी, शम्मी कपूर और अमरीश पुरी आदि थे।
6: बहुत बड़ी गलती हो गई।
5: संगीत दिया अनु मलिक ने और गीत लिखे संतोष आनंद, हसरत जयपुरी और अनु मलिक ने। फिल्म के दो गाने दिल दीवाने का डोला और मेरी छतरी के नीचे आजा उस वक्त ज्यादा ही लोगों ने पसंद किए।
7: मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के,
8: मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीगे रे कम।
5: अमरीश पुरी द्वारा वह गाना शोम शोम शोम ये एक मजाकिया और जोशीला गाना था। फिल्म में बे डोंग के रोल में थे। संगीत निर्देशक अनु मलिक ने उनकी कड़क आवाज का इस्तेमाल इस अनोखे ट्रैक के लिए किया। वह खुद भी इस गीत को गाना चाह रहे थे, सुदेश भोसले से भी गवाना चाहा, लेकिन आखिरकार उन्होंने अमरीश पुरी साहब से ही ये गीत गवाया। विलेन के किरदार में ये गाना उनकी आवाज में उन पर एकदम सटीक बैठा और दर्शकों ने भी खूब पसंद किया। दोस्तों अमरीश जी द्वारा और भी गीत गाए गए हैं, वो अगले वीडियो में सुनेंगे।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, गीतों का भी आपने जिक्र किया और बातें हुई और भी कहानी जो है आपने सुनी अमरीश पुरी की। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी कुछ ऐसा आता है कि हमें कुछ चीजों को समझने में टाइम लगता है, लेकिन जब समय आता है और आप तैयार रहते हैं तो प्राकृतिक कुदरत आपको जो है हर वो मौका देता है जो आप करना चाहते हैं। आप गाना चाहते हैं, आप गुनगुनाना चाहते हैं, या आप डायलॉग बोलना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज हासिल करना चाहते हैं, वो सारी चीजें कायनात आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बस यही है कि आप तैयार कितने हैं, ये सबसे बड़ी बात है।
4: बिल्कुल, मौका जो है ना, मौके को गवा देना और मौके को संभाल लेना जो जीवन की एक बहुत बड़ी युक्ति है।
0: जी,
4: अगर उसमें आप कामयाब हो तो कभी भी छोटी सी बात के लिए मौका मिले तो उसको गवाइए मत, उसको हासिल कीजिए, उसको अवेल कीजिए।
0: बिल्कुल,
4: तो आने वाले समय में मौके बढ़ते जाएंगे, है ना।
0: जी जी, तो एक देशभक्ति का गीत है इनका, आई लव माई इंडिया, परदेश फिल्म में, जिसमें अमरीश पुरी साहब ने बहुत ही पॉजिटिव रोल निभाया था। तो जी जी, शायद ये गाना हमारे सभी श्रोताओं को बहुत पसंद आएगा।
4: जी जी, जी।
9: हरे रामा रामा रामा हरे, हरे कृष्णा

0: आवाज नहीं आ रही क्या?
1: नमस्कार, बोलिए।
0: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं साहब आप?
1: बढ़िया बढ़िया, सुनाइए आप कैसे हैं?
0: सुना रहे हैं और जी। क्या समाचार है आज? और क्या आज सोमवार है तो हम क्या कर रहे हैं? गर्मी भी पड़ रही है, काई बारिश पड़ जाती है दूर तो गर्मी यहाँ पड़ती है।
2: ये दुनिया एक
0: दूसरे दिन ठंडी हवा आती है, जब बारिश पड़ती है तो शाम को ठंडी हवा आती है, दूसरे दिन गर्मी चालू हो जाती है, तो दोनों में ही दुख है ना। तो नमस्कार करते हैं रेडियो बटन को, हमारे कमला बहन आए हैं।
1: जी कमलेश भाई,
3: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: ये कहना चाहता हूँ कि आपके दो मामे हो, एक मदन मामा तो वो आपके थे ही, आप दूसरे मदन मामे हो गए।
3: जी जी जी जी,
0: तो आपको नमस्कार करते हैं खुशी भरी हंसी को, और बस हमारे सभी दोस्त
3: चलिए अभी समय सीमित है मदन भाई, तो गीत सुनाए आपको, एक आपको गीत सुनाए,
0: गीत सुनाए जी, सुनाएंगे या आप सुनाएंगे?
3: क्या बात
0: है,
3: क्या कर रहा है
0: आप? उनकी आवाज तो भूल गया, सिर्फ आपको याद आते हैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
3: चलिए रमेश जी, आप गीत की बारी मेरी है शायद।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लव माय इंडिया। ये प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, कृष्णमूर्ति, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण सभी ने मिलकर, शंकर महादेवन, ऐसे बहुत सारे कलाकारों ने इस गीत को मिलकर गाया है। आप सुन रहे थे। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, मदन भाई बोल
0: रहा हूँ। जी मदन भाई बोलिए।
1: जी यार, आज आपको नमस्कार करते हैं फिर से पुनः मुना, और हमारे कमला बहन को नमस्कार करते हैं, और हमारे सभी सिस्टर में सभी बहनों को, सभी शो को सभी से सुन रहे हैं। अच्छा लगा सुपर फास्ट हमारे डॉक्टर साहब थी भैया को
0: जी,
1: और होम
0: जी,
1: शांति, बड़ा मजा आ गया। और अभी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। और
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए मदन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। कमलेश जी, आप क्या सुनाना चाहेंगे अभी आज?
2: एक छोटा सा गीत है
0: जी। जी
2: बहुत देर से मैं सोच रही थी कि मदन भाई थोड़ा मौका देंगे बोलने का मौका, सुनाए। वो गीत है फिल्म चिराग का
0: जी जी,
2: और गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, गायक मोहम्मद रफी साहब है, संगीतकार मदन मोहन जी, और आपको जरूर अच्छा लगेगा ये गीत। मदन भाई जी सुनिए अभी तो।

0: लता जी ने बहुत खूबसूरत गाया ये गीत।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा है। समय वक्त हो गया है आपसे इजाजत चाहने का, और जाते जाते आज के दिन जन्म में उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। 22 जून की विशेष

0: जन्मदिन है ना आज। हाँ, उनका एक गाना भी है फिर
1: जी।
0: मैं नागिन को सपेरा। ये गाना भी हो जाएगा बच्चा रहे।
1: बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान रही अनीता पौलादुराई, इनका भी जन्मदिन आज है और इनके बारे में हमने जिक्र भी किया। 1985 में इनका जन्म आज ही के दिन 22 जून को हुआ था। और विशेष राजनीतिक वाईएसआर विशेष मदिला गुरुमूर्ति, इनका भी जन्मदिन आज है। 1985 में इनका जन्म आज ही के दिन 22 जून को हुआ था। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, बहुत अच्छा गाना सुनाया कमला बहन ने।
1: जी जी जी,
2: बड़ा अच्छा लगा। ये गाना चिराग पिक्चर का है और इसे लिखा है और गाया है मोहम्मद रफीक और लता मंगेशकर ने।
1: जी
2: और
1: जी जी,
2: संगीत से सजाए हमारे मरन मोहन साहब ने।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: के मामे ही है वो।
3: चलिए शुक्रिया।
1: तो आइए आज के दिन जन्मे उन लोगों के लिए ढेर सारी खुशियों के साथ हैप्पी बर्थडे टू

0: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम 4 बजे सफ़र कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होइएगा। जैसे अमरीश पुरी के बारे में या किसी भी कलाकार के बारे में हम अगर बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर पहली बार उन्हें रिजेक्ट किया गया था। इवन अमिताभ बच्चन की भी बात कहें तो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर जब वो गए थे, उनकी आवाज़ भारी भरकम है, इसलिए उन्हें वहाँ पर भी फेल कर दिया गया था। और बाद में उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में आज भी चलती है। तो कहने का भाव ये है कि कहीं एक बार आपको रिजेक्शन मिल जाता है, दो बार मिल जाता है, तीन बार मिल जाता है, लेकिन आपकी अगर लगन तगड़ी है, मजबूत है, तो लगन के आगे सारे जो असफल हुए क्रम जो है, फिर से सफलता उतनी ही ज़्यादा दौड़ के आपके पास आती है जब आप मेहनत करते हैं।
1: राजा बाबर जब फेल होकर आए थे, हार कर आए थे, तो एक मकड़ी जो जाला बना रही थी बार बार, वो गिर रही थी नीचे, फिर उठ के वो जाला बनाना शुरू किया, तो उसको देख के उन्होंने नए सिरे से
0: काम किया, तो उससे उनको जो है सफलता हासिल मिल गई,
1: सफलता मिली। तो छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन के लिए बड़ी
0: बिल्कुल।
1: अब मेरे को तो इजाजत लेना चाहिए।
0: जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सुनने वालों का, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार,
0: ओम शांति। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। शाम 4 बजे फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणेशा।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। पैसे ऐसी चीज है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जो अच्छे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ा देती है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, आज आपको सिखाएंगे आँखों का सूक्ष्म व्यायाम, जो आँखों की रोशनी बढ़ाएगा और आँखों की तेजी को बढ़ाएगा। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ रेसिपी में स्पेशल। आगे आपको ज्वाइंट करना है, ठीक है। स्पेशल क्या सिखाने वाली हूँ, और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन

गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, पैसे ऐसी चीज है मेरे प्यारे दोस्तों जो अच्छे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ देती है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। एक बार एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपये व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपये बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर एक संबंध के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत जी ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे ही हुई है, क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत जी ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष के 99% पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना और तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा है, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया हुआ दुखी कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे, न कुछ चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो देखो कौन आए हैं, अरे ताऊ जी आए हैं ताऊ जी। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा, अहो 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रुंध गया, कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई को कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बन करके बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो करके क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई की पश्चाताप प्रेम मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपये लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपये नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपत नहीं मिटेगी। जो तपन है कृपा करके आप ये रुपये ले लीजिए।
सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार अनुज वधु भतीजे व भतीजे में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग झड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि पैसे ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे रिश्तों को भी तुड़वा देती है, इसलिए सोच समझ करके पैसे उधार लेना है। ठीक है, तो यह हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब आज का प्रश्न इस प्रकार है, प्रोटोकॉल के अनुसार बैठ कर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं और उनमें से 3 के नाम आपको बताना है। ठीक है, तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आइए यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं हूं चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे सुनाते रहे जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। कुछ समय से आपको योगा प्राणायाम ही सिखा रही हूँ, जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सूक्ष्म व्यायाम आँखों का। पर श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो,
2: हेलो दीदी, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, भूरीलाल जी कैसे हैं आप?
2: आप मजबूत योगा में गए थे, योगा करके आए हैं।
1: अरे वाह क्या बात है। हाँ जी,
2: या आते हमारे योगा कराने के लिए, इसलिए मैं वहाँ भी गया था, लेकिन आते ही आपने भी प्रश्न पूछा, प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ।
1: हाँ जी दीजिए।
2: 22 आसन है, इसमें 3 आसन का नाम बता रहे मैं आपको
1: जी।
2: हाँ, तालासन आसन।
1: अरे भूरीलाल जी, प्रश्न तो अभी पूछा नहीं है मैंने, आपने मैसेज देखा है तो आप थोड़ी देर बाद जुड़ के दीजिएगा। ठीक है, चलिए दे दीजिए, दे दीजिए।
2: हाँ हाँ, तो वृक्षासन है, वृक्षासन, ध्यानासन, तालासन, ये तीनों आसन है सर।
1: अच्छा चलो ठीक है, सही गलत आप जरूर सुनेंगे।
2: हाँ ठीक है,
1: कार्यक्रम के अंत में सुनाएंगे। ठीक है, मैंने बैठकर किए जाने वाले आसन, चलिए मैं प्रश्न तो आपको बाद में पूछूंगी और अभी मैं आपको आँखों का व्यायाम सिखा देती हूँ। देखिए, आँखों का भेंगापन आ जाता है, आँख झाले आ जाते हैं और कम भी दिखाई देता है, तो आप चाहते हैं कि आपके आँखों से अच्छी तरह दिखाई दे, आँखें तरोताज़ा रहे, आँखों की तेजी बढ़े। अब इसके लिए देखिए मैं फोन प्रश्न पूछूंगी, उसके बाद ही आप फ़ोन करिएगा, क्योंकि ये जो नुस्खे हैं बहुत ही अच्छे हैं और इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं बहुत जल्दी प्रश्न पूछने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं आपको आँखों का सूक्ष्म व्यायाम सिखा रही हूँ। तो आप ये व्यायाम सीख जाएंगे तो आप कम से कम जो अलग अलग स्टेप आपको सिखाऊंगी, दो दो मिनट, तीन तीन मिनट आप देंगे, एक एक स्टेप रेगुलर करेंगे, तो फिर देखिएगा आप एक महीना करके देखिएगा आँखों में क्या फ़र्क आता है। आपको क्या करना है, स्ट्रेट खड़े होना है, ठीक है, खड़े रहना है और फिर एक बार तो पलकों को जोर जोर से बंद करना है, एकदम टाइट बंद की फिर खोली, फिर बंद की फिर खोली। कंप्यूटर पर अगर आप काम करते हैं या लगातार टीवी देख रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह पलके झपकाइए, ठीक है, इससे सुस्ती बेचैनी नहीं बढ़ेगी और लगातार जो आप देख रहे उसका असर तो पड़ता ही है, तो उससे बच जाएंगे, इसलिए बीच बीच में आप आंखें जोर जोर से बंद करिए, खोलिए। अब दूसरा व्यायाम, दूसरा सूक्ष्म व्यायाम है, आप क्या करेंगे, स्ट्रेट खड़े हो जाइए, ठीक है, चेहरे को एकदम सीधा रखना है। अब अपनी आँखों को, चेहरे को ऊपर नहीं उठाना है, आँखों को ऊपर उठाइए, कोशिश करिएगा आकाश की तरफ देखने का, फिर धीरे धीरे आँखों को सेंटर में ले आइए, फिर नीचे की ओर ले जाइएगा, धरती माँ की तरफ देखिएगा, फिर धीरे धीरे सेंटर की ओर ले आइए अपनी आँखों को, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह दो मिनट तीन मिनट आपको ये वाला व्यायाम करना है, ठीक है। तीसरा आपको सिखाने जा रही हूँ, फिर से आपको स्टेड खड़े रहना है, ठीक है। अब आप चेहरा आपका सीधा रहे, आँखों को घुमाइए, लेफ्ट की तरफ ले जाइए, फिर धीरे धीरे कान की तरफ देखने की कोशिश करिएगा, कान दिखेगा नहीं लेकिन इतना जोर लगाना है कि जैसे आप कान को देखना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे आँखों की पलकों को सेंटर में लाइए, फिर राइट की तरफ ले जाइए, राइट की तरफ ले जाते समय भी सेम प्रोसेस, कान की तरफ देखने की कोशिश करिएगा, नहीं दिखेगा लेकिन कोशिश करनी है, फिर धीरे धीरे पलकों को स्थिर मतलब लाते हुए सेंटर की ओर ले आइए। तो इस तरह दो तीन मिनट इस व्यायाम को करना है, इससे भी आँखों की तेज़ी बढ़ेगी। नंबर जिनके जैसे बहुत कम नंबर है तो वो नंबर भी ख़त्म हो जाएंगे, ज़्यादा है तो भी उनके नंबर थोड़े से कम हो जाएंगे, मतलब आँखों से थोड़ा देखने लगेगा। आप करके देखिए, देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहिएगा। अब आप क्या करेंगे, चौथे स्टेप, आप स्ट्रेट खड़े रहिएगा और अब आप पलकों को वापस पहले राइट की तरफ ले जाना है, फिर धीरे धीरे घुमा करके लेफ्ट की ओर ले जाना है, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, 2-3 मिनट ये एक्सरसाइज आपको करनी है। चौथी है, आप अच्छी तरह ताली बजाइए, ताली बजाकर आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाए। देखो ताली बजाते समय हथेलियाँ गर्म हो जाती है, ये गर्म गर्म हथेली को अपने आँखों पर रखिए, इससे भी चश्मे का नंबर उतरते हैं। तो जोर जोर से ताली बजाकर अपनी दोनों हथेलियों को गर्म कर दीजिए, गर्म गर्म हथेलियों को आप अपनी आँखों पर रखिएगा, इससे भी आँखों की तेज़ी बढ़ेगी, नंबर कम होगा, ठीक है। और कितने जनों के ऐसा होता है कि हथेलियाँ गर्म ही नहीं होती, चाहे कितनी भी तालियाँ बजा दो, तो उनको एक कॉटन का स्वच्छ रुमाल या सॉफ्ट कपड़ा लेना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसका पकड़िए, थोड़ा सा फोल्ड करके अच्छी तरह उसको बॉल की तरह कर दीजिए, और फिर उस कपड़े के ऊपर आप अपने मुंह की भाप छोड़िए, फिर ये गरम गरम भाप अपनी आंखों पर लगाइए, दोनों आंखों पर, ठीक है। इसमें तो कोई खास मेहनत नहीं है, ताली बजाने से कितने जनों की शिकायत है कि हमारी हथेलियाँ गर्म ही नहीं होती, कितनी भी तालियां बजा दे वे क्या करें, हमेशा ठंडी रहती है। बहुत जनों के क्या उल्टा रहता है, गर्मी में ठंडी रहती है, सर्दी में गर्म रहती है, और बहुत जनों के तो 12 महीना ठंडी रहती है हथेलियाँ। तो उनके लिए यही है प्रोसेस कि आप सॉफ्ट मुलायम कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसको थोड़ा सा इकट्ठा करके फिर मुँह से भाप छोड़िए, फिर अपनी आँखों पर रखिए, पहले एक पर रखा फिर दूसरे पर रखा, ऐसे धीरे धीरे रखिएगा, तो ये जो मुँह की छोड़ी हुई भाप के गर्माहट है इससे भी आँखों के नंबर उतरते हैं। तो इतने सारे फायदे आपको बताया है सूक्ष्म व्यायाम के, तो आप कोशिश ज़रूर करिएगा। पाई लागे न पैसा, रंग चढ़े चोखा, तो भाई लग तो कुछ नहीं रहा है, हमारा जहाँ भी कुछ नहीं रहा है, तो अच्छा है ना, सेहत का ध्यान तो खुद को ही रखना पड़ेगा, इसलिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, बैठकर प्रोटोकॉल के अनुसार, ठीक है, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, प्रोटोकॉल के अनुसार बैठकर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं, उनमें से 3 का नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: तो थक जाऊं हूँ, दिल में बेचैनी रेवे है, मन मायूस हो जावे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि, और आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। आज का विषय मैं सुना चुकी हूँ, अकेली काम कर करने।
1: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
0: अकेली काम करके मैं थक जाऊं, अकेले काम करना बहुत, देखिए दुनिया में ऐसा होता है कि जिम्मेदारी एक उठाता है ना, तो सारी जिम्मेदारी उसी पर थोप दी जाती है, लेकिन
1: आपको,
0: एक व्यक्ति
1: आप
0: सारा
1: तो
0: काम नहीं कर सकता।
1: हाँ, तो आप तो अकेले कहाँ हो, आपके तो साथ हम है ना।
0: विषय रखा है आपके समक्ष, अब आपको उसको स्पष्ट करना है।
1: नहीं नहीं, पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप तो अकेले का, आपके साथ तो हम है ना।
0: हम अपने लिए बोल ही नहीं रहे हैं, विषय है। अब आप अपनी राय व्यक्त करिएगा।
1: हाँ, ऐसा है, विषय के बारे में तो मैं बताना चाहूंगा कि किसी एक के ऊपर तो निर्भर रहना अच्छा नहीं है। परिवार में जितने भी सदस्य है वो मिलजुल के काम कर सकते हैं। एक के ऊपर तो फिर निर्भर रहेंगे तो फिर वो आपने कहा ना कि थक जाते हो, तो वो थकान आने वाली है, वो परेशान हो जाएगा। और मतलब परेशान हो, मतलब टेंशन में फिर आजकल बीमारियां भी बहुत हो रही है, तो एक के ऊपर तो प्रेशर देना काम का अच्छा नहीं है। घर में, घर की बात बताता हूँ, अगर कोई महिला खाना पका रहे तो भाई अपन इतना तो कर सकते हैं, सब्जी वगैरह काट सकते हैं, कभी करके देखिए। और जो खाना बना रही है ना, उस बहन की शक्ल की और देखिए, कितना उनको खुशी मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा उनको।
0: जी
1: है ना
0: जी,
1: सही बात बोल रहा हूँ ना?
0: बिल्कुल।
1: हाँ, नहीं किया तो करके देखिए, भले एक आध टमाटर काट के देखिए, मिर्ची काट के देखिए, और उनकी शक्ल की और देखिए, उनको उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है, कितना सुकून मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आपसे जो हो वो काम कीजिए, मगर कीजिए, क्योंकि खाली बैठे तो शैतान, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। तो एक के ऊपर निर्भर रहना यह संभव नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबको करना चाहिए। तो वो मतलब काम और भी आसानी से हो सकता है, परंतु एक ही आदमी करेगा तो वो काम मुश्किल भी हो सकता है, सही है ना
0: जी।
1: किसी भी कार्य को आसान करना है तो सबको मिलजुल के करना है।
0: जी,
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए वो एक कहानी है ना कि देखिए, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, मगर उस गट्टर को कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो आप सभी मिलजुल के काम करोगे ना, तो वो आपके लिए फायदे बन जाए। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री हरि। और प्रश्न क्या है?
0: हाँ जी, प्रश्न है, प्रोटोकॉल के अनुसार बैठ कर किए जाने

0: वाले आसन कितने हैं और तीन नाम बताना है उनमें से।
1: ऑफलाइन देता हूँ।
0: ठीक है, चलिए,
1: जय
0: बहुत
1: माता
0: बहुत
1: दी जय
0: आभार।
1: श्री।
0: जय श्री हरि। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। प्रोटोकॉल के अनुसार बैठ कर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं और इसमें से तीन के नाम आपको बताना है। हेलो,
1: ओम शांति दीदी।
0: हाँ जी, ओम शांति। ज्ञानेंद्र जी, कैसे हो आप?
1: बढ़िया हैं दीदी, आप तो बढ़िया हैं
0: हाँ जी, हम तो एकदम अच्छे हैं
1: जी। बैठ
0: जी। तो
1: कर जी, बैठ
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए।
1: कर किए जाने वाले आसन, एक तो है वज्रासन, एक शशकासन, उत्तान मंडूक आसन, एक वक्रासन।
0: अच्छा, देखते हैं और बाकी कितने आसन है बैठ कर किए जाने वाले।
1: चार
0: अच्छा
1: उत्तान मंडूकासन, शशमुख।
0: ठीक है, और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसे घर में एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी, जैसे एक उठाता है तो दूसरे सब अलबेले हो जाते, उसी पर जिम्मेदारी डाल देते हैं, तो क्या एक सब कुछ कर पाएगा?
1: अब उस पर रहती है, अगर जो जिम्मेदार आदमी रहता है वो तो उठा लेता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये अगर आदमी घर में 10 आदमी हैं तो वही काम 10 आदमी करते हैं, अगर एक रहे तो वो एक आदमी भी कर सकता है वही काम, और एक के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। अब जो बड़ा रहेगा वो तो निभाएगा, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं निभा पाते हैं। बाकी एक के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, सबको मिलजुल के करना चाहिए
0: देखिए,
1: यही।
0: जीवन में हमेशा खुशनुमा रहना है, तनाव से मुक्त रहना है, तो क्या करेंगे? अकेले व्यक्ति पर
1: योग ही है
0: जिम्मेदारी
1: सबसे
0: सौंप
1: बढ़िया
0: करके
1: तो।
0: खुश रहेंगे या हाथ बटा कर क्या करेंगे?
1: नहीं, हाथ बटाकर तो सभी खुश रहेंगे रहेंगे, थोड़ा थोड़ा काम आएगा सबसे और हो भी जाएगा जल्दी, कोई भी काम वो ज्यादा बढ़िया रहेगा जी।
0: जी, तो ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आज के विषय के बारे में खैर आपने अपनी राय तो व्यक्त की है, और भी स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, जैसे तीन चार भाई हैं, लेकिन एक ही बेटे के ऊपर घर गृहस्थी का बोझा है?
1: जी
0: ऐसा देखा है
1: ऐसे देखे, हाँ है तो सही, ऐसा देखा है। तो
0: जी?
1: वही है ना कि जो जिम्मेदार आदमी है वही उसको उठा पाता है, बाकी और तो नहीं उठाते। फिर वही है कि एक कर रहा है तो सही करने दो, फिर हमें क्या जरूरत है करने की, ये है। बाकी
0: ठीक है,
1: ऐसे करना नहीं चाहिए, सब मिलजुल के करें तो काम जल्दी भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा सबके लिए।
0: जी
1: ठीक है दीदी,
0: हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत आभार ज्ञानेंद्र जी। तो ये थे ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। प्रश्न आज का बहुत ही सुंदर है, बैठ कर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं प्रोटोकॉल के अंतर्गत और उसमें से तीन का नाम बताना है। हेलो,
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सूरज गुप्ता जताना से। बस
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, कार्यक्रम का जो आज में विषय आपने विषय रखा है बहुत अच्छा विषय है दीदी। कई कई बार क्या होता है कि परिवार में चार पांच लोग है, घर में व्यक्ति है, दो तीन भाई है, परिवार है, लेकिन मैं बताऊं दीदी कि कोई भी जिम्मेदारी एक पर नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक कमाने वाला दो तीन होता है, लेकिन वो कमाता तो है लेकिन पूरी जिम्मेदारी एक पर डाल देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये एक अकेला इंसान क्या कर सकता है दीदी। दो तीन जो घर में होता है तो सबको मिलजुल के कुछ लोगों सामान लाना है, कोई परिवार में कोई प्रसंग है तो सबको मिलजुल के ही करना जरूरी होता है, और कोई कोई ऐसी बात होती है कोई कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो सब मिलते जुलते ही करना चाहिए। कई कई बार अकेले को छोड़ देता है दीदी तो वो खुद टूट जाता है, बाद में इसको संभालने वाला भी कोई नहीं रहता है, कोई संभालता भी नहीं कि चलो भाई उसने किया है वो करे, मेरे के लिए ना देना, कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो घर में सास होती है, बहू होती है, दूसरी बहू होती है, तो कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि चलो वो कर रही है, मेरे क्या करना है, वो सब कुछ करती है तो करने दो उससे, लेकिन ऐसा नहीं, सबको मिलजुल के काम कोई भी काम करेंगे तो एक काम भी आसान हो जाएगा दीदी और परिवार में भी खुशियाँ रहेगी, वरना खिता उठाना खिताना तो होता रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति काम करता है दूसरा नहीं करता तो क्या होगा, आज परिवार में ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए आज धीरे धीरे लोग अलग हो रहे हैं, तो घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, झगड़ा होता है, लेकिन जो मिलजुल के काम करेंगे अच्छी तरह से रहेंगे तो घर में खुशियाँ ही रहेगी और जो भी पैसे की भी बचत होगी और सबको एक कहीं जाना आना हो तो एक खुशियाँ रहती है दीदी
0: जी।
1: नमस्ते जी।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आइए यहाँ पर एक कॉल विराम लेंगे, उसके बाद पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर। जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: रुक। ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, उसकी वजह से हमारे जीवन में तनाव आता है, और कहते हैं ना छोटे छोटे कारणों का अगर निवारण नहीं होता है तो वो बड़ा रूप धारण कर लेता है, और फिर छोटे छोटे टेंशन से बड़े टेंशन, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है कि जीना मुश्किल हो जाता है। और इसमें आज का विषय रखा है कि भाई अकेले के ऊपर जिम्मेदारियां थोपना कहाँ तक उचित है, तो ये आज का विषय है। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। प्रोटोकॉल के अनुसार किए जाने वाले, बैठकर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं, और उनमें से तीन के नाम आपको बताना है, ठीक है? और देखिए जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है। एक परिवार की बात जो मैंने अपनी आंखों से देखी है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक परिवार में माता पिता और उनके 6 पुत्र, तो बड़े बड़े पुत्र की 20 साल की उम्र में शादी करवा दी। अब शादी करवाने के बाद, उस समय उनका बेटा कोई कारोबार ऐसा कुछ खास नहीं करता था, दुकान खोल रखी थी, बर्तन की दुकान, ठीक है दुकान पर बैठना, लेकिन दुकान पर इतनी ग्राहकी नहीं होती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि क्या करें क्या नहीं। और जिनके उन बेटे के जो पिताजी है वो फेरी नहीं जाते, ऐसे फेरी करते थे, और फेरी करके आने के बाद दुकान पर बैठते थे, और बाकी बेटा बैठने वाला है तो चिंता नहीं, लेकिन दुकान नहीं चलती थी। बड़ा परिवार है और भी 5 भाई, माँ, सामाजिक खर्चे, आना जाना मेहमानों का, और दुकान चल नहीं रही है, फेरी में कोई इतनी कमाई होती

नहीं है तो करे तो क्या करे। बेटे ने कहा कि भाई मुझे कुछ अलग करना है, अलग किया, उसमें भी नहीं चल पाया, वो भी नहीं चल पाया, कपड़े का किया वो भी नहीं चल पाया। फिर अलग अलग करते करते धीरे धीरे धीरे धीरे पटरी ट्रैक पर आ गई, ठीक है, चलने लगा काम उनका, होलसेल का कुछ कर किया है तो उनका अच्छा चलने लगा। अब चलने लगा तो उसी पेड़ी पर फिर दूसरा भाई आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, मतलब सभी पेड़ी एक है। वो चल पड़ा बिजनेस तो उसमें एक संभाल रहे हैं ना, फिर सारे के सारे उसी में लग गए। अब उसी में लग गए तो कमाई तो पहले 1 रुपये की होती थी, वही आज भी 1 रुपये की हो रही है। भाई तीन लगे हैं तो चार भाई मिलकर के कर रहे हैं तो 4 रुपये आए तो बात अलग है कि भाई हाँ प्रोग्रेस हुई है। अब जो 1 रुपये की कमाई वो चार की, तो घर गृहस्थी का खर्चा निकल रहा है लेकिन सामाजिक कामकाज का खर्चा तो नहीं निकल सकता, शादी ब्याह का इनका। तो फिर बड़े पुत्र ने कहा कि भाई थोड़ा अलग अलग करो बिजनेस, एक ही बिजनेस में हाथ डालने से कुछ नहीं होता है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ अलग कोशिश करता हूँ। तो बोले नहीं हम तो इस यही करेंगे। वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे कि हम कुछ नया करें, क्योंकि जमी है हुई है पेड़ी, बैठने में क्या जाता है बस। तो धीरे धीरे बड़े बेटे ने जब परिवार के सामाजिक खर्चे आए तो उधार लेना शुरू कर दिया। अब सभी ये कहते कि बड़े बेटे हम क्यों उधार लेवे, और पिताजी ने बोल दिया मैं तो उधार कहीं से लेने नहीं जाऊंगा। तो बड़े बेटे ने उधार लेना शुरू कर दिया, सामाजिक खर्चे उधार लेके आते और 3-3, 4-4% ब्याज पर, क्योंकि ये बातें बाद में पता चली। तो अब 3-3, 4-4% जब ब्याज शुरू हो जाता है और कमाई वो की वो, जहाँ थी वहीं की वही, तो स्वाभाविक है एक दिन दिवाला निकलना ही है, नीचे बैठना ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं संभले। फिर बड़ा बेटा बोलता रहा कि भाई आप कुछ करिए, देना बहुत हो गया है, बहुत ब्याज भरना पड़ रहा है, और कुछ अलग अलग करो। लेकिन कोई सुने ही नहीं और माता पिता कुछ खास फैसला लेवे ही नहीं। तो अब वो बड़ा बेटा हर समय टेंशन में, हर समय टेंशन में चलते फिरते, बस पैसा किनको देना है, कि कहाँ ब्याज देना है, कहाँ से लाना है, किसको देना है, वो ही उतल पुतल उतल पुतल। अब कोई सुने नहीं घर में, अंदर ही अंदर टेंशन। और एक समय ऐसा आया कि माइनर अटैक आ गया और वो बंदा इस दुनिया से चला गया। तो फिर लोगों को पता चला, जिनको बोलते थे, कहते ना हर एक के भाई कोई ना कोई दोस्त होते हैं, परिवार वाले नहीं सुनते तो दोस्तों को कहते। फिर उन दोस्तों ने कहना शुरू किया कि अरे भाई हमको तो इन्होंने बताया था कि पारिवारिक टेंशन है, कोई सुन ही नहीं रहे और देना बहुत हो गया, अब रोज ब्याज कहाँ से भरे, रोकड़ा भी भर देना पड़ता है ना। अब एक से लिया है, दूसरे को कैश चाहिए कि मुझे कैश और ब्याज दोनों दे दो, अब दोनों कहाँ से लाए और ब्याज भी बढ़ता जा रहा है तो कहाँ से भरे। तो ऐसा हो जाता है, जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। फिर कोई वो कहते ना कि इंसान चला जाता है, परिवार ऐसा होता है कि पीछे कोई अच्छे होते हैं वो ही निभा पाते हैं, उनके बीवी बच्चे, फिर परिवार वालों ने निकाल दिया क्योंकि है तो कुछ है नहीं, क्योंकि पहले से ही एक ही पेड़ी पर सब बैठे हुए हैं और देख लिया कि अब तो बेटा भी नहीं है, कमा के कौन खिलाएगा इनको, हमारा ही पूरा नहीं पड़ रहा है, निकलो यहाँ से, लड़ झगड़ करके कुछ भी आरोप लगा करके घर से निकाल दिया। तो ऐसा होता है, बात छोटी सी थी, बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ जाती है। एक से उधार लिया फिर दूसरे से वो आदत पड़ जाती ना, सामाजिक खर्चा है बड़ा बेटा ही लाएगा बाहर से, तो बहुत ध्यान से चलिएगा, घर परिवार ऐसे ही नहीं चलता है, सबको साथ लेके चलाना होता है ना, तो जिम्मेदारी भी सभी को दी जाती है। संयुक्त परिवार की यहाँ मैं बात कर रही हूँ क्योंकि वो भाई के भी संयुक्त परिवार था, और एकल परिवार है फिर भी क्या है, चार जने हैं तो चार जनों में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हम कहते हैं ना बेटा आप ये काम करो, बेटा आप वो काम करो, तो बच्चे करते हैं, एक कटोरी लेके आओ पहले, पहले वो डायरी वो पेन लेके आओ, छोटे छोटे जब वो चलने लगते हैं नन्हे नन्हे कदमों से, तब से हम उनसे कुछ ना कुछ लेना शुरू कर देते हैं। तो बड़े होने के बाद भी उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम करवाइए। बहुत सारे परिवार में देखिए माता बहनों में क्यों झगड़े होते हैं, कि एक बहू काम कर रही है किचन में, लगी हुई है तो लगी हुई है, दूसरी फोन पर लगी हुई तो लगी हुई है, तो वो थोड़े दिन इग्नोर करेगी, रोज तो नहीं करेगी ना, वो यही कहेगी मेरे भी बच्चे हैं,
मेरा भी परिवार है, क्यों मैं अकेली सभी के लिए जीऊं, अकेले के लिए इतना करूं? करो तो वो भी करो। तो कहीं ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है, एक परिवार में ऐसा भी देखा है कि दो बहुएं हैं, अब बड़ी काम में लगी रहती है और छोटी मोबाइल में, और अगर उसको कोई बोल दो कि ये काम करना है, मैं क्या नौकर हूँ क्या? अरे भाई नौकर नहीं तो खुद का ही कर लो। सास ने कहा कि खुद का ही कर ले, नौकर नहीं है तो यहाँ पर तुम्हारे भी कोई नौकर नहीं है, खुद का तो कर, दो बच्चे हो गए, खुद का तो कर अब। लेकिन खुद का भी नहीं करती है, किया नहीं किया, बीच में से जैसे बड़ी बहू खाना बना देती है तो उसमें से निकाल के ले जाती है पहले से ही रूम में कि मैं कमरे में रख दूँ, अपना ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो फिर वो घर टिकता नहीं है। फिर थोड़े दिनों में अलग हो गए कि भाई अब ये काम बिल्कुल नहीं करते, और बड़ी ने कहा कि बहुत कर लिया, अब मैं भी अकेली नहीं करूँगी। स्वाभाविक है, बड़े जब बोलने लगते हैं चुपचाप काम करते हैं, और जब बोलने लगते हैं तो सबको अखरता है, लेकिन क्यों भाई, उनके साथ न्याय कर लीजिए तो उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। कर रहे थे ना, आए तब अकेले थे तो सभी को संभाल रहे थे, अब एक से दो है तो दोनों मिलके करो, और दो से तीन हो तो और भी मिलके करो, तो कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। हाँ धीरे धीरे धीरे धीरे काम सभी सीखते हैं, क्योंकि आते ही कोई काम नहीं सीखता है कि भाई सीखे हुए नहीं आते, पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती है, पढ़ाई करते करते शादी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन देख देख के तो काम सीखा जाता है। पूछ लो, अच्छा ये चीज़ कैसे बनाती है, ये कैसे बनाई जाती है, चलो आज मैं बनाती हूँ, आप खड़े रहिए मुझे गाइड करिए, तो कोई नहीं करेगा, करेगा ना? हम तो आएंगे नहीं, किचन में तो पैर ही नहीं देंगे, हम क्यों बनाए? इस तरह की भावनाएं जब जन्म लेती है तो समझ लीजिए कि वो घर अब आपका टिकेगा नहीं, वो टूटना तय है। चाहे एक बेटे के ऊपर जिम्मेदारी सारी थोप दीजिए या एक बहू पर सारी जिम्मेदारी थोप दीजिए, और अगर मान लीजिए उनको अलग नहीं किया तो वो टेंशन से, आजकल तो भाई क्या कहते हैं हम सभी कि चित्ता अच्छी, चिंता से तो चित्ता अच्छी, तो वो भाई तो चली गया दुनिया को छोड़ के। ऐसे ही बहनों के भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, जो भी है, क्योंकि कह नहीं पाते, फिर बार बार झगड़ा कौन करे, अंदर ही अंदर कूटते हैं, टेंशन लेते हैं, तो स्वाभाविक है बीमारियों का घर हो जाता है। इसलिए हर एक माता पिता से यही कहना चाहूँगी कि देखिए घर में आप न्याय करिए सभी के साथ, और जो जिम्मेदारी नहीं उठाता है उसको आप थोड़ा सा अलग कर दीजिए, तो अपने आप की जिम्मेदारी, कहते ना कि फिर तो क्या करेगा, फिर थोड़े ना कोई किसी के घर में जा करके खाना बना के आएगा या किसी का पूरा करेगा, थोड़े दिन करेगा, लाइफ टाइम कोई नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हर पहलू की बात है, यहाँ पर ऐसे नहीं है कि खाली एक ही पक्ष है, हाँ पति पत्नी है, दोनों ही कामकाज करते हैं तो दोनों को मिलकर के घर में काम करना चाहिए। पति को ऐसा नहीं लगना चाहिए, अरे मैं तो पुरुष हूँ मैं क्यों करूँ, अरे भाई पुरुष हो तो क्या खाना नहीं खाते हो क्या, क्या वही आप सब कुछ करते हो जो एक महिला करती है ना, तो सबको सब कुछ चाहिए तो फिर काम भी करना चाहिए। इसलिए चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बच्ची हो, सबको अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य देना चाहिए, जिम्मेदारियां देनी चाहिए, तभी एक परिवार खुशनुमा बन सकता है। ठीक है, अब इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार बैठकर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं और उसमें से तीन के नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। फिर से एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही नाम बताया था स्पेशल, अब आगे बता देती हूँ क्योंकि आपने उस डेस्क डेस्क की पूर्ति नहीं की है, तो स्पेशल चाउमीन सिखाने जा रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप सामग्री लिखिएगा, भाई बच्चों को ये बहुत पसंद है और कभी कभी ज़रूर बना करके खिलाइएगा, बाकी रोज़ की आदत नहीं डालनी है, हेल्थ के लिए ज़्यादा भी ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभार खिलाने में हर्जा नहीं है क्योंकि बच्चे भी थोड़ा चेंज चाहते हैं। तो आप 400 ग्राम ताज़ा नूडल्स ले लीजिएगा, फिर आप लीजिएगा पानी 5 कप, नमक 1 चम्मच और मिर्च पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच ले लीजिए, अजवाइन 2 छोटे चम्मच लेना है, फिर आप लीजिएगा 1 छोटा चम्मच चिली सॉस और 1 छोटा चम्मच सिरका लेना है। अब आप इच्छा अनुसार सब्जियां ले लीजिए 1 कप, ठीक है, सबकी स्लाइस कटी हुई स्लाइस में लीजिएगा। तो ये हो गई सामग्री जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ताज़ा नूडल्स 400 ग्राम, 5 कप पानी, 1 चम्मच छोटा चम्मच आता है वो नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, ठीक है, मिर्च पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, फिर आप लीजिएगा सोया सॉस 1 चम्मच, सिरका 1 छोटा चम्मच, 2 छोटे चम्मच अजवाइन, चिल्ली सॉस आप 1 छोटा चम्मच लीजिएगा और इच्छा के अनुसार सब्जियां लीजिएगा स्लाइस में कटी हुई। अब आप पानी में नमक डाल करके नूडल्स को उबालिए, पानी का उबाल आए फिर नूडल्स डालिए और थोड़ा सा पकाइए, नूडल्स सूखे हो तो थोड़ा सा देर तक पकाइए, पकाने के तुरंत बाद पानी निकाल दीजिएगा, एक छलनी भले कोई जूस की झाली हो तो उसमें डाल दीजिए ताकि पानी निकल जाए, फिर छलनी में डाल करके ठंडा पानी भी डालते रहिए, वो पानी निकालते ही ठंडा पानी डालिए, जब तक नूडल्स ठंडे नहीं हो जाए इतना पानी आपको डालना है। अब उसमें 1 चम्मच तेल डाल करके हिलाइएगा, अब कढ़ाई में 1/2 बड़ा चम्मच तेल डालिए, जब तेल गर्म हो जाए तो फिर आप ये सब्जियां डालिएगा जो स्लाइस करके काट रखी ना वो डालिएगा और 3-4 मिनट तक इसको फ्राई करिएगा। अब सोया सॉस, नमक, चिल्ली सॉस और सिरका मिलाइएगा और नूडल्स को तेज आंच पर ठीक है, तो ऐसे आप सोया सॉस, नमक, चिल्ली सॉस और सिरका मिला दीजिए, नूडल्स को तेज आंच पर अच्छी तरह से हिलाइएगा और लास्ट में टमाटर सॉस से सजा करके गर्मा गर्म चाउमीन आप सर्व कर सकते हैं। तो ये बन गया स्पेशल चाउमीन। अब मैं फिर से आपको विधि बता रही हूँ कैसे बनाएंगे आप चाउमीन। तो आप क्या करेंगे, पानी में नमक डाल करके पानी को उबालिए, फिर इस उबले पानी में आप नूडल्स डालिए और थोड़ी देर पकाइए, नूडल्स सूखे हुए हो तो आपको थोड़े से देर तक पकाना है, इसके बाद जब ये नूडल्स पक जाए तो तुरंत आपको पानी निकाल देना है, ठीक है, और पानी निकालने के बाद इसमें ठंडा पानी डालिएगा और पानी इतना डालिएगा कि ये नूडल्स है वो ठंडे हो जाए। अब आप कढ़ाई रखिए, गैस पर तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो ये सारी सब्जियां जो हमने धुलाई करके इनके स्लाइस करके रख रखे हैं ये सब्जियां फ्राई करिए, सब्जियां फ्राई हो जाए तो फिर आप इसमें नमक, चिल्ली सॉस और सिरका मिलाइए, नूडल्स भी डाल करके तेज आंच पर अच्छी तरह से हिलाइए और लास्ट में जब आप प्लेट में पिरसो उस समय टमाटर सॉस से सजा करके गर्मा गर्म चाउमीन सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह स्पेशल चाउमीन हमारा तैयार हो चुका है। जो भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाइएगा और भोग लगाने के बाद ही जो हम बनाते हैं वो आप स्वीकार करिए। तो इससे क्या है, भोग लगाते हैं तो हमारी भोगनाएँ भागती है। तो ये सुंदर स्वादिष्ट रेसिपी आपको सिखाई है, बच्चे बड़े पसंद करते हैं, तो कभी कभार बच्चों को अपनी पसंद की चीज़ ज़रूर खिलानी चाहिए। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, प्रोटोकॉल के अनुसार बैठ कर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं और उसमें से तीन के नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। कुछ दिनों से आपको योगा व्यायाम ही सिखा रही हूँ तो आप सीख रहे हैं और ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। इन्हीं में से मैं प्रश्न पूछूंगी आज भी, जैसे कि पूछा है, और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई और जो रेसिपी में आपको स्पेशल चाउमीन बना करके जो बनाकर खिलाया तो नहीं है क्योंकि भाई ये रेडियो है तो सिखाया है, महसूस किया होगा आपने उसके टेस्ट को। ऐसे कहते हैं ना कि जितना खाने में मज़ा नहीं उतना तरसने में मज़ा है नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, वो मज़ा है। तो ज़रूर बना करके आप भी खाइएगा, अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था, बैठ कर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं और उनमें से तीन के नाम आपको बताना है। तो हमारे श्रोता बंधु जुड़े हैं, भूरीलाल जी मानपुर से जुड़े हैं, आपका जवाब गलत है। सुरेश भाई जोटाना से जुड़े हैं, आपका जवाब एकदम सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आपने विषय में राय व्यक्त की है, प्रश्न का जवाब नहीं दिया। ज्ञानेंद्र जी जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, आपने आधा जवाब सही दिया है। श्यामली बहन आबू तलेटी से, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अलका जी काबरा चित्तौड़गढ़ कपासन से, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सगुना बहन जुड़े हैं, आपने आधा जवाब सही दिया, आधा जवाब गलत दिया। तो चलिए मैं आज के प्रश्न का जवाब देना चाहूँगी। देखिए प्रोटोकॉल के अनुसार बैठ कर किए जाने वाले आसन सात है और उसमें से तीन के नाम आपको बता रही हूँ, भद्रासन, वज्रासन और अर्धउष्ट्रासन। फिर किसी ने शशांक आसन भी कहा, किसी ने उत्तान मंडुका आसन भी कहा, किसी ने वक्रासन भी कहा, सही है ये सात आसन है उसमें से तीन के। सुरेश भाई जोटाना से आपने एकदम सही जवाब दिया है, बाकी सबका आधा आधा, किसी ने तो बिल्कुल ही गलत दिया, लेकिन आपके लिए ढेर सारी तालियां जो आपने सही जवाब दिया है। फिर विषय में भी जुड़े हैं सुरेश भाई और पिंडवाड़ा वाले भी, जोटाना वाले भी, तो आप दोनों के लिए ढेर सारी तालियां। और आज का मीठा मोती आपको सुनाना चाहूँगी, आज का मीठा मोती भी बहुत ही सुंदर है जो आप सुनेंगे, उसके बाद गीत सुनेंगे। तो खुशी को हम तब तक बाहरी चीज़ों में खोजते रहेंगे जब तक मैं खुद को जान न लूँ कि मैं हूँ ही खुश नसीब आत्मा। तो ये स्वयं को स्वीकार करना है, स्वरूप बनना है, तभी खुशी महसूस कर पाएंगे। अब कमलेश बहन को आप सभी जानते हैं जो नई किरण में आते रहते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ देते हैं गीतों की और बातें भी सुनाते हैं। तो आज कमलेश बहन गीत सुनाएंगे, आप लेंगे गीत का आनंद और हमें देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
5: शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। और गीत अपने सुनने वालों की नज़र में करूँगी। वो गीत है फिल्म उम्मीद से, संगीत रवि का, गीतकार शकील बदायूनी, और गाया तो रफ़ी जी ने, लेकिन मैं आपको ये गीत सुनाना चाहती हूँ। गीत है

0: नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 107.8 एफएम द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक महिला अपने जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था के बीच किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार बनती है। साथियों, महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि बेटे की चाहत में गर्भपात करवा देते हैं, बेटी के स्कूल जाते वक्त लड़के ने सीटी बजाई तो लड़की का स्कूल छूट गया, तुम पराए घर से आई हो तो जायदाद में तुम्हारा नाम नहीं आ सकता, थोड़ी पढ़ाई क्या कर ली, घूंघट निकालना ही छोड़ दिया। तो इस तरह बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है। आज के इस नाटक के द्वारा हम जानेंगे कि महिलाएं किन किन कारणों से हिंसा का शिकार बनती है।
1: आज आपको ले चलते हैं राजस्थान सिरोही जिले के एक ऐसे गांव में जहां रहता है जगदीश। जगदीश के परिवार में उनकी माँ रमा, पिता सीताराम के साथ कुल 10 सदस्य रहते हैं। जगदीश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसका विवाह पड़ोस के जिले की पुष्पा से हुआ है। बहू पुष्पा पहली बार गर्भवती हुई है और उसका 9वां महीना चल रहा है। पुष्पा की माँ बीमार होने के कारण पुष्पा को डिलीवरी के लिए पियर लेकर नहीं जा पाती है। इस वजह से सास रमा बहू को ताने कसती है और साथ साथ बार बार पुष्पा को पोता चाहिए कहकर परेशान करती रहती है। चलिए चलते हैं पुष्पा के घर और देखते हैं अभी वहाँ क्या चल रहा है।
2: बीनणी, ए बीनणी, कटे परीगी, मारा पगणा दुख है, थोड़ा दबा तो।
3: माजी, मने घना चक्कर आ रहा है माजी, मारी तबियत ठीक कोनी, सुबह 4 बजा की उठोड़ी हूँ, रात की 10 बजा तक काम कर रही हूँ, अबे मारी ताकत कोनी, मैं सोवा जा रही हूँ।
2: चक्कर आ रहा तो काई करूँ मैं, अनि दुनिया में तू ही एकली महिला कोनी जो माँ बनवा जा रही। अरे मैं तो 7 टाबरा ने जन्म दी दो पर घर रो सारो काम करती, समझी।
3: माँ जी, आपको समय अलग हो।
2: सामने बोल रही थू, ए जग्या थारी लुगाई ने समझा दे, गणिया में बोले।
4: थारी ही हिम्मत क्या न हुई मारी माँ के सामने बोलवा की।
3: थाने खबर है मैं गर्भवती हूँ, पूरा टाइम चल रो, फिर भी तुम्हारा मैं हाथ उठा ही रहा हूँ।
4: देख पुष्पा, तू मने मारवा पे मजबूर मत करया कर, घर का काम तो थाने ही करना पड़ी।
3: थाने खबर है कि मारो पूरो टाइम चल रो, मारो सो काम कोनी हो रहो, क्या समझाऊं थाने, आ आ मारो पेट दुख रहो। आ
4: पुष्पा, पुष्पा कई होयो थारे, माँ माँ जल्दी आ, थारी बिंदड़ी ने कई होयो।
2: अरे कई नहीं होयो, जा दाईमा ने बुला ला, बालक ने जन्म दिवारी पीड़ा है। बिनणी सुने, मारे तो पोतो ही चाहिए।
5: बधाई हो काकी सा, जलेबी खावा वो लक्ष्मी जी आया है।
2: बाटो आयो, मारे तो छोरा रो खर्चो बढ़ गयो।
5: काकी सा, छोरा छोरी अपना हाथ में कोनी, बिनणी और बालक दोई घना कमजोर है, या को ध्यान राख जो, मैं जाऊं। राम राम।
2: पोतो तो दीदो कोनी और ध्यान रखो।
3: सुनो पिंकी रा पापा, अपनी पिंकी रा मालिश करानी है, घनी कमजोर है, ताकि माँ ने कौन
2: काई जरूरत कोनी मालिश वालिश करवा की, वेजा ही पड़ता दरता मूर्ति, छोरिया ने घने माथा पर नहीं बिठानी।
3: सो जाए।

0: अरे
1: पियर तो थाने देख गया कोनी और नाना नानी ने याद करी, ज्यादा लाड लड़ावा की जरूरत कोनी, वेजाई मोटी।
2: तो सुना आपने, बेटा नहीं होने पर कैसे बहू पुष्पा को तंग किया गया। अब चलते हैं पुष्पा के पीहर में, जहां पुष्पा के माता पिता हैं। जैसे ही पुष्पा के माता पिता को पता चला कि उनकी इकलौती संतान पुष्पा के बेटी हुई है, तो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और पुष्पा के पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल जाते हैं। आइए जानते हैं आगे क्या होता है।
3: पुष्पा की माँ, बधाई हो थाने, आपने पुष्पा का घरे बेटी को जन्म हुए।
4: पुष्पा का बापू, आपने भी खूब खूब बधाई, नाना जी बन गया थे तो मिठाई और कपड़ा लेन थे मलवा जाओ पुष्पा का सासरे, और पुष्पा ने के जो जब थारी माँ की तबीयत अच्छी हो जाए पचे घरे ना आवा।
3: राम राम वे जी सा, राम राम वेण जी सा, खूब बधाई आपने दादा दादी बन गया इन वास्ते।
5: नाना जी ने भी खूब खूब बधाई।
6: राम राम व्याई जी सा, भोजन रोगो सा।
3: व्याण जी सा, पुष्पा और मारी द्वैती सु मने मिलवा दो, पचे मैं मारा घरे जाऊं। आप ही जानो अपनो रिवाज, बेटी का घर को कौन नहीं खावा।
6: देखो व्याई जी, मारे माता जी की मानता है, इन वास्ते बिनणी सु सवा महीना पहला को नहीं मिल सको नी बालकी सु।
3: एड़ी मानता कि एक बाप बेटी सु मल को नहीं सके।
6: हाँ एड़ी मानता है।
3: ठीक है व्याई जी सा, जेड़ी आपकी मर्जी, मैं चालू। राम राम।
6: राम राम। ए जग्या अटे आओ, थारा उराजी आया या बाथू बिनणी ने मत बताइजे, और कपड़ा लगता मिठाई जो भी लाया काई मत कहीजे, समझो।
7: परवीन ठा पड़ गई तो मैं कही क्यों।
6: कीजे, मारा उनसे बात करे।
7: ठीक है माँ।
8: पिंकी रा पापा, मने ढा पड़ी के मारा बापू आया हा मलबा का वास्ते।
7: हाँ तो?
8: तो मने मलबा क्यों नहीं दीदी?
7: मने ठा को नहीं, मारी माँ ने पूछे।
2: बेटी को जन्म देने के कारण पुष्पा के पिता को पुष्पा से मिलने नहीं दिया गया।
4: पुष्पा रा बापू आ गया थे, आपनी पुष्पा और द्वैती क्या ने थे उदास क्यों लाग रहा, काई बात, सब ठीक है ना?
3: पुष्पा और बच्ची सु तो मन्ने कोई मलवा ही नहीं दीदा।
4: केड़ी बात करो, बेटी सु कोनी मलवा दीदा?
3: हाँ, पुष्पा री माँ व्यान जी सा केवे के मारे तो मानता है माता जी री।
4: एड़ी मानता तो मैं कदी भी कोनी सुनी कि बेटी बाप सु कोनी मल सके। ब्याई जी ब्याण जी रो व्यवहार क्या लाग्यो?
3: मने तो लाग्यो छोरी होबा सु वे दोई खुश कोनी।
4: पुष्पा रा बापू, थे मारी छोरी ने कटे खाड़ा में नाग दीदी।
3: पुष्पा री माँ, पुष्पा अपने एका एक वाला थे, मैं तो यो ही चाहू तो के मारी छोरी खूब सुखी रहे। जद मैं संबंध नक्की करवा गयो तो सारी बात मैंने बताई के पुष्पा मारी एका एक छोरी है और पुष्पा की माँ बीमार रहे, तो वे बोलिया कि पुष्पा आपकी नहीं आज सु मानी है, आप काई चिंता मत करो, मैं बेटे की न्यान रखा, पर लोग एड़ा दोगला वेवे मने खबर कोनी।
2: पुष्पा का जीवन ऐसे ही चुनौतियों के साथ आगे बढ़ता जाता है और समय के साथ उसने और एक बेटी और दो बेटों को जन्म दिया। पुष्पा के माता पिता पिंकी की अच्छी पालना और बेहतर शिक्षा के लिए पिंकी को अपने पास ले जाते हैं। वहीं पुष्पा के पति और सास नहीं चाहते हैं कि पिंकी आगे बढ़े, अच्छी पढ़ाई करे, इसलिए बार बार पुष्पा के साथ झगड़ा करते हैं। लेकिन पुष्पा अब स्ट्रांग बन चुकी है और पिंकी को नाना नानी के पास ही रुककर पढ़ाई जारी रखने की पूरी छूट देती है। समय के साथ पिंकी बड़ी हो जाती है और फिर उसके 12वीं का रिजल्ट आता है। आइए सुनते हैं इस नाटिका में आगे क्या होता है।
3: अरे पुष्पा की माँ, पिंकी कटे होते हैं सब। अरे भाई, पिंकी को रिजल्ट आ गयो।
4: अरे काई व्यो पुष्पा का बापू, थे तो घना खुश लाग रहा।
3: बात ही एड़ी है, पिंकी कटे
9: काई वो नाना जी, मैं यारी।
3: अरे अपनी पिंकी को रिजल्ट आ गयो और पिंकी को मेरिट लिस्ट में नाम आयो। गांव वाला सब ढोल बजान पिंकी को स्वागत करवा रहा है, नाश्ता पानी की तैयारी करो।
4: अरे वाह वाह वाह, या तो घनी खुशी री बात है, मारी लाडो तो मारो नाम कर दी दो।
2: देखा आपने, पुष्पा ने परिवार के विरोध के बावजूद पिंकी को अच्छी शिक्षा दिलवाई। पिंकी ने भी मेहनत कर पढ़ाई की और आगे चलकर नामी वकील बन गई। पिंकी ने अपनी बहन को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई है। अब वह अपने परिवार के साथ साथ समाज की अन्य बालिकाओं और महिलाओं के साथ खड़ी होती है। इस बात से पिंकी के दादा दादी, परिवार वाले सभी बहुत खुश हैं और पुष्पा की तारीफ करते कहते हैं कि बहू हो तो ऐसी जिसने बेटी को इतना काबिल बनाया।
0: श्रोताओं, सुना आपने कैसे हमारे समाज में एक महिला को जन्म से लेकर हर पड़ाव में आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ समाज बल्कि अपने परिवार के अंदर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो छोटी बातें बड़ा रूप धारण कर देती है। महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है, वो आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित नहीं कर पाती है। कभी कभी महिला सुसाइड भी कर लेती है या फिर तलाक ले लेती है। फिर भी अगर हम हिंसा को बढ़ावा देते हैं तो उसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज आप सभी देखते व सुनते भी होंगे कि अधिकांश समाज में बेटों की संख्या ज्यादा है और बेटियों की कम। दलालों को पैसे दे करके दूसरे समाज की बेटियों को बहू बना रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जब नारी ठान लेती है तो हम यही कह सकते हैं, नारी तू ना हारी। पुष्पा ने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर अपने पति सास ससुर के विरोध के बावजूद भी अपनी बेटी पिंकी को उच्च शिक्षा

दिलाई। इस नाटक से हमने ये जाना कि महिलाएं किस किस प्रकार से हिंसा का शिकार बनती है। हम भी अगर अपने आसपास देखें तो हमारे परिवार तथा समाज के अंदर जाने अनजाने में महिलाओं को इस प्रकार के हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आज के इस नाटक से आपने जो सुना इसे अपने जीवन में डालने का प्रयास करेंगे और आप किसी महिला के जीवन में होने वाली हिंसा का कारण नहीं बनेंगे तथा अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्रेरणादायक कार्यक्रमों के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन और कहिए सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। आइए आरजे उषा के द्वारा सुनते हैं इस एपिसोड के मर्म को प्रस्तुत करता हुआ एक दिल को छू लेने वाला गीत।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन 90.4।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बनाए।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम का नाम है मधुबन अनप्लग्ड और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ ऐसे स्पेशल गेस्ट जुड़ते हैं जिनसे जब हम बातचीत करते हैं तो न सिर्फ उनके हुनर के बारे में बल्कि संगीत से जुड़े कई एक्सपीरियंस हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं. और संगीत तो है ही ऐसा जो जादू की दुनिया में जैसे ले जाता है. और आज हमारे साथ हैं अलीशा. बहुत सुंदर गाती हैं और बहुत अच्छा लगता है उन्हें गाना. आइए उनका स्वागत करते हैं. अलीशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है. हाँ अलीशा, आप मुझे सुन पा रहे हो?

0: अलीशा आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ कोई बात नहीं, अभी शायद आप सुन पाएंगे क्लियरली, है ना? अभी हम कंटिन्यू करते हैं. ओके ओके. तो दोस्तों आप सुन रहे हैं, अलीशा हमारे साथ जुड़ गए हैं. और डेफिनेटली कभी कभी जब हम दूर होते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत साथ भी देती है. और म्यूज़िक के लिए तो एक बून की तरह है, क्योंकि हम देखते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कितने सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी प्रतिभा इसी टेक्नोलॉजी के कारण बाहर आ पाई है, नहीं तो शायद कहीं छुपी रह जाती. तो अलीशा सबसे पहले आप हमारे दोस्तों को कुछ अपने बारे में बताइए.
1: मेरा नाम अलीशा है और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही हूँ विद पीसीएम स्ट्रीम. और मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट भी है, तो मैं थोड़ा गाती भी हूँ, ऐसा है ये मेरा इंटरेस्ट.
0: ओके, तो आपको गाना अच्छा लगता है. और क्या पढ़ाई कर रहे हो आप
1: दीदी? हेलो.
0: हाँ जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं?
1: हेलो,
0: आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे
1: हैं?
0: अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे. आप एक बार अपनी पढ़ाई आप क्या कर रहे हैं वो बताइए हमारे दोस्तों को.
1: है और मैं क्लास ट्वेल्थ में हूँ. मेरे पास स्ट्रीम पीसीएम से मैं क्लास ट्वेल्थ कर रही हूँ और दून वाली पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, मुजफ्फरनगर. तो अभी स्टडीज में यही है.
0: ओके. और गाने में आपको कब से शौक है, आपको गाने का?

0: से ही इंटरेस्ट तो देखिए है, बट वही होता है ना कि बच्चे थोड़े नादान भी होते हैं, तो उसी के साथ साथ कभी बीच में कर लिया फिर छोड़ दिया, तो ये सारा कॉन्सेप्ट तो चलता ही रहता है, लेकिन इंटरेस्ट तो मेरे को है ही, हमेशा से बचपन से ही इंटरेस्ट है।
1: ओके तो अलीशा, कोई गाना है जो आप हमारे दोस्तों को अभी सुनाना चाहोगे, जो आपको बहुत पसंद है?
0: मैं सबसे पहले ना भजन सुनाना चाहूंगी आपको, एक चित्र विचित्र जी का, हे लाडली सुध लीजे हमारी, तो ये
1: ओके थैंक यू, आपने बहुत अच्छा गाना चुना। चलिए सुने आपकी आवाज़ में ये गाना।
0: जी बिल्कुल।

0: थैंक यू सो मच।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूब, बहुत ही भावना के साथ गाया आपने रिशा। और आप क्या फील कर रहे थे जब आप गा रहे थे? तो
0: मुझे तो वैसे राजा रानी ऐसा लग रहा था जैसे मैं सामने उनको देख के गा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे राधा रानी के लिए गा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसे बैठ के उनके सामने, जैसे मंदिर में जाके गाते हैं, तो वो वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत अच्छा था।
1: तो जैसा आपने कहा कि जैसे आपको सामने ही एकदम महसूस हो रहे थे, आप ऐसे गा रहे थे, तो अलीशा, जैसे आप जब कोई भजन गाते हैं तो मतलब किसको देख के आपने सीखा, या कोई है जिन्होंने जो आपको सिखाते हैं, या आप खुद ही सीखते हैं?
0: एक्चुअली पहले तो शुरुआत तो पापा से ही हुई क्योंकि घर पे, बट पापा के जो गुरुजी हैं वो अभी तो नहीं है खैर, लेकिन उनसे मेनली मेरी शुरुआत हुई 9 साल की उम्र से। तो ऐसा है कि पापा के जो गुरुजी हैं और मेरे जो गुरुजी हैं वो एक ही हैं, तो उन्होंने ही ये भजन सिखाना शुरू किया क्योंकि उनको भजन, वो एक भजन गायक मेनली थे, वो जागरण बहुत ज्यादा किया करते थे अपने समय में, तो भजन का तो शुरुआत वहां से हुई।
1: अच्छा।
0: और पापा घर पे तो बीच बीच में हेल्प करते ही हैं, कुछ पूछना है, प्रैक्टिस होनी है, क्योंकि जब गुरुजी के सामने जाते हैं तो काफी चीजें हमें फाइंड करके ही जाना होता है, तो मेनली पापा और उनका दोनों का ही रहता है।
1: तो अच्छा, एक और अगर मैं आपसे बात पूछूं कि जैसे आपके पापा गाते हैं और गुरुजी तो हैं ही जिनसे आप सीखते आ रहे हैं, तो मतलब क्या आपको कुछ बचपन की ऐसी कोई मेमोरी है जो आपको लगा कि हाँ मुझे गाना अच्छा लगने लगा तब से, आप सुनते थे, कोई ऐसी मेमोरी है आपके पास?
0: बचपन से मुझे बचपन से ही ना मतलब सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं बहुत छोटी थी ऐसे 3-4 साल की उम्र में, तो टीवी पे उस टाइम पे राधा रानी के, कृष्ण जी के बहुत सारे भजन आते थे जो अभी तो नहीं आते हैं, तो ऐसा था कि वहां से सुनना शुरू किया। और पापा इतना ज्यादा गाते हैं हमारे घर पे कि उनका बस वो गाते ही रहते हैं, तो वो वहीं से ही कि वो गाते हैं, वो क्या गाते हैं, कैसे गाते हैं। और ऐसा भी होता था बचपन में कि पापा गाना गा रहे हैं तो उसकी एक बीच की लाइन उन्होंने बोली और फिर वो हमने बोल दी, उनको पता भी नहीं था कि हम बोलने वाले हैं, बट एकदम से ऐसे करते थे कि मैं बोल देती थी बीच में। तो ऐसे ऐसे करके शुरू किया, और ये छोटी छोटी ऐसी मेमोरीज हैं कि वो गाते थे, मैं बीच में मैंने गा दिया, तो ये होता था। फिर पापा को लगता था चलो अच्छा ठीक है तुम्हें ये वाला सॉन्ग रेडी कराते, तो ये ऐसे रहा है बचपन से।
1: ओके, तो जैसा आपने कहा कि बचपन से रहा और उनको पता भी नहीं चलता था, कभी कभी आप बीच में वो शब्द बोल देते थे
0: हाँ
1: या गा देते
0: जी
1: थे,
0: जी
1: तो आपको मतलब आपने इन मतलब वो आपने देख के पापा को गाना शुरू किया, आपको कब ये लगा
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: मैं सच में एक अच्छे सिंगर की तरह गाना चाहती हूँ, या मैं इसको आगे ले जाना चाहती हूँ, या सीखना चाहती हूँ?
0: मेनली तो जब भी मैं 7th क्लास में थी 2019 में मेरे को लगा, क्योंकि जब भी मैं स्कूल में थी तो हमारे यहाँ पे ना हमारे सिटी का एक कंपटीशन हो रहा था, वो भी रेडियो कंपटीशन ही था, यहाँ के रेडियो से था वो, SD रेडियो। तो वहाँ पे वो हमारे स्कूल में आए और उनको ये था कि वो आपका ऑडिशन लेंगे ये सब, तो मेरे को था कि मुझे भी इसमें पार्ट लेना है और उसके लिए सीखना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जाके बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करना है ऐसा। तो वहां से काफी ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करना और फिर आगे आगे अभी 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड ऐसे ऐसे करके आगे जाना, तो प्रैक्टिस तो मेरी वहां से शुरू हुई है। और मैंने एक एल्बम भी रिकॉर्ड की थी
1: वाह,
0: बट वो रिलीज हो पाई कुछ वजह से, वो भी
1: ओके,
0: भजनों की ही एल्बम थी वैसे,
1: अच्छा,
0: और वो भी मैंने रिकॉर्ड की थी, तो ये रहा।
1: नहीं बिल्कुल, जैसे एक आर्टिस्ट है उनके लाइफ में कई तरह की सिचुएशंस आती हैं, लेकिन उनका जो हुनर है वो तो हमेशा साथ रहता है। जैसा आपने बताया कि वो रिलीज़ नहीं हो पाया किसी वजह से, लेकिन डेफिनेटली आप
0: जी
1: आगे इसको करियर की तरफ परस्यू करना चाहते हैं, म्यूज़िक को, आप अपने संगीत को?
0: बिल्कुल, मैं करना चाहती हूँ
1: ओके, चलिए,
0: ऐसा, बिल्कुल एज अ कैरियर मैं लेना चाहती हूँ उसको।
1: वंडरफुल. मुझे लगता है हमारे जो रेडियो मधुबन के लिसनर्स हैं वो भी बहुत लकी हैं, क्योंकि भाई आपको एक उभरते हुए सितारे को सुनने को मिल रहा है और आगे चल के शायद और सुनने को मिलेगा. तो फिर याद आता है ना कभी कभी, अरे अरे इनको तो हमने बहुत सालों पहले रेडियो पे सुना था. तो शायद कुछ इस तरह की यादें अभी क्रिएट हो रही हैं. बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं अलीशा. कोई और आपका पसंदीदा गीत है जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे आज?
0: जी, एक पुराना गीत है, रहे ना रहे हम महका करेंगे, तो
1: क्या
0: मैं
1: बात है,
0: ये सुनना चाहूंगी.
1: बहुत बहुत सुंदर गीत. मैं तो मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना. चलिए आपकी आवाज में
0: जी
1: सुनते हैं अलीशा.
0: बिल्कुल.

0: यू।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत ही सुंदर गाना गाए और तालियां तो बनती हैं, ढेर सारी आपके लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है, क्योंकि हमारे जो श्रोता मित्र हैं, जो लिसनर्स हैं, वो इस वक्त तो आपको कह नहीं पाएंगे, लेकिन उनके दिल की आवाज़ उन तालियों के रूप में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत प्यारा गाया। और ये बहुत सुंदर गाना आपने चूज़ किया, ये क्यों चूज किया या कैसे चूज किया, आप बताएंगे कुछ इस बारे में, गाने के बारे में?
0: एक्चुअली मैंने नहीं चूज किया, क्योंकि गुरुजी जब तैयार कराते थे ना, तो वो ही चूज करते थे कि कौन सा गाना तैयार कराएंगे इस बार।
1: अच्छा,
0: तो ये उन्होंने ही चूज किया, उन्होंने ही तैयार कराया, तो
1: वाह।
0: ये ऐसे बात है।
1: तो मतलब वो आपकी आवाज़ को समझ के और फिर वो गीत की खूबसूरती को समझ के वो उस प्रकार से वो आपके लिए चूज करते होंगे गाना।
0: हाँ जी,
1: अच्छा अलीशा, क्योंकि आप अभी आज के जेनरेशन के हैं और ये गाने तो काफ़ी पुराने हैं, तो क्या आपको मतलब इस तरह के गाने अच्छे लगते हैं, या आप सिर्फ गाते हैं, या आपको एक्चुअली सुनना भी पसंद है?
0: मुझे अच्छे लगते हैं। मैं हमारे घर पे ना ओल्ड सॉन्ग्स मैं ज्यादा सुनती हूँ। कभी भी ऐसे सॉन्ग चलाते हैं तो हम लोग मेनली ओल्ड सॉन्ग्स ही सुनते हैं। वो तो ऐसे होता है कि रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको नए सॉन्ग सुनने होते हैं और आपको तैयार करना होता है। अदरवाइज मुझे ओल्ड सॉन्ग्स ही पसंद है, उनकी फील, उनके जो वर्ड्स होते हैं, जो शायरी होती है, वो उस टाइम की एक अलग ही बात थी। अभी वो नहीं है। आप शायरी भी देखो तो उतना नहीं होता है, और सॉन्ग में इतनी ज्यादा फील भी नहीं होती है जो पहले होती थी। बहुत ही ज्यादा फील से सॉन्ग को गाया जाता था, बहुत ही फील से सॉन्ग को लिखा जाता था, तो वो वाली फील अभी नहीं है। मुझे तो पुराने सॉन्ग सुनने ही ज्यादा पसंद है। ये तो
1: अच्छा,
0: पता नहीं ऐसा है क्यों, बट ये मुझे पुराने
1: हाँ
0: सॉन्ग अच्छे लगते हैं ज्यादा।
1: नहीं, जो आपने बात कही, शायद वो महसूस तो होता है, क्योंकि वो जो लिखे हुए भी वो शब्द भी है, वो ऐसा लगता है कि आप वो गाने सुन रहे हैं तो सीधा आपके मन के अंदर जा रहे हैं। बहुत ही
0: बिल्कुल
1: कमाल की लिखावट, मतलब एक से एक राइटर्स भी हुए, लिरिसिस्ट भी हुए, मतलब जिनके अगर बात करें तो करते ही जाएंगे शायद। कोई आपका फेवरेट गाना है इनमें से, जो आपको जिसकी लाइंस बहुत अच्छी लगती है?
0: जी। मैं एक्चुअली आपको बताऊं ना, मुझे ये ही सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने
1: रहे ना
0: आज ये
1: रहे
0: सुन
1: हम,
0: लिया। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये सॉन्ग।
1: वाह क्या बात। हाँ मतलब
0: जी
1: आप बहुत सुंदर गीत है डेफिनेटली। और जैसा आपने कहा कि पुराने गाने, इसीलिए कई बार हम सब पुराने गाने सुनना बहुत पसंद करते हैं, और जब अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो सच में एक से एक
0: जी
1: पुराने गाने याद आते हैं, कई बार तो नए नहीं याद आते हैं उनमें से, लेकिन पुराने ज़रूर याद आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा अलीशा, आप जैसे आप अपने फादर को भी सुनते हैं और वो भी गाते हैं, तो कुछ उनके बारे में भी बताइए कि उनको क्या पसंद है, या वो किस तरह से रियाज करते हैं, और कुछ अपने रियाज के बारे में भी बताइए।
0: पापा ने जब गाना शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो वो जगदीप सिंह जी को, रफी साहब को, किशोर कुमार साहब को, इन सबके सॉन्ग्स गाया करते थे अपनी शुरुआत में। और वैसे ही उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने वो ही सॉन्ग उनके सबसे पहले प्रिपेयर करने स्टार्ट किए। धीरे धीरे फिर 2016 में पापा ने अपनी फर्म बनाई है मुजफ्फरनगर में, के इवेंट्स के नाम से। तो सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग का हमारे थ्रू होता है। तो उसको अभी क्या होता है कि पब्लिक की क्या डिमांड है, उसके साथ साथ भी सिंगर को प्रिपरेशन करना पड़ता है कि अब कभी भी कोई भी फरमाइश आ जाए। तो फिर उसी हिसाब से पापा अभी प्रेजेंटली बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स भी गाते हैं। तो उन्होंने मतलब मोस्टली सारा ही सॉन्ग्स की थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर रखी है। मतलब हर जॉनर का सॉन्ग वो गाते हैं, ये ऐसा बोल सकते हैं उनके लिए। और रियाज भी उन्होंने किया शुरू से, मतलब 4 4 घंटे, 5 5 घंटे वो बस हारमोनियम के साथ बैठे रहते थे, एक ही स्वर की प्रैक्टिस इतना घंटे करते थे। ऐसा मैंने जो बचपन में सुना है, बचपन में देखा है उनको,
1: क्या
0: वो
1: बात।
0: एक ही सुर पे 4 घंटे लगे हुए हैं, 5 घंटे ऐसा उनका रहता था। तो धीरे धीरे साथ में मैंने भी बैठना शुरू किया, फिर उन्होंने मुझे भी सिखाना शुरू किया स्वर पे कैसे ठहरते हैं, स्वर के ठहराव की क्या अहमियत है। स्वर पे जब आप एक ही स्वर पे बहुत देर तक रुकते हैं तो आपकी आवाज में मजबूती आती है, आपकी आवाज लहकती नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंगर्स के लिए, क्योंकि जिनकी आवाज लहकती है वो बहुत ही ज्यादा सुनने में अजीब सा लगता है। टिक टिक के गाना जिसको बोलते हैं नॉर्मली, अगर हम बोले टिक के गाना, ठहराव से गाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है सॉन्ग गाते टाइम। आपकी आवाज, आपको गाना गई है, आप गा गई रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे फिर मैंने साथ में पापा की शुरू किया, उसके बाद सरगम पलटे ये सब धीरे धीरे आगे आते हैं, वो ऐसे करके। और अभी भी हम लोग साथ में बैठते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कब बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस का सिनेरियो रहता है।
1: तो आप और आपके पापा साथ में रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं?
0: हाँ जी,
1: लेकिन 4-5 घंटे, मतलब इतना समय आपने दिया है कला को, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने बात कही कि पता ही नहीं चलता, मेरे ख्याल से आप रम जाते हैं उस कला में, आपको प्यार होता है उस कला से, तभी ऐसा संभव है, वरना पॉसिबल
0: जी
1: नहीं है। और ठहराव की आपने बात की, मतलब एक सुर लगाना वो
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: जी
1: इम्पोर्टेंट है। तो आजकल कई लोग हैं जो गाने देख के गाने सीखते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि सुर का अभ्यास भी करें तो उससे ठहराव आएगा आवाज़ में। आपकी बहुत अच्छी टिप है ये। और अलीशा, और कौन सा गाना है, कोई और है आपके पसंदीदा गानों की लिस्ट में से जो आप हमारे श्रोताओं को आज सुनाएंगे?
0: मैं अभी आपको एक गजल सुनाना चाहूंगी जगजीत सिंह जी की, होठों से छू लो तुम।
1: वाह,
0: आई थिंक वैसे तो ये सबने सुनी है, बहुत कॉमन है बट बहुत प्यारी गजल है और मेरी फेवरेट गजल है।
1: कुछ कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको जितनी बार सुने और मन करता है उतना सुनने का, तो ये उनमें से एक है डेफिनेटली। और ज़रूर हम आपकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे। अगर आप एक घूंट पानी पीना हो तो आप पी लीजिए, क्योंकि आप लगातार बात भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं। तो
0: हाँ,
1: अगर
0: नहीं ठीक है ठीक है, ऐसे ठीक है,
1: ओके, चलिए
0: ओके
1: फिर आपकी आवाज़ में सुनते हैं जगजीत सिंह जी की गाई हुई ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल।
0: ठीक।

0: यू सो मच।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और एक सॉफ्टनेस है आपकी आवाज़ में। सुर और गीत की जो खनक है वो तो है ही, लेकिन और रूहानियत से गाते हैं आप अलीशा। तो बहुत बहुत बहुत ही प्यारा गाया आपने, मतलब हम उसमें एकदम खो गए थे, ऐसा गाया आपने। बहुत सुंदर। और हम सबको पता
0: थैंक
1: चल रहा है कि
0: यू।
1: आप कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने टैलेंटेड हैं। तो बहुत सारी विशेज भी हैं आपके साथ कि आप आगे और खूब अच्छा करें अपने करियर में, लेकिन आपसे कुछ और
0: थैंक
1: बातें
0: यू।
1: भी करना चाहते हैं हम। अलीशा, जैसा आपने ये गाना गाते हैं, आप रियाज़ करते हैं, लेकिन आपका स्कूल भी होता है और उसमें भी, मतलब आप जब हायर स्टडीज़ करते हैं तो बहुत सारी पढ़ाई आपको करने होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है, ट्यूशन्स भी होते हैं, तो फिर आप इतना समय कैसे दे पाते हो फिर म्यूज़िक को?
0: एक्चुअली मेरा स्कूल नॉन अटेंडिंग है। मैं नॉन अटेंडिंग कर रही हूँ, तो स्कूल का टाइम मेरा बच जाता है। स्कूल मुझे जाना होता नहीं। बाकी 4 आवर्स मेरे जाते हैं ट्यूशन में, 4 to 8। तो और उसके बाद फिर उसका होमवर्क भी होता है, फिर अपनी लर्निंग भी होती है, रिविजन भी होता है। तो टाइम निकालना हो तो जाता है वैसे बहुत मुश्किल, लेकिन निकालना ही होता है, क्योंकि अगर बीच में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फिर आपकी वॉइस खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। और ये चीज मैंने पहले फेस भी किया है काफी बार, क्योंकि मुझे स्टडीज से भी बहुत ज्यादा लगाव है, जितना
1: अच्छा।
0: म्यूजिक से है, चाहे थोड़ा स्टडीज से ज्यादा होगा बचपन से ही। तो मैं पहले भी ऐसा कर देती थी कई बार, कि सपोज मेरे एग्जाम है तो 15 days to 20 days एग्जाम में चले जाते हैं, तो उसमें सिर्फ आप स्टडी कर रहे हो, आपका रियाज नहीं हो पाया, तो ऐसा भी हो जाता है। पहले ऐसा हो जाता था काफी बारी, लेकिन उसके बाद अभी ये समझ आया कि फिर वो ना 15 to 20 days में बहुत ही पीछे आ जाती है आपकी वॉइस। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो लाइक जीरो सा हो जाता है कुछ। तो उसे तो टाइम देना ही पड़ता है, फिर चाहे आपको 1 आवर देना है, बट देना ही है। जिस दिन
1: रेगुलर।
0: आपके पास टाइम, हाँ, जिस दिन आपके पास टाइम है तो आप फिर कितना भी टाइम दो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 आवर देना तो इम्पोर्टेंट रहता ही है। ये है ही। बाकी देखो, स्कूल का वर्क तो कभी कंप्लीट होता नहीं है।
1: चलता रहता
0: स्कूल का
1: है।
0: वर्क, ट्यूशन का होमवर्क है, वो तो कभी पूरा नहीं होता, उसको तो एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार तो क्लास में जाके ही थोड़ा सा होमवर्क टाइम बचा के करते हैं, ये भी करना पड़ता है, क्योंकि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कहीं आना है, कहीं जाना है, वो सारी चीजें भी रहती हैं। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा हो जाता है मुश्किल, बट फिर भी कर लेते हैं इस थोड़ा
1: वो कहते हैं ना, जहाँ
0: बड़ी
1: चाह
0: से।
1: है वहाँ राह है, तो आप राह बना लेते हैं क्योंकि आपको म्यूज़िक से इतना प्यार है, उसलिए। अच्छा अलीशा, जैसा
0: जी
1: आपने बताया, बिल्कुल आप समय भी निकालते हैं, आप रियाज़ भी करते हैं, तो एग्ज़ाम्स और पढ़ाई भी आप उतने ही अच्छे से करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उसको आपने नेगलेक्ट कर दिया है, आपको वो भी पसंद है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये भी अच्छी बात आपने बताई। क्योंकि कई बार ना हम ऐसा भी सोचते हैं कि कोई कला है, विशेषता है, तो पढ़ाई ना करें या छोड़ दें, कई बार इस तरह के ख्याल भी आते हैं बच्चों के मन में, और जो ग्रेजुएशन करते हैं या फिर स्कूलिंग करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, जब ये है तो इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन देखिए आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तो यानी संभव है वो करना भी, पॉसिबल है दोनों को ही उतनी शिद्दत से करना, ये
0: जी
1: है ना, इससे समझ में आता है। अच्छा अलीशा, आप जैसे म्यूज़िक को, मतलब आपको बहुत प्यार है म्यूज़िक से, आपको लगता है, मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी म्यूज़िक हमारा मूड चेंज करने की भी ताकत रखता है, या मोटिवेट करता है, या फिर काम डाउन, जैसे आजकल बहुत बच्चों में एंग्जाइटी होती है ना, आजकल हम स्कूल में भी देख रहे हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं, तो आपको लगता है म्यूज़िक इन चीज़ों में कुछ रोल प्ले कर सकता है?
0: बिल्कुल करता ही है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनका मूड ऑफ हुआ तो उनको एक चीज ये होती है कि हम सैड सॉन्ग सुनेंगे। हमारा मूड ऑफ है, हम सैड सॉन्ग सुनेंगे, है ना, ऐसा होता है, उनका उससे वाइब मैच हो जाता है। लेकिन वो उसको क्या करता है ना, वो उसको और नर्वस कर देता है। अभी मूड ऑफ है, फिर उसके बाद वो रोने लग जाएंगे वो सॉन्ग सुन के, कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, कुछ ऐसा वो सॉन्ग में ढूंढ लेते हैं, ये मेरे लिए बना है। बहुत बारी ऐसा होता है, मैंने
1: बिल्कुल।
0: ये चीज नोटिस की है। लेकिन अगर आप नर्वस हो तो आप कोई ऐसा मोटिवेशन वाला सॉन्ग भी सुन सकते हैं, मस्ती वाला सॉन्ग भी सुन सकते हैं, थोड़ा
1: ओके
0: हंसी खुशी का सॉन्ग सुन सकते हैं, मजाक का, और काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं सॉन्ग में भी, थोड़ी मजाक मस्ती वो सब होता है, आप वो सुने तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है, म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारा मूड कैसा हो जाता है म्यूजिक को सुन के, ऐसा होता है जनरली हम मूवीज में भी देखते हैं, तो अगर आप
1: तो जैसा कि बता रहे थे कि म्यूज़िक में भी अगर हम देखते हैं, लेकिन मूड की बात कर रहे हैं अलीशा, और अलीशा से हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो म्यूज़िक है कभी कभी वो हमें हमारी सिचुएशन को चेंज करने की भी ताकत रखता है, और कभी कभी तो भाई वो ऐसा बन जाता है ज़रूरी कि बस आप पूछे मत, हमें वो गाने सुनने होते हैं और वो हमें काम डाउन कर देते हैं। लेकिन कभी गाना भी अच्छा है, कभी सुनना भी अच्छा है, दोनों ही प्रकार की बातें हैं जो हमारे जीवन में असर डालती हैं।

तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर और लौट कर आएंगे और अलीशा से बातें करेंगे और एक बहुत सुंदर सा गाना भी सुनेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन के साथ या कार्यक्रम मधुबन अनप्लग के साथ, आप गाने के शौकीन हैं या आपके कोई दोस्त हैं जो गाते हैं, तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए आपका नाम, आपके गाँव का नाम, रेडियो मधुबन के नंबर जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: 98 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, और मधुबन अनप्लग्ड पर इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और हमारे साथ जुड़ी हैं अलीशा, और बहुत सुंदर सा उन्होंने गाना भी सुनाया था। अब मैं उनसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। अलीशा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप बहुत ही सुंदर गा रहे हैं, और मुझे लगता है ये चीज़ तो आपको हर कोई बोलता रहता होगा, आपके फ्रेंड्स या घर पे भी सब लोग।
1: हाँ, बोलते तो हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सी वॉइस है, हमें बहुत अच्छी लगती है, तो ये तो मेरे सुनने के लिए मिलता ही रहता है
0: मिलता रहता है। अच्छा, कोई एक ऐसी
1: जी।
0: बात है जो किसी ने बोली हो और आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगी हो आपके लिए, कोई कोई ऐसी बात कभी आपको महसूस हुई?
1: हाँ, पापा बोलते हैं कि जब भी आपको कोई बोले कि आप बहुत अच्छा गा रहे हो या तारीफ करे, तो ठीक है, उसने आपकी तारीफ की, आप उसको थैंक यू बोलो, बट आप ये मत सोचो कि हम बहुत अच्छा गाने लगे हैं। आप हमेशा ये सोचो कि हमें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा रिफाइनिंग करनी है, क्योंकि म्यूजिक की कोई लिमिट्स तो है नहीं। आप कितना भी रिफाइन कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग को और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ज्यादा उसमें क्लैरिफिकेशन ला सकते हैं। पापा का ये बोलना है कि अगर किसी ने तारीफ की है तो उसको बस थैंक यू बोलो, लेकिन अपने प्रिपरेशन पे लगे रहो रेगुलर बेसिस पे।
0: मेहनत करते रहो, और जैसा आपने कहा कि कला की कोई सीमा नहीं है, तो मतलब जितना सीखते जाएं सीखते जाएं सीखते जाएं, उम्र बीत जाएगी लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा सीखना कभी।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, ये एक विशेषता भी है आर्टिस्ट की, हम देखते हैं हमारी संस्कृति भी है, बहुत विनम्र चित्त होते हैं बहुत आर्टिस्ट जो होते हैं, वो माना भी जाता है, और आपने वो आपकी बात से कह भी दिया, आपके पिताजी ने भी वो बात कह दी, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस रीति को, संस्कृति को, इस ह्यूमिलिटी को आगे बढ़ाते की कोशिश वो कर रहे हैं। अच्छा अलीशा, जाते जाते आपकी उम्र के जो लोग संगीत पसंद करते हैं, क्या उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे?
1: ओके मेरी जनरेशन के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने आजकल ये एक चीज देखी है, जैसे कि अभी क्या करते हैं, थोड़ा नर्वस है तो वो थोड़ा ना नर्वस वाला ही सॉन्ग सुनते हैं। ये भी है, मतलब लाइक कोई नर्वस है, अब उसको सॉन्ग सुनना है तो वो नर्वस ही सॉन्ग सुनेगा। वो उसके बजाय कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस डूइंग के आप थोड़ा अच्छा प्यारा सा कोई मेडिटेशन का सॉन्ग सुने, और अच्छा है
0: जो आपको रिलैक्स
1: मेडिटेशन
0: करे।
1: करें, नर्वस है, क्योंकि म्यूजिक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके माइंड पे। मैं अपने फ्रेंड्स को भी देखती हूँ ना, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और क्योंकि म्यूजिक एक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, और आज की जनरेशन का जो म्यूजिक अभी जो बन रहा है उसमें उतना आप कह सकते हैं उतनी फील नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, उतना फील नहीं है। और काफी मैंने देखा है अपने साथ के लोगों को कि बहुत पुराना सॉन्ग होता है उसको रीमेक करके भी लेके आते हैं, तो बोलते हैं देखो तुमने ये सॉन्ग सुना क्या, ये अभी अभी नया सॉन्ग आया है। तो मेरे को बड़ा वो लगता है, अरे आपने पहले नहीं सुना कि पहले कितने अच्छे तरीके से गाया गया था उसको, कितने अच्छे तरीके से उसको गाया उन्होंने, लिखा उन्होंने। तो आज की जनरेशन को मैं ये बोलूंगी, क्योंकि आज की जनरेशन के बच्चे पुराने गाने सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपको वो गजल नहीं सुनना चाहते हैं, क्लासिकल तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर थोड़ा थोड़ा भी चेंज करें तो बहुत अच्छा रहेगा आज के बच्चों के लिए, उन्हें बहुत अच्छा भी फील होगा, क्योंकि ये इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फील है। इन गजल आप सुनो, आप क्लासिकल सुनो, एक अलग ही फील आपको मिलेगी जो आज के सॉन्ग्स में तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो मैं ये बोलना चाहूंगी अपनी जनरेशन के लिए।
0: कि आप पुराने गाने सुनिए, क्लासिकल सुनिए, मेडिटेशन वाले गाने सुनिए, आप ट्राई तो करके
1: बिल्कुल
0: देखिए, तो
1: सुनिए,
0: आपको महसूस होगा कि आपको अच्छा लग रहा है, बट ट्राई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। अच्छा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अलीशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला, आपने हमारे साथ गाने शेयर किए, और बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, आपकी सोच को जान के। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई गाना सुनाना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल। मेरा अभी प्रेजेंट टाइम का एक फेवरेट सॉन्ग है, थोड़ा न्यू जनरेशन के लिए भी हो जाएगा,
0: बिल्कुल
1: जान निसार एक सॉन्ग आया था,
0: ओके
1: तो केदारनाथ मूवी से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये सुनाना चाहूंगी।
0: तो चलिए दोस्तों, अलीशा जी की आवाज़ में सुनते हैं ये गाना और आपसे लेते हैं इजाज़त। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अलीशा, आपका गाना हो जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: भी 1 मिनट इसको कट कर सकते हैं क्या यहाँ पे?
1: जी आप इस वक्त लाइव प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं, 2 पंक्तियाँ भी, फिर हम भले प्रोग्राम को क्लोज करेंगे।
0: ओके ओके ओके ओके 1 मिनट।

0: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मेरा हम सफर दोस्तों अपना समाज कार्यक्रम रामायण है रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं ने केसी जिनगर रा घना घना राम राम गणी खामा ने जय माता दी। आप सुन रहे हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधुओं अन कार्यक्रम रे मायने आपो समाज रे माए का रीति रिवाज वे है और अन्य अलावा समाज में फैलोड़ी कुरीतियों वे है उन्होंने कम करवा वास्ते समाज रे बंधुओं की बात करो हो और रेडियो मधुबन रो इस प्रयास है कि समाज में फैलोड़ी कुरीतियों हैं तो समाज रे बंधुओं ती मलेन उन्हों ती जानकारी लो और उन्हें कम करवा वास्ते लोगों ने जागरूक करवा वास्ते अन्य कार्यक्रम में बात करो आपो। तो श्रोता बंधुओं अन्य अलावा हर समाज रा रीति रिवाज आज जो नवी जनरेशन है उन्होंने अपने समाज रा रीति रिवाज पूछिए वो तो उन्हीं बताया के तो अन्य बारे में रेडियो मधुबन रो प्रयास है कि भाई के अन्य में समाज रा रीति रिवाज भी श्रोता बंधुओं ने बतावर की कोशिश करो हो। तो हर बार एक नवा समाज रे बारे में वरना रीति रिवाज पहनावो संस्कृति उन्हें बारे में बात करो हो। तो आज आप श्री माली समाज वन बारे में बात करे हो कि श्री माली समाज रे मै का रीति रिवाज है तो अन्ना बारे में जानवा ते पहला अपने श्रीमाली समाज रे एक बंधु है मनोज कुमार शर्मा जी तो वनोर आपो परिचय लियो और अन्ने बाद में अन्ने बारे में जानकारी लियो। श्रोता बंधुओं तो सबसे पहला अपने मेहमान मनोज कुमार शर्मा जी रो रेडियो मधुबन में स्वागत करो हो। तो मनोज कुमार शर्मा जी आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
1: राम राम।
0: तो अपने मनोज शर्मा जी राम राम किया है और रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं रो भी अन कार्यक्रम में स्वागत है। तो श्रोता बंधुओं हमें अपने शर्मा जी ने पूछो हो कि आप वर्तमान में कटे रहो हो और का काम करो।
1: जी मारो मूल निवास तो उम्मीदाबाद है जालोर जिला रे मायने
0: जी
1: और अबार में आबू रोड में मॉडर्न इंसुलेटर में कार्यरत हूँ
0: जी।
1: विगत 3 साल मोटेज हूँ।
0: ठीक है।
1: और मैं अडे जियोलॉजिस्ट पोस्ट बाद काम करूँ हूँ।
0: अच्छा।
1: डेजिनेशन सीनियर मैनेजर R&D रो है
0: जी। तो जियोलॉजिस्ट पोस्ट में मतलब क्या काम वे मतलब अन्य बारे में
1: जो इंसुलेटर बनवा में जितना भी रॉ मटेरियल आवे है जितना भी जो कच्चो पदार्थ आवे है
0: अच्छा
1: कम से कम 13-14 प्रकार रा कच्चा पदार्थ आवे।
0: अच्छा।
1: उन्होंने सबरी क्वालिटी रो चेकिंग करवा वास्ते लेबोरेटरी में हैंग सैंपल आवे
0: जी।
1: तो वनारे और भी कोई नया डेवलपमेंट वगैरह करना हुए
0: जी।
1: तो वनने वास्ते जियोलॉजिस्ट रो काम वे के जटाऊ माल निकले है मटेरियल निकले है वोटे जाए उन्होंने क्वालिटी में कोई खराब हुए तो उन्होंने समझावनो व्यापारियों ने समझावनो की क्वालिटी किससे ठीक करनी है और अटे भी आवे तो उन्होंने बाद सब प्रॉपर्टी चेक करनी है वो मेन काम जो जियोलॉजिस्ट वे है।
0: तो श्रोता बंधु बताया है कि जियोलॉजिस्ट जो पोस्ट वे है आ मतलब हर कंपनी में नहीं रहती है जो माइनिंग ती संबंधित वे जो माइनिंग ती संबंधित जो भी मटेरियल आवे कंपनियों में वनोर वास्ते एक पोस्ट क्रिएट करे है हर कंपनी में तो कंपनी भी अन्य एक पोस्ट है और मनोज शर्मा जी अन्य सेवा दे रिया है। तो श्रोता बंधुओं हमें आप अपने मनोज शर्मा जी थी पूछो हो के श्रीमाली ब्राह्मण रे बारे में आप बताओ के श्रीमाली ब्राह्मण समाज रो छोटो सो संक्षिप्त में बताओ के का इतिहास है।
1: भारत वर्ष में जितना भी श्रीमाली भारत वर्ष का ऑल ओवर दुनिया रे में जितना भी श्रीमाली ब्राह्मण है
0: जी।
1: वे श्रीमाल नगर जो वर्तमान में भिन्माल नगर है।
0: अच्छा।
1: वटाओ सब निकलियोड़ा है उठियोड़ा है।
0: अच्छा।
1: और वटाओ जाए वे अलग अलग जगह माते वसी गया है
0: जी।
1: टोटल जो है 14 गोत्र रा श्रीमाली समाज है।
0: ठीक है।
1: वह अलग अलग जगह माते विस्थापित है।
0: तो भिन्माल ती उठियोड़ा मतलब या श्रीमाल नगर अलग तो
1: नहीं नहीं जो वर्तमान में भिन्माल नगर है वो हाँ। पहला में श्रीमाल नगर दो।
0: अच्छा।
1: बाद में वो श्रीमाल नगर कोई भूकंप वगैरह के कारण नष्ट हो गया दो और अब मैं आज की तारीख में वो वर्तमान में वो भिन्माल रे नामो प्रसिद्ध है।
0: कितना परिवार था अरे
1: लगभग 500 परिवार था।
0: अच्छा।
1: और आज भी लगभग 500 परिवार रही ब्रह्मपुरी और अलग अलग है बड़े ब्रह्मपुरी भी है व्यास और व्यास भी है।
0: अच्छा।
1: दोरा डाल भी है अलग अलग जगह है हैंग वसीयोड़ा है।
0: ठीक है अच्छी बात है। श्रोता बंधुओं अपन ने बताया है मनोज शर्मा जी के श्रीमाली ब्राह्मण जो श्रीमाल नगर थी और उत्पत्ति हुई थी वही सोनौर गोम तो श्रीमाल नगर श्रीमाली ब्राह्मण रहता और प्राकृतिक आपदा के कारण श्रीमाल नगर नष्ट हुआ तो वनोर परिवार वटे जो बचिया था वे श्रीमाल नगर रा निवासी श्रीमाली ब्राह्मण कहवाया और वे आज श्रीमाल नगर वंट को आज बिनमाल वसुड़ो तो बटे ज्यादातर श्रीमाली ब्राह्मण रहे हैं और अन्य बारे में और आपको बातों कर रही हूँ पर एक छोटो सो ब्रेक लो हूँ ब्रेक के बाद में फिर आपको मनोज शर्मा जी की बात करी होगी श्रीमाली ब्राह्मण समाज में का रीति रिवाज में आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: ब्रेक के बाद में रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोताओं रो स्वागत है अने अपने मेहमान मनोज कुमार शर्मा जी रो भी अपनो समाज कार्यक्रम में स्वागत है। तो मनोज शर्मा जी, आप श्रीमाली ब्राह्मण रे बारे में परिचय दीदो है समाज रे बारे में, तो हमें आपने पूछू हूँ कि आप रे समाज रे में रीति रिवाज का वे है, तो जो कोई बच्चा रे जन्म वे तो का रीति रिवाज मनाओ आप रे?
3: बच्चा रे जन्म रे संबंध में तो सब लगभग एक ही है
2: जी,
3: कि जन्म वे वन्ने बीस दाड़े छठे दिन तो विधाता लेख लिखे।
2: अच्छा।
3: और बाद में बीसवे दिन सूरज पूजे।
2: अच्छा। तो महीनों गिने 20 दिन गिने,
3: कोई 20 दिन करे, कोई सवा महीनों करे। हमें आजकल ऑपरेशन हुआ है तो कोई तीन दो दो तीन दिन महीना में लगा देवे।
2: अच्छा।
3: पहले मैन वो तो भाई सूरज पूजा रहे, बाद में लेडीज है वो पास ही कौम माते आप रहे सुचारू रूपों करवा लाग गए। अच्छा। लेकिन आजकल जो है नवी युवतियां है उन्होंने में शारीरिक क्षमता थोड़ी कम वे।
2: अच्छा।
3: तो बच्चों भी और बाद में थोड़ी सी वे दुर्बल वे जाए तो भाई उन्होंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले वे।
2: और का रिवाज है मतलब बच्चा रो जन्म हुआ जी कर आप कोई मन कहन के हर समाज में पहली डिलीवरी मतलब पियर में वे
3: श्रीमाली समाज में भी पहली डिलीवरी आजकल हमें आजकल तो बच्चा ही कोई एक रहन कोई दो है, दो ज्यादा कोई रखे को नहीं, बाकी पहला दो डिलीवरी रो प्रावधान हो गए, दो डिलीवरी तो पियर में कहा नहीं जाए। हमें आजकल जो कोई ससुराल वाला के नहीं मोर तो अटिज राखो तो वह अपने अटिज राखे खर्चो ले ले उन्नो वो है
2: खर्चो मांग ले मतलब जो भी भेजो
3: दे पियर वाला जी।
2: ठीक है। तो और का रिवाज वे जलवा पूजन वे?
3: जलवा पूजन वही जो है अपने कुओ पूजवा जावे।
2: अच्छा,
3: वो ने जलवा
2: में कोई खर्चा हुआ है नॉर्मल इस वे
3: में कोई खर्चो वर्चो वे को नहीं, बस आपने परिवार रहा लोग इकट्ठा हुए।
2: अच्छा।
3: और वरने बिंदनी ने सजाए दे जाए वरने ले जाए और वरने हाथे छोटो सी मटकी ले जाए वह कुआ भरने ले ना आवे। हमें आजकल तो कुआ बावड़ी तो रिया नहीं है, जो कटी हैंडपंप आते या कटी दूजारे घरों वो पानी भरने एक फॉर्मेलिटी कर ले।
2: सही बात है। तो श्रोता बंधुओं अनोरे समाज में बच्चा रो जन्म वे ने बारे में पूछियो, तो शर्मा जी मैं आपने पूछू कि आप समाज में जायो अनो वे कि नहीं वे?
3: ओ सिस्टम तो मोने कोई फॉलोअप करे नहीं है।
2: अच्छा, कोई नहीं करता?
3: हाँ, कोई जाया अनारो नहीं है।
2: घना समाज में होलो के जाया अनो दिए कि पहली डिलीवरी ससुराल में बने पियर में वे तो पछे वन बहु ने लेवा जाए बच्चा ने जरा अनो दिए वन माँ बाप वन जाए अनो के।
3: अच्छा, वो तो एक सिस्टम बनियोड़ा है जो और समाज में है।
2: अच्छा।
3: जो कोई उनमें कोई विशेष बात है नहीं है तो जाए। अच्छा। तो वह थोड़ा बहुत स्वागत कर दे कुछ आते उनने बच्चा रहते सामान भेज दे वे
2: जी, जी।
3: जो उन छोटो वह उनने हिसाब पियर वाला वो तो सब कर ही जाए थोड़ा बहुत। तो
2: ठीक। तो श्रोता बंधु हमें अपने शर्मा जी ने पूछो हाँ कि आप समाज में करना रिश्ता करो तो केरा रिवाज में
3: रिश्ता करवा मस्त हुआ है कि भाई समाज रा जो परिचित लोग है उनमें आपस में देखे भाई लड़की रे वास्ते कोई लड़को सुयोग्य है कि नहीं है, तो आप रे परिचित रह थ्रू या रिश्तेदार रह थ्रू इंक्वायरी करें पूरी
2: जी, जी, हाँ।
3: और बचे बटे पूछा
2: जी।
3: और आपस में आ रहे देख ले परिवार वाला पहले मिल ले वे बचे। आजकल नयो सिस्टम में भी लड़का लड़की भी आपस में देख लो, तो लड़का लड़की देख ले पसंद कर ले तो उन्हारे माँ बाप आपस में बैठने उन्हारो सगाई तय कर ले
2: जी।
3: और आजकल पहले तो मतलब कोई दस्तूर पक्को ही वे तो आजकल कच्चा दस्तूरी भी सिस्टम वेगी।
2: अच्छा।
3: तो कच्चो दस्तूर कर ले,
2: कच्चो दस्तूर पहला करे, पक्को दस्तूर बाद में करे।
3: हाँ जी।
2: हाँ।
3: पहली कच्चो दस्तूर कर ले।
2: हाँ।
3: और वरने बाद में पक्को दस्तूर कर ले।
2: अच्छा।
3: हमारे मानसी समाज में हाल तक कोई भी दहेज रीक वगैरह वो मदद कोट नहीं।
2: अच्छा।
3: है।

0: ठीक है, मो पूछू के सगाई जो करे घनी तो कोने वे हगाई करवा दे पहला वे लड़का वाला ने लड़की वाला टीको दिए मतलब बच्चा ने लड़को रोका वास्ते भाई तो टीका वास्ते मतलब 11,000 51,000 10,000 5,000 ये दिया आपरे समाज में रिवाज है
1: नहीं वो टीका रस कोई रिवाज नहीं है।
0: हाँ।
1: ज्यादा ज्यादा अमर जन्म कुंडली मिलान कर ले
0: जी
1: और जन्म कुंडली में आप ग्रह अपने जो गुण मिल जाए गुण और मिलान करे
0: जी
1: भाई कितना गुण लड़की रहा कितना लड़का मिले
0: जी
1: तो मिल जाए तो वो संबंध कर ले वे।
0: बहुत अच्छा रिवाज है शर्मा जी बताया है श्री मालिक ब्राह्मण में कि अनोर कोई एरो प्यारो लेन देन नहीं है सगाई करे तो ही गणित होने वे है अनोर समाज में नहीं है मतलब बहुत अच्छा रिवाज है अनोन देखे बीजा समाज ने होना चाहिए भाई के खाली बच्चा बच्ची सगाई जो रिवाज है वो करना चाहिए जी। तो हमें और मैं पूछू शर्मा जी के चलो सगाई हुई शादी का रिवाज हुई
1: शादी रा रिवाज हो की शादी रा पूरी सब समाजों में तो 7 फेरा जो है और मोरे समाज रे मैंने 8 फेरा हुआ है तो 4 फेरा जो है वे अग्निरे संबंध समक्ष हुए और वनडे बाद में थोड़ो सो बीच में विराम दे और 3-4 घंटा विराम बाद में 4 फेरा दूसरा वे उनने चबरकरा फेरा के
0: क्या फेरा के
1: चबरकरा फेरा के
0: तो वे पुटली बार जो 4 फेरा हुए चबरकरा फेरा हुए चबरकरो मतलब क्या है
1: चबरक में का एक परात लावे बड़ी और उनमें चावल जो भात है वे बनाए उड़ा लावे माए घी और शक्कर वे और वह चबरक हो के भाई वो वर वधु ने कवा देवे
0: जी।
1: तो वधु वर ने कवा देवे और वर जो है वधु ने कवा देवे उनने बाद रे माए जो वर है वधु ने गोदी में उठावे ने 4 फेरा ले
0: गोदी में उठावे मतलब वधु ने गोदी में उठाया अपनी
1: बिल्कुल
0: तो आपने शादी में आप ही गोदी में उठाई दीगा
1: उठाए दे
0: अच्छा कोई दूल्हो कमजोर हुए तो की कन उपाड़े थे
1: वो कमजोर हुआ तो बच्चे वो भाई नहीं उठावे बाकी वो सिस्टम तो हो ही जाए कि आप उनने गोदी में उठा और उन चबरकरी पर जो है उनने ओली दौड़ी जो है 4 फेरा लो
0: चबरक फेरा मतलब वो जो है कि 4 फेरा बाद में विराम वे विराम रे बाद में जो भी आपस में कवा कवी दिए बनने बाद में जो फेरा लिए गोदी में उठान फेरा लिए वने चबरकरा फेरा के ठीक है और जो रिवाज है बीजी टुकड़ा मुँह कटे नहीं हो बलियो ओनली श्री माली ब्राह्मण समाज में आज हुनिया हूँ बहुत अच्छा रिवाज है खराब नहीं है घनी टुकड़े हाथ फिरावे आपरे समाज में 8 फिरावे मतलब एक नवी चीज आई ठीक है बहुत बढ़िया बात है श्रोता बंधु आपने बताया है शर्मा जी के अनोर समाज में 8 फिरावे अपने बीजा समाज में हाथ फिरावे अने अलावे 4 फेरा वो पुटे उन्होंने थोड़ो विराम लिए आराम लिए वरना बाद में फिर एक 4 फेरा करे जिनमें दूल्हो दुल्हन ने गोदी में उठाए फेरा खाए 4 तो एक अलग तरह का रिवाज हुबलवा माया है तो श्रोताओं ने जानकारी मिली अन्नी ठीक है और आपको अन्य बारे में जानकारी ले रही अपने मेहमान थी तो शर्मा जी मैं आपने पूछूं कि आपरे समाज में बालिका शिक्षा का कतरो महत्व है
1: बालिका शिक्षा का तो बहुत महत्व है आज जो है सब लड़कियां काफी पढ़ी लिखी है
0: जी।
1: और मोहनत समाज में कभी भी शिक्षा बालिका शिक्षा माते रोक नहीं लगी है बालिका शिक्षा माते कोई रोक नहीं है शुरू जो है लड़कियां पढ़े और उन्होंने कोई यूं नहीं कि भाई यूं पहले दूसरे आज भी मुस्लिम समाज में रोक है या राजपूत समाज में कुछ रोक है जो श्रीमारी समाज है कोई रोक नहीं लगाए रखी है
0: अच्छा।
1: बालिका स्वतंत्र है बनवा वास्ते
0: जी।
1: और पढ़ी भी रही है
0: जी।
1: इवन हमारी भतीजी है वह खुद जो है PhD कर रही है
0: अच्छा,
1: शादी
0: अच्छा।
1: के बाद भी पढ़ाई कर रही है
0: जी। तो समाज में ज्यादातर बच्चियों ने बढ़ा रही है आपरे तो शिक्षा भी दे रही है तो आपरे जो ब्राह्मण रो कौम है पूजा पाठ रो है शास्त्र है तो संस्कृत शिक्षा भी दिए समाज में
1: बिल्कुल संस्कृत शिक्षा वास्ते भी जो है कई रिटायर्ड बंधु है हमारे समाज रा वे गर्मी री छुट्टियां में कैंप आयोजन करे
0: जी।
1: और बटे बच्चों ने हमारे समाज रा बच्चों ने बुलावे
0: अच्छा।
1: और महीना भर वास्ते जो कई लोग है उन्होंने खर्चो भी उठावे
0: जी।
1: और उन्होंने शिक्षा भी दे
0: जी। तो मतलब वेदों भी ज्ञान है
1: बिल्कुल वेदरो ज्ञान भी देवे सुबह उठने जो स्नान वगैरह करने बाद में संध्या वे वो संध्या करनी उन्होंने बाद में भगवान की पूजा करनी है त्रिकाल संध्या रो प्रावधान है श्रीमारी
0: त्रिकाल संध्या का वे
1: जो 3 वेला संध्या करे प्रातःकाल 4 बजे
0: अच्छा।
1: दोपहर रो और शाम रो जो हमें आजकल कोई करे नहीं बहुत कम पंडित लोग ही करे है बाकी पहले लोग काफी पंडित त्रिकाल 3 टाइम संध्या करता हनुमान से बनने के त्रिकाल यानी 3 समय 3 समय माते संध्या
0: त्रिकाल संध्या
1: करे उन संध्या में कही कि प्राणायाम भी जाए
0: जी।
1: जो आपने योग करवा रही जो जरूरत है
0: जी।
1: जो आजकल हमें बाबा रामदेव जी जो टीवी माते बताया कि योग करो प्राणायाम करो
0: तो
1: वो संध्या में ऑटोमेटिक भेजा दो आधा आधा घंटा संध्या करता
0: हाँ।
1: तो तीन तीन बार चार चार बार प्राणायाम रहता तो शरीर निरोग रहते ऐसा कहे के संध्या हाथे जुड़ी ओढ़ा है धर्म रे हाथे या चीज जुड़ी ओढ़ी थी हमें जो है अलग अलग संत लोग बनने दूसरा हिसाब उन्हें बखान करे
0: ठीक है। श्रोता बंधुओं अनो बताया है कि अनोरे समाज में संस्कृत भी शिक्षा बच्चों ने दे है समाज रा बंधु वे रिटायरमेंट वे होड़ा तो वे अपने समाज में कैंप लगाएं अन्य विद्या भी दे के ब्राह्मण समाज में अन्य महत्ता ज्यादा है अन वास्ते उन्होंने सिखावनी जरूरी है सिखावे है बहुत अच्छी बात है। और बताइए कि एक दिन में त्रिकाल संध्या करें मतलब तीन बार संध्या करें मतलब तीन बार पूजा पाठ जो कन है योग जिकन योगी जे भगवान नाम ले तीन बार त्रिकाल संध्या के ठीक है। तो श्रोता बंधुओं हमें भरे आपो अपने शर्मा जी की बात करें पर एक छोटो सो ब्रेक लेना चाहो ब्रेक के बाद में फिर आपो और समाज के बारे में बात कर रही हूँ पर वंती पहला मारी अपील है कि अन कार्यक्रम रे मायने जो भी समाज बंधु होबले रिया है तो वन समाज बंधुओं ते अपील है कि अगर आप रे भी समाज रहा कोई रीति रिवाज आप रेडियो ऊपर प्रसारित करवा रही इच्छा रखो हो तो रेडियो नंबर माते अपनो समाज लिखें 94-14-15-14-15 नंबर माते मैसेज कर जो मोरी कोशिश रही ला कि आपरा समाज रीति रिवाज आपते रिकॉर्डिंग लेन इंटरव्यू लेन जरूर प्रसारित करवा रही कोशिश कर रही हूँ। आप सुन रहा हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हु वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना।
2: देख रहे बाद में अपना समाज कार्यक्रम रामायण है, अपने मेहमान मनोज कुमार शर्मा जी रो स्वागत है, अने रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोताओं रो भी स्वागत है। तो श्रोता बंधुओं, हमें श्रीमाली समाज रामायण और का रीति रिवाज है वन बारे में अपने शर्मा जी थी पूछो हूँ। तो मनोज शर्मा जी, मैं आपने पूछो हूँ कि आपने समाज में दहेज प्रथा रो कतरो महत्व है अने बारे में जानकारी दो।
3: हमारे समाज में कोई दहेज रो कोई लेन देन नहीं है
1: जी।
3: कुछ लोग जो है वे जो लोभी है
1: जी,
3: वे लोकन टाइप रो डिमांड करे, बाकी कोई आज लिखित में या कोई लिस्ट बनती नहीं है
1: जी।
3: वो आपरी मर्जी माते है, बच्ची ने आपरी बेटी, आपरी बेटी ने आप खुश रखो, आपरे बेटी ने संसाधन दो, वे आपरे माते है
1: जी, जी।
3: और माते कोई वो नहीं है कि भाई कितो देनो है और कितो लेनो है। कुछ समाजों में तो कोई मतलब फिक्सिंग वे बैठ नहीं तय करे
1: जी।
3: हमारे समाज में ऐसा कोई चीज नहीं है।
2: ठीक है, तो आपरे समाज रामायण देश प्रथा कोई महत्व नहीं है, और देश प्रथा भी एक तरह की कुरूति है समाज रामायण, और ऐसी कुरूति आपरे समाज में नहीं है तो बहुत तारीफ लायक है। और मु तो हर समाज रा बंधु ने कहूँ हूँ जो भी होबलड़िया है कि भाई दहेज ने अपने समाज में अपने स्थान नहीं देना बिल्कुल, कि दहेज प्रथा एक कुरूति है। और अन्य कारण आज हजारों बच्चियों हैं, हजारों जो आज हर आधा घंटा मान्य शिकार वे रही है, तो अपन अन कुरूति ने नहीं अपनावनी है। श्रोता बंधुओं, हमें अपने और शर्मा जी थी पूछो हूँ कि आपरे समाज में कोई बंधु की मृत्यु हो जाए तो क्या रिवाज हुए।
3: श्रीमानी समाज अपने आप ने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण समझे, इन वास्ते हमारा जो मृत्यु संबंधित जो भी संस्कार है वे अलग तरह रहा है
1: जी।
3: पहली बात तो जो मृत्यु से या माते है व्यक्ति उन्हें प्राण निकलवा पहली पहली जमीन माते लिटा देवे कंबल बिछाने।
2: तो प्राण निकलवाते पहले पहले तो अपन की कंठावड़े के प्राण हमें जा रही है, तो पहला या तो थोड़ा टाइम तो भी
3: वो एक अंदाज वे जाए की अभी सांसा उकड़ रही है तो वो व्यक्ति हो तो वे वो खुद ही बोल दे के भाई मन नीचे ले लो।
1: अच्छा,
3: नीचे ले लो मतलब के वरने आभास हो जाए की अभी हमारा प्राण निकलवा वाला है, या आसपास में वरने नब्ज भी कमजोर व्यवहार लग जाए तो वरने तुरंत जो है जमीन माते लिटा देवे।
2: और जमीन पूरा ले तो कोई लिपेन ले या खाली छोटा नो कर लिए
3: नहीं, उन्हें कम्बल बिछा देवे, उन्हीं उन्हीं कम्बल बिछा वरने जमीन माते लिटा देवे। और तुरंत वरना जितना भी वस्त्र है वे सब वस्त्र निकाल देवे, क्योंकि वस्त्र में प्राण नहीं निकलना चीज है।
1: अच्छा,
3: नहीं तो वर्णो एक अलग थी प्रावधान वे।
1: अच्छा, मतलब कोई वस्त्र रखे नहीं,
3: कोई वस्त्र नहीं रखे, और उन्ने माते पाचे ऊनी कंबल या ऊनी ऊपर उड़ा दे, साल उड़ा दे।
1: अलावा
3: उन्ने बाद में जो भी ब्राह्मण जो उनना रिश्तेदार है बलि बेटा वो वे सब स्नान कर और पीतांबरी पैर ने पछे जीवन डेड बॉडी ने स्पर्श करे।
2: पीतांबरी मतलब पीला कपड़ा पहनवा,
3: पीतांबर जो रेशमी वस्त्र वे पीतांबर वे लाल कलर रे श्वेत कलर रे अलग अलग कलर वे रेशमी उनमें सूती धागो नहीं वह तो है पीतांबर के पीतांबर यानी पीला कपड़ा, लेकिन पीतांबर वो माने जो है पीतांबरी वो है जो पूजा पाठ में जो लोग अंबाजी मंदिर में भी जावे जो पहरे ने वो अधो वस्त्र पहने ऊपर में कोई उगाड़ा रहे और वो स्नान करने वो पीतांबरी पहनने पछे वरना मृत देह रो पाए जावे ने वरने पछे सब ब्राह्मण मिलने वरने शरीर की शुद्धि करे उन्हें स्नान करावे चंद्रो लेप करे अंडे पे शुद्धि करे और वह शुद्धि किया बाद में वे जो स्नान करने पीतांबरी पहरी उड़े वो ही वरनी डेड बॉडी ने टच करे बाकी कोई दूर दूर ही रहे।
2: बच्चा परिवार में वे तो सब जना कपड़ा पहन पच्चीस
3: बिल्कुल बिल्कुल कंधो भी जो दे वे पीतांबरी पहन स्नान की जरा व्यक्ति जो ने कंधो दे सके। बाकी दूसरी समाज रहा आते आवे तो वे बलि लारे लारे सब यात्रा लारे आवे वे कंधो नहीं दे सके
2: और सिर्फ समाज रहा जो बंधु
3: समाज रहा बंधु परिवार वाला ही जीवन ने कंधो दे।
2: अच्छा
3: भाई कंधो दे वारो लाग तो बेटा रो वे जैसे बाप मरे तो बेटा रो माँ मरे तो बेटा रो तो जो बेटा है वगैरह सब स्नान कर और पीतांबर पहन बच्चे बनने कंधो दे
2: पीतांबर वन टाइम अवेलेबल नहीं हुए तो लाना पड़े बाजार
3: नहीं हर ब्राह्मण घर में रही जाए श्री माली ब्राह्मण में हर एक घर में चार पांच पीतांबरी तो रही जाए और जो भी आवे तो वो आप हिसाब आप पीतांबर लेने आवे कि भाई हमारे कंधो देनो सब यात्रा में शामिल वेणो है तो वह पीतांबरी पहनने आते आवे
2: मतलब आप कहना है कि आप समाज में बीजो आदमी कंधो नहीं देखते जटा वो पीतांबरी नहीं पहरे नाय तो नहीं आवे
3: ज्यादातर बीजा आदमी कोई अड़वा भी नहीं देता है।
2: अच्छा आप मतलब कहना है कि मतलब जो परिवार का मेंबर है ब्राह्मण परिवार है वही वर्ण कंधो दे के और वर्ण क्रियाक्रम में वही हाजिर रहे बच में अन्य अलावा जो हाथी आवे एक फॉर्मेलिटी है जो मतलब वो अपने धर्म निभावे मतलब
3: वे आते आवे बलि आवे आवे और बैठे दूर बैठे लेकिन उन्हें कोई टच नहीं करे यदि पुष्प वगैरह कोई अर्पित करना चाहे तो वे दूर बनाने हवा में फेंक दे
2: कोई माला लेना
3: है तो वे बनाने दे दे भाई पीतांबर पहरे वाला दे दे जो वे बनाने माला पहना दे भाई शरीर मृत देह शुद्ध देव है तो शुद्ध देह ने कोई अपवित्र नहीं करे यही वास्ते वह सब लोग जो है अपरो योगदान हिसाब देवे।
2: अच्छा रिवाज आपरा सप्ती मतलब एक अलग रिवाज होवा माया है तो हमें और आपने पूछू कि चलो वने ने दास संस्कार हुआ वने बाद में तीसरा रिका रस्म वे 12 दिन रिका रस्म वे वने बारह
3: हमारे समाज में तीसरा री बैठक बैठक रहा सिस्टम तो नहीं है
2: जी।
3: हम आज के लोग दुकान देखा देखी दूसरा समाज रहा देखा देखी करवा लग गया बाकी 12 दिन तक जो है लोग आता रहे और एकादशो एकादश सारे दिन घर में सूतक निकले।
2: अच्छा।
3: 9वें दिन मुंडन कार्यक्रम वे
2: 9वें दिन तो
3: बस उनने मुंडन ही गए मुंडन नमियो कहने नमियो कहने
2: और कोई रिवाज
3: नमियारे दिन वो है कि जो अपरा बेटा है पोता है वे सब मुंडन करावे। अच्छा। जना जनारे भी सूतक लागे वे सब मुंडन करावे और वन दाड़े भोजन में खाली मूंग बापियोड़ा मूंग और वन माते घी
2: तो मेंबर खाए सब
3: जो परिवार रहा है जने जने सूतक लागे वे सब खाए
2: मूंग रो उबाले घी नोकन
3: खाए नमक और घी डालने बस मूंग
2: अलग रिवाज
3: है।
2: तो तीसरा दिन आप कोई रिवाज नहीं बेता
3: तीसरे दिन नो कोई रिवाज नहीं बस मृत के वास्ते वो अस्थि अस्थिया वीणवा वास्ते जावे तीजे दिन अस्थि लेन आवे के भाई यहाँ का रेडारी अस्थि है छाती रेडारी अस्थि भगवरी ये सब अस्थि पोस्ट गणाती जो अस्थि लिए वो अस्थि वास्ते भी वही पीतांबरी पहन ना दोन वे ले आ जाए शुद्धि में जानो पड़े
2: और अलावा का रिवाज है जिकन अस्थि लाई करे करनी इच्छा है कि मारे तो गंगा जी

0: निधि में या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते दोस्तों, चलो जल्दी से मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से। वो देखो अपने घर के बाहर ही खड़ी है मीना।
1: अरे बालूशाही, तुम बांसुरी बजाना सीख रहे हो?
2: मीना, वो मैं...
1: अब समझी, आज सरपंच जी सब बच्चों की जो प्रतियोगिता करवा रहे हैं, तुम उसमें अपनी बांसुरी बजाने की प्रतिभा दिखाना चाहते हो।
2: लेकिन मुझसे तो ये बांसुरी बजाई ही नहीं जा रही। काश मुझ में भी कोई प्रतिभा होती।
1: बालूशाही, प्रतियोगिता की घोषणा तो सरपंच जी ने बहुत दिनों पहले ही कर दी थी। अगर इस बीच तुम चमेली से बांसुरी बजानी सीख लेते तो...
2: मैं क्या करता मीना, मेरे पास समय ही नहीं था। रोज स्कूल से आने के बाद मुझे सीमा दीदी के घर जो जाना पड़ता था।
1: सीमा दीदी के घर?
2: हाँ मीना, माँ मुझे रोज उनकी मदद करने के लिए उनके घर भेज देती थी। सीमा दीदी माँ जो बनने वाली है।
1: अरे हाँ, याद आया, मैंने सीमा दीदी को 3-4 बार नर्स बहन जी के पास जाते देखा था।
2: अच्छा?
1: हाँ, पहले मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर सीमा दीदी ने मुझे बताया कि उन्हें समय समय पर नर्स बहन जी से अपनी जांच कराने स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है।
2: मुझे भी चमेली से बांसुरी सीखने जरूर जाना चाहिए था मीना, अब मैं क्या करूं?
1: ओहो, मिट्टू तो लाला जी के बाग में घुस गया है। अगर लाला जी ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम यहीं रुको बालूशाही, मैं अभी आई।
2: मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मीना, वो रहा मिट्ठू आम के पेड़ पर।
1: मिट्ठू, जल्दी से मेरे पास आओ, देखो लाला जी आ जाएंगे।
3: लाला जी आ जाएंगे, वो भी आम खाएंगे।
1: ओफो, मिट्ठू तो मेरी बात मान ही नहीं रहा, अब क्या करे बालूशाही?
2: मेरे पास एक तरकीब है।
1: अरे वाह, तुम्हारी सीटी सुनते ही मिट्ठू झट से नीचे उतर आया।
3: नीचे उतर आया, सीटी ने बुलाया।
2: पता है मीना, मेरी सीटी सुनते ही कई बार सारे पशु पक्षी मेरी तरफ चले आते हैं।
1: अरे वाह, फिर तुम आज की प्रतियोगिता में क्यों ना अपनी सीटी बजाने की प्रतिभा सबको दिखाओ।
2: हाँ मीना, ये ठीक रहेगा। चलो, प्रतियोगिता का समय भी होने वाला है।
0: मीना और बालूशाही पंचायत की ओर जा ही रहे थे कि उन्हें सीमा दीदी के घर के बाहर दिखी सीमा दीदी की सासू माँ। लगता है वो अपने बेटे किशोर को ढूंढ रही है।
4: मीना, बालूशाही, तुमने किशोर को कहीं देखा?
1: नहीं माँ जी।
4: उफो, अब मैं क्या करूं? किशोर सरपंच जी की बैलगाड़ी लेने गया था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा।
2: बैलगाड़ी? वो किस लिए माँ जी?
4: सीमा को अस्पताल ले जाने के लिए, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया है ना। तुम एक काम करो, भाग के नरस बहन जी को बुला लाओ।
5: माँ जी!
4: क्या हुआ सीमा?
5: माँ जी, मैं अस्पताल ही जाऊंगी, थोड़ी देर और देख लीजिए, ये आते ही होंगे।
4: पता नहीं सीमा ने अस्पताल जाने की क्यों ठान रखी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अस्पताल ही ले जाएंगे तुझे। मीना, बालूशाही, तुम लोग जरा सरपंच जी के घर जाके देखो तो किशोर अब तक आया क्यों नहीं।
1: ठीक है माँ जी। बालूशाही, मैं किशोर भैया को देख के आती हूँ, तुम जाओ, प्रतियोगिता का समय होने वाला है।
2: नहीं मीना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।
1: लेकिन प्रतियोगिता?
2: सीमा दीदी की मदद करना प्रतियोगिता से ज्यादा जरूरी है।
0: मीना और बालूशाही भागे सरपंच जी के घर की तरफ, लेकिन अरे ये क्या? ओहो, तो ये बात है। दरअसल किशोर और सरपंच जी बैलगाड़ी लेके छोटी वाली पुलिया से आ ही रहे थे कि अचानक पुलिया पर बकरियों का एक बड़ा सा झुंड आ गया और वो बकरियां अब वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही। किशोर बकरियों को हटाने की बहुत कोशिश कर रहा है। वो देखो,
6: हटो हटो।
1: किशोर भैया, माँ जी आपको बुला रही है, सीमा दीदी को अस्पताल लेके जाना है।
6: मैं क्या करूं मीना, ये बकरियां बैलगाड़ी के सामने से हट ही नहीं रही।
1: बालूशाही, तुम वो वहां उस पेड़ के पास जाकर सीटी बजाओ, शायद तुम्हारी सीटी की आवाज़ सुनकर।
2: हाँ मीना, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी सीटी बजाता हूँ।
0: अरे वाह, बालूशाही की सीटी सुन के तो सभी बकरियां उसी की तरफ चली गईं। सरपंच जी और किशोर ने मीना और बालूशाही की बहुत तारीफ की और थोड़ी देर बाद अस्पताल में।
4: मैं तो अच्छा भला नरस बहन जी को घर पे ही बुलवा रही थी, लेकिन जीबा की जिद थी, बच्चा तो अस्पताल में ही होगा। अब बताओ, रास्ते में कुछ हो जाता तो? इतनी खराब सड़क, लेकिन कोई मेरी सुने तब ना।
6: माँ, सीमा का कहना बिल्कुल सही है, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होना चाहिए, क्योंकि जन्म के समय कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, जिनका हल सिर्फ डॉक्टरों के पास ही होता है।
7: बधाई हो माँ जी, किशोर भैया बेटी हुई है।
4: नरस बहन जी, सीमा तो ठीक है ना?
7: हाँ माँ जी, अब सीमा बिल्कुल ठीक है। ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप उसे यहाँ ले आई।
4: मतलब?
7: दरअसल वो थोड़ी सी मुश्किल आ गई थी, प्रसव के समय बच्चा उल्टा था, वो तो डॉक्टर दीदी थी जिन्होंने सब संभाल लिया।
1: नर्स बहन जी, अगर सीमा दीदी अस्पताल ना आती तो?
7: मीना, फिर तो शायद मुश्किल बढ़ सकती थी। इसीलिए किशोर भैया, असली बधाई की हकदार आपकी माँ जी हैं, जिन्होंने समझदारी दिखाई और सीमा को अस्पताल ले आई।
3: अस्पताल ले आई, माँ जी शर्माई।
1: मिट्टू चुप।
0: आज माँ जी को समझ आ गया कि सीमा दीदी का कहना बिल्कुल ठीक था, बच्चा अस्पताल में ही पैदा होना चाहिए। अरे, ये मीना और बालूशाही कहाँ भागे जा रहे हैं? अच्छा, ये दोनों जा रहे हैं प्रतियोगिता का नतीजा सुनने।
8: बच्चों, आज की प्रतियोगिता देखकर बहुत मजा आया। सच में तुम सब के सब बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन पहला इनाम उस बच्चे को मिलता है जिसने इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं लिया।
1: कौन होगा? कौन हो सकता है?
8: और उस बच्चे का नाम है बालूशाही, क्योंकि आज बालूशाही ने।
0: सरपंच जी ने बच्चों को पूरी बात बताई और बालूशाही से कहा,
8: यहाँ आओ बालूशाही। बालूशाही बोलो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए?
7: सरपंच जी, मुझे इनाम में, अगर अस्पताल जाने वाली सड़क पक्की बन जाए तो।
8: शाबाश बालूशाही बेटा, तुम्हें ये इनाम जरूर मिलेगा।
0: भाई वाह, मजा आ गया। मैंने कहा था ना कि मीना से मिलकर हर बार एक नई बात पता चलती है। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्टू ने कैसी कविता लिखी है।
1: जब बच्चा होने वाला हो, रखना ये तैयारी,
3: औरत जाए अस्पताल में, यही है समझदारी।
0: भाई वाह, क्या कविता लिखी है अपनी मीना और मिट्टू ने। चलो अब एक बढ़िया सा गीत भी सुन लिया जाए।

0: खाना गाना मजेदार। तो चलो मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली
2: तोड़।
1: हाँ, मैं आपको तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें मुझे बताना है उसका सही जवाब। ठीक है
2: जी बहन जी।
1: आज की पहेली है एक मशहूर इमारत के बारे में। तुम्हें कड़ियां जोड़ जोड़ कर बूझना है इस इमारत का नाम। तो सुनो, पहली कड़ी, जब आए 26 जनवरी मैं हूँ जगमग करता, देख के मेरी चकाचौंध लोगों का दिल नहीं भरता।
3: अरे
4: अरे
3: क्या हो सकता है?
5: मुझे पता है सही जवाब।
1: हाँ हाँ मोनू बताओ।
5: लाल किला।
1: लाल किला क्यों?
5: क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड लाल किले के सामने से ही निकलती है।
1: नहीं मोनू, गणतंत्र दिवस की परेड इंडिया गेट के सामने निकलती है और लाल किला उस दिन जगमग नहीं करता।
6: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है सोमा, दूसरी कड़ी सुनो बच्चों। मुगल गार्डन बना है मुझ में, सभी देखने आते, सामने इंडिया गेट है मेरे, लोग घूमने आते।
7: तीसरी कड़ी भी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है, तीसरी कड़ी भी सुन लो। तीसरी कड़ी है, दिल्ली घूमने जो भी आए, देखे मुझको आकर, किसी देश के राष्ट्रपति का नहीं बड़ा इतना घर।
8: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है राष्ट्रपति भवन।
1: शाबाश मीना, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है?
6: भारत के राष्ट्रपति।
1: बिल्कुल सही कहा सोमा ने। तो मजा आया बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
9: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: The end.
1: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं गायक कलाकार हाकम खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं, मदन खान खरताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये खरताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की चार खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने खरताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है। हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान के सुमला के अंदर ये बच्चों को संगीत की खरताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों खरताल ढोलक कमायचा सारंगी मोरचंग मुरली अलगोजा सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफ़ी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निमूड़ा। ये निमूड़ा हमारे मांगनिया लोगों का गाया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है हाकम खान।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप त्रिवेदी एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस ग्रामर पोर्शंस दीज डेज फॉर क्लास 10th RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम द बुक गोल्डन रेस। एंड yesterday we studied question answers and today I am going to start activity 3, which is grammar portion, and the topic is models. It's a very important topic for all listeners. So students, aaj hum a hero jo lesson hum padh rahe the uska grammar portion dekhenge aaj, एक्टिविटी 3, और उसमें है मॉडल्स। गोल्डन रेस बुक का नाम है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10th। एक्टिविटी 2 में कुछ खास नहीं है, इसलिए एक्टिविटी 2 को हमने छोड़ दिया है। ओके, तो मॉडल्स को देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमेशा की तरह। फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल है यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर। तो यहां पर जो मॉडल है वो मस्ट यूज हुआ है। फिर है कैन यू प्रूव यू हैव करेज, यहां पे कैन मॉडल आया है। द अंडरलाइन वर्ड्स इन बोथ द सेंटेंसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्सेप्ट बी, डू एंड हैव आर कॉल्ड मॉडल्स। यानी कि बी वर्ब में क्या क्या है, देखिए इज एम आर और वाज वर्ब, डू डस और हैव और हैज, इन सब को छोड़ करके बाकी सब मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज, दे आर हेल्पिंग वर्ब्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाई पर्सन और जेंडर। ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं जिनके ऊपर पर्सन और जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीज आर, ये कौन कौन से हैं देखिए, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट टू, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, कुल मिलाकर के 13 हो गए लगभग ये। इन मोस्ट केसेस दे एक्सप्रेस प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम, ज्यादातर परिस्थितियों में इनसे प्रेजेंट और फ्यूचर की परिस्थितियों का पता चलता है। द चीफ फीचर्स ऑफ मॉडल्स आर, उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, लेट्स सी, दे आर नेवर यूज्ड अलोन, इनका अकेले में कभी यूज नहीं किया जाता है। दे ऑलवेज हैव अ मेन वर्ब विद देम, इनके साथ हमेशा एक मेन वर्ब या बेस वर्ब जरूर होगी। आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूं। यहाँ पे बेस वर्ब कौन सी है, डू, और मॉडल कौन सा है, कैन। सेकेंड, देयर फॉर्म्स रिमेन अनचेंज्ड वॉट एवर द पर्संस एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज देयर। आई कैन रीड, दे कैन रीड, यहां पर भी कैन है, यू कैन रीड, पर्सन कोई सा भी हो इनका इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 3, दे डू नॉट हैव इन्फिनिटिव्स और पास्ट पार्टिसिपल्स, इनमें इन्फिनिटिव या पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है। वी कैनॉट राइट, ही कैन गो एंड कैन सी। नाउ वी प्रोसीड टू सी हाउ ईच मॉडल इज यूज्ड, अब हम देखेंगे कि हर एक मॉडल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको हर एक मॉडल का इन्होंने क्लू दिया हुआ है, तो उस क्लू को हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो सबसे पहला मॉडल है कैन, ठीक है। दिस मॉडल वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस 4 मीनिंग्स, विचार, इससे 4 मीनिंग्स पता चलती हैं। कौन कौन सी, एबिलिटी नंबर 1, परमिशन नंबर 2, रिक्वेस्ट नंबर 3 एंड पॉसिबिलिटी नंबर 4। अब इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी। एबिलिटी, परमिशन, APRP, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। ARBB करके याद कर सकते हो, और ARPP करके याद कर सकते हो। शॉर्ट पहला वर्ड ले लिया ना हमने सब, जैसे एबिलिटी का ही ले लिया, परमिशन का पी ले लिया, रिक्वेस्ट का आर ले लिया, और पॉसिबिलिटी का भी पी ले लिया। या RAPP ले सकते हो, RPAP ले सकते हो, RPPA कर सकते हो, PAPR कर सकते हो, जो भी आपको जिससे भी याद हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि APRP ठीक है। तो अब इसमें पहला एबिलिटी, एबिलिटी से कैसे कैन को यूज किया जाता है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता। शी कैन स्विम इन अ रिवर, वो एक नदी में तैर सकती है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, स्विम, और इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो सकना सकती के रूप में होगा, है ना। दूसरा है राम कैन प्ले अ गिटार, राम गिटार बजा सकता है। एबिलिटी इन्वॉल्व्स कैपेसिटी टू डू सम एक्शंस बट विद एनिमेट सब्जेक्ट एंड डायनेमिक वर्ब्स। विद इनएनिमेट सब्जेक्ट्स द यूज ऑफ कैन एक्सप्रेसेस देयर पोटेंशियलिटी। तो बता रहे हैं आपको कि एबिलिटी में कैपेसिटी यानी क्षमता भी जिसमें शामिल हो तो वहां पर कैन का इस्तेमाल होता है। नंबर थ्री है द बिजनेस ऑफ कैब्स कैन एक्सपांड, जो कैब सर्विसेज हैं उनका व्यापार बढ़ सकता है। दिस बाइक कैन रन फास्टर विद दिस फ्यूल, इस ईंधन से ये बाइक और तेज भाग सकती है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, एबिलिटी के। जब इनकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स, आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। ओके, अभी है परमिशन। परमिशन में देखिए कैसे यूज होता है, कैन इज यूज टू आस्क एंड गिव परमिशन। इट इज यूज टू सीक परमिशन इन द सर्कमस्टेंसेस वेयर सोशल अथॉरिटी इज इन्वॉल्व, जहां पे सामाजिक अधिकार छुपे हुए हो वहां भी ये परमिशन को देने में काम आता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, बॉय कैन आई गो नाउ, बॉय ने पूछा क्या मैं जा सकता हूं। टीचर, नो बट यू कैन गो आफ्टर दिस पीरियड, हाँ तुम नहीं अभी नहीं लेकिन इस पीरियड के बाद तुम जा सकते हो। रिक्वेस्ट, तीसरा है रिक्वेस्ट, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। अ फ्रेंड, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह सकता है, कैन यू ब्रिंग मी सम मोर आइसक्रीम इन अ होटल, होटल में आप कह सकते हैं। ये सब पॉइंट आपको दिए ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। कैन इज यूज टू मेक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी अनौपचारिक प्रार्थना, अनौपचारिक रिक्वेस्ट के लिए भी वी ऑफन यूज इट व्हेन वी आर टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड ऑल्सो इन शॉप, हम जब दुकानों में या दोस्तों से बात कर रहे हो तो इसका इनफॉर्मल मतलब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ऑफिस रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, ऑफिस रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं। चौथा है पॉसिबिलिटी, आई एम श्योर दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, मुझे पूरा भरोसा है कि इस समस्या का हल निकल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है द फायर कैन बी डेंजरस, आग खतरनाक हो सकती है। नोट, कैन इंडिकेट्स थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, कैन से सैद्धांतिक संभावना पता चलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कुड। कुड क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, जहां जहां कैन का इस्तेमाल हमें पास्ट टेंस में करना है वहां कुड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर एक, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी, पुरानी हमारी कोई आदत या योग्यता बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मैं इस नदी के आर पार तैर सकता था। इन इनडायरेक्ट स्पीच इट इज यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ कैन, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की जगह कुड का ही इस्तेमाल होता है। ही सेड दैट ही कुड रन फास्ट, उसने कहा कि वो तेज दौड़ सकता था। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, हाँ ये एक नई चीज है आपके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए खुद का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ देखते हैं, कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन, यानी आप जब खुद का इस्तेमाल करके कोई चीज मांगेंगे किसी से तो सामने वाला दे दिए बिना रहेगा नहीं, उसमें बहुत ही रिक्वेस्ट आ जाती है, कुड यू लेट मी सी योर फोटो, क्या आप मुझे अपना फोटो देखने देंगे। चौथा है टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति के लिए, कुड आई यूज योर सेलफोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। नोट, टू मेक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट्स एंड सीक परमिशन, प्रार्थना और अनुमति मांगने के लिए भी कुड यू इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट, वी ऑफन यूज इट व्हेन वी आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, जब अजनबी से आप बात करें तो कुड का इस्तेमाल करें, ओल्डर पीपल बुजुर्गों से बात करें कुड का इस्तेमाल करें, टीचर्स अपने अध्यापकों से बात करें कुड का इस्तेमाल करें, एंड बॉसेस और बॉस से बात करें तो भी कुड का इस्तेमाल करें। टू एक्सप्रेस समथिंग रिमोट इन लाइकलीहुड, संभावना में कुछ, दिस रोड कुड बी ब्लॉक, ये मार्ग बंद हो सकता था, ये सड़क बंद हो सकती होगी या बंद होगी, इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा है मे, ओके मे का इस्तेमाल देखते हैं कहाँ कहाँ होता है, मे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन है यूज्ड फॉर आस्किंग एंड गिविंग परमिशन, वही अनुमति लेने और देने में इसका इस्तेमाल होता है। आप बहुत कॉमन बात है मे आई कम इन सर, लेकिन आप लोग स्टूडेंट्स कई बार इसमें गलती करते हैं, माई कम इन बोल देता है कोई, क्या बोल देता है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, मे आई कम इन सर। अब टीचर जवाब क्या देंगे, यस यू मे, टीचर भी परमिशन दे रहा है ना आपको, हाँ जी आ जाइए। मे आई बोरो योर पेन, यस यू मे। मे नॉट इज यूज्ड टू डिनाई परमिशन, अनुमति न देने के लिए मे नॉट। मे आई यूज द टॉयलेट, नो यू मे नॉट। सेकेंड है व्हेन पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी आर मिक्स्ड, जब संभावना तो हो लेकिन संभावना पूरी होने की संभावना कम हो, इट मे रेन टुमारो, कल बरसात हो सकती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हैं, है ना। दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, जो सच भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तीसरा है मे इज ऑल्सो यूज फॉर अ विश, फेथ एंड मे यू एंड अ होप, यानी आप किसी के लिए कोई कामना करें, उसमें किसी में आपको बहुत आस्था हो या कोई उम्मीद हो, मे यू लिव लॉन्ग, ये आपने प्रार्थना की, भगवान से कामना की कि आप जुग जुग जिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, मे इंडिया विन द मैच, भारत इस मैच को जीत जाए। चौथा मे इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए भी मे का इस्तेमाल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल सो दैट दे मे लर्न थिंग्स, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए ताकि वो चीजों को सीख सकें, वीट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। चौथा है माइट, माइट मे का पास्ट टेंस है, जैसे कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, used in reported speech, यानी indirect speech में इसका इस्तेमाल होता है for past time, he said that Neeru might come, उसने कहा था कि नीरू हो सकता है आए। to express possibility, संभावना, that is similar to may but it's used indicates the greater sense of doubt about this possibility देन मे। मे में क्या होता है, काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे जब माइट का इस्तेमाल करेंगे तो शायद संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है होने की। आई एम अफ्रेड दैट इफ आई आस्क हिम अगेन, मुझे डर है कि मैंने दोबारा उससे कुछ पूछा, ही माइट रिफ्यूज, वो मुझे मना कर दे, ज्यादा संभावना है। शी माइट विन द प्राइज, वो हो सकता है इनाम जीत जाए। तीसरा है टू एक्सप्रेस गेस, अनुमान लगाने के लिए, दैट माइट बी अ थीफ, वो एक चोर हो सकता है। चौथा है माइट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस परमिशन और टू मेक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, या तो अनुमति देने के लिए या अनौपचारिक रिक्वेस्ट, मे माइट आई बोरो योर पेन और माई मिनट, माइट आई बिगिन माई लेक्चर। पांचवा है इट इज ऑल्सो यूज फॉर सजेशन इन अ स्टेटमेंट फॉर, अगर कुछ लिख रहे हैं, कोई वाक्य आप लिख रहे हैं, कोई कथन लिख रहे हैं, तो उसमें सुझाव देने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज, ही माइट ज्वाइन द आर्मी। पांचवा है मस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मस्ट यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपल्शन इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्यों में जरूरी बाध्यता के लिए इसका इस्तेमाल होता है कि बस ये काम होना ही चाहिए। यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, तुम्हें मेरे आज्ञा का पालन करना ही है। दूसरा है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, आवश्यकता बताने के लिए इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव में वी मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, हमें कल सुबह जल्दी उठना है। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दे मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय दिस इवनिंग, इस शाम तक उन्हें ये काम पूरा कर लेना चाहिए। चौथा टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, श्योरिटी यानी निश्चितता, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए, माई सिस्टर हैज गॉन टू बेड अर्ली, शी मस्ट बी टायर्ड, मेरी बहन जल्दी सो गई है, शायद वो थकी हुई हो। लुक एट हिज लाइफ स्टाइल, उसके जीवन शैली को देखो, ही मस्ट बी रिच, हो सकता है वो अमीर हो। पांचवा है टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, कर्तव्य, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें जैसा कहा गया वैसा कीजिए। कैंडिडेट मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10, 10 में से 5 क्वेश्चन करने जरूरी हैं। नोट इन द नेगेटिव एंड टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन यानी निषेधात्मक वाक्यों के लिए, नेगेटिव वाक्यों के लिए मस्ट नॉट इज यूज्ड, दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ डोंट डू दिस। मस्ट नॉट का मतलब ऐसा मत करो, वी मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क हियर, यहाँ पे कार को पार्क नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 6th नंबर पे ऑट, और ऑट का इस्तेमाल ऑलवेज फॉलोड बाय अ इन्फिनिटिव, हमेशा टू के साथ इसका इस्तेमाल होता है ऑट। सबसे पहले टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी, संभावना, ऑट टू गिव्स द मीनिंग ऑफ शुड बी, ऑट टू का मतलब होता है हो सकता है, होना चाहिए। ऑट टू इज यूज्ड व्हेन अ फीलिंग ऑफ ड्यूटी इज इन्वॉल्व, अगर कर्तव्य की उसमें भावना है तो ऑट टू का इस्तेमाल किया जाता है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल रूल्स, सोशल कन्वेंशंस, सामाजिक जो मान्यताएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, एंड शुड व्हेन वी हैव पर्सनल जजमेंट ऑफ ड्यूटी, जब हमें कर्तव्य के बारे में हमारी व्यक्तिगत कोई राय हो तो शुड का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन संस्थागत कोई बात हो तो ऑट का इस्तेमाल किया जाना। यू ऑट टू लव योर एल्डर्स, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, आपको आपके बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आई ऑट टू हेल्प देम, मॉरल ड्यूटी, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST बिल, ऑट टू एनहांस द गवर्नमेंट रेवेन्यू, प्रोबेबिलिटी हो गया ये कि इसमें ये सरकारी बात हो गई ना, इसलिए ऑट टू का इस्तेमाल किया, शुड का नहीं किया। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ ऑट इज ऑट नॉट टू। ओके, तो नेक्स्ट है विल, और विल के बाद वुड, ठीक है। तो अब हम और फिर मैं बताता हूँ आपको वुड के बाद में है शैल, देन शुड, देन एक्सरसाइजेस। तो आई थिंक एक बार हम देख लेते हैं विल। विल आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनेट में या सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है, टू इंडिकेट सिंपल फ्यूचर टाइम विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल होता है। शी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी। यू विल एक्सेप्ट दैट ही वॉज रॉन्ग, तुम ये मानोगे कि वो गलत था। दूसरा है टू इंडिकेट एक्सप्रेस इंटेंशंस, इरादा, विलिंगनेस, प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी एंड डिटर्मिनेशन, एंड दृढ़ संकल्प एंड रिक्वेस्ट और प्रार्थना। आई विल गो टू मुंबई फॉर अ जॉब, मैं एक नौकरी के लिए मुंबई जाऊंगा, ये इच्छा है, इंटेंशन है जी। आई विल सिंग एट द कॉन्सर्ट टुमारो, मैं किसी प्रोग्राम में कल गाऊंगा, विलिंगनेस। मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड विल बी इन द पार्टी, मेरे बहुत सारे दोस्त हो सकता है पार्टी में हो, प्रेडिक्शन। आई विल पास दिस एग्जामिनेशन, मैं इस एग्जाम को पास करूंगा ही करूंगा। वी विल डू और डाई, हम या तो करेंगे या मर जाएंगे, गांधी जी ने नारा दिया था ना डू और डाई। विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप रिक्वेस्ट मेरे लिए कुछ करेंगे। विल यू प्लीज शट द डोर, क्या आप दरवाजा बंद करेंगे। विल यू गो विद मी देयर, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे। रिक्वेस्ट नोट एज कंपेयर्ड टू द यूज ऑफ वुड, द यूज ऑफ विल शोज अ लेस पोलाइट रिक्वेस्ट। वही कैन और कुड वाला मामला है, अगर विल का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा जो पोलाइटनेस है, शिष्टता है, वो कम हो जाती है। इन नेगेटिव इट्स फॉर्म चेंजेस टू वॉन्ट, नकारात्मक वाक्यों में ये वॉन्ट विल नॉट हो जाता है। वॉन्ट यू कीप क्वाइट, तुम चुप नहीं रहोगे। आई वॉन्ट कम टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं आऊंगा। नोट विल इज नेवर यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन यानी आई के साथ कभी भी विल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और खासकर प्रश्नवाचक वाक्यों में। नेक्स्ट है वुड, तो डेफिनेटली वुड को अब हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड

0: power to adjust, the power to turn here, the power to brake, stop, sab kuch ho jata. Agar ye gaadi mere control mein hoti to, aur agar panchon ki hoti, to wo jeevan, wo ghar swarg hota, right? Ab agar suppose, char ki bhi nahi hai, ek bhi apne karna shuru karte hai, see, to kitni sari cheeze bachengi, agar ek atma apne upar sanyam le aaye. This is the power that we have. लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर. दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: बच्चों कैसे हो तुम लोग?
1: बहुत अच्छे
2: दीदी।
0: लग रहा है सैंडी की थोड़ी सी तबीयत खराब है आज।
2: हाँ
3: मुझे भी लग रहा।
0: क्या हुआ सैंडी?
2: कुछ नहीं, थोड़ी वीकनेस हो रही है।
0: कभी कभी गर्मियों के दिन में तबीयत खराब हो जाती है।
2: हाँ ये बात तो है।
0: तो रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाओ।
3: ज्यादातर ट्रैवल करने से तबीयत खराब होती है।
0: ट्रैवल करने से तबीयत खराब होती है ये तो है।
2: और आज मैं ट्रैवल करके आया हूँ इसीलिए।
0: आराम की जरूरत होती है।
2: हाँ दीदी
0: है ना। अच्छा चलो आज तुम ट्रैवल करके आए हो तो चलो हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं।
3: ओके
2: ओके।
0: तो तुम लोग की फेवरेट जगह, घूमने की फेवरेट जगह कौन सी है?
2: दिल्ली
3: मेरी। माउंट आबू।
0: माउंट आबू?
3: हाँ।
0: और भुवना?
4: मेरी तो कूर्ग।
0: कूर्ग ये कहाँ पे है?
4: कर्नाटका।
0: कर्नाटका में? क्या वो आपके घर के पास है?
4: नहीं।
0: आप कूर्ग घूमने कब गए थे?
4: लास्ट समर हॉलीडेज गई 2015
0: में। अच्छा कितने टाइम के लिए और किसके साथ गए थे?
4: मैंने मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया और अंकल के साथ गई।
0: अरे वाह। और वहाँ पे सबसे अच्छा आपको क्या लगा?
4: मुझे वहाँ सबसे अच्छा वो क्लब लगा जहाँ हम रुके थे, क्योंकि वह स्विमिंग पूल इतना अच्छा था कि हम दिन भर वही थे। और नेक्स्ट डे हमने एक तलकावेरी, एक प्लेस है जहाँ कावेरी रिवर स्टार्ट होती है, वहाँ गई। वहाँ का फॉग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मोमेंट थी वो जब हम महसूस करते हैं। वो बहुत कूल था वह जगह, हिल स्टेशन है ना इसलिए।
0: अच्छा वो एक हिल स्टेशन है।
4: हाँ
0: इसीलिए वहाँ पे ठंडी होगी।
4: और
0: आपने इतने सारे दिनों में वहाँ पे क्या क्या देखा?
4: कॉफी एस्टेट्स, फिर बहुत सारे टेम्पल्स देखा मैंने, और एक रिवर के पास गई जहाँ हम खेल रहे थे पानी के साथ में और मेरे भैया।
0: अच्छा तो सबसे पहले आपने क्या बोला?
4: कॉफी एस्टेट।
0: कॉफी एस्टेट्स, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा?
4: मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रीज और कॉफी प्लांट्स देखी मैंने। कॉफी के पत्ते जैसे निकालते वो स्मेल बहुत अच्छी।
0: क्या आपने वहाँ कॉफी पी?
4: नहीं वो सीजन नहीं था ना।
0: अच्छा मतलब सिर्फ कॉफी को बनते हुए देखा। और बहुत सारे टेम्पल्स देखे?
4: हाँ।
0: अरे वाह जगह तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, घूमने का मन कर रहा है ना सैंडी?
2: हाँ दीदी
3: सुन के तो ऐसा लग रहा है हम भी वहाँ घूम रहे
2: चले।
0: हाँ ठंडी जगह जाने में तो मजा आता है। और सैंडी तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है?
2: दिल्ली।
0: दिल्ली? दिल्ली तुम कब गए थे?
2: इसी वेकेशन में।
0: इसी वेकेशन में गए थे। दिल्ली में सबसे अच्छा क्या लगा?
2: लोटस टेम्पल।
0: लोटस टेम्पल? हाँ लोटस टेम्पल तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लोटस की शेप का नजर आता है दूर से देख के।
2: हाँ।
0: और बताओ दिल्ली में कौन कौन सी जगह तुमने देखी?
2: तुमिनार, फिर इंडिया गेट और अक्षरधाम, कालका मंदिर, बहुत सारी जगह घूम लोगा हमने।
0: मतलब बहुत सारे मंदिर तुमने घूमे। और उसमें से सबसे फेवरेट जगह
2: लोटस टेम्पल
0: लगी।
2: और कुतुब मीनार।
0: और कुतुब मीनार लगी?
3: हाँ। कुतुब मीनार तो कभी भूल ही नहीं सकता।
2: नहीं
0: अच्छा कुछ स्पेशल अलग रहा है कुतुब मीनार के साथ?
2: हाँ।
0: क्या
2: वहाँ पे काफी एंजॉय किया मैंने और पंकज ने।
3: वहाँ हमें एक नए फ्रेंड भी मिले जो फॉरेन के थे।
0: अच्छा वहाँ आप लोग नए फ्रेंड्स मिले इसीलिए वो जगह स्पेशल हो गए। और दिल्ली में बस इतनी जगह गए? रेड फोर्ट नहीं गए?
3: रेड फोर्ट
2: गए थे ना, फिर क्लब भी गए, फिर मॉल भी गए, बहुत सारे
0: मॉल गए।
2: हाँ वर्ल्ड स्क्वायर, एमएक्स मॉल, बहुत सारे मॉल घूमे।
0: दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं। और मेट्रो में ट्रैवल किया कि नहीं?
2: खूब
3: मेट्रो में तो पूरे
2: दिन मेट्रो में, मेट्रो कार्ड बनवाया, पूरे दिन मेट्रो में घूमे।
0: मेट्रो में घूमने में मजा आता था?
2: बहुत। पंकज तो बोले यही रुक जाते हैं।
3: हमें तो ऐसा लगता था कि मेट्रो में ही अपना घर बना ले।
0: इतना अच्छा लगता था मेट्रो में। और इंडिया गेट कैसा लगा?
2: इंडिया गेट तो अच्छा ही था, वहाँ से तो अपन थोड़ा घूम भी गए थे ना।
3: हम वहाँ खो गए थे।
0: खो गए थे अलग हो गए थे दोनों?
2: नहीं साथ में थे।
3: रास्ता खो गए थे।
0: अच्छा वहाँ से मेट्रो स्टेशन का रास्ता खो गए थे?
3: नहीं टैक्सी स्टैंड का।
0: टैक्सी स्टैंड का। और अमर जवान ज्योति देखी कि नहीं?
3: देखी, बहुत अच्छी थी।
0: अच्छा लगा?
3: हाँ वो ज्योति हमेशा जलती रहती नहीं है।
2: और वहाँ पे इंडिया गेट में खास बात और देखी, उस पे जो जो लोग शहीद हुए हैं सबका नाम लिखा हुआ उसके ऊपर।
0: और वो ज्योति हमेशा जलती रहती है।
3: दीदी वो ज्योति क्यों जलती है?
0: क्योंकि वो उन शहीदों की याद में जलाई जाती है और उनको हम हमेशा सल्यूट करते हैं।
3: हाँ।
0: हमेशा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो जवानों के जो शहीद हुए उनके लिए वो ज्योति हम हमेशा जलाए रखते हैं। वो एक सिंबल की तरह है, उसको कंटिन्यू जलाया जाता है, कभी बुझने नहीं दिया जाता। और जब स्पेशल ओकेजंस होते हैं तो वहाँ परेड होती है।
2: हाँ।
0: और खूब सारी भीड़ होती है उन्हें देखने के लिए।
2: हाँ, ऐसे टीवी में देखा
0: है।
2: हाँ।
0: और दिल्ली कितने दिनों के लिए गए थे आप लोग?
2: अपन
3: 10 दिन।
0: आप लोग अकेले गए कि मम्मी पापा के साथ?
3: हम दोनों फ्रेंड्स गए थे, दीदी के साथ।
2: दीदी के साथ,
0: दीदी के साथ गए थे। अच्छा, अरे वाह, चलो आप लोग देश की राजधानी को देख के आए।
3: हाँ।
0: बहुत अच्छी बात।
3: हमने राजस्थान की राजधानी भी देखी,
2: जयपुर।
0: अच्छा, मतलब दिल्ली के बाद जयपुर का टर्न था।
2: हाँ।
0: तो पंकज तुम बताओ, जयपुर में तुम्हारा फेवरेट क्या था?
3: जयपुर में मेरा फेवरेट था WTP मॉल।
0: WTP मॉल? मॉल अच्छा क्यों लगा सबसे ज्यादा?
3: वहाँ बहुत अच्छा था, बहुत शांति थी, और उसके बाहर जो लाइट्स लगी हुई है वो बहुत स्पेशल लाइट्स है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को।
0: मतलब कुछ कलरफुल लाइट्स?
3: कलरफुल लाइट्स है, बहुत अच्छी।
0: अच्छा, तब तो देखना पड़ेगा। और जयपुर में क्या क्या देखा?
3: और जयपुर में तो कुछ खास नहीं, बस अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया।
0: हवा महल नहीं देखा?
3: नहीं।
0: अच्छा, जयपुर में हवा महल है, और जयपुर को पता क्या कहते हैं?
2: पिंक सिटी।
0: और पिंक सिटी क्यों कहते हैं जयपुर को?
2: वहाँ की सारी दीवारें गुलाबी गुलाबी नजर आती है।
0: हाँ। और पुराना जयपुर देखा आप लोगों ने?
3: हाँ। नहीं, मैंने नहीं देखा।
0: मतलब दोस्तों के साथ एंजॉय किया।
2: हाँ।

0: और भुवना, मैंने सुना है आपने बहुत सारी जगह घूमी है।
1: हाँ।
0: क्या आप कभी कंट्री के बाहर भी गए हो?
1: हाँ, मैंने यूकेजी में मस्कट गई।
0: मस्कट गए हो, तो आपको कुछ याद है मस्कट का?
1: मुझे लूलू मॉल याद है।
0: मॉल याद है, और वहाँ पे तो आप बच्चे होगे तो आपने खूब इंजॉय किया होगा।
1: हाँ।
0: है ना? और इंडिया में आप कहाँ कहाँ गए हो?
1: मैं भी राजस्थान गई, मेहरानगढ़ जोधपुर में, हवा महल, कुंभलगढ़, गुरु शिखर।
0: इतनी सारी जगह?
1: मैंने वो अरावली माउंटेन्स गई वहाँ, और मैंने जब ऊपर की इतना हवा रही थी, बहुत अच्छा फील हुआ मैं जे, बहुत प्लेजेंट था। और मैंने एक राजस्थानी ड्रेस भी खरीदी।
0: अरे वाह, राजस्थानी ड्रेस भी खरीदी, कलरफुल कलरफुल।
1: हाँ।
0: वहाँ पे आप शाम को गए होगे, सनसेट देखा कि सनराइज देखा?
1: सनसेट।
0: सनसेट देखा, कैसा लगा सनसेट देखने में?
1: बहुत अच्छा।
0: और कौन सी जगह? जोधपुर गए आप? जोधपुर कैसा लगा?
1: वो तो बहुत ब्लू सिटी है, तो इसलिए बहुत कूल रहा।
0: कूल रहा। वहाँ पे क्या क्या देखा?
1: मेहरानगढ़।
0: और वो क्या है?
1: वो एक महल है।
0: अच्छा, महल में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?
1: जब हम छत में गए, वहाँ सब ब्लू सिटी दिख रहा था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: मतलब महल की छत से पूरी सिटी ब्लू नजर आ रही थी?
1: हाँ।
0: अरे वाह, फिर तो व्यू बहुत ही अच्छा होगा। और राजस्थान में आप कहाँ गए?
1: मैंने
0: कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
1: हाँ।
0: है ना? उनका जन्म स्थान आप देख के आए?
1: हाँ।
0: और वहाँ तो बहुत ऊपर चल के जाना पड़ता है ना?
1: हाँ।
0: तो थके नहीं?
1: नहीं, मैंने एक वंडर भी देखा, राजस्थान का बादल महल।
0: अच्छा, और वो वंडर क्या है?
1: जहाँ हम, वो बहुत ऊपर है, हमें बहुत तीर चढ़ना पड़ेगा, और जब हम ऊपर चलेंगे तो वहाँ हम बादल को छू सकते हैं।
0: वहाँ से सिर्फ बादल नजर आते हैं?
1: हाँ, बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा था ना बादल महल, तो मैंने भी देखा। और बताओ, कहाँ कहाँ घूमे हो पंकज?
2: और हम दिल्ली में अक्षरधाम घूमे।
0: अच्छा हाँ, अक्षरधाम को हम कैसे मिस कर सकते हैं?
2: बहुत स्पेशल जगह है वो भी।
0: स्पेशल जगह है,
3: खास करके वाटर शो नाइट का।
0: आप लोगों ने वो देखा?
2: हाँ, बहुत अच्छा है।
0: क्या क्या देखा उसमें, हमें बताओ तो।
2: वाटर शो ऐसा है कि जब वहाँ फवारे से वाटर निकलता है, और ऐसा लगता है कि एक म्यूजिक चल रही है और उस पे वो वाटर डांस कर रहे हैं।
0: अच्छा।
3: हाँ जी।
0: और क्या उसके पहले उसमें कोई थीम भी होती है? लाइट एंड साउंड शो देखा आप लोगों ने?
2: हाँ, वही लाइट एंड साउंड शो कहते हैं उसको।
0: उसमें एक बार तो दुनिया की स्थापना, पालना और विनाश का पूरा शो भी दिखाया गया था। मेरे ख्याल से अलग अलग थीम पे वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है।
2: हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ और देखा था।
0: हाँ, और वाटर और म्यूजिक के थ्रू वो थीम को रिप्रेजेंट किया जाता है।
3: काफी इंटरेस्टिंग था
0: ना, मजा आया। और वहाँ पे वो जो बड़ी सी जगह है जहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, खुला खुला आसमान के नीचे, इतने सारे लोगों के साथ भी कितना मजा आता है ना।
2: बहुत अच्छा था। और वो खास करके टेम्पल, जिसमें ऐसा लगता है कि पूरा गोल्ड का बना हुआ है।
3: वहाँ की कैंटीन भी अच्छी।
2: इसे तो हमेशा खाने का ही।
0: नहीं, अच्छी बात है, अगर जगह अच्छी है और खाना भी अच्छा हो तो डबल डबल अच्छा हो गया ना।
3: मैं पहले कैंटीन देखता कहीं भी।
0: और कहाँ घूमे हो? दिल्ली के अलावा कहीं घूमने गए हो?
3: कोटा।
0: कोटा, कोटा में क्या देखा?
3: मैंने कोटा में वहाँ पे एक परमाणु ऊर्जा बनाते हैं ना अपने, जो लाइटें आती है पूरे राजस्थान में, वो देखा है।
0: अच्छा, उसको कैसे बनाते हैं आपने? हाँ, देखा।
3: हाँ, वहाँ पे अंदर गए थे हम, स्कूल से गए थे जब घूमने गए थे, तब स्कूल से कुछ प्रोग्राम था हमारे, जिम्नास्टिक होता है, तो उसमें हमारी टीम गई थी। तब सर में 6 लोग थे, तब सर हमको घुमाने ले गए, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, कुछ चंबल करके कोटा में है, उस पानी से लाइट बनता है वहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
0: पानी से लाइट बनती है? अरे वाह।
3: अपनी जात राजस्थान में सब जगह लाइट वहीं से आता है, परमाणु ऊर्जा।
0: अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ देख के आए आप। और कोटा में तो कोचिंग सेंटर बोलते हैं ना?
3: हाँ, बहुत।
0: मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स होते हैं?
3: स्टूडेंट। और कोटा में खास बात ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये लागू कर रखा है कि घर को भी स्कूल बना सकते हैं वहाँ।
0: घर को भी स्कूल बना सकते हैं?
3: हाँ।
0: और वो कैसे?
3: क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन अच्छी, बहुत पढ़ाई काफी अच्छी है कोटा की।
0: पढ़ाई अच्छी है
3: और नॉलेज बहुत काफी है कोटा में।
0: लेकिन घर को स्कूल कैसे बना सकते हैं?
3: जैसे ना कि मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव दे रखा है क्योंकि
2: मतलब अगर किसी घर में कोई एजुकेटेड व्यक्ति है तो खुद का क्लास खोल सकता है।
3: हाँ,
0: उसे अलग से परमिशन की जरूरत नहीं,
3: नहीं गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा वहाँ पे। ये हमने बहुत जब जहाँ रुके थे पास में कोचिंग सेंटर था, इतनी भीड़ हम तस्वीर से वही देखते थे।
0: वहाँ पे तो देश भर से स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं ना।
3: हाँ।
0: दूर दूर से आते हैं, तो आप लोग भी थोड़ी पढ़ाई करके नहीं है?
3: नहीं,
2: हम तो बस देखने गए थे,
3: हम तो बस खेलने के लिए गए थे। हमारा वहाँ पे उमेश सिंह स्टेडियम था, तो हमारे वहाँ पे प्रोग्राम था हमारा शो, मतलब जिन मास्टर का शो था हमारा, तो सुबह जाना होता शो करने के लिए और शाम को।
0: अच्छा,
3: क्योंकि मैं जिन मास्टिक में रह चुका हूँ ना, स्टेट लेवल खेल के आ चुका हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खैलने के बहाने आपको घूमने को मिल गया।
3: हाँ, पांचवा रैंक आया था हमारा, हमारी टीम का।
0: अरे वाह, इस पे हम लोग तालियां बजाते
3: हैं। थैंक यू।
0: तो ये पता है बच्चों, ये भी अच्छी बात है, जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं, खेलने में अच्छे होते हैं, तो उसके साथ साथ भी आपको घूमने की कई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं।
3: हाँ।
0: है ना। और पंकज, आप और कहाँ घूमने गए हो? जब आप छोटे थे क्या तब कहीं घूम के आए?
2: जब मैं छोटा था तब तो मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ घूमने गया था।
0: इतने छोटे भी नहीं,
2: ऐसी कोई मोमेंट याद नहीं है।
0: अच्छा, अपने आपका जो घर है, आप लोग आबू रोड में रहते हो, ये भी तो टूरिस्ट प्लेस है, माउंट में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं।
3: हाँ दीदी।
0: तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ, यहाँ तो आप लोग बहुत घूमे होंगे।
2: यहाँ तो हमने हर जगह घूम रखा है।
0: तो यहाँ की जगह के बारे में कुछ बताओ।
2: यहाँ मैं सुंदा माता मंदिर घूमने गया था।
0: और वहाँ पे क्या है?
2: वहाँ पे बस एक मंदिर है, बहुत बड़ा है और फेमस मंदिर है।
0: फेमस है, बहुत पुराना है।
2: और वहाँ एक सैंड की हिल है।
0: सैंड की हिल है, अच्छा,
3: पूरा रीति रीत।
0: अच्छा,
2: इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
0: और भुवना, तुम्हारे घर के पास कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत फेमस है?
1: चार मीनार।
0: पहले हम सबको बताओ आपका घर कहाँ है।
1: मेरा घर तो थोड़ा दूर है चार मीनार से, मारेटपल्ली में।
0: अच्छा, और वहाँ कौन कौन सी जगह है जो आपने घूमी है?
1: मैंने चार मीनार घूमा, फिर गोलकंडा।
0: गोलकंडा क्या है?
1: वो एक महल है जहाँ राजा रहते थे, वो एक कैपिटल होता था हैदराबाद का पहले।
0: हैदराबाद का कैपिटल, ओके। और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं?
1: वो एक्चुअली रुइंड हो गई, हाफ तो रुइंड हो गई, इसलिए मैंने इतना कुछ नहीं देखा, फिर देख के आ गई बस
0: देख के आ गई। और आपके घर में कौन कौन सी घूमने की जगह है?
1: जब मैं छोटी थी मैं चेन्नई गई, वहाँ क्वींसलैंड गई मैं।
0: क्वींसलैंड?
1: बहुत छोटी थी।
0: वो जगह आपको याद है?
1: हाँ, फोटोज में देखी। और मैंने
0: जू गए। जू में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं।
1: हाँ,
0: आपका फेवरेट कौन सा है?
1: मेरा फेवरेट रैबिट।
0: रैबिट तो बहुत क्यूट होते हैं। और पंकज, सैंडी, अपने शहर के बारे में हमें और नहीं बताओगे?
3: माउंट आबू हमारा काफी अच्छा है।
2: हमारा शहर तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है,
0: क्योंकि राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन।
3: हाँ, माउंट आबू को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं।
0: राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। हाँ। अरे वाह। और कौन कौन सी घूमने की जगह है? अगर कोई आपके शहर घूमने आता है तो उसे कहाँ कहाँ लेके जाओगे?
3: दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जिसे इतिहास में पढ़ा भी जाता है।
0: वहाँ की खासियत क्या है?
3: खासियत है वहाँ की महावीर भगवान की मंदिर है, 880 किलो सोने की है।
0: अच्छा। और वहाँ की जो कारीगरी
3: सुपर,
0: वो तो देखने लायक है।
3: उन्हें लोग बुक्स में पढ़ते हैं और देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं।
0: वहाँ की एक एक दीवार में अलग अलग नक्काशी और कारीगरी है।
2: इस मंदिर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ कारीगरी नहीं की गई।
0: और कितना सुंदर और बड़ा मंदिर है।
3: हाँ दीदी, बहुत।
0: दिलवाड़ा मंदिर तो सच में बहुत।
3: और कहा जाता है कि दूसरे देश के लोगों ने शायद उसे वार करने की कोशिश करी, इस मंदिरों पे तोड़ने की कोशिश करी, पर उस मंदिर में कुछ भी एक खरोच भी नहीं आई। ऐसा मेरे पापा से सुना मैंने।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सी कहानियाँ हैं जो मंदिर से जुड़ी हुई हैं।
3: हाँ।
0: और कौन कौन सी जगह है?
3: अचलगढ़, जहाँ पर शिव जी की शिवलिंग है।
0: अच्छा, अचलगढ़ आप लोग गए हो?
3: हाँ, मैं एक बार गया था फैमिली के साथ। हाँ।
0: माउंट में तो वैसे कहीं भी घूमने चले जाओ अच्छा।
3: अचलगढ़ में पापा बता रहे थे कि वहाँ दो भैंस है जो वहाँ पे दूध दही की नदियों बहती थी।
0: अच्छा,
3: हाँ,
0: इसका मतलब है कि दूध घी दही सब हाँ, कुछ बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था।
3: हाँ, और वो दो भैंस पी जाते हैं, तो उनको शायद किसी राजा ने गोली मार दिया था, तो वो पत्थर के बन गए थे, अभी भी वहाँ पर है।
0: अच्छा, ऐसी कहानी मशहूर है।
3: हाँ, और हम लोग देख के अभी भी वो है ऐसे दो भैंस वहाँ पर,
0: जो पत्थर की भैंस है वो हाँ, वहाँ पे,
3: और अभी भी गोली मारी उसकी निशानी उस पे है।
0: अच्छा,
3: हाँ,
0: ये तो देखना पड़ेगा,
2: मैं भी देखना चाहता हूँ।
3: ठीक है, चलना।
0: अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें फ्यूचर में घूमने का मौका मिले, किसी एक जगह जाने का मौका मिले, देश में या विदेश में, तो वो जगह कौन सी होगी?
3: मेरी तो अमेरिका।
0: अमेरिका? और अमेरिका क्यों?
3: बस अमेरिका अच्छा लगता है, अमेरिका जाना।
2: टीवी में अच्छा लगता
3: है। टीवी अच्छा लगा।
0: टीवी में और फिल्मों में हम हाँ। अमेरिका देखते हैं और अमेरिका बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए अमेरिका जाना है। और बाकी की चीजें तो अमेरिका जाके पता चलेगी
3: कि कैसा है।
0: तो सैंडी जब बहुत सारी पढ़ाई करके एक अकाउंटेंट बन जाएगा, फिर अमेरिका घूम के आएगा।
3: हाँ।
0: और हम सबको लेके नहीं जाओगे?
3: हाँ, लेके जाऊंगा ना दीदी, बिल्कुल, पहले मैं जाके आऊंगा, देखो अच्छा है तो ले जाऊंगा।
0: अच्छा, और पंकज?
2: मैं लंदन जाना चाहता हूँ।
0: लंदन जाना चाहते हो? लंदन क्यों जाना चाहते हो?
2: वो प्लेस मुझे नाम से ही अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वहाँ देखना कि वहाँ क्या है जो इतना फेमस है वो।
0: अच्छा, हाँ, लंदन का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, जब भी हम विदेश की बात करते हैं लंदन का नाम तो ज़रूर आता है।
2: हाँ दीदी, इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ वहाँ ऐसा क्या है जो फेमस है।
0: वहाँ ऐसा क्या है जो वो इतना फेमस है, ये ढूंढने के लिए आप लंदन जाना चाहते हैं?
2: हाँ,
3: खोज करेगा पंकज।
0: ठीक है, आप दोनों साथ में जाके खोज करके आना।
3: ठीक है।
0: और भुवना, आप कहाँ जाना चाहते हो?
1: मैं पेरिस जाना चाहती हूँ।
0: आप पेरिस जाना चाहते हो? अच्छा, और पेरिस क्यों जाना चाहते हो?
1: क्योंकि मैं एक वंडर देखना चाहती हूँ इस वर्ल्ड का, ईफिल टावर।
0: अच्छा, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनमें से एक वंडर आप देखना चाहते हो?
1: हाँ।
0: क्या किसी ने इंडिया का
1: ताजमहल
0: देखा है? देखा है? हाँ। मतलब आप आगरा गए हो?
3: हाँ, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो गांव जा रहे थे, तो बीच में आगरा ट्रेन लेट थी, तो फिर वहाँ से स्टेशन से पापा ले गए थे, 10-15 मिनट के लिए ले गए थे हम।
0: अच्छा, तो वहाँ पे क्या देख के अच्छा लगा?
3: सबसे मस्त वहाँ की नदी, जो पास से नदी निकल रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। वहाँ की आगरा की पूरी ताजमहल है, उसका पूरा परछाई वो नदी में दिखती है।
0: नदी में दिखती है। हाँ। और वो दूर से बहुत ही सुंदर नजर आता है ना?
3: हाँ।
0: और इंडिया के वंडर की बात की, और वर्ल्ड का एक वंडर भुवना देखना चाहती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई मुश्किलें आती हैं?
3: ऐसे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती हैं।
0: जैसे
2: कई बार खो जाते हैं रास्ता,
3: जैसे हम दिल्ली में खो गए थे।
0: दिल्ली में खो गए थे, फिर मिले कैसे?
3: हम साथ में खोए, मतलब बस रास्ता भूल गए।
0: तो रास्ता भूल जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
3: हमने गूगल खोला।
0: हाँ, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ है,
2: लेकिन
0: हाँ।
2: फिर भी मुझे एक मेन पॉइंट याद था जहाँ से हम वापस जा सकते थे।
0: इसीलिए जब आप घूमने जाएं तो
3: मैं थोड़ा डर गया था।
0: आप थोड़ा डर गए थे कि कहीं गलत ना चले जाए?
3: हाँ, जबकि पंखे सही आ रहा था।
0: होता है कभी कभी, जब हम डर जाते हैं तो सही भी हमें सही नजर नहीं आता।
3: हाँ, थोड़ा मैं जल्दी हड़बड़ा जाता हूँ उस बात के लिए।
0: और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है?
3: कि पेशेंस रखना चाहिए।
0: हमें पेशेंस रखना चाहिए और सही रास्ता खोजने के लिए इंतजार करना चाहिए। गूगल है, आसपास के कुछ लोग हैं जो आपको विश्वास के पात्र लगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। और कभी भी एक व्यक्ति के डायरेक्शन पर ना जाके 3-4 लोगों से वो डायरेक्शन कंफर्म करें, तभी आगे बढ़ें।
3: ओके दीदी,
0: है ना?
2: हाँ दीदी,
0: उसे कहते हैं क्रॉस चेक करना। 3-4 लोग तो आपको एक साथ गलत नहीं बताएंगे।
3: हाँ।
0: है कि नहीं?
2: कुछ लोग मजाक भी करते हैं।
0: कुछ लोग मजाक कर सकते हैं या गलत बता सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 लोगों से आपने क्रॉस चेक किया तो मतलब आप सही रास्ते तक पहुंच जाओगे, है ना?
3: हाँ दीदी।
0: और दोस्तों के साथ घूमने में ज्यादा मजा आता है कि फैमिली के साथ?
3: दोस्तों के साथ।
0: और पंकज?
2: फ्रेंड्स के साथ।
0: भुवना?
1: फैमिली के साथ।
0: भुवना को फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता है। फैमिली के साथ मजा नहीं आता पंकज और सैंडी को?
3: मजा आता है पर उतना नहीं,
0: क्योंकि दोस्तों के साथ ज्यादा मस्ती करते
3: हैं। हाँ।
0: लेकिन फैमिली के साथ भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उनके साथ वो टाइम हमें घर पे कभी कभी नहीं मिल पाता। सब लोग अपने अपने जॉब में व्यस्त होते हैं, इसीलिए जब भी फैमिली को लेके जाओगे तभी भी और इन्जॉय करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करना।
3: ठीक है दीदी।
0: और सैंडी भी हमें कोई जगह के बारे में बताने वाले हैं क्या?
3: हाँ, अंबाजी मंदिर, जो कि हम पैदल गए थे घूमने के लिए।
0: पैदल? कितनी दूर?
3: यहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। मैं और पंकज जब अंबाजी मंदिर में नवरात्रि चलते हैं तो काफ़ी लोग पैदल जाते हैं, अच्छी मान्यता होती है, तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम पैदल गए थे। हाँ, फिर शुरू से जाके वहाँ हालत खराब हो गई थी हम लोगों की, दर्शन तक ये नहीं सो गए,
0: मतलब इतना चले कि थक गए।
2: हाँ, तो बहुत मजा आया।
3: हाँ,
0: दोस्तों के साथ सफर में भी ज्यादा मजा आता है घूमने से ज्यादा।
3: फर्स्ट टाइम पैदल गए थे हम लोग कहीं।
0: पैदल
3: पता
0: टाइम लगा था आप लोग को पैदल चल के जाने में?
3: रात को 8 बजे निकले थे ना, फिर
2: 5 घंटे
0: पैदल चले थे
3: लगातार।
0: ठीक है बच्चों, आज हमने ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सी बातें की।
3: हाँ दीदी,
0: अभी तो तुम लोग छोटे छोटे हो और इतनी सारी जगह घूम के आए हो, और जब और बड़े हो जाओगे तो और जगह जब घूमने जाओगे तो इंजॉय करने के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी कोशिश करना।
2: हाँ दीदी, अभी तो सिर्फ इंडिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है,
0: बाद में विदेशों की भी करेंगे। और जहाँ भी जाएंगे उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे, ताकि वो हमेशा हमारे और भी काम में आए। ओके, आज की ये बातचीत हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद अमेरिका और भारत में भी अपने शिष्यों से सदा वार्तालाप किया करते थे। उन वार्तालापों को लिपिबद्ध किया गया है। इससे हमें विभिन्न विषयों पर स्वामी जी द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा विचारों के बारे में मालूम पड़ता है।
1: उनके शिष्य सभी विषयों पर उनसे प्रश्न पूछते और स्वामी जी भी बिना थके उन प्रश्नों का उत्तर देते। उनके उत्तरों से पता चलता है कि हर विषय पर वे गहन चिंतन मनन करते थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि दलितों को कैसे सुधारा जाए, तो उन्होंने जवाब दिया था,
2: तुम दूसरों को मनुष्य बनने का उपदेश देते हो पर उन्हें अच्छा भोजन नहीं दे सकते। मैं पिछले 4 वर्षों से इस समस्या पर विचार कर रहा हूँ। क्या गेहूं से पिटे हुए चावल चिवड़ा जैसी कोई चीज बनाई जा सकती है? मैं इस पर प्रयोग करना चाहता हूँ, तब हम प्रतिदिन एक भिन्न प्रकार का भोजन प्राप्त कर सकते हैं। पीने के जल के संबंध में मैंने एक छन्नी की खोज की जो हमारे देश के लिए उपयुक्त हो सके। मुझे एक कड़ाही जैसा चीनी मिट्टी का बर्तन मिला जिसमें पानी निकाला गया और सभी कीटाणु चीनी मिट्टी की कड़ाही में रह गए, किंतु क्रमशः छन्नी स्वयं सभी प्रकार के कीटाणुओं का जमघट बन जाएगी। सभी प्रकार की छन्नियों में यह खतरा रहता है। निरंतर खोज करने के बाद एक उपाय विदित हुआ जिससे पानी का अभिस्रावण किया गया और उसमें ऑक्सीजन लाई गई। इसके बाद जल इतना शुद्ध हो गया कि इसके प्रयोग के फलस्वरूप स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित है।
3: हम ईश्वर के पास कैसे पहुंच सकते हैं?
2: जब धाय बच्चे को बगीचे में ले जाती है और उसे खिलाती है, माँ उसे भीतर आने के लिए कहती है। बच्चा खेल में मग्न है और कहता है, मैं नहीं आऊंगा, खाने की मेरी इच्छा नहीं है। थोड़ी ही देर में बच्चा अपने खेल से थक जाता है और कहता है, मैं माँ के पास जाऊंगा। धाय कहती है, ये लो नई गुड़िया। पर बच्चा कहता है, अब मुझे गुड़ियों की तनिक भी इच्छा नहीं है, मैं तो माँ के पास जाऊंगा। जब तक वो चला नहीं जाता रोता रहता है। हम सभी बच्चे हैं, ईश्वर माँ है। हम लोग धन संपत्ति और इन सभी चीजों की खोज में डूबे हुए हैं, किंतु एक समय ऐसा आएगा जब हम जाग उठेंगे और ये प्रकृति हमें और खिलाने का प्रयत्न करेगी। तब हम कहेंगे, नहीं, मैंने बहुत पाया, अब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा।
3: यदि हम ईश्वर से अभिन्न हैं और सदैव एक हैं, तो क्या हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है?
2: हाँ, है, वो ईश्वर है। हमारा व्यक्तित्व परमात्मा है। तुम्हारा ये इस समय का व्यक्तित्व वास्तविक नहीं है, तुम सच्चे व्यक्तित्व की ओर अग्रसर हो रहे हो। व्यक्तित्व का अर्थ है अविभाज्यता। जिस दशा में हम हैं उस दशा को तुम व्यक्तित्व कैसे कह सकते हो? 1 घंटे भर तुम एक ढंग से सोचते हो और दूसरे घंटे में दूसरे ढंग से और 2 घंटे पश्चात अन्य ढंग से। व्यक्तित्व तो वो है जो बदलता नहीं है। यदि वर्तमान दशा शाश्वत काल तक बनी रहे तो ये बड़ी भयावह स्थिति होगी। तब तो चोर सदैव चोर ही बना रहेगा और अधर्मी अधर्मी ही। यदि शिशु मरेगा तो वो शिशु ही बना रहेगा। वास्तविक व्यक्तित्व तो वो है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है और ना कभी परिवर्तित होगा ही। वो हमारे अंतर में निवास करने वाला ईश्वर है।
3: स्वामी जी, किस कला को आप श्रेष्ठ मानते हैं, पूरब की या पश्चिमी कला?
2: यूनानी कला का रहस्य है प्रकृति के सूक्ष्मतम ब्योरों तक का अनुकरण करना, पर भारतीय कला का स्वरूप है आदर्श की अभिव्यक्ति करना। यूनानी चित्रकार की समस्त शक्ति कदाचित मांस के एक टुकड़े को चित्रित करने में ही व्यय हो जाती है, और वो उसमें इतना सफल होता है कि यदि कुत्ता उसे देख ले तो उसे सचमुच का मांस समझकर खाने दौड़ाए। किंतु इस प्रकार प्रकृति के अनुकरण में क्या गौरव है? कुत्ते के सामने यथार्थ मांस का एक टुकड़ा ही क्यों ना डाल दिया जाए। दूसरी ओर आदर्श की अतीन्द्रिय अवस्था को अभिव्यक्त करने की भारतीय प्रवृत्ति भद्दे और कुरूप के चित्रण में विकृत हो गई है। वास्तविक कला की उपमा दी जा सकती है जो कि पृथ्वी से उत्पन्न होती है, उसी से अपना खाद्य पदार्थ ग्रहण करती है, उसके संस्पर्श में रहती है, किंतु फिर भी उससे ऊपर ही उठी रहती है। इसी प्रकार कला का भी प्रकृति से संपर्क होना चाहिए, क्योंकि ये संपर्क न रहने पर कला का अधःपतन हो जाता है, पर साथ ही कला का प्रकृति से ऊंचा उठा रहना भी आवश्यक है। कला सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, प्रत्येक वस्तु कलापूर्ण होनी चाहिए।
1: स्वामी जी सभी कलाओं में नाट्य कला को श्रेष्ठ मानते थे। वे कहते हैं,
2: कला ध्यान प्रधान वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। नाटक सब कलाओं में कठिनतम है, उनमें दो चीजों को संतुष्ट करना पड़ता है, पहले कान, दूसरे आंखें। दृश्य का चित्रण करने में यदि एक ही चीज का अंकन हो जाए तो काफी है, परंतु अनेक विषयों का चित्रांकन करके भी केंद्रीय रस अक्षुण्य रख पाना बहुत कठिन है। दूसरी मुश्किल चीज है मंच व्यवस्था, यानी विविध वस्तुओं को इस प्रकार सजाना कि केंद्रीय रस अक्षुण्य रहे।
3: स्वामी जी, हम तो मनुष्य हैं, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? कब हम ईश्वर के साथ एकाकार हो पाएंगे?
2: मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनो, तब तुम देखोगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं तुम्हारा अनुसरण करेंगी। परस्पर के घृणित द्वेष भाव को छोड़ो और सद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस और सद्वीर्य का अवलंबन करो। तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाओ। तुलसी आयो जगत में, जगत हसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, आप हसे जग रोए। एक बात विचार कर देखो, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? अगर ऐसा कर सको तब तो तुम मनुष्य हो, अन्यथा तुम मनुष्य किस बात के?
0: स्वामी जी अमेरिका के ब्रुकलिन शहर में श्रोताओं के सम्मुख बोल रहे थे। भारत की नारी विषय पर उन्होंने कहा था,
2: नारीत्व का आदर्श भारत की उस आर्य जाति में केंद्रित है जो संसार के इतिहास में प्राचीनतम है। उस जाति में नर और नारी पुरोहित थे, अथवा जैसा वेद उन्हें कहते हैं वे सहधर्मी थे। प्रत्येक परिवार का अपना अग्निकुंड अथवा वेदी थी, जिस पर विवाह के समय विवाह की अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और उसे उस समय तक जीवित रखा जाता था जब तक कि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती थी, और तब उसकी चिंगारी से चिता को अग्नि दी जाती थी। यहां पति और पत्नी एक साथ यज्ञ में बलि चढ़ाते थे, और ये भावना यहां तक पहुंच गई थी कि पुरुष अकेला पूजा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये माना जाता था कि केवल यह अधूरा है और इसी कारण कोई अविवाहित मनुष्य पुरोहित नहीं बन सकता था। यह बात प्राचीन रोम और यूनान के बारे में भी सत्य है।
1: कालांतर में नारी के पतन का कारण समझाते हुए उन्होंने कहा था,
2: पर एक पृथक और विशिष्ट पुरोहित वर्ग के उदय हो जाने से इन सब देशों में नारी का सह पौरोहित के पीछे पड़ जाता है। पहले ये सेमिटिक रक्त वाली असीरियन जाति थी जिसने इस सिद्धांत की घोषणा की थी कि लड़कियों को विवाहित होने पर भी ना कोई हक और ना कोई अधिकार है। ईरानियों ने बेबीलोनिया के इस विचार को विशेष गहराई के साथ हृदयंगम किया और उनके द्वारा ये रोम में और यूनान में पहुंचाया गया और नारी की स्थिति का सभी स्थानों पर पतन हुआ।
1: समाज में परिवर्तन आया और स्त्री पुरुष समीकरण भी बदल गया। स्वामी जी ने समझाया,
2: ऐसा होने का एक दूसरा कारण था, विवाह की प्रणाली में परिवर्तन। प्राचीनतम प्रणाली मात्र केंद्रित थी, अर्थात उसमें केंद्र मां थी और जिसमें लड़कियां उसके पद पर प्रतिष्ठित होती थी। इससे बहुपतित्व की एक विचित्र प्रथा उत्पन्न हुई जिसमें प्रायः 5 या 6 भाई एक पत्नी से विवाह करते थे। वेदों में भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि जब कोई पुरुष निसंतान मर जाता था तो उसकी विधवा को उस समय तक दूसरे पुरुष के साथ रहने की अनुमति थी जब तक कि वो मां न बन जाए। होने वाले बच्चे अपने पिता के नहीं वरन उसके मृत पति के होते थे। आगे चलकर विधवा को पुनः विवाह करने की अनुमति हो गई थी, जिसका आधुनिक विचार निषेध करता है।
0: जौहर प्रथा पर स्वामी जी ने कहा,
2: पर इन उद्भावनाओं के साथ साथ राष्ट्र में वैयक्तिक पवित्रता का एक अति तीव्र विचार उदय हुआ। वेद प्रत्येक पृष्ठ पर वैयक्तिक पवित्रता की शिक्षा देते हैं। इस विषय में नियम अत्यंत कठोर है। प्रत्येक लड़का और लड़की विश्वविद्यालय भेजा जाता था, जहां वे अपने 20वें अथवा 30वें वर्ष तक अध्ययन करते थे। यहां तनिक सी भी अपवित्रता का दंड भी प्रायः निर्दयता पूर्वक दिया जाता था। वैयक्तिक पवित्रता के इस विचार ने अपने को जाति के हृदय पर इतनी गहराई के साथ अंकित किया है कि वो लगभग पागलपन बन गया है। इसका ज्वलंत उदाहरण चित्तौड़ विजय के अवसर पर मिलता है। अपने से कहीं अधिक प्रबल शत्रु के विरुद्ध पुरुष नगर की रक्षा में संलग्न थे, और जब नारियों ने देखा कि पराजय निश्चित है तो उन्होंने चौक में एक भीषण अग्नि प्रज्वलित की, और जैसे ही शत्रु ने द्वार तोड़े 74,500 नारियां उस विशाल चिता में कूद पड़ी तथा लपटों में जल गई। ये शानदार उदाहरण भारत में आज तक चला आया है। जब किसी पत्र पर 74,500 लिखा होता है तो उसका अर्थ यह होता है कि कोई अनाधिकृत रूप से पत्र को पढ़ेगा वो उस अपराध के समान विशाल अपराध का दोषी होगा जिसने चित्तौड़ की उन पवित्र नारियों को मौत के मुंह में भेजा था।
1: नारी की स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ती गई। हर गुनाह का दोष उस पर मढ़ा जाने लगा।
2: इसके बाद भिक्षुओं सन्यासियों का युग आता है। ये बौद्ध धर्म के उदय के साथ आया। ये धर्म कहता है कि केवल भिक्षु ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जो हेवन के समान कोई वस्तु है। फल ये हुआ कि संपूर्ण भारत एक अत्यंत विशाल मठ बन गया। केवल एक उद्देश्य था, एक सतत संघर्ष था, पवित्र रहना। सब दोष नारी के सिर मढ़ा गया। लोकोक्तियां भी उनके विरुद्ध चेतावनी देने लगी। उनमें से एक थी, नरक का द्वार क्या है? पर इसका उत्तर था नारी। दूसरी थी, वो जंजीर क्या है जो हमें मिट्टी से बांधती है? नारी। एक और थी, अंधों में सबसे अधिक अंधा कौन है? वो जो नारी द्वारा ठगा जाता है।
0: स्वामी जी पूरब और पश्चिम की तुलना करते हैं। वे कहते हैं पश्चिम के मठों में भी ऐसे ही विचार पाए जाते हैं।

0: सब मठ व्यवस्थाओं के विकास का अर्थ सदा नारियों की अवहेलना रहा है।
1: पर अंततः नारीत्व की एक दूसरी कल्पना का उदय हुआ। पश्चिम में उसे अपना आदर्श पत्नी में और भारत में मां में मिला। पर यह ना सोचो कि यह परिवर्तन पुरोहितों के द्वारा हुआ। मैं जानता हूं कि वे सारे संसार की प्रत्येक वस्तु पर सदा अपना दावा रखते हैं, और मैं ये कहता हूं यद्यपि मैं स्वयं एक पुरोहित हूं, मैं प्रत्येक धर्म और देश के मसीहा के सामने नत जानू, पर निष्पक्षता मुझे यह कहने को बाध्य करती है कि यहां पश्चिम में नारी का उत्थान जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे लोगों और क्रांतिकारी फ्रांसीसी दार्शनिकों के द्वारा किया गया। धर्म ने निसंदेह कुछ किया है, पर सब नहीं।
0: स्वामी शुद्धानंद स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिष्ठित बेलूड़ मठ के एक सन्यासी थे। उन्होंने अपने संस्मरण में स्वामी जी के व्यक्तित्व का एक नया पक्ष उजागर किया है।
2: एक दिन अपराह्न काल में स्वामी जी मठ के बरामदे में हम लोगों को लेकर वेदांत पढ़ाने बैठे। संध्या होने ही वाली थी। स्वामी रामकृष्णानंद को इससे कुछ दिन पहले स्वामी जी ने प्रचार कार्य के लिए मद्रास भेजा था, इसलिए उस समय मठ में पूजा आरती आदि उनके एक दूसरे गुरु भ्राता संभालते थे। आरती में जो लोग उनकी सहायता करते थे उन्हें भी लेकर स्वामी जी वेदांत पढ़ाने बैठे थे। उसी समय उक्त गुरु भ्राता आकर नवीन सन्यासी ब्रह्मचारियों से कहने लगे, चलो जी चलो, आरती करनी होगी, चलो। उस समय एक ओर स्वामी जी के आदर्श से सभी वेदांत पढ़ने में लगे हुए थे और दूसरी ओर इनके आदेश से ठाकुर जी की आरती में सहयोग देना चाहिए। अतः नवीन साधु लोग कुछ समय असमंजस में पड़ गए। तब स्वामी जी ने अपने गुरु भ्राता को संबोधित कर उत्तेजित होकर कहने लगे, ये जो वेदांत पढ़ा जा रहा था ये क्या ठाकुर की पूजा नहीं है? केवल एक चित्र के सामने जलती हुई बत्ती घुमाना और झांझ पीटना, मालूम होता है इसी को तुम भगवान की आराधना समझते हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी ऊंची है। इस तरह कहते कहते जरा और भी अधिक उत्तेजित हो इस प्रकार वेदांत पाठ में बाधा उपस्थित करने के कारण कुछ और भी अधिक कड़े वाक्य कहने लगे। फल यह हुआ कि वेदांत पाठ बंद हो गया। कुछ देर बाद आरती भी समाप्त हो गई, किंतु आरती के बाद उक्त गुरु भ्राता चुपके से कहीं चले गए। तब तो स्वामी जी भी अत्यंत व्याकुल होकर बारंबार, वो कहां गया? क्या वो मेरी काली खाकर गंगा में तो नहीं डूब गया?
3: सब लोग डर गए, सभी उस युवा सन्यासी को ढूंढने लगे,
2: इस तरह कहने लगे, और सभी लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए चारों ओर भेजा। बहुत देर बाद मठ की छत पर चिंतित भाव से उन्हें बैठे हुए देखकर एक व्यक्ति उन्हें स्वामी जी के पास ले आए। उस समय स्वामी जी का भाव एकदम परिवर्तित हो गया। उन्होंने उनका कितना दुलार किया और कितनी मधुर वाणी में उनसे बातें करने लगे। हम लोग स्वामी जी का गुरु भाई के प्रति अपूर्व प्रेम देखकर मुग्ध हो गए। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि गुरु भाइयों के ऊपर स्वामी जी का अगाध विश्वास और प्रेम है। उनकी आंतरिक चेष्टा यही रहती थी कि वे लोग अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखकर अधिकाधिक उन्नत एवं उदार बन सके। बाद में स्वामी जी के श्रीमुख से अनेक बार सुना है कि स्वामी जी जिनकी भर्त्सना करते थे वे ही उनके विशेष प्रीति पात्र थे।
3: इस घटना के बारे में जानकारी हमें बेलूड़ मठ में रखी डायरी से मिली। शुद्धानंद कहते हैं,
2: एक दिन बरामदे में टहलते टहलते उन्होंने मुझसे कहा, देखो मठ की एक डायरी रखना और प्रत्येक सप्ताह मठ की रिपोर्ट भेजना। स्वामी जी के इस आदेश का मैंने और बाद में अन्य व्यक्तियों ने भी पालन किया था। अभी भी मठ की वो आंशिक छोटी डायरी मठ में सुरक्षित है। उससे अभी भी मठ के क्रम विकास और स्वामी जी के संबंध में बहुत से तथ्य संग्रह किए जा सकते हैं।
0: बेलूड़ मठ की डायरी से हमें कुछ और प्रश्नोत्तर मिले हैं, आइए सुने।
4: हमारे चरित्र का सर्वोच्च आदर्श क्या होना चाहिए?
5: त्याग।
4: बौद्ध धर्म ने अपने दाय के रूप में भ्रष्टाचार कैसे छोड़ा?
5: बौद्धों ने प्रत्येक भारतवासी को भिक्षु या भिक्षुणी बनाने का प्रयत्न किया था, परंतु सब लोग तो वैसे नहीं हो सकते। इस तरह किसी भी व्यक्ति के साधु बन जाने से भिक्षु भिक्षुणियों में क्रमशः शिथिलता आती गई। और भी एक कारण था, धर्म के नाम पर तिब्बत तथा अन्यान्य देशों के बर्बर आचारों का अनुकरण करना। वे इन स्थानों में धर्म प्रचार के हेतु गए और इस प्रकार उनके भीतर उन लोगों के दूषित आचार प्रवेश कर गए। अंत में उन्होंने भारत में इन सब आचारों को प्रचलित कर दिया।
4: ईश्वर की सेवा करने की क्या आवश्यकता है?
5: यदि तुम एक बार ईश्वर के अस्तित्व को मान लेते हो तो उनकी सेवा करने के यथेष्ट कारण पाओगे। सभी शास्त्रों के मतानुसार भगवत सेवा का अर्थ है स्मरण। यदि तुम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हो तो तुम्हारे जीवन में पग पग पर उनको स्मरण करने का हेतु सामने आएगा।
2: क्या माया अद्वैतवाद से भिन्न है?
5: नहीं, दोनों एक ही हैं। मायावाद को छोड़ अद्वैतवाद की और कोई भी व्याख्या संभव नहीं।
4: कभी कभी जब से थकान मालूम होने लगती है तब क्या उसकी जगह स्वाध्याय करना चाहिए या उसी पर आरूढ़ रहना चाहिए?
5: दो कारणों से जब मैं थकान मालूम होती है, कभी कभी मस्तिष्क थक जाता है और कभी कभी आलस्य के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। यदि प्रथम कारण है तो उस समय कुछ क्षण तक जप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हट पूर्वक जप में लगे रहने से विभ्रम या विक्षिप्तावस्था आ जाती है। परंतु यदि द्वितीय कारण है तो मन को बलात् जप में लगाना चाहिए।
4: कभी कभी जप करते समय पहले आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन तब आनंद के कारण जप में मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में क्या जप जारी रखना चाहिए?
5: हाँ, वो आनंद आध्यात्मिक साधना में बाधक है, उसे रसास्वादन कहते हैं, उससे ऊपर उठना चाहिए।
2: यदि मन इधर उधर भागता रहे तब भी क्या देर तक जप करते रहना ठीक है?
5: हाँ, उसी प्रकार जैसे अगर किसी बदमाश घोड़े की पीठ पर कोई अपना आसन जमाए रखे तो वो उसे वश में कर लेता है।
0: भगिनी निवेदिता भी अक्सर स्वामी जी से अपनी शंका दूर करने के लिए प्रश्न पूछा करती थी। उन्हीं की डायरी से ये प्रसंग मिला है।
6: पृथ्वीराज एवं चंद जिस समय कन्नौज में स्वयंवर के लिए जाने को प्रस्तुत हुए उस समय उन्होंने किसका छद्मवेश धारण किया था? मुझे याद नहीं आ रहा है।
5: दोनों ही भाट का वेश धारण करके गए थे।
6: क्या पृथ्वीराज ने संयुक्ता के साथ इसलिए विवाह करना चाहा था कि वह अलौकिक रूपवती थी तथा उसके प्रतिद्वंदी की पुत्री थी? संयुक्ता की परिचारिका होने के लिए क्या उन्होंने अपनी एक दासी को सिखा पढ़ा कर वहां भेजा था? और क्या इसी वृद्धा धात्री ने राजकुमारी के हृदय में पृथ्वीराज के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित किया था?
5: दोनों ही परस्पर के रूप गुणों का वर्णन सुनकर तथा चित्र अवलोकन कर एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हुए थे। चित्र दर्शन के द्वारा नायक नायिका के हृदय में प्रेम का संचार भारत की एक प्राचीन रीति है।
6: गोप बालकों के बीच में कृष्ण का प्रतिपालन कैसे हुआ?
5: ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि कृष्ण कंस को सिंहासन से विच्युत करेंगे। इस भय से कि जन्म लेने के बाद कृष्ण कहीं गुप्त रूप से प्रतिपालित हो, दुराचारी कंस ने कृष्ण के माता पिता को कैद में डाल रखा था। यद्यपि वे कंस की बहन और बहनोई थे तथा इस प्रकार का आदेश दिया कि उस वर्ष से राज्य में जितने बालक पैदा होंगे उन सब की हत्या की जाएगी। अत्याचारी कंस के हाथ से रक्षा करने के लिए कृष्ण के पिता ने उन्हें गुप्त रूप से यमुना पार पहुंचाया था।
6: उनके जीवन के इस अध्याय की परिसमाप्ति किस प्रकार हुई थी?
5: अत्याचारी कंस के द्वारा आमंत्रित होकर वे अपने भाई बलदेव तथा अपने पालक पिता नंद के साथ राजसभा में पधारे। अत्याचारी ने उनकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा था, पर उन्होंने अत्याचारी का वध किया, किंतु स्वयं राजा न बनकर कंस के निकटतम उत्तराधिकारी को उन्होंने राज सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने कभी कर्म के फल को स्वयं नहीं भोगा।
6: इस समय की किसी नाटकीय घटना का उल्लेख क्या आप कर सकते हैं?
5: इस समय का जीवन अलौकिक घटनाओं से परिपूर्ण था। बाल्यावस्था में वे अत्यंत ही चंचल थे। चंचलता के कारण उनकी गोपिका माता ने एक दिन उन्हें दधि मंथन की रस्सी से बांधना चाहा, किंतु अनेक रस्सियों को जोड़कर भी वे उन्हें बांधने

0: इसलिए परीक्षा के निमित्त एक दिन उन्होंने समस्त गायों तथा गो बालकों को चुराकर एक गुफा में निद्रित कर रखा, किंतु वहां से लौटकर उन्होंने देखा कि वे ही गाय तथा गो बालक कृष्ण के चारों ओर विद्यमान है। वे फिर उनको भी चुरा कर ले गए और उन्हें भी छिपा कर रखा, किंतु लौटने पर उन्हें फिर वे ज्यों के त्यों दिखाई देने लगे। तब उनके ज्ञान नेत्र खुले, उन्होंने देखा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड तथा सहस्त्र सहस्त्र ब्रह्मा कृष्ण की देह में विराजमान है।
1: स्वामी जी कहानी सुनाते सुनाते उसकी व्याख्या भी करते रहते थे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
0: कालिया नाग ने यमुना के जल को विषाक्त कर डाला था, इसलिए उन्होंने उसके फन पर नृत्य किया था। उनके द्वारा इंद्र की पूजा बंद किए जाने के फलस्वरूप कुपित होकर इंद्र ने जब इस प्रकार प्रबल वेग से जल बरसाना प्रारंभ किया कि समस्त ब्रजवासी मानो उसमें डूब कर मर जाएंगे, तब कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया। कृष्ण ने एक अंगुली से छत्र की तरह गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाकर धारण किया और उसके नीचे सभी ने आश्रय लिया। बाल्यकाल से ही वे नाग पूजा तथा इंद्र पूजा के विरोधी थे। इंद्र पूजा एक वैदिक अनुष्ठान है। गीता में सर्वत्र ये स्पष्ट है कि वे वैदिक अनुष्ठानों के पक्षपाती नहीं थे। अपने जीवन में इसी समय उन्होंने गोपियों के साथ लीला की थी। उस समय उनकी आयु 11 वर्ष की थी।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: बिजली बचाओ देश बनाओ।
1: आप होबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM होबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए 22 तारीख की कुछ खास बातें आपसे शेयर करूंगा 22 जून की। और आज विशेष गणेश घोष, अमरीश पुरी, टॉम अल्टर, अनीता पॉल दुराई, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही कुछ जगन्नाथ दास रत्नाकर, एलवी प्रसाद, केदारनाथ अग्रवाल, आनंद कौशल्यान, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए उनके बारे में भी बातें करेंगे कुछ अगर समय मिलता है। और आज विशेष जिनके बारे में बात करेंगे, एक स्पेशल अमरीश पुरी की कहानी सुनकर आपको अच्छा लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी कभी किसी से समंदर का रास्ता नहीं पूछती है। आप सुना है रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रुक, ओए रुक ओए रुक, हेलमेट कहां है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, ओए इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
0: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
2: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और 22 विशेष जून आपके लिए खुशनुमा जीवन बना रहे हैं, ऐसे शुभ आशा के साथ आइए बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें आप सभी जानते भी हैं और समझते भी हैं। तो मैं उनके बारे में बात करूंगा, अमरीश पुरी के बारे में। जी हाँ, एक लेजेंडरी रंगमंच तथा हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायक के रूप में प्रसिद्धि बटोरने वाले अभिनेता, चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी हिंदी फिल्म की दुनिया का एक मुख्य स्तंभ रहे। अभिनेता के रूप में निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाले अमरीश पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि पाई। 1984 में बनी स्टीवन सिल्बर की फिल्म इंडियाना जॉन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में मोला राम की भूमिका निभाई थी जो काफ़ी चर्चित रही। इस भूमिका का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडा कर रहने का फैसला किया। इस कारण खलनायक की भूमिका भी उन्हें काफ़ी मिली। व्यावसायिक फिल्मों में प्रमुखता से काम करने के बावजूद समानांतर या अलग हटकर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम बना रहा और वे इस तरह की फिल्मों में जुड़े रहे। फिर आया खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चरित्र अभिनेता की भूमिकाओं वाले अमरीश पुरी का दौर, और इस दौर में भी उन्होंने अपनी अभिनय कला का जादू कम नहीं होने दिया और इसमें भी काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने काम किया। तो आइए इनका जो अमरीश पुरी की जन्म आज ही के दिन 1932 में पंजाब में हुआ, अपने बड़े भाई मदन पुरी का अनुसरण करते हुए फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई पहुंचे, लेकिन पहले ही स्क्रीन टेस्ट में विफल रहे और उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी कर ली और बीमा कंपनी की नौकरी के साथ ही वह नाटककार सत्यदेव दुबे के लिखे नाटकों पर पृथ्वी थिएटर में काम करने लगे। रंगमंचीय प्रस्तुति ने उन्हें टीवी विज्ञापन तक पहुंचाया, जहां से वो फिल्मों में खलनायक के किरदार तक पहुंचे। तो आइए इनकी कहानी को मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आप बात करते हैं अमरीश पुरी के बारे में विस्तार से। डायलॉग, ड्रामा, मिस्ट्री अभी आपके लिए।
2: दमदार आवाज के मालिक, जबरदस्त एक्टर, चाहे रंगमंच हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, हर जगह अमरीश पुरी ने अपना लोहा मनवाया। जब ऑडियंस ने इनकी तारीफ की तो इन्होंने दोहराया, मोगैम्बो खुश हुआ।
3: तुम्हारे जोश और तुम्हारी मासूमियत पर मुझे तरस आता है, लेकिन जिस दिन अदालत में तुम मेरे सामने आ गए, ये सारा घमंड हमेशा के लिए भूल जाओ।
2: अमरीश पुरी का जन्म पंजाब के नवन शहर इलाके में हुआ। तारीख 22 जून सन 1932। माँ का नाम सरदारनी वेद कौर और पिता सरदार निहाल सिंह पुरी। पांच बच्चों में अमरीश पुरी चौथे नंबर पर थे और इनके दो बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी भी मशहूर एक्टर्स रहे। अमरीश पुरी ने अपनी ग्रेजुएशन बीएम कॉलेज शिमला से की और अपने बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी के नक्शे कदमों पर चलते हुए ये पहुंच गए मुंबई। ये वो वक्त था जब इनके बड़े भाई मदन पुरी ने अपने आप को बतौर विलेन एस्टैब्लिश कर लिया था, पर अमरीश पुरी की किस्मत कुछ और ही बयां कर रही थी। पहले ही स्क्रीन टेस्ट में अमरीश पुरी फेल हो गए और नतीजतन इन्हें एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में नौकरी करनी पड़ी। पर एक अच्छा हुनर आखिर कब तक छिपा रहता। सन 1961 में थिएटर के स्टॉलवर्ट इब्राहिम अलकाजी ने अमरीश पुरी को प्रोत्साहित किया कि वो रंगमंच पे काम करें और सन 1961 में अमरीश पुरी एक्टिवली थिएटर में आ गए। बाद में महान रंगकर्मी सत्यदेव दुबे के साथ अमरीश पुरी बतौर असिस्टेंट काम करने लगे। अपने कई इंटरव्यूज में अमरीश पुरी साहब ने सत्यदेव दुबे को अपना गुरु माना है। ये स्टेज पर जरूर काम कर रहे थे पर सिल्वर स्क्रीन इनसे कोसों दूर थी।
4: लड़का बहुत होशियार है।
2: और भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमरीश पुरी 21 साल तक सरकारी नौकरी करते रहे। रंगमंच पर इन्होंने अपनी धाक ऐसे जमाई कि इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया और धीरे धीरे टीवी कमर्शियल्स में इनकी एंट्री हुई और 40 साल की उम्र में इन्होंने पहली फिल्म की।
4: देखा, उन्होंने बुक कर लिया, आप भी फौरन साइन कर लीजिए वरना पिक्चर लगते ही आसमान पे चढ़ जाएगा।
2: एक मशहूर किस्सा ये भी है कि एक नाटक के मंचन के दौरान एक मशहूर डायरेक्टर की नजर अमरीश पुरी पे पड़ी और फिर इन्हें फिल्म रेशमा और शेरा के लिए साइन किया गया।
3: मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, बिल्कुल मुफ्त। सरकार ने बहुत सारे अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, भेज दीजिए कहीं।
2: अमरीश पुरी उन अभिनेताओं में से रहे जो सिर्फ अपनी एक्टिंग एबिलिटीज के लिए ही नहीं जाने जाते थे बल्कि एक भारी भरकम आवाज के लिए भी।
3: अगर ये बात है तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
2: ये बात कम लोग जानते हैं कि अमरीश पुरी तकरीबन 3 से 4 घंटा रोज आवाज को और मजबूत बनाने का रियाज किया करते थे।
3: और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने 75 सबूत पेश कर सकता हूँ।
2: जहाँ एक तरफ ये जबरदस्त विलेन बनकर सामने आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पैरेलल सिनेमा में भी इन्हें खासी शोहरत हासिल हो रही थी। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत, मंथन, भूमिका और सूरज का सातवा घोड़ा के लिए अमरीश पुरी को बहुत सराहा गया था।
3: आपकी मोहब्बत है जो ऐसा कह रहे हैं।
2: इनके हुनर की चर्चा इतनी बढ़ी कि हॉलीवुड के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को भी इनके दरवाजे पर आना पड़ा था। इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बात दरअसल यूं रही, अमेरिकन डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग अमरीश पुरी का स्क्रीन टेस्ट लेना चाहते थे और अमेरिका का इनवाइट भी इन्हें भेजा गया था, पर अमरीश पुरी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर स्क्रीन टेस्ट लेना ही है तो उन्हें हिंदुस्तान आना होगा। और ठीक वैसा ही हुआ, अमेरिकन्स को अमरीश पुरी के लिए हिंदुस्तान आना पड़ा और चंद दिनों में ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया। फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी का किरदार जबरदस्त तरीके से सराहा गया।
4: अच्छा है, अच्छा है।
3: अकेले खेलने में कम से कम हारने का डर तो नहीं होता।
2: अमरीश पुरी एक कंप्लीट एक्टर थे। उन्होंने सिर्फ विलन के ही किरदार नहीं निभाए बल्कि कुछ ऐसे पॉजिटिव किरदार निभाए जिन्हें देख आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिल्म घातक इसका एक अनोखा एग्जाम्पल है। फिल्म गर्दिश, मुस्कुराहट और विरासत में भी अमरीश पुरी ने जबरदस्त किरदार निभाए थे। फिल्म विरासत का किरदार जो इन्होंने निभाया था, दरअसल वो दिलीप कुमार और राजेश खन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था और बाद में इनकी झोली में आया। पर वो किरदार जिसने अमरीश पुरी की विलेनी को अमर बना दिया, वो था मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो। हिंदी फिल्मों के मशहूर विलेन्स में मोगैम्बो ने एक अमर जगह बना ली थी। अमरीश पुरी एक ऐसे विलेन रहे जिनके सामने बड़े से बड़े हीरो को टक्कर देने में खासी मुश्किल आती थी।
5: मगर ऐसा हो जाए तो अरुण वर्मा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा।
2: अगर हम रुख करें अमरीश पुरी साहब के निजी जीवन की तरफ तो हमें पता चलता है कि उनका विवाह उर्मिला दिवेकर से हुआ था, जिनसे उन्हें दो बच्चे हुए, बेटा राजीव और बेटी नम्रता। 12 जनवरी सन 2005 में ब्रेन हैमरेज से अमरीश पुरी का देहांत हो गया। इनकी उम्र 72 साल थी। भले ही सिल्वर स्क्रीन पर अमरीश पुरी ने 40 साल की उम्र में शुरुआत की, पर बतौर कलाकार उनकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। और जैसा भी माध्यम रहा हो, अमरीश पुरी ने अपना लोहा मनवाया। एक वक्त वो भी आया जब भारतीय सिनेमा में विलेन का जिक्र होता तो पहला नाम अमरीश पुरी का ही आता।
3: दरअसल बात यह है कि इतने लोगों से मिलना जुलना रहता है कि सारे चेहरे याद रखना भी मुश्किल हो जाता है।

0: तो ये थी कुछ खास बातें अमरीश पुरी के बारे में। आशा करूंगा आप सुनते सुनते जो है खो गए होंगे और पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई होगी और किसी फिल्म की याद भी आ गई होगी और अपने दोस्तों की भी याद जिनके साथ आप गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपके लिए, सुनते रहो मुस्कुराते रहो बो गया बो खुश हुआ आपके लिए।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में

0: टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
0: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप खबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आइए अब बात करते हैं विशेष गणेश घोष के बारे में। जी हाँ, बंगाल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और राजनीतिक थे। मानिक लता बमखान के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 1928 में वे जेल से बाहर निकले और कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया। सन 1946 में गणेश घोष कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए थे और वे 1952 में बंगाल विधानसभा के और 1967 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। इस तरह से गणेश घोष का जिन जन्म आज ही के दिन 22 जून 1900 को ब्रिटिशकालीन भारत में बंगाल में हुआ था और विद्यार्थी जीवन में ही वे आज़ादी के संग्राम में शामिल हो गए थे और 1922 की यात्रा में जब बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो गणेश घोष और उनके साथी अनंत सिंह ने नगर का सबसे बड़ा विद्यालय बंद करा दिया था। इन दोनों युवकों ने चिटगांव की सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल की भी अगुवाई की थी। आइए, जेल यात्रा की कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा गणेश घोष की। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया तो गणेश कोलकाता के जादवपुर इंजीनियरिंग में कॉलेज में भर्ती हो गए और 1923 में उन्हें मानिकलता बमखांड के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। कोई प्रमाण न मिलने के कारण उन्हें सजा तो नहीं हुई पर सरकार ने 4 वर्ष के लिए नज़रबंद कर दिया था। और इसके बाद की बात करें तो काफ़ी समय पर जो है इनको जेल जाना पड़ा। कुछ ना कुछ चीज़ें होती रही और फिर जेल जाने की नौबत बीच बीच में आती रही। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना देश सेवा नहीं छोड़ा और देश सेवा में लगे रहे। तो आखिर ऐसा हुआ कि सूर्य सेन के संपर्क में आ गए और सूर्य सेन जी इनको जो है काफ़ी अपने अधिवेशन में भाग लेने के लिए क्रांतिकारी सूर्य सेन ने घोष को अपने साथ रख लिया चटगांव में। फिर पूरी तैयारी के बाद क्रांतिकारियों ने वहाँ के टेलीफोन तार और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर एक साथ आक्रमण कर दिया था। इनका इरादा शास्त्रगार पर कब्जा करके फिर ब्रिटिश सरकार के सैनिकों का सामना करने का था। इस आक्रमण से अधिकारी एक बार तो सकते में आ गए परंतु क्रांतिकारियों को शस्त्रगार से शस्त्र तो मिल गए पर गोला बारूद जिसे अंग्रेजों ने दूसरी जगह छिपा कर रखा था नहीं मिल सका। इसलिए क्रांतिकारी की घोषणा करने के बाद भी ये उसे कायम नहीं रख सके और उन्हें सूर्य सेन के साथ जलालाबाद की पहाड़ियों के पहाड़ियों में चले जाना हुआ। अब करते क्या, क्योंकि चीज़ें जो हैं ऐसी होती हैं तो कुछ चीज़ें मिल गई कुछ चीज़ें रह गई तो फिर काम भी नहीं बना। और इस बीच गणेश घोष अपने साथियों से बिछड़ गए और फ्रांसीसी बस्ती चंद्र नगर चले गए। वहीं गिरफ्तार करके कोलकाता लाए गए और फिर 1932 में अजन्म कारावास की सजा अंडमान निकोबार भेजा गया। आज़ादी के बाद भी उनके अनेक आंदोलन में भाग लिया और अपने जीवन के लगभग 27 वर्ष जेल में बिताए। अब समझ सकते हैं। लोकसभा सदस्य गणेश घोष 1952 में बंगाल विभाजन सभा के ओर से 1937 में लोकसभा के सदस्य चुने गए और इस तरह से राजनीति में आज़ादी के बाद तो शिरकत की इन्होंने। कम्युनिस्ट पार्टी का जो विभाजन हुआ उस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में ये शामिल हो गए और इस तरह से 1994 में कोलकाता में इनका निधन हुआ 16 अक्टूबर को। तो ये थी कुछ खास बातें गणेश घोष के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: देखना जी देखना, दिल न चुराए।

बचके बचके बचके बाकी अदाई।

बच के बच के बाकी दाई देख नदी देख।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। अब बात करते हैं अनीता जी के बारे में। भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान है। 18 साल भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम के लिए खेली है अनीता। 9 एशियन बास्केटबॉल कॉन्फिडेंस ABC चैंपियनशिप खेलने वाली पहली भारतीय महिला जो लगातार राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करती है। अनीता के नाम नेशनल चैंपियनशिप में 30 पदक है। चेन्नई की रहने वाली अनीता पिद्दुराई 11 साल की उम्र में ही बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और वॉलीबॉल एथलेटिक जैसे पसंद खेल थे इनके, लेकिन उनके स्कूल के बास्केटबॉल कोच ने उन्हें इस खेल को चुनने की सलाह दी। ये उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 19 साल की उम्र में अनीता पोल्दुराई सीनियर टीम का नेतृत्व करने वाली सबसे कम उम्र की कप्तान बन गई। अनीता ने दोहा 2013 में प्रथम 3x3 FIBA एडिशन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2012 में हायांग चीन के तीसरे एशियाई बीच गेम्स में स्वर्ण पदक, 2011 में श्रीलंका के दक्षिण एशियाई बीच गेम्स में स्वर्ण पदक और 2009 में वियतनाम के एशियाई इंडोर गेम्स में रजत पदक जीता था। इस तरह से 2017 में उन्हें भारतीय अंडर 16 बास्केटबॉल टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया था। 2018 में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। 2021 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें अनीता पोद्दुराई के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। अभी आपके लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं। इनका नाम हमेशा आपने सुना भी होगा और ये एक ऐसे कलाकार रहे जो अंग्रेज लगते हैं और हमेशा हिंदी फिल्मों में ने मार खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, टॉम अल्टर। तो टॉम अल्टर की बायोग्राफी को अगर देखा जाए तो बड़ी यूनिक और सिंपल कहानी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आदमी जो है अपने जीवन यापन करने के लिए क्या क्या नहीं करता है ना। तो आइए टॉम अल्टर की कहानी अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: ये दास्तां है एक ऐसे अभिनेता की जिसे अक्सर अंग्रेज ही माना गया, लेकिन बहुत ही अच्छी हिंदी और उर्दू ये बोला करते थे। हिंदुस्तान में ही इनका जन्म हुआ और इनकी तरबियत भी हिंदुस्तान में ही हुई। नाम थॉमस बीच ऑल्टर, जिन्हें हम टॉम ऑल्टर के नाम से जानते हैं।
4: यू ब्लडी हेडमास्टर, तुम लोग हमको फूल बनाता है, फूल बनाता है।
3: इनका जन्म हुआ 22 जून सन 1950 में। इनके दादा दादी अमेरिका के ओहियो शहर से हिंदुस्तान के मद्रास शहर में आ गए और वहां से चले गए लाहौर, जो कि अब भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान में है। इनके पिता का जन्म हुआ सियालकोट में। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो इनके दादा दादी ने पाकिस्तान को अपना मुल्क चुना और इनके वालिद हिंदुस्तान में ही रहे। अलाहाबाद, जबलपुर, सहारनपुर जैसे शहरों में रहने के बाद इनका परिवार उत्तराखंड के राजपुर इलाके में जाके बस गया। इनकी एक बड़ी बहन है मार्था और बड़े भाई हैं जॉन, जो कि खुद एक कवि हैं। अंग्रेजों के जमाने में टॉम ऑल्टर को नीली आंखों वाले साहिब के नाम से भी जाना जाता था।
5: माफ कीजिएगा।
3: मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई और जब ये 18 बरस के हुए तब इन्हें येल यूनिवर्सिटी भेजा गया अमेरिका। पर जब ये अमेरिका से वापस आए तो सेंट थॉमस स्कूल में, जो कि हरियाणा के जगाधरी इलाके में है, वहाँ पर ये टीचर बन गए। तकरीबन 6 महीना वहाँ पे इन्होंने काम किया और साथ ही साथ क्रिकेट का शौक भी इन्हें बहुत था, तो ये बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। चंद नौकरियां बदलने के बाद इन्होंने हिंदुस्तान में ही बसने का मन बना लिया। इसी बीच भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म आराधना आई। इस फिल्म से ये इतने मुतासिर हुए कि बस सोच लिया कि मैं तो अब राजेश खन्ना ही बनूंगा। पहुंच गए FTII पुणे। उस जमाने में इनकी सीनियर थी शबाना आजमी और जूनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। FTII से अपना कोर्स पूरा करने के बाद इन्हें देवानंद साहब की फिल्म साहेब बहादुर में एक किरदार मिला निभाने को। इस फिल्म को चेतन आनंद ने बनाया था। लेकिन ऐसा बताया गया कि इनकी पहली रिलीज थी रामानंद सागर की फिल्म चरस। ये हिंदी और उर्दू बखूबी बोलते थे, यहाँ तक कि उर्दू शायरी का भी इन्हें बहुत शौक था। इन्हें महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने कास्ट किया था फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में और मनोज कुमार साहब ने इन्हें फिल्म क्रांति में एक अंग्रेज अफसर का रोल दिया।
4: यहाँ की तलाशी ले लो, wherever you are, I order you to surrender. नहीं तो तुम्हारी वजह से बहुत खून खराबा होगा।
3: फिल्म नौकरी, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई थी, उसमें इन्होंने अपने आदर्श राजेश खन्ना के साथ काम किया और फिर चेतन आनंद की फिल्म कुदरत में एक बार दोबारा राजेश खन्ना का साथ इन्हें मिला। बहुत सी ऐसी फिल्में जो कि ब्रिटिश राज से जुड़ी रहीं, उसमें टॉम ऑल्टर साहब को अक्सर कास्ट किया जाता था।
4: मुजरिम नवीन वालिद कुंदनलाल, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में तुम्हें फांसी ता मौत की सजा दी जाती है। वंदे मातरम।
3: इन्होंने असमिया फिल्मों में भी काम किया और स्टेज पर तो धमाल कर दिया। बहुत से दिग्गज रंग कर्मियों के साथ मिलकर इन्होंने मोटली थिएटर ग्रुप की शुरुआत की। टेलीविजन सीरियल्स में भी ये नजर आए, बतौर एंकर भी ये नजर आए और बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी ये काम करते रहे। टेलीविजन की दुनिया में जबान संभाल के एक सीरियल आया करता था जिसमें इन्होंने एक ब्रिटिश राइटर का किरदार निभाया, चार्ल्स स्पेंसर। इस रोल की भी बहुत तारीफ हुई। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी जिनमें से एक किताब रही द लॉन्गेस्ट रेस। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो मालूम पड़ता है कि इनका विवाह हुआ कैरल इवान से। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, बेटा जेमी और बेटी अफसान।
6: क्या आपके पास वारंट है?
7: We don't need your bloody warrant.
6: वारंट तो होना ही चाहिए, मैं वकील हूँ
7: और हम यहाँ का मालिक हैं।
3: इन्होंने फिल्मों में काम किया, अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लिया, बतौर स्कूल टीचर काम किया, पत्रकारिता भी की। इतना सारा काम करने के बाद इनके जीवन में वो मोड़ आया जहाँ पे पता चला कि ये स्किन कैंसर से पीड़ित हैं और इसी बीमारी के चलते 29 सितंबर सन 2017 में ये दुनिया छोड़ चल बसे। भारतीय सिनेमा, स्टेज और टेलीविजन की दुनिया में टॉम ऑटर साहब का नाम सदा सदा के लिए अमर रहेगा।
2: तो ये थी कहानी टॉम अल्टर की आपके लिए और इसी के साथ चलिए मैं एक विचार के साथ कार्यक्रम को यहीं पर पूरा करते हैं। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो पर हिम्मत मत हारिए। एक ही बात सच्ची है इन लकीरों में, धोखा देती है पर रहती हाथों में ही है। आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 107.8 FM। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है? बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट? नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माय गॉड इट वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं शाम के 5।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप कार्यक्रम है युवा मंच। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हर मंडे को हम बात करते हैं साइबर सुरक्षा के बारे में। वैसे तो ये चल रहा है नशा मुक्ति सप्ताह और आप नशा मुक्ति पर भी कई कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगर आपको और अच्छी बातें ज़रूरी बातें सुननी है दोस्तों तो आप रेडियो मधुबन के सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं। रात 8 बजे लाइव सुन सकते हैं और उससे पहले भी जो लाइव हुए वो देख सकते हैं नशा मुक्ति के ऊपर। दोस्तों वो हम आपको युवा मंच पर भी ज़रूर सुनाएंगे, पर फिलहाल क्योंकि बात हो रही है साइबर सुरक्षा की तो आपको लिए चलते हैं एक और ऐसी ज़रूरी जानकारी की ओर जहां आपको लगेगा कि साइबर सेफ्टी जो है वो आपके अपने हाथ में है। कैसे, आइए जानते हैं।

0: तो आज हम जानेंगे फेक एड्स के बारे में, फेक एप्स के बारे में, कैसे कोई और बन के मैसेज करता है, कॉल करता है, संपर्क करता है दोस्तों, वो भी पता करेंगे आपको साइबर दोस्त के माध्यम से, जो कि गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक बहुत सुंदर पेशकश है। आप साइबर दोस्त को फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, या आपका दोस्त बनकर आपको सही जानकारियां पहुंचाता है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज का सेशन।
1: साइबर सेफ लाइफ ब्रॉट टू यू बाय साइबर दोस्त, द ऑफिशियल साइबर सेफ्टी अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आज हम एक ऐसे साइबर थ्रेट पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर इंटरनेट यूजर को टारगेट करता है। फेक सोशल मीडिया एड्स, फेक ऐप, शॉपिंग ऑफर्स, लोन लिंक्स और ट्रस्टेड ब्रांड्स के नाम पर साइबर क्रिमिनल्स लोगों का भरोसा जीतकर उनसे पैसे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा रहे हैं। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है श्री ऋत्विक श्रीवास्तव, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस धनबाद झारखंड। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फेक एड्स और फेक एप्स का ट्रेंड इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और आम लोग सबसे ज्यादा किस तरह के स्कैम्स में शिकार हो रहे हैं?
2: जी जैसा आपने पूछा, मान लीजिए अगर मैं साइबर क्रिमिनल हूँ तो मैं ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करूंगा जो कि मैं फंसू नहीं, मेरे पास पैसे भी आ जाए मैं नहीं फंसू, और दूसरा जिससे जो विक्टिम है विक्टिम आसानी से उसका शिकार हो जाए। कहने का मतलब मेरे को ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ा और विक्टिम जो है अपने आप फंसता चला जाए। तो इसी के लिए देखिए, मतलब ये ब्रॉड टॉपिक जिसको हम लोग सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत रिसेंट एग्जाम्पल मैं दूंगा, बिकॉज ये लगभग आप मान के चलिए एक महीने पहले ही ये केस का डिटेक्शन हुआ है। तो एक डॉक्टर साहब यहीं पर धनबाद के थे, तो उनके साथ तकरीबन 1,15,000 का साइबर फ्रॉड हो गया। नाउ व्हेन वी, ये एग्जैक्टली आपका मार्च 28 या 29 का घटना था, जब आपका ये था रामनवमी थी, उसी दिन की मतलब ये घटना हुआ। अब इशू इसमें ये हो गया कि अब देखिए, डॉक्टर साहब को अपना पीएनबी में केवाईसी अपडेट कराना था या कुछ कराना था, तो इन्होंने किया क्या कि भाई गूगल पे गए, गूगल पे पीएनबी कॉन्टैक्ट इन्फो करके इन्होंने वो डाला, गूगल सर्च किया अपना, तो जो एड लैंडिंग पेज था, तो लैंडिंग पेज पे एड आया कि भाई ये है कस्टमर केयर पीएनबी का, इन्होंने उस पर कॉल किया। तो हुआ क्या कि WhatsApp पे इसने कॉल किया कि सर मैं यहाँ पे कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपको हमारा जो ऑफिशियल ऐप है, ऑफिशियल ऐप पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह सबमिट करने होंगे और उससे आपका जो KYC अपडेट वाला चीज है वो हो जाएगा। इन्होंने वही किया, उस बंदे ने मतलब APK भेजा इनको WhatsApp के माध्यम से, इन्होंने इंस्टॉल किया और देखते ही देखते, बिलीव मी और नॉट, 3:50 की ये घटना थी, लगभग 3:30 के आसपास कॉल वॉल हुआ, 3:50 पे WhatsApp ये लोग कनेक्ट किए और within a matter of a few minutes, 4:10 तक the entire transaction was done in 2 or 3 stages, right? 1,15,000 रुपए लगभग ऐसे ही आपके वो निकल गए। तो अब देखिए, fake ads, fake apps और ये जो ads वगैरह है ये क्यों बढ़ते आ रहा है, क्योंकि ये सीधा सीधा है, मतलब any unsuspecting customer, any unsuspecting victim जो है यहाँ पे, भाई हम लोग आसानी से जो भी काम हो जाए उसी के पीछे दौड़ते हैं या भागते हैं। यहाँ पे मान लीजिए घर बैठे बैठाए मेरे को कुछ काम कराना है, कोई APK मिल गया मेरे को, उसी के माध्यम से मैं काम कराऊंगा, तो मैं इसका शिकार हो जा रहा हूँ। और जो बंदा उस साइड बैठा हुआ है, जो फ्रॉडस्टर है, जो स्कैमस्टर है, उसके लिए तो आसान है कि भाई कुछ कराना ही नहीं है, यहाँ बैठे बैठा है, इसके पूरे फोन का एक्सेस मेरे पास मिल जा रहा है, जो भी OTP वगैरह देता है वो मेरे पास आ जा रहा है। तो मे बी दैट इज द रीजन वाई APKs हैव इंक्रीज्ड। और दूसरा चीज है कि देखिए, जो APKs होते हैं उनका एनालिसिस थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है और इट्स नॉट वेरी इजी। कहने का मतलब, एक तो आप जो पैसे के फ्लो जहाँ पे हो रहा है, पैसे का फंड्स जहाँ पे मतलब ट्रांसफर हो रहा है, जिस भी बैंक अकाउंट वगैरह में, आप उसका एनालिसिस करेंगी, है ना, लेकिन APK डेवलपर कौन है, तो उसके लिए हम लोग को एक दो और लेयर में अंदर घुसना पड़ता है। तो इवन फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीस केसेस आर अ बिट डिफिकल्ट टू ट्रैक।
1: सर, फिर साइबर क्रिमिनल सोशल मीडिया पर दिखने वाले एड्स को जेन्युइन कैसे बना देते हैं कि लोग उन पर आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं?
2: देखिए, इसके तो बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह है ना। अब मोटा मोटी फिर जो मैं पहले प्रश्न पे जो आया था कि इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ दैट सोशल इंजीनियरिंग का पूरा जो टूल किट हम बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले मतलब द अदर पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो मेरे सामने बैठा हुआ है, जिससे मैं चैट कर रहा हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसको मेरा ट्रस्ट जीतना है, ठीक है? तो ट्रस्ट कैसे, अब मान लीजिए जब भी मैं क्या होता है, इफ आई एम अ विक्टिम, इफ आई एम अ कंज्यूमर, इफ आई एम अ कस्टमर, मेरे को कोई ना कोई चीज की दरकार होगी, आई विल बी इन द नीड ऑफ समथिंग, राइट? इन द सेंस, जैसे मान लीजिए क्या होता है, अगर किसी का चेन स्नैचिंग हो जाता है तो वो पुलिस के पास आता है। अब किसी को मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे कोई क्या होता है, उसका वो हुआ, let's say if that person's ये got misplaced, the courier got misplaced, for example, या फिर मान लीजिए कोई RTO चालान वगैरह मतलब आया, ठीक है. तो अब मान लीजिए मेरा नीड है, पहला मेरा नीड हुआ, नीड क्या है भाई कि समथिंग हैज हैपेंड विद मी, एक या तो चलिए डिलीवरी में इशू हुआ है, या दूसरा एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि भाई गाड़ी में ओवर स्पीडिंग कर रहा था, या गाड़ी का नंबर प्लेट या जो भी है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह, दे आर नॉट अप टू द मार्क, दे आर नॉट अप टू डेट वगैरह, मेरे को वही अपडेट करना है, तो मैं उसका करूंगा. अगेन आई एम इन नीड, है ना, पहले मैं डिलीवरी में, दूसरे में इन्फॉर्मेशन वगैरह से रिलेटेड, है ना, कि मेरे विरुद्ध कोई चलान वगैरह तो नहीं है, ठीक है. तीसरा, जैसे मैंने ये पर्टिकुलर एग्जांपल दिया कि भाई कोई भी ये ऐप वगैरह जो है जिसपे फॉर एग्जांपल बैंकिंग एप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये जो नीड है मेरा, इसी को ये लोग वो कर रहे हैं. और देखिए इन लोग के लिए इतना आसान ये हो गया है कि इसके लिए तो कोई ट्रेनिंग चाहिए नहीं. मान लीजिए कभी भी बैंक वगैरह जाती हैं, खुद भी आप अगर बैंक मतलब जब भी जाती होंगी, तो वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट रहती हैं या फिर रिसेप्शनिस्ट रहता है, जो भी वहां पे पियोन वगैरह रहता है, प्योन वगैरह मतलब बहुत ज्यादा तो ये नहीं होता है कि दे आर एक्सट्रीमली मतलब दे हैव स्टडीड रॉकेट साइंस वगैरह, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना. वो सिंपल मेरे और आपके जैसे लोग हैं कि भाई वो सीधा प्यार से दो शब्द बात करेंगे और उसी में हम लोग मतलब समझ जाएंगे कि ठीक है. और दूसरा चीज है देखिए ट्रस्ट जीतना, तो ट्रस्ट कैसे जीत रहा है, एक गूगल के थ्रू. अब गूगल पे हर एक लिंक सही है कि नहीं वो तो मेरे को नहीं पता है ना, वो ऑब्वियसली बात है, जो नॉर्मल जो विक्टिम है, जो नॉर्मल कस्टमर है, उसको भी नहीं पता होगा. तो भाई पहले अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे, आप अगर गूगल गूगल के थ्रू आपको मेरा नंबर मिला है, तो आप यही यकीन करेंगे भाई ये तो नंबर सही होगा, ये कभी किसी के जहन में आएगा ही नहीं कि भाई ये नंबर फर्जी हो सकता है. तो सीधा सीधा मतलब ये जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है थ्रू गूगल, या फिर आप जैसे बात कर रही है कि क्या थ्रू फेसबुक एड्स वगैरह, तो वी हैव सीन सर्टेन केसेस वगैरह जहाँ पे मान लीजिए किसी सर्टेन आइटम की डिलीवरी, फॉर एग्जाम्पल गिव यू अनदर केस, यहाँ पे हुआ गया कि ये बंदा जो था ये फर्नीचर वगैरह का काम करता था, फेसबुक वगैरह में इसने एक होलसेलर का ऐड देखा कि, और ये जो होलसेलर था आपका, जहां तक मेरे को याद है फर्नीचर का काम था, इसने होलसेलर का ऐड देखा, इसने भाई उसको मतलब वो किया कि भाई मेरे को इस आइटम की जरूरत है और इतने क्वांटिटीज वगैरह, उसने बोला हाँ भाई ठीक हो जाएगा, और भाई वो बकायदा मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको दिखाया कि ये देखो ये मेरा गोडाउन रहा, ये मेरा शोरूम रहा, और यहाँ पे ये पीसेस पड़े हुए हैं. उससे आपका ट्रस्ट भी सीधा सीधा बिल्ड हो गया, है ना. एक तो पहले मतलब फेसबुक या जिस भी माध्यम से आपका नंबर मेरे को, दूसरा आप मतलब वीडियो के माध्यम से वो भी दिखा रहे हैं कि भाई देखो मतलब है, कोई फ्रॉड वॉड नहीं हो, मेरे पास हर एक चीज सामान पड़ा हुआ है. और जैसे ही ट्रस्ट एस्टैब्लिश हुआ, मतलब इमीडिएटली द साइबर फ्रॉड बिगिंस टू हैपन राइट देन एंड राइट देयर.
1: सो आई थिंक लोग इतने डिपेंडेंट है दैट इमीडिएटली जो अगर सर्च इंजन पे डिपेंडेंट है तो वो ट्रस्ट भी करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को. व्हेनेवर दे सर्चिंग फॉर समथिंग दे वुड ट्रस्ट कि जो दिख रहा है वो सही है, जैसे आपने बोला इमीडिएट उनका वेरिफिकेशन के टुवर्ड्स तो जाता ही नहीं है थॉट प्रोसेस, उनको लगता है जो इन्फॉर्मेशन को दिख रही है वो सही ही होगी.
2: इसमें मैं एक और मतलब चलिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही ऐड करूंगा. तो दिस वाज बिफोर व्हेन आई जॉइंड आईपीएस, है ना, तो 2021 में ज्वाइन किया हूँ, तो 2020 मतलब कोविड के जस्ट बाद की बात है. तो मैं उस समय बाहर रह रहा था, आई वॉजन एट माई हाउस, और मेरे घर पे कुछ सामान होना चाहिए था. तो मैंने वही सर्च किया कि भाई क्या था, घर पे डिलीवरी करानी थी सामान की मेरे को, मतलब तो ग्रोसरी वगैरह ही था, नॉर्मल ग्रोसरी वगैरह था. मैंने सर्च किया माई होम टाउन की क्या होता है ये, उस समय ब्लिंकिट वगैरह का जमाना नहीं था, नाउ दैट वी हैव ब्लिंकिट एंड अदर सर्विसेज वगैरह, 2020 वगैरह का था, तो उस समय ब्लिंकिट वगैरह नहीं था. मैंने सर्च किया कि भाई मतलब देयर इज समवन कोई डिलीवरी वगैरह, और आप मानिए चाहे नहीं मानिए, द वेरी फर्स्ट मतलब जो गूगल पे आता है, द वेरी फर्स्ट जो लिंक वगैरह था, एक बिजनेस का नाम था, बकायदे से उसने एड्रेस दिया हुआ था कि सेक्टर वन में मतलब नियर दिस पर्टिकुलर प्लेस, और उसका वो नंबर था. अब कोई पर्टिकुलर जा रहा है वहां पे, है ना, मतलब कि ये पर्टिकुलर जगह है ना, एंड दैट प्लेस एग्जिस्ट, है ना. ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई फर्जी हवा में नाम था, वो जगह थी वहां पे. मैंने कॉल किया और भाई मतलब ठीक है, मैं खुद भी इसका शिकार हो चुका हूँ, लगभग 4,500 ज्यादा अमाउंट नहीं था, लेकिन 4,500-5,000 रुपए का उस समय हुआ था. तो दैट इज द टाइम व्हेन आई बिकेम अवेयर कि अरे यार मतलब नॉट एवरी नंबर व्हिच यू सी हैज टू बी ट्रस्टेड. उसके बाद ऑब्वियस ही बात है मैं पुलिस वगैरह में गया, तो फिर पता चला कि जो बंदा था मतलब ही वॉज नोवेयर रिलेटेड टू माई होम टाउन, आस पास भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था उस बंदे को. वो बंदा बैठा था आपका वहां पे अलवर वगैरह के पास कोई जगह था, भरतपुर अलवर के बीच में, दैट प्लेस वाज देयर, है ना. तो बताइए मतलब यू नो इट्स राइट ऑफ थेट.
1: सो फेक मोबाइल एप्स लोगों के फोन्स और बैंक अकाउंट्स के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं?
2: देखिए बिलीव मी व्हेन आई से दिस, मतलब ये जो यू नो वी कैन नॉट रियली क्वांटिफाई दिस कितने डेंजरस हो सकते हैं. बिलीव मी व्हेन आई से कि क्या कोई भी एपीके व्हिच यू आर रिसीविंग आइदर थ्रू गूगल या फिर थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू टेलीग्राम, इट शुड नेवर बी इंस्टॉल्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस व्हाट्सएवर। मैं आपको थोड़ा सा मतलब आई विल गो थ्रू द हिस्ट्री एज वेल हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो देखिए जो एपीके से जो फ्रॉड वगैरह था ये 2022-23 के आसपास से चालू हुआ। तो शुरू में फर्स्ट वेव जब आया, फर्स्ट वेव मतलब जब ये फ्रॉड होना चालू हुआ था, तो जो एपीकेज होते थे वो बहुत बेसिक होते थे। बेसिक मतलब क्या कि आपको भाई मतलब व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से ये एपीके आए, आपने इंस्टॉल किया और वो करेगा क्या, आपका मात्र दो परमिशन लेगा, रीड एंड राइट एसएमएस और दूसरा फोन का बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह। इसमें क्या है कि आपके फोन पे जो भी एसएमएस वगैरह गिर रहे हैं दे गेट फॉरवर्डेड टू अ कमांड एंड कंट्रोल सर्वर जिसको हम C2 सर्वर बोलते हैं। वहां से जैसे ही ये एसएमएस वगैरह जो है वो द अटैकर द हैकर कैन सी इट लाइव ऑन हिज स्क्रीन ऑन हिज पैनल, ठीक है, उसके थ्रू आपके यूपीआई क्या होता है वो बाईपास कर लेगा पहला। दूसरा आपका जो भी क्या होता है ये बैंक एप्स है, फॉर एग्जाम्पल SBI हो गया या फिर दूसरे मतलब बैंकिंग एप्स हो गए, उनका भी पासवर्ड वगैरह रीसेट कर लेगा एंड दैट इज वेयर द गेम बिगिंस, राइट। यूपीआई बाइंडिंग जो है और जो बैंकिंग एप्स का बाईपास जो है वो आसानी से लोग कर ले रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा मतलब तो एक एक पिछले साल एक और यू नो अ स्लू ऑफ फ्रॉड्स हैड स्टार्टेड टू अकर इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। अब मैं धनबाद में हूँ तो धनबाद इफ यू लुक ऑन द मैप इट्स जस्ट नेक्स्ट टू जामताड़ा, हम लोग का जो बॉर्डरिंग मतलब वो है डिस्ट्रिक्ट है दैट इज जामताड़ा, जामताड़ा के देवघर और इस साइड गिरिडीह आता है।
0: तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम युवा मंच में। और दोस्तों हम साइबर सेफ्टी के बारे में जान तो रहे हैं, साथ से हमारे एक दोस्त जो है फोन लाइन पे उनसे भी बात करते हैं। हाँ नमस्ते।
3: हेलो नमस्ते,
0: गुड इवनिंग सुरेश भाई, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है।
3: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, आज के दिन की देरी शुभकामनाएं मंगल कामना
0: जी। और आज साइबर सेफ्टी के बारे में बातचीत हो रही है सुरेश भाई कि किस प्रकार से ना बहुत नकली ऐड आते हैं या एप्लीकेशन आती हैं जो आपको बोलते हैं ना कि ये लोन दे देंगे, फ्री दे देंगे, विदाउट इंटरेस्ट दे देंगे, इस तरह की चीजों के बारे में, तो क्या आपका अनुभव क्या कहता है?
3: मैं तो पहले तो कहूंगा कि आपके पास जो भी आता है उसकी जानकारी पहले लेनी जरूरी है। और आपको फैक्ट अगर आपको कुछ ज्यादा ही फैक्ट लग रहा है तो 1930 पे कॉल भी कर सकते हो ना, वहाँ कंप्लेन भी बनवा सकते हो। आपके साथ में कोई अपराध हो रहा है तो वहाँ कंप्लेन बनवा सकते हो।
0: ये
3: तो हो ही रहा है, इसके अलावा वो क्या AI ऐप निकला है तो किसी को अपनी फोटो शेयर भी नहीं करनी है।
0: बिल्कुल सही बात है,
3: क्योंकि अपनी फोटो का क्या मालूम वो क्या उस ऐप के द्वारा क्या बना दे।
0: बिल्कुल सही बात है, आज कुछ कह नहीं सकते, विश्वास नहीं कर सकते।
3: हाँ तो मतलब कहीं पे भी कोई भी मतलब शेयर करने से पहले आपको 10 बार सोचना है। ऐसे ही पहले तो इतना नहीं था टेक्नोलॉजी, तो आप कर देते थे तो भी चलता था, मगर अभी अभी किस चीज का क्या फायदा उठाएगा अगला वो कुछ नहीं बोल सकते,
0: कह नहीं सकते इस बात को।
3: हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी फेक कॉल भी आ रहे हैं, अभी फेक वो इंटरनेट वगैरह इंस्टाग्राम पे वीडियो भी आ रही
0: कभी,
3: है।
0: कभी आपके पास ऐसा कॉल आया या कभी कोई ऐसा हुआ आपकी जानकारी में कोई हो अगर?
3: हाँ ऐसा अभी 2-3 महीने पहले।
0: अच्छा जी।
3: के आपको के लॉटरी लगी है जै?
0: अच्छा।
3: मैंने कहा लॉटरी लगी है, मैंने तो कोई लॉटरी खुलवा ही नहीं, और उसने उसने मांगे ATM पिन। तब मेरे को डाउट पड़े, मैंने कहा ATM पिन है ना पैसा भेजने के लिए काम में आता है।
0: अच्छा।
3: तो उसमें से अपन भेज सकते हैं, अपने अंदर थोड़ी आता है ATM पिन।
0: बिल्कुल भी नहीं, ATM पिन तो पर्सनल यूज के लिए है, किसी को भेजने के लिए ATM पिन की जरूरत होती नहीं है कभी भी।
3: मैंने कहा ये खुला है, ये लकी ड्रॉ हमारा खुला है ना, तो आप रख लेना भाई।
0: सही बात है, आप ही रख लीजिए वो लकी ड्रॉ।
3: हाँ हमको नहीं चाहिए, हमको परमात्मा खुशी से देगा ना दाल रोटी, वही हमारे काम की है। तो बोला नहीं नहीं आपके खुला है, मैंने कहा मेरे खुला है तो ठीक है, मैं आगे एक बार कॉल करके जांच करता हूँ। तो तुरंत ही कॉल काट दिया,
0: उनको समझ में आ गया ये फंसने वाले नहीं है।
3: हाँ, तो ATM पिन देखिए, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि कोई भी ATM पिन वगैरह मांगे ना तो ATM पिन अपने अंदर से पैसे भेजने के है, अपने अंदर मतलब डेबिट करने के, मतलब अपने खाते से पैसे निकालने के,
0: देने का नहीं है कभी भी। कोई और हमको पैसे भेजे उसके लिए एटीएम पिन कभी नहीं चाहिए,
3: नहीं चाहिए ही नहीं ना, आगे से आता है उसमें एटीएम पिन का
0: जरूरत ही नहीं है उसकी, बिल्कुल।
3: हाँ वहाँ तो CIF नंबर हो तो वो उससे आ जाता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, एटीएम पिन की जरूरत नहीं है,
3: किसी को देना ही नहीं है। और कोई भी ऐसा आए कॉल तो पहले पूरी इसकी इंक्वायरी लीजिए, फिर वो भी बैंक में जाके अपने कोई बैंक की गड़बड़ है तो बांका में जाके सब कुछ पूछना है। अगर बोले कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो भी उनको भी नहीं देना,
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये कभी कभी ऐसा भी करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं बट वो बैंक से कॉल नहीं होता।
3: हाँ तो वो भी मैं बोल रहा हूँ ना, आपको शाखा में जाके पूरी जानकारी वाले,
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा।
3: हाँ, कभी बोलते हैं कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा पिन नंबर दो,
0: हाँ ये भी
3: तो
0: होता
3: आपको
0: है।
3: नहीं देखना है,
0: ये भी होता है।
3: हाँ बोलना मैं शाखा में आऊंगा, वही बंद हो रहा तो मैं वही आके करवा
0: दूंगा, वही आके कराऊंगा मैं, आपको अभी जरूरत नहीं है।
3: हाँ अभी मैं बिजी हूँ, बस इतना ही बोला ना, बिजी हूँ मैं, कुछ नहीं, बात भी नहीं कर सकता।
0: सही बात है, उनकी बातों में आने ही नहीं है बिल्कुल भी।
3: हाँ क्योंकि बात करने लगोगे तो फिर वो बात ना घुमा देगा,
0: फंसा देंगे आपको।
3: हाँ बात करनी नहीं है ना,
0: बिल्कुल सही बात
3: है। सतर्क रहना है सबको और अपना जीवन जीना है बस, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि खुशियों पे अपन फंस गए तो खुशियों पे दाग लगता है।
0: बिल्कुल, जमाई बहुत सारी कमाई जो होती है, जमा पूंजी होती है, वो एक बार एक गलती से लालच आ जाता है। देखिए आपने लालच ना किया कि मिल जाएगी लॉटरी, अगर लालच आ गया ना कि मुझे मिल जाएगा तो वहाँ पे नुकसान होने का खतरा है।
3: मेरे को डाउट इसने एटीएम पिन मांगे तो डाउट लगा। मैंने एटीएम पिन तो पैसा अपन निकालने का होता है, मैंने कहा जमा करने का तो
0: होता ही नहीं है।
3: डेबिट कार्ड है वो तो, कोई क्रेडिट कार्ड थोड़ी है।
0: बताइए उनको लगा कि वो फंसा लेंगे ऐसे, कई लोगों को फंसा भी लेते हैं, इसलिए बहुत ध्यान भी रखना है हमको, बचना है चीजों से।
3: बड़ी रकम बता दी ना, 1 लाख।
0: हाँ देखिए 1 लाख की रकम बता दी आपको, ताकि आप फंस जाए उस चक्कर में।
3: मैंने तो खुलवाई नहीं है और मेरे को चाहिए ही नहीं, आप रख लो,
0: आप ही रख लीजिए मेरी तरफ से।
3: हाँ मेरी तरफ से तोहफा।
0: सही, बिल्कुल सही काम किया आपने, बहुत बहुत अच्छा काम किया आपने कि उनके चक्कर में नहीं फंसे।
3: तो बस यही मैं दोस्तों को बताना चाहता था, मैंने कहा बस दोस्त हमारे किसी गलत बहकावे में ना आए, और बस क्योंकि यहाँ भी होता है और कॉलिंग के द्वारा भी होता है, कहीं पे भी होता है, तो आपको सतर्क रहना है बस।
0: बिल्कुल,
3: ऐसा कोई भी कॉल आए तो ज्यादा बात ही नहीं करनी।
0: हाँ फोन काट ही दीजिए, ज्यादा बात करिए ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं उसकी।
3: जय माता दी,
0: जय माता दी, बहुत बहुत शुक्रिया,
3: हमें खुशी हो गई, युवा मंच में चार चांद लगे।
0: शुक्रिया, शुक्रिया आपका जी। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारियां हमारे लिए क्यों आवश्यक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि भाई जहाँ सवाल आता है अपनी सुरक्षा का, अपनी सेफ्टी का, वहाँ बहुत ध्यान देते हैं, ताला लगा के रखते हैं घर में या तिजोरी में या फिर अकाउंट को संभाल के रखते हैं डिटेल्स, लेकिन यहाँ बात खा जाते हैं, गलती कर जाते हैं, सही जानकारी नहीं रखते, लालच में फंस जाते हैं और 1 सेकंड में अपना भारी नुकसान करा बैठते हैं। एक तो अगर नुकसान हो गया है तो देरी मत कीजिए, 1930 यानी 1930 पर कॉल कीजिए, या फिर साइबर सेल की वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट कीजिए, या साइबर सेल अगर पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट कीजिए। और अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो बचकर रहिए, जानकारी आपका सबसे बड़ा हथियार है ये याद रखिए, और कभी भी लालच या डर दो चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं स्कैमर, कि जल्दी पैसा मिल जाएगा आपको इसका लालच देते हैं या डराते हैं, दोनों में से अगर आप किसी चीज़ में नहीं फंसते, जाने देते हैं उसको, तो बस आप समझ लीजिए आप बच गए हैं कि होने वाले किसी भी स्कैम से। अपना पिन, जी हाँ अपना एटीएम का पिन, कुछ भी आपको किसी को भी कभी भी नहीं देना होता, ना कोई बैंक पूछता है, ना कोई और पेमेंट के लिए आवश्यकता पड़ती है, आपका पिन सिर्फ आपके लिए है, आपको जब पैसे निकालने हैं तब आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर आपको ट्रांसफर करने हैं तब आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। वो पिन किसी को देने के लिए बना ही नहीं है, ना ही वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP। तो इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ। दोस्तों चलिए अभी हम जो सुन रहे थे बातचीत उसको कंटिन्यू करते हैं, कैसे फेक एड्स होते हैं, फेक एप्लीकेशंस होती हैं, कैसे स्कैम चल रहे हैं जानते हैं, उनसे बचना कैसे ये भी जानते हैं।
2: ये पूरा एक जैसे आप जो साइबर फ्रॉड ट्रायंगल बोलते हैं, तो देयर टू ट्रायंगल्स, एक आपका अलवर भरतपुर वाला एरिया हो गया, दूसरा मतलब आपका ये वाला एरिया है। तो ये जो भी APKs वगैरह रहते हैं, मतलब पिछले साल हुआ क्या कि मान लीजिए आपका कोई भी फोन है ना, आप जो भी फोन इस्तेमाल कर रही है वो मान लीजिए इफ यू गॉन टू अ लोकल हार्ट भी, आप बाजार वगैरह गई हुई है, वहां पे आप अपना फोन लेके गई, कोई आपका फोन चोरी कर गया, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है कि भाई आपका फोन चोरी हुआ है तो इसका आपका बैंकिंग एप्स वगैरह सेफ है, बिकॉज ऑब्वियसली योर फोन इज प्रोटेक्टेड बाय वीआई योर पासवर्ड, कहने का आपका या तो फिंगरप्रिंट होगा या फेस आईडी होगा, जो भी हो, है ना। अब हो क्या रहा था पिछले साल कि ये फोन वगैरह चोरी हो रहे थे और विद इन 24 hours, 48 hours हम लोग के पास आ रहा है कि भाई मेरे बैंक अकाउंट से 2 lakh rupees मतलब निकाल लिए गए, 3 lakh rupees निकाल लिए गए, एंड वी वर परप्लेक्स्ड कि भाई ये कैसे संभव है, तो संभव ही नहीं है। Because in order to gain access to your phone, yeah, in order to gain access to your banking apps, banking account, UPI वगैरह, I need to get into your phone. पहला तो मैं भाई आपके फोन के अंदर जाऊंगा तभी ना मैं आपके apps मतलब use करूंगा. Now, believe me or not, you know when we started digging into it, मतलब the thing is extremely simple. आपका मोबाइल मैंने चोरी किया, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपका जो सिम है सिम को निकालूंगा, एक दूसरा फर्जी फोन मेरे पास रहेगा, मैं डालूंगा, एंड देर आर टेक्निक्स थ्रू विच आई कैन you know, reset your password of UPI, as simple as that. When this came into light, we brought it in front of I4C and the other NPCI वगैरह, so there are certain safeguards which have now come into place. But believe me, even now, इस type के मतलब fraud हो रहे हैं, in spite of the safeguards which have been put in place by the government of India. तो मैं जानबूझ के उन मतलब technique को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई और भी देख रहा होगा, तो वो लोग भी समझ जाएगा कि यार मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. तो yes, yes.
1: So alongside, I'd like to add, अगर कोई स्कैम शिकार होते होते बढ़ जाता है, for instance, APK files जैसे ही स्कैम से, so it is also important to notify the police immediately. So we request the viewers कि अगर कभी भी उनको लगता है कि कोई स्कैम कॉल आया, but they were aware, they did not respond to it. It is important to go on the NCRP, which is cybercrime.gov.in, and वहाँ पे एक report and check suspect का section में, they can file for that complaint. लेकिन फाइल द एपीके फाइल का नंबर बता सकते हैं जो स्कैम का नंबर है, सो दैट एट लीस्ट अदर पीपल डोंट गेट स्कैम्ड इफ दे आल्सो गॉट सेव्ड.
2: राइट राइट. और दूसरी चीज जो है कि क्या होता है एपीके वाले फाइल में, इफ लेट्स से समवन हैज बीन स्कैम्ड, अगर कोई भी एपीके फाइल इंस्टॉल किया है अपने फोन में, तो इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल उसका जो वो है आपका, मतलब यू पुट इट इन एयरप्लेन मोड एंड रश टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वगैरह, क्योंकि वंस पुट दैट मतलब बेसिकली दी एंटायर जो स्कैम है वो डिपेंड कर रहा है कि भाई आपके जो एसएमएस दे रहे हैं आपके फोन पे इन ट्रांसमिटेड टू अ सर्टेन डिफरेंट प्लेस वगैरह, है ना, टू अ कमांड एंड कंट्रोल सर्वर. तो आप एज सून एज यू पुट योर फोन इन फ्लाइट मोड वगैरह, आपका जो एसएमएस है वो गिरना बंद हो जाएगा, तो यू कैन बी सेफ, और इन दैट टाइम मे बी यू कैन रश टू अ पुलिस स्टेशन, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चले जाइए, और वहां उस पुलिस स्टेशन वगैरह में आपके क्या होते हैं एपीके फाइल को रिमूव करने की वो होगी, मतलब जितनी प्रक्रिया होती है वो की जाएगी.
1: सर अक्सर फ्रॉडस्टर्स ट्रस्टेड कंपनीज, बैंक्स या गवर्नमेंट स्कीम्स का नाम का मिसयूज करते हैं, सिटीजन फेक प्रमोशंस को कैसे पहचान सकते हैं?
2: देखिए इसको पहचानने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह हो गया, या फिर कोई भी आपका क्या होता है जो कंपनी वगैरह होगी, जैसे SBI हो गई, या फिर कोई भी मतलब आई विल नॉट टेक इट्स ओवर हियर, वो आपको कोई भी एपीके वगैरह जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कोई इस टाइप के माध्यम से कभी नहीं भेजेंगे, ठीक है. दे विल ऑलवेज मतलब आइदर उनका जो वेबसाइट होगा वेबसाइट पे वो लोग होस्ट करेंगे, या फिर उनका जो एपीके वगैरह होगा मतलब जो भी उनका ऐप होगा वो प्ले स्टोर पे होगा या फिर ऐप स्टोर पे होगा, अगर एप्पल के केस में. कोई भी अपना मतलब जो ऑफिशियल ऐप है वो कभी भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू नहीं भेजेगा सबसे पहला, नो मैटर वॉट एवर इंस्टीट्यूशन इट इज, क्योंकि आप अगर आप प्ले स्टोर पे अपने ऐप को वो कर रहे हैं होस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप अपना मतलब यहाँ पे कर रहे हैं ऐप स्टोर पे कर रहे हैं, होता ही है कि देर आर एन नंबर ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, बोलता कि भाई ये मैलवेयर तो नहीं है, इसमें कहीं बैकडोर तो नहीं है, है ना. तो गूगल और एप्पल दोनों चेक करते हैं, जबकि यही जो भी फ्रॉडस्टर वगैरह होता है, जैसे मेरे को मान लीजिए आप ही को टारगेट करना है, तो मैं करूंगा क्या, मतलब फर्स्ट सबसे पहला वो जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है, आई एस्टैब्लिश ट्रस्ट रिलेशनशिप विद यू, यू स्टार्ट ट्रस्टिंग मी, उसके बाद आई गेट दैट एपीके इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन। और इसी में मैं एक और चीज ऐड करूंगा, तो देखिए जब पहला जो ये वेव था देन द एपीकेज वर वेरी सिंपल इन नेचर कि बस ये भाई एसएमएस वगैरह को फॉरवर्ड करते थे। ऑफ लेट एंड मोर वरिंगली दिक्कत ये आ गई है कि जो एपीकेज अब हम लोग देख रहे हैं व्हिच आर आउट देयर इन द वाइल्ड या फिर जो अब हम लोग मतलब यू नो व्हिच वी आर डीलिंग विद ऑन अ डेली बेसिस नाउ यू नो दे आर एटलीस्ट वन और टू स्टेप्स अहेड ऑफ व्हाट मतलब एक एक एक एक बोला जाता है ना कि भाई मतलब ठीक है इस चीज को ये प्रॉब्लम है तो इसको मैं टैकल कर सकता हूँ बट ये प्रॉब्लम है और इसको देख के आपका खुद हालत खराब हो रहा है कि अरे यार ये लोग मतलब किस लेवल पे चल रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे बीटी मॉब करके, बीटी मॉब रैट रिमोट एक्सेस ट्रोजन कैंपेन है विच फर्स्ट इमर्ज समवेयर अराउंड अर्ली लास्ट ईयर 2025 के शुरुआत में ये इमर्ज हुआ था। कहाँ? साउथ लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका और पोर्टुगल मतलब वो सदर्न यूरोप वाले एरिया में, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ऐप था रैट मतलब रिमोट एक्सेस ट्रोजन हम लोग बोलते हैं, तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था टू एक्सफिल्ट्रेट पासवर्ड्स एंड यूजर आईडीज फॉर बैंकिंग एप्स वगैरह, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इस साल की शुरुआत से ये सेम मैलवेयर रूप मतलब देखिए तो मैलवेयर को आप आइडेंटिफाई करने का भी अलग अलग तरीका होता है, उनके सिग्नेचर्स होते हैं एंड्रॉइड सिग्नेचर्स होते हैं या फिर मान लीजिए आप अगर उनका सोर्स कोड अगर आप देख सकती हैं तो यू विल गेट टू नो कि किस तरह के पैकेजेस वगैरह हैं उसमें। दिस सेम मैलवेयर इज बीइंग यूज्ड बाय आर गाइज एज वेल। आर गाइज मतलब यहाँ पे एक दो बहुत बड़े केसेस हुए हैं है ना जिसमें जो फ्रॉड की अमाउंट है दैट हैज गॉन इनटू नियरली 100 CR राइट एंड द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन डिफ्रॉडेड आर इन थाउजेंड्स। ये लोग इस ऐप को क्या होता है वो कर रहे हैं। अब यही चीज जब मैं पहली बार देखा तो हम लोग को भी अब देखिए वी आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम तो महीना देर लगता है इसको पूरा क्रैक करने में कि हो क्या रहा है। नाउ व्हेन यू स्टार्ट सीइंग सिग्नेचर्स आपका खुद एकदम हालत खराब हो जा रहा है कि भाई क्या चल रहा है ये ना। तो ऑल ऑफ दिस इज देयर या
1: सब कौन से वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स हैं जो किसी फेक ऐप फेक वेबसाइट या सस्पिशियस एडवर्टाइजमेंट की तरफ इंडिकेट करते हैं।
2: देखिए सबसे पहला कोई भी फर्जी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि उसका आप मतलब व्हेन यू गो टू द यूआरएल उसके सबसे पहले वाले जो हेडर रहता है यूआरएल का उसमें एचटीटीपी या एचटीटीपीएस को देख लिया जाए वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं, ठीक। मान लीजिए एचटीटीपी है मतलब नॉर्मल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर जो भी हम लोग बोलते हैं इट्स नॉट सिक्योर, कहने का मतलब द कम्युनिकेशंस आर नॉट एनक्रिप्टेड मतलब वो नहीं हो रहा है मतलब उनको सिक्योर नहीं किया जा रहा है। ये सबसे पहला वार्निंग फ्लैग है कि भाई जो भी क्या होता है यूआरएल वगैरह है वो आपका फर्जी हो सकता है क्योंकि ये एचटीटीपी है एचटीटीपीएस नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चलिए मैं आपको एक खुद ही दिखाता हूँ। अब मेरे को टारगेट नहीं किया जा रहा है पता नहीं मेरा भी नंबर किसी डेटाबेस में होगा फ्रॉडस्टर्स के तो मेरे को भी क्या होता है ये लोग आए दिन कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं। तो लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ और नॉट। तो दिस विल इन फैक्ट बी अ लाइव एग्जांपल कि भाई कैसे लोग टारगेट हो रहे हैं। वेरी सेम काइंड ऑफ एमओ मोडस ऑपरेंडी मेरे को मतलब डिफ्रॉड करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसमें होगा क्या कि योर लोन एप्लीकेशन फॉर ₹30,000 है ना ये पता नहीं ये थोड़ा सा कमजोर साइबर क्रिमिनल है पहले वाले 5-5 lakh का लोन एप्लीकेशन मेरा वो करवा रहे थे। खैर तो 30,000 का ये अंडर वेरिफिकेशन है पहले मेरे को भेजते थे कि भाई 5 lakh का लोन आपका सैंक्शन हो गया प्लीज मतलब वो तो यहाँ पे मैं कंप्लीट नाउ करूंगा इट टेक मी टू अ वेब पेज। अब ये देखिए यहाँ पे मतलब मैं कंप्लीट नाउ कर दिया इसको यस डोंट अलाउ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे लैंड किया यू कैन सी द वो स्क्रीन यहाँ पे सीधा मेरा वो पूछ रहे हैं मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं। नेक्स्ट ये लोग करेंगे क्या कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन वगैरह से मतलब व्हाट दे विल गेट इज कि क्या होता है जो भी मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा उसका कोई ना कोई @UPI @ मतलब फोन पे जो भी है मतलब कोई ना कोई यूपीआई आईडी होगी उसको मोबाइल नंबर डालूंगा गेट कैश टुडे करके आपको एक बटन दिख रहा होगा यहाँ पे
1: जी
2: कैश टुडे पे जाऊंगा उसके बाद बोलूंगा कि भाई यहाँ पे आप जो ओटीपी आया होगा आप ओटीपी शेयर करो ठीक है। If I am an unsuspecting victim वगैरह मैं अपना OTP शेयर कर दिया है ना और वो ultimately OTP होगा किस लिए भाई कोई ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए होगा। तो दिस इज वन ऑफ द अदर वेज वगैरह कहने का मतलब समथिंग इज एक कहावत थी कि समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू इट इज नेवर ट्रू है ना कि भाई अगर कोई आपको मुफ्त में पैसे दे रहा है अगर आपको कोई मुफ्त में गिफ्ट दे रहा है तो भाई वो कभी कोई मुफ्त में नहीं देता है वो उल्टा आप ही के साथ वो कर लेगा फ्रॉड कर लेगा। तो ये चीज है लोग ज्यादा लालच ना करें और इस टाइप के कोई भी अगर आपका लोन अमाउंट आ रहा है या फिर जो भी आ रहा है इस पे कदापि कभी भी मतलब इस पे आगे नहीं बढ़े, बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली अ टूल. तो ये तो मतलब दिस इज अ वेरी मतलब नोविस वे हम बोलेंगे, इट्स नॉट अ सोफिस्टिकेटेड वे, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड वे आपको पहले ट्रस्ट जीतेगा, ट्रस्ट जीतने के बाद आपको इंस्टॉल कराएगा. और बिलीव मी और नॉट, जैसे बीटी मॉप का ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो बीटी मॉप इज अ सिस्टम व्हिच टेक्स फुल कंट्रोल ऑफ योर मोबाइल, यू कैन नॉट इवन अनइंस्टॉल द एपीके.
1: सर हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है, अगर किसी व्यक्ति ने गलती से फेक ऐप इंस्टॉल कर लिया हो या अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी हो तो उसे तुरंत क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
2: देखिए अगर फेक मैं इसको दो पार्ट में देखूंगा, अगर क्या होता है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन अगर शेयर कर दिया हो या एपीके इंस्टॉल कर लिया हो. देखिए अगर एपीके इंस्टॉल कर लिया है तो सीधा सीधा सबसे पहले आप जाइए मतलब वो एयरप्लेन मोड में डाल लीजिए. इफ द एपीके एपीके अनइंस्टॉल करने का वो रहता है ऑप्शन रहता है, यू गो एंड क्लिक ऑन द एपीके, अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन रहेगा. इफ इट इज गेटिंग अनइंस्टॉल वेल एंड गुड, द एपीके इज नॉट दैट एडवांस्ड. ठीक है, अगर अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है तो यू रश इमीडिएट मतलब टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एएसएपी, है ना. इन APKs को अनइंस्टॉल करने का एक ही तरीका है कि यू विल हैव टू रीबूट योर, आपको दोबारा से क्या होता है इस APK को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा. तो दिस इज मतलब अगर अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आप मान के चलिए दिस इज अ वेरी वेरी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ APK. दूसरा है कि भाई अगर मैंने अपने बैंकिंग पासवर्ड आपने क्या होता है शेयर कर दिए किसी के साथ, है ना, किसी फ्रॉडस्टर के साथ, किसी स्कैमस्टर के साथ, फिर क्या स्टेप्स लेने चाहिए? इमीडिएटली रश टू योर नियरेस्ट मतलब वो या तो पुलिस स्टेशन जाइए, लेकिन सबसे पहले मैं बोलूंगा कि पुलिस स्टेशन से भी पहले गो टू योर नियरेस्ट बैंकिंग ब्रांच, मान लीजिए SBI में, HDFC में, जहां पे भी आपका बैंक खाता है वहां पे आप जाइए और इमीडिएटली अपने जो ये है बैंकिंग अकाउंट है उसका जो ट्रांजैक्शन उसको डिसेबल करा दीजिए. दैट इज इजीएस्ट वे टू इंश्योर कि भाई आपका जो खाता का आपने अकाउंट का डिटेल्स शेयर किया है दैट इज नॉट मिसयूटिलाइज्ड, दैट इज नॉट मिसयूज्ड.
1: सर आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को क्या अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो फेक ऐप्स और ऑनलाइन स्कैम से बच सके?
2: देखिए सबसे पहले थोड़ी बहुत जागरूकता जो है, जागरूकता बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है कोई भी चीज हो जाए. अगर आपको पता है कि फेक ऐप्स क्या होते हैं तो यार चाहे कहीं से भी हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, गूगल मतलब क्रोम वगैरह के माध्यम से कभी भी कोई भी APK जो प्ले स्टोर पे नहीं है, जो ऐप स्टोर पे नहीं है, उसको कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है अंडर नो सर्कमस्टेंस व्हाट्सएवर. दूसरा कि भाई इफ समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, कहने का मतलब मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया है ना कि मतलब वो रोज जिस टाइप के ऐप आते हैं, अगर कोई आपको मुफ्त में कोई भी चीज दे रहा हो भले ही वो 5 रुपए की टॉफी ही क्यों ना हो, तो कोई भी चीज नहीं लेना है मतलब दैट टू थ्रू इंटरनेट. बिकॉज अल्टीमेटली आप ये सुनिश्चित रहें कि अगर आपने वो मुफ्त में वो चीज ले ली तो वो चीज जो आपने मुफ्त में ली है उसके बगैर आपको उसका 10 गुना या 100 गुना आपको हजाना देना पड़ेगा.
1: सर फेक एडवर्टाइजमेंट्स, फेक एप्स और ऑनलाइन ट्रस्ट बेस्ड फ्रॉड्स पर आपकी इनसाइट्स हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस ड्रिवन रही. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू.

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण

जानकारी दूसरों के साथ शेयर करें, जब मिलते हैं, बैठते हैं, घर जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये जानकारियाँ ज़रूर शेयर करें कि किस तरह से इनसे बचना चाहिए ताकि सबकी मदद हो सके। और रेडियो मधुबन तो ज़रूर ही सुनना चाहिए। दोस्तों कल फिर से हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, जहां हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट होंगे जिन्होंने मेडिकल फील्ड में ऐसा कमाल किया है और एक एनजीओ भी चलाते हैं, और क्या क्या कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा कल। स्पेशल मेहमान होंगे, स्पेशल एपिसोड होगा, सोशल मीडिया पर भी लाइव होगा रेडियो मधुबन, और रेडियो पर भी आप इसे सुन सकेंगे। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। फिलहाल लेते हैं इजाज़त, अगला कार्यक्रम लेकर आएंगी आरजे मोना, और आरजे मोना लेकर आएंगी उड़ान। उड़ान के साथ उड़ते रहिए, बच्चों की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कहानियाँ और बातें सुनते रहिए। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। और आज एक खुशी का दिन है क्योंकि हमारे साथ ही रूहानी का आज हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रूहानी, और हमारे सभी साथियों की तरफ से मैं रूहानी को ढेरों बधाइयाँ देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आप दिनों दिन उन्नति करती जाओ, आपके हर सपने पूरे हो, और परमात्मा की याद और दुआएं सदा आपके साथ रहे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आगे बढ़ते हैं, और गधा बन गया राजा ये कहानी आज की उड़ान में सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। आप सुन रहे उड़ान, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वाली जाने जहां, मैं हूं गधों का सुल्तान। वाह, क्या आवाज है मेरी। अरिजीत सिंह तो बस नाम का फेमस है, असली टैलेंट तो इधर छुपा है।
2: देखा, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस की ओवरडोज। खैर, गट्टू अभी अपनी तारीफों के पुल बांध ही रहा था कि अचानक आसमान का मिजाज बदला।
3: अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? नहीं नहीं, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। कॉस्मोस 9 का नेविगेशन सिस्टम जवाब दे चुका है, अगर अभी नियंत्रण नहीं मिला तो मैं किसी अनजान दुनिया में गिर जाऊंगा। ओ नहीं, नीचे कोई जंगल दिखाई दे रहा है। इमरजेंसी लैंडिंग शुरू करनी पड़ेगी।
2: अरे बाप रे, एलियन आ गए क्या? मेरी किडनी निकाल लेंगे।
3: ये मैं किस गैलेक्सी में आ गया? मेरा जीपीएस खराब हो गया था क्या? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये जगह मेरे किसी भी स्टार मैप में नहीं है।
1: अयो, ये कैसा जानवर है? घोड़ा है या कोई ट्यूबलाइट?
4: रात गुजरी, सुबह हुई, लेकिन जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई कि रात को आसमान से कोई आफत उतरी है। अब जहाँ आफत हो वहाँ हमारे जंगल के पंचायत मेंबर ना आए, ऐसा हो सकता है?
5: ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, जंगल में चीनी बहुरूपिया आया है। ये हमारे जंगल पर कब्जा करने आया है। मैंने अपनी इन दो आँखों से देखा है। सब लोग सावधान हो जाओ, मामला बहुत गंभीर है।
6: देखो इसे कैसे चमक रहा है, ये जरूर कोई जासूस है। इसे मार भगाओ।
3: अरे भाइयों, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं तो कॉस्मोस 9 लोग से रास्ता भटक कर यहाँ आ गया हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुंच गया।
1: ए चुप रहो साहब, ये मेरा मेहमान है। रात को ये सीधे मेरे वीआईपी जोन में लैंड हुआ था। वैसे भाई, तू बिना बिजली की चमकता कैसे है? चार्जिंग पोर्ट कहाँ है तेरा?
4: गट्टू ने घोड़े को बचा तो लिया, लेकिन गट्टू का पुराना दुश्मन जग्गू सियार इस बात से बुरी तरह चिढ़ गया था। उसे गट्टू की बढ़ती हुई हीरोगिरी बिल्कुल पसंद नहीं आई, और तभी उसने गट्टू की वात लगाने का एक मास्टर प्लान बनाया। ऐसा प्लान जिससे गट्टू सीधे मुसीबत के गड्ढे में गिरने वाला था।
6: आज इस गधे को इस गड्ढे में गिराकर इसका ऐसा पोपट बनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा।
4: जग्गू भाई तो अपनी चालाकी पर बड़े खुश थे, लेकिन वो एक छोटी सी बात भूल गए थे कि इस बार गधे के साथ कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि एक सुपर हीरो घोड़ा था।
1: देखा भाई, मैंने तुम्हें कैसे बचा लिया। ये जो सारे जानवर थे ना, मेरे सामने ज्यादा उछलते नहीं हैं। मेरे होते हुए कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आखिर मैं हूँ कौन? गट्टू गधा। इस जंगल में मेरे आगे सब झुक के रहते हैं, कुछ डर से और कुछ मेरी महानता से।
3: सच में? लेकिन सुबह तो सब तुम्हें ही डांट रहे थे।
1: अरे वो डांट नहीं थी भाई, वो सम्मान देने का उनका अलग तरीका है।
4: चलते चलते गट्टू और जादुई घोड़ा उसी रास्ते पर पहुंच गए जहां जग्गू सियार गड्ढे पर घास डालकर बड़े आराम से बैठा हुआ था। ऊपर से देखने में तो सब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उस घास के नीचे जग्गू की चालाकी छिपी हुई थी।
1: अरे ओ जग्गू, यहाँ क्या कर रहा है? चल हट, रास्ता छोड़। दिख नहीं रहा, मेरे साथ खास मेहमान है।
6: दिख तो रहा है, तभी तो यहाँ बैठा हूँ।
1: मतलब क्या है तेरा?
7: मतलब मैं बताता हूँ गट्टू।
4: घोड़े ने मुस्कुराते हुए अपने जादुई सींग को हल्का सा घुमाया और तभी अचानक जग्गू के नीचे बिछी हुई सारी घास हवा में उड़ गई।
8: आ, बचाओ!
1: जग्गू भाई, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिरोगे। वाह मेरे चमकते हुए भाई, तू तो सच में मेरा मसीहा निकला। मैं तो आज गया ही था, लेकिन तूने जग्गू की पूरी चाल उसी पर पलट दी। अब समझ आया, तू कोई साधारण घोड़ा नहीं है भाई।
4: अब भाई, जब पास में अलादीन के चिराग जैसी पावर हो तो अच्छे अच्छों की नियत डोल जाती है। हमारे गट्टू जी के दिमाग में भी लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा।
1: जब तेरे पास इतनी पावर है भाई, तो तू इस गधे को राजा क्यों नहीं बना देता? शेर क्या है, बस सोता रहता है। असली राजा बनने की काबिलियत तो मुझ में है।
7: देखो गट्टू, शक्तियाँ दूसरों की मदद के लिए होती हैं, लालच के लिए नहीं।
1: अच्छा, सभा में किसने तेरी जान बचाई थी? इस गट्टू ने। अब दोस्ती का वास्ता दे रहा हूँ, कल सुबह मैं शेर की गद्दी छीनूंगा। तू बस पीछे से अपनी जादुई लाइट चमका देना।
7: ठीक है गट्टू, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना, लालच का फल हमेशा खट्टा होता है।
4: और आ गई वो ऐतिहासिक सुबह, जब एक गधा शेर को चैलेंज करने जा रहा था। पूरा जंगल इस महा मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हो चुका था।
1: ए शेर, कुर्सी खाली करो, अब इस जंगल का नया राजा आ गया है, किंग गट्टू द फर्स्ट।
6: ए गधे, तेरी इतनी हिम्मत, शेरू का शिकार बनना है क्या?
1: भाई, चालू करो अपना जादुई शो, उड़ा दो सबको।
4: गट्टू को लग रहा था कि वो राजा बनने वाला है, लेकिन जादुई घोड़े ने यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट डाला जिसने बाजी ही पलट दी।
1: सब सुन लो, आज से इस जंगल का नया राजा
5: लो बन गए राजा, पहले अपनी शक्ल तो आईने में देख लो। महाराज,
9: लो भाई, राजा बनने आए थे और खुद का ही बैंड बजवा लिया।
7: भाइयों, राजा वो नहीं जो लालच करे, राजा वो है जो सबका भला सोचे। गट्टू मेरा दोस्त था, लेकिन इसका घमंड तोड़ना जरूरी था।
5: तो भाई लोग, गट्टू का पोपट तो हो गया और जादुई घोड़ा भी चला गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हमारे जग्गू सियार के दिमाग में अब एक नया और खतरनाक आइडिया आ चुका था।
10: भाइयों, गधा भले ही मूर्ख था, लेकिन उस घोड़े के पास जो ताकत थी वो कमाल की थी। अगर वो जादुई शक्ति हमारे हाथ लग जाए तो शेर को गद्दी से हटाना बाएं हाथ का खेल है।
5: पर जग्गू भाई, घोड़ा तो टाटा बाय बाय करके आसमान में उड़ गया, अब क्या उसका स्पेसशिप पकड़ने जाओगे?
6: अक्कल के अंधे, घोड़ा गया है, पर वो जिस जादुई रास्ते से आया था वो रास्ता यहीं कहीं है, और गधे को पता है
10: कि घोड़ा वापस कैसे आ सकता है। चलो उस ढेंचियों को पट्टी पढ़ाते हैं।
4: यहाँ हमारा गट्टू डिप्रेशन में बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था। उसकी आवाज तो ठीक हो गई थी, लेकिन इज्जत का जो कचरा हुआ था उसका दर्द अभी भी दिल में था।
6: अरे गट्टू भाई, ये जंगल वाले कितने जाहिल है ना, आप में साक्षात राजा के लक्षण है और ये सब आप पर हंस रहे थे। मुझे तो बहुत रोना आया।
11: सच कह रहे हो जग्गू भाई, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, बाकी सब तो मतलब ही है।
1: पर अब क्या फायदा, जादुई ट्यूबलाइट तो चली गई।
10: जाएगी क्यों नहीं, तुमने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अगर तुम उसे ये कहते कि पूरा जंगल खतरे में है और हमें उसकी मदद चाहिए तो वो दौड़ कर आता। तुम्हारे पास उसकी ली हुई कोई चीज है?
1: हाँ, जब वो जा रहा था तो उसकी एक चमकीली नाल यहाँ गिर गई थी।
6: कहाँ पे?
1: आओ दिखाता हूँ। ये देखो।
10: बस यही तो चाहिए था, इसे आज रात उसी मैदान में रखकर 3 बार ढेचू बोलना, वो वापस आ जाएगा। फिर देखना, हम दोनों मिलकर राजा बनेंगे।
4: लालच एक ऐसी बीमारी है भाई, जो एक बार लग जाए तो छूटना मुश्किल है। गट्टू फिर से जग्गू के झांसे में आ गया और रात को जादुई घोड़े को बुलाने निकल पड़ा।
12: चल मेरे भाई, शुरू हो जा। तू ही तो कह रहा था कि आज से तू राजा है, अब जरा अपनी राजगिरी का नमूना भी दिखा दे।
4: जग्गू के इतना बोलते ही गट्टू गधा पूरे जोश में आगे बढ़ा और जोर जोर से रेंकने लगा।
12: बुला बेटा बुला, फिर देख तेरे साथ क्या खेल होता है।
4: गट्टू के ढेचू ढेचू बोलते ही अचानक आसमान में नीली रोशनी चमकने लगी। देखते ही देखते शाइनिंग स्टार बादलों को चीरता हुआ नीचे उतरा और सबके सामने आकर जमीन पर खड़ा हो गया।
13: क्या हुआ गट्टू, तुमने मुझे इतनी शिद्दत से बुलाया, क्या जंगल पर कोई मुसीबत आई है?
11: वो भाई, मैं
4: गट्टू कुछ बोल पाता उससे पहले ही अचानक चारों तरफ से बंदरों का झुंड बाहर निकल आया।
14: पलक झपकते
4: बड़े बड़े जाल और मोटी रस्सियां जादुई घोड़े पर फेंक दी गईं।
12: कोई मुसीबत नहीं आई है, असली मुसीबत तो अब शुरू होगी। इस गधे ने तुम्हें बुलाया और हमने तुम्हें फंसा लिया।
13: ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गट्टू, तुमने फिर से मेरा भरोसा तोड़ा।
11: नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं था। जग्गू, तुमने तो कहा था हम दोस्त हैं।
12: दोस्त? अरे मूर्ख गधे, तू तो सिर्फ एक मोहरा था। अब इस घोड़े की शक्ति मेरी होगी और फिर पूरी दुनिया पर राज करूंगा।
11: हुजूर, मुझे सजा दे दो, मुझे जू में भेज दो, पर जादुई घोड़े को बचा लो, जग्गू ने उसे कैद कर लिया है।
15: क्या उस सियार की इतनी हिम्मत, हमारे जंगल के मेहमान को कैद किया? जानवरों और पक्षियों, तैयार हो जाओ, आज जंगल के कानून की ताकत दिखाने का समय आ गया है।
0: फिर किसी भी कानून को तोड़ेंगे तो नुकसान तो जरूर होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक प्यारी सी कविता आप तक पहुंचाते हैं। आज दुर्गा अष्टमी का दिन भी है। श्वेत वस्त्र और श्वेत वर्ण, माँ का रूप निराला है। जिसने भी सच्चे मन से धाया, जग में उजियाला है। 8वें दिन की शक्ति ये माँ गौरी कहलाती है। भक्तों के सारे कष्ट हर खुशियां बरसाती है। त्रिशूल डमरू धरनी सिंह पर जो सवार है, मैया की एक झलक पाने को उमड़ा सारा संसार है। कन्याओं में रूप तुम्हारा आज घर घर आता है, हलवा पूड़ी और चने का भोग तुम्हें लगाया जाता है। दुष्टों का संहार किया, महिषासुर को तुमने मारा। तुम ही हो जग की जननी, तुम ही तो हो सहारा। माँ के चरणों में शीश झुकाए, यही प्रार्थना हमारी है। सबको मिले आशीष तुम्हारा, ऐसी ये अष्टमी प्यारी है। चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत कविता के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले पल कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ और कुछ गीत ज़रूर आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं उड़ान के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
16: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
17: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
16: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: नटखट बंटी, पात्र परिचय। पापा के रूप में सैंडी, मम्मी के रूप में कृष्णा, बंटी के रूप में आदित्य और नरेटर शशिकांत। बंटी के पापा घर के फिजूल खर्चों से बहुत परेशान थे।
1: बिजली का बिल, फोन का बिल, केबल का बिल, पेपर का बिल, ओ मेरी तो पूरी तनख्वाह इन बिलों में चली जाती है।
2: हाँ पापा, और मेरी स्कूल की फीस में भी तो काफी खर्चा होता है।
1: हाँ बेटा, कल्चर एक्टिविटी चार्ज, स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स, ना जाने क्या क्या चार्ज देने पड़ते हैं।
2: पापा एक आइडिया है खर्च बचाने का।
1: वो क्या है?
2: पापा मैं अपने स्कूल से नाम कटवा लेता हूँ, काफी खर्च बच जाएगा।
1: चुप रहो शरारती बंटी, जब देखो तो पढ़ाई से बचने का तरकीब सोचते रहते हो।
2: सॉरी पापा, मैं कोई दूसरी तरकीब सोचता हूँ खर्च कम करने की।
1: ये हुई ना बात, खर्च बचाना ही है तो फिजूल खर्च बचाओ, ना कि जरूर की चीजों की कटौती करके स्कूल जाना ही छोड़ दो।
2: पापा ये फिजूल खर्च क्या होता है?
1: फिजूल खर्च मतलब बेवजह के खर्च, जैसे बगैर जरूरत के सामान खरीदना, टीवी फालतू चलाना, थोड़ी थोड़ी दूर के लिए गाड़ी की सवारी और मुफ्त में पेट्रोल को बेकार जलाना।
2: पापा बस मैं समझ गया, आज से इस घर में फिजूल खर्च बंद।
3: वाह बंटी, बहुत समझदार हो गए हो। मैंने गलती से गैस खुला छोड़ दिया था, तुमने फौरन बंद कर दिया।
2: हाँ मम्मी, आखिर फिजूल खर्च बचाना है।
1: बंटी जाओ गोपाल के साथ मेरे स्कूटर पर और लॉटरी से मेरे कपड़े प्रेस करा लाओ।
2: नहीं पापा, स्कूटर से पेट्रोल जलेगा और लॉन्ड्री में प्रेस कराने से खर्च बढ़ेगा, मैं घर पर ही आपके कपड़े प्रेस कर देता हूँ।
0: पापा ऑफिस जाते वक्त अपना नया शर्ट पहन रहे थे तभी चीख उठे।
1: ओ नो, ये मेरे नए शर्ट रोशनदार कैसे बन गए?
2: सॉरी पापा, प्रेस करते वक्त प्रेस जड़ा ज्यादा गर्म हो गई थी।
1: भाई बंटी, खर्च बचाने की तुम चिंता ना करो, वो तुम्हारा काम नहीं है, इस तरह तो तुम और भी मुसीबत बढ़ा दोगे।
3: बंटी जरा देख कर आना, काम वाली बाई क्यों नहीं आ रही है, कहीं बीमार तो नहीं है?
2: नहीं मम्मी, बाई को तो मैंने मना किया है, वो क्या है कि फिजूल खर्च बचाना है।
3: ओ नो, फिजूल खर्चे के चक्कर में ये लड़का जीना ही हराम कर देगा। बंटी आज से तुम खुद की फिजूल खर्चों पर कंट्रोल करो, ना कि घर बार को डिस्टर्ब करो।
0: रात को बंटी महाराज अंधेरे में बैठकर टीवी का प्रोग्राम देख रहे थे।
3: अरे शरारती बंटी, क्या तुमने होमवर्क कर लिया और ये अंधेरे करके टीवी क्यों देख रहे हो?
2: ओ मम्मी, आपने ही तो कहा था कि खुद की फिजूल खर्ची पर कंट्रोल करो, इसलिए अंधेरा करके बिजली का बिल बचा रहा हूँ।
0: मम्मी ने समझाया कि अंधेरे में टीवी देखने से आंखें खराब होती है और इस तरह बंटी को फिजूल खर्च क्या है ये समझाने में मम्मी पापा को काफी मेहनत लगी।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: ऐसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: घोड़ी की जो बेली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए परेशान हुए रोए चिल्लाए दिल टूट गया जग छूट गया

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा और कह दीजिए
1: मिसाइल मैन। जैनुलाब्दीन रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यवर्गीय परिवार के मुखिया थे। उनका बेटा अबुल बड़ा ही प्रतिभावान लड़का था। बचपन से ही इस बच्ची की रुचि विज्ञान विषय में रही।
2: बेटा अबुल, सभी तुम्हारी प्रतिभा की बड़ी तारीफ करते, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ। बेटा हमेशा याद रखना, परेशानियाँ हमें आत्मविश्लेषण का मौका तो देती है, इसलिए उनसे घबराना नहीं बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना।
3: जी पिताजी, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगा और आपको भविष्य में कुछ बनकर दिखाऊंगा।
1: अपने सपनों को साकार करने के लिए अबुल इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहते थे। वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला का प्रयास करने लगे। एक दिन बहन जोहरा के घर अबुल कुछ सोच में बैठे थे।
4: अबुल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? क्या हुआ, इस तरह उदास क्यों बैठे हो?
3: मेरा सपना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करके कुछ कर दिखाने का है। दाखिल के लिए चुने गए लड़कों में मेरा नाम भी है, लेकिन पढ़ाई इतनी खर्चीली है कि पिताजी के पास इतने रुपए होने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता।
4: अबुल, मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा यकीन है, फीस की चिंता ना करो, बस मन लगाकर पढ़ने की तैयारी करो, तुम्हारी बहन है ना।
1: जोहरा ने अपने जेवर बेचकर फीस का इंतजाम किया और अबुल ने भी इस त्याग का पूरा मान रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाई का एक वर्ष पूरा करने के बाद अबुल ने एरोनॉटिकल विषय को चुना। इस दौरान उन्हें विशेषज्ञों का भरपूर सहयोग और ज्ञान मिला। इस प्रेरणा से अबुल भी विषय में गंभीरता से डूबते गए।
5: अबुल, अब हम सभी तुम्हारी मेहनत और लगन से बहुत खुश हैं। अबुल, अब तुम्हें एक बहुत खास काम सौंपा जाएगा। तुम्हें लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करना है। इस काम को भी पूरी मेहनत और लगन के साथ करना।
1: अबुल पूरे मनोयोग से विमान के डिजाइन तैयार करने में जुट गए। उनका काम थोड़ा धीमा चल रहा था, जिससे उनके प्रोफेसर उन पर नाराज होते हुए भड़क गए।
5: अबुल, ये क्या है, तुम्हारा काम निराशाजनक है। अगर तुमने 3 दिनों के अंदर यह काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी।
3: अब 1 माह का काम मुझे 3 दिन में करना ही होगा, अगर छात्रवृत्ति रुक गई तो मुसीबत हो जाएगी।
1: वह दिन रात अपने काम में जुट गए। तीसरे दिन उनका काम पूरा होने ही वाला था, तभी उनके प्रोफेसर आ गए, जिन्होंने उन्हें डांटा था।
5: अबुल, तुम वाकई तारीफ के काबिल हो, मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर तनाव पैदा हो रहा है और तनाव में तुमसे ये काम नहीं हो सकेगा। भारी तनाव के बाद भी तुमने कम समय में ये काम पूरा करके कमाल कर दिया।
1: कई बार उन्हें असफलताओं का स्वाद भी चखना पड़ा और निराशाएं भी उनके जीवन में आई। यही नहीं, एक बार वायुसेना में नौकरी पाने में वे चूक गए थे, लेकिन पिता की बातों को याद करते हुए वे आगे बढ़ते गए। निराशा में भी आशा का दामन को न छोड़ने वाले अबुल अपने ज्ञान में विस्तार करते गए। विज्ञान की गहराइयों में डूबकर वे देश के कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में जुड़े और देश के रक्षा अनुसंधान के लिए कई कार्य किए। भूतकाल में यही अबुल देश के महामहिम राष्ट्रपति थे। इन्हें हम बच्चे कलाम चाचा और मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं और लोग इन्हें APJ अब्दुल कलाम के नाम से संबोधित करते हैं।

0: आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है।
1: दादाजी और नवीनीकरणीय संसाधन। पात्र परिचय। दादाजी के रूप में पंकज, राहुल के रूप में आदित्य और रिया कृष्णा।
2: दादाजी आप पौधा लगा रहे हैं?
3: हाँ, पौधा लगाने से पर्यावरण तो स्वच्छ होता ही है, साथ ही नवीनीकरणीय संसाधनों का भी विकास होता है।
1: ये संसाधन क्या होता है दादाजी?
3: ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समय के साथ प्राकृतिक या जैव वैज्ञानिक रूप से बदले और जरूरत के हिसाब से दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उन्हें नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं।
2: ये कौन कौन से होते हैं?
3: इन नवीनीकरणीय संसाधनों में पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, सूर्य का प्रकाश आदि सभी आते हैं, जिन्हें समय के साथ दोबारा प्राप्त करके लाया जा सकता है।
1: लेकिन दादाजी, इन्हें नवीनीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं?
3: राहुल, इन वस्तुओं का प्रयोग अनेक बार विभिन्न रूप से किया जा सकता है, इसलिए इन्हें नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के रूप में पेड़ पौधों को ही ले सकते हो, ये हमें फल फूल तथा सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो देते ही हैं, इनकी लकड़ियों द्वारा फर्नीचर तथा कागज आदि भी बनाए जाते हैं।
2: दादाजी, नवीनीकरणीय संसाधनों से और क्या क्या लाभ है?
3: नवीनीकरणीय संसाधनों से बायोप्लास्टिक, बायो एस्फॉल्ट, बायोफ्यूल, बायोगैस आदि भी प्राप्त होते हैं।
2: वाह, फिर तो हमें इन संसाधनों का खूब प्रयोग करना चाहिए।
3: रिया,

0: लेकिन इनके अत्यधिक प्रयोग से इन वस्तुओं के विलुप्त होने की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है।
1: मैं कुछ समझा नहीं दादाजी।
0: राहुल, उदाहरण के रूप में तुम मछलियों के प्रयोगों को ही ले सकते हो। समुद्र की मछलियों को जितनी अधिक मात्रा में पकड़ा जाता है, उतनी अधिक मात्रा में वह शीघ्र ही पुनः उत्पन्न नहीं हो पाती, इसलिए उनकी मात्रा में कमी आती जा रही है। और अगर ऐसा ही रहा तो मछलियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती है।
2: इसका मतलब हमें नवीनीकरणीय संसाधनों का प्रयोग भी करना चाहिए, लेकिन खूब सोच समझकर, जिससे संसाधनों को हमें लाभ भी प्राप्त होता रहे और इन संसाधनों को क्षति भी ना पहुंचे।
3: नमस्ते, मैं हूँ किरण, शूद्र की सांडली, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है।
1: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस 1 मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सब सुन रहे हैं मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम। सही में जब नाम सुनते हैं कितना खुशी लगता है। अपना गांव और अपना अंचल, जिस गांव में हम पले बढ़े और यहां तक पहुंचे, वो गांव और वो अंचल, वो ढाणी, वो चाहे मगरा को हम कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि अपना खुशबू होता है जो गांव को कहते स्वर्ग, क्योंकि उसी गांव में हम पले बढ़े और यहां तक पहुंचे। कहीं भी रहे, किस तरह भी रहे, लेकिन अपना गांव अपना ही होता है और अपनापन लगता है। जब अपनापन होता है तो सब कुछ नौछावर करने के लिए इच्छा होता है अपना गांव के लिए, चाहे संगीत हो, चाहे अपना श्रम हो, अपना जो टैलेंट को अपना अंचल में, अपना गांव में लगाने के लिए इच्छा होता है। तो देर किस बात की, आज ग्रामवासियों की तरफ से, अंचलवासियों की तरफ से और हमारा सभी श्रोता मित्रों की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारा साथ अनुराधा जी उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से। अनुराधा जी, आपको स्वागत है।
1: धन्यवाद भाई जी।
0: और क्या कहना चाहेंगे, आज तो रेडियो मधुबन कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा रहे हैं और एक बार भी पहले भी दिए थे प्रोग्राम, तो आज स्टूडियो में आए तो आपको वेलकम करते हैं। तो आप थोड़ा सा किस तरह रुचि रखते हैं, किस विषय में, थोड़ा बताइए।
1: मेरा नाम अनुराधा कांबोज है।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें तो बहुत खुशी है आज अनुराधा जी उपस्थित है, तो हमें खुशी क्यों नहीं लगेगा क्योंकि अपना स्टूडियो में आज उपस्थित है, पहुंचे हैं, आज उनका कार्यक्रम को सजा रहे हैं और बारी बारी उनका जो प्रस्तुतियां सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक बचपन से जो टैलेंट उनका रग रग में जो रहा है आज उसको रेडियो का कार्यक्रम में सुना रहे हैं। हमारा श्रोता मित्र तो झूमेंगे और कभी कभी नाचेंगे भी क्योंकि गीत को सुनते सुनते झूमेंगे। तो देर किस बात की, पहला प्रस्तुति स्वागत करते हुए उनको स्वागत गीत से बहुत पसंद है, तो स्वागत अनुराधी जी आपको पुनः स्वागत करते हैं, तो एक प्रस्तुति सुनाइए।

का जो अनिवार्य नहीं थमता, सारथ साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता, शाश्वत सुमित सित इति शुभम, शाश्वत सुमित सित इति शुभम।

स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम कुसुमित नई कामना।

आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है क्योंकि आज आउटरीच गांव से हट के स्टूडियो से ही आपका पास हम रख रहे हैं। बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि हमेशा तो बाहर का जो रिकॉर्डिंग लेकर आते थे, आज रेडियो कार्यक्रम के लिए स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करके आपको भेज रहे हैं और हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं अनुराधा जी, तो उनको पुनः स्वागत करते हैं और एक प्रस्तुति सुनने के लिए, क्योंकि आप सबको मालूम है कन्हैया जी का जो महिमा जितना भी करे कम ही होगा, क्योंकि हर समय हम श्री कृष्ण जी को याद करते भक्ति भावना में ओतप्रेत होते, अपना भाव को भावना को रखते हैं। एक भक्ति भरा संगीत के लिए पुनः स्वागत करते हैं अनुराधा जी को।
1: धन्यवाद भाई जी।
0: हाँ जी,

अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैया रूठी बाबुल रूठे को ना सुनत हमारी। मैया रूठी बाबुल रूठे को ना सुनत हमारी। तेरी प्रीत के कारण हो गए।

क्या बात क्या बात, कितना सुंदर प्रस्तुति। और जब कान्हा का नाम सुनते हैं तो मुरली को कैसे भूल पाएंगे, और तान सुर लय और ताल का साथ, छोटे पन में जो कान्हा को लाल कहते हैं, जय कन्हैया लाल की। जब जन्माष्टमी आता है तो वो याद आता है मुझे, जय कन्हैया लाल की आती लाल की। सही में तो हमेशा जब हम बचपन को याद करते, कन्हैया जैसे हमारा घर में पुत्र बने, भगवान श्री कृष्ण जैसे हमारा घर में कन्हैया लाल आए, ऐसे सभी तन मन मन इच्छा जाहिर करते। माताओं का तो जो स्नेह ममता और भाव कृष्ण का प्रति लगता ही, और आज का कार्यक्रम को भी सुंदर रूप में अनुराधा जी सजा रहे हैं एक का बाद एक गीत। उनका पास बहुत सारा गीत है लेकिन हम समय को देखते हुए ले रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेगी सुनाएगी, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए अगला प्रस्तुति के लिए इंतजार कर रहे हैं हम सभी, क्योंकि हमारा श्रोता मित्र तो आज कृष्ण जी का और स्वामी भक्ति भावना में ओतप्रोत होकर सुन रहे हैं। तो लीजिए अगला प्रस्तुति शुरू हो जाइए अनुराधा जी।
4: धन्यवाद।

0: करे,
1: तुझे दिल से याद करे। सही में दिल से जब याद करते हैं तो दिल का तार परमात्मा तक, खुदा तक, अल्लाह तक पहुंचता है। दिमाग से नहीं, दिल से करना चाहिए। जैसे गीत में अनुराधा जी ने बताया, जो भी हमारा जो दिल का भावना, दिलाराम भगवान को, अल्लाह को, खुदा को सुनाना चाहिए। और ये गीत के माध्यम से हमारा सभी जो भक्तजन, जो आस्था विश्वास भक्ति में ओत प्रेत होते हैं, तो उनके लिए ये तो चार चांद लगेगा, कामयाबी तक होगा। तो ये गीत में सही में जब सुनते हैं कितना खुशी मिलता है, और एक सेकंड में परमात्मा तक हमारा दिल का तार जुड़ जाता है। होना भी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे?
2: क्योंकि शिव ही हमारी तकदीर बनाते हैं, और शिव का ध्यान इस गीत में इतना मतलब खो जाता है। मैं खुद भी गाती हूँ ना इस गीत को, तो परमात्मा में बिल्कुल लीन हो जाती हूँ मैं इस गीत को गाते गाते। तो परमात्मा ही हमारी तकदीर बनाते हैं, परमात्मा ने ही हमें रचा है।
1: जी जी।
2: और परमात्मा ही हमें इस सृष्टि को चला भी रहे हैं, तो परमात्मा हमें बहुत प्यार भी करते हैं।
1: क्योंकि सभी आत्माएं जब खुद को आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो जरूर निराकार जो परमपिता परमात्मा, जिसको हम शिव जी कहते हैं, और अपना अपना भाषा में कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो और एक प्रस्तुत शायद सुनाएगी, उनका मन उनका आवाज़ को रोक नहीं पा रहे, अगला प्रस्तुति होगी। लेकिन अल्प विराम का बस सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हम सभी इंतजार में हैं, क्योंकि अनुराधा जी इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं। एक का बाद एक गीत, चाहे भक्ति गीत हो, चाहे मोटिवेशनल सॉन्ग हो, चाहे प्रार्थना का रूप में, चाहे स्वागत गीत हो, सब में उस्ताद है। तो आज तो खुशी है क्योंकि हमारा श्रोता मित्र भी झूम रहे, नाच रहे, भक्ति भावना में ओतप्रोत होकर अपना वॉल्यूम को तेज करके सुन रहे हैं 107.8 FM पर। पहले 90.4 FM था, अभी चेंज होकर आपका पास हम रख रहे 107.8 FM पर। तो अनुराधा जी आपको भी पुनः स्वागत करते हैं। अगला प्रस्तुति क्या प्रस्तुत करेगी सुनाओ।
2: ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो

तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो

टप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है।

तुम्हारी एक दिन होगा विशाल तरुवर, वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो

वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर गिज हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाना, कभी हारना ना, हिम्मत

मेरा खुदा बड़ा है। सही में खुदा तो हमेशा खुद को संभालते हैं और हम सब आत्माओं का देखभाल करते हैं और हम खुद देखते हैं और खुदा को भी सुनाते अपना बात को। और मेरा खुदा सबसे बड़ी है, कोई भी मुश्किल आए लेकिन हिम्मत नहीं हारना है और एक कदम हिम्मत हमारा है और हजार कदम मदद भगवान खुदा का। तो सही में गीत में बहुत सुंदर सीख भरी प्रेरणादायी और एक हिम्मत जोश उमंग निराश न होने के लिए एक प्रेरणादायी गीत है, बहुत अच्छा लगा। और हमारा श्रोता मित्र भी इससे जरूर प्रेरणा लिए होंगे क्योंकि ये आकरा भट्टा का आवाज़ है अनुराधा जी, क्योंकि आकरा भट्टा से आई है। तो हमारा स्टूडियो में आज चार चांद लगाई क्योंकि लोकल के जो आसपास लोग जब इस रेडियो स्टूडियो में आते हैं तो हमें खुशी लगता है। कैसे लगा अनुराधा जी? क्योंकि सामुदायिक रेडियो है जी, जी सामुदायिक रेडियो है तो सामुदायिक का जो गतिविधि, सामुदायिक का जो टैलेंट, सामुदायिक का जो प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा एक मंच एक स्टेज प्रदान करता है। तो आज स्टूडियो में जब खुद आए हैं तो हमें खुशी क्यों नहीं लगेगा। और हमारा श्रोता मित्र को भी अनुरोध करते हैं, जब भी आपको समय मिलेगा आपका टैलेंट का हो, आपका गाँव का इतिहास हो, चाहे आपका गाँव का जो रीति रिवाज संस्कृति कला को जन जन तक पहुँचाने के लिए रेडियो मधुबन आपके लिए पूरा दरवाज़ा खोला रखता है, स्टूडियो खोला है। आप आइए, हमारा नंबर पर भी आप SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। ये 24 आवर्स चलता है, 24 घंटा पूरा बेहद सेवा के लिए तत्पर रहता है रेडियो मधुबन आपका सेवा में जी हाजिर। तो ज़रूर आप अपना मोबाइल को उठाइए और रिंग करिए 9414151415। आज के लिए हमें और अनुराधा जी को दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद, आभार।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो की केन हो। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे मुझे, यानी कि मैं आपका दोस्त केवल, और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा शो खुशी के नगमे दिल की बातों का। दोस्तों, जून की ये तपती शाम, हल्की ढलती हुई धूप और आपके रेडियो सेट पर मधुबन की ये मीठी आवाज, उम्मीद है आप सब अपने घरों में या दफ्तर से लौटते हुए या अपने कामकाज से लौटते हुए बिल्कुल सुरक्षित और तरोताज़ा होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज सोमवार है यानी मंडे। आज सुबह जब अलार्म बजा होगा तो दिल ने ज़रा ज़रूर कहा होगा कि काश थोड़ा सा और सो लेता, है ना। बिल्कुल ऐसा होता है ना कि जब संडे की शाम होती है, संडे को अच्छे से आप सोते हैं और जब नेक्स्ट डे मंडे होता है तो सुबह जब उठते तो पता लगता है, अरे यार काम पे जाना है, थोड़ा सा और सो लेता हूँ। फिर वही दफ्तर की भाग दौड़, फाइलों का अंबर, ईमेल्स के जवाब और बॉस की हेडलाइंस। जी हाँ, ये बात हो रही है दोस्ती नौकरियों की। नौकरी चीज़ ही ऐसी है, थकाती ज़रूर है, लेकिन जब महीने के आखिर में मेहनत की कमाई आती है तो चेहरे पर वो जो खुशी के नगमे तैरते हैं ना, उनकी बात ही कुछ और है। नौकरी की शुरुआत कहाँ से होती है, ये प्रश्न है आपसे कि नौकरी की

0: शुरुआत कहाँ से होती है? एक अध अर्जी यानी हमारे रिज्यूम से। हम कितनी उम्मीदों से अपनी अर्जी कंपनियों में भेजते हैं, लेकिन आगे से जवाब क्या आता है? वी विल गेट बैक टू यू। होता है ना, कई बार सभी के साथ होता है, जिन्होंने भी इंटरव्यूज दिए हैं नौकरी के लिए, जो भी हमें सुन रहे, जिन्होंने भी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू में से जब सामने से रिप्लाई आता है या जब सामने से जवाब आता है कि हम आपसे फिर मिलेंगे, हम आपको गेट बैक करेंगे सून, तो यही चीज़ें होती है। इस नौकरी की कश्मकश, इंटरव्यू के प्रेशर और दिल की बातों का बयां करते हुए एक बड़ा सी प्यारा नगमा है, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर है, चलिए सुनते हमारे कॉलर को। हेलो,
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार बुरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बात ही मत पूछो, क्या कहना है, आपके हाल और हमारे हाल एक जैसे है।
0: क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है।
1: कार्यक्रम के अंदर आए और हम कार्यक्रम के अंदर जुड़े हैं।
0: अरे वाह, शुक्रिया।
1: अरे जुड़ने के साथ में हमारा एक गाना है, आज अमरेश पुरी का जन्मदिन है ना।
0: अच्छा,
1: उनकी वाणी में एक गाना निकला था
0: जी,
1: क्या कह रहा है उसका तो मैं तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसे अपनी मधुर वाणी में कहा है
0: जी,
1: और फिल्म का नाम है नागिन।
0: नागिन,
1: हाँ, फिल्म का नाम है नागिन।
0: हाँ जी,
1: उसके बोल है, मैं है नागिन, तू है सतेरा।
0: क्या बात है, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू
1: मैं। क्या बात करो, हमारे को भी मस्ती आ जाएगी और नागिन भी नाचेगी।
0: बिल्कुल, मौसम ही ऐसा हो रहा है, सावन का महीना है और नागिन की बात हो रही है। बिल्कुल, ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे आपके लिए गाना प्ले करें, बिकॉज ये गाना अगर हमारे प्लेलिस्ट में होगा तो जरूर से प्ले करेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू बुरीलाल जी। जी हाँ, सावन का महीना पहुँचते ही ये गाने सुनने के बड़े मज़े आते हैं। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सफेरा। क्या बात है, नागिन मूवी का ये गाना बुरीलाल जी ने जब हमें फरमाइश की है तो ज़रूर से सुनाएंगे उनको, कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात ये थी कि वी विल गेट बैक टू यू सून, हम आपको ज़रूर से कॉन्टेक्ट करेंगे, ज़रूर से बुलाएंगे। इसी नौकरी की कश्मकश, इंटरव्यू के प्रेशर और दिल की बात को बयां करते हुए एक बड़ा ही प्यारा नगमा याद आ रहा है। ज़रा सोचिए, इस नौकरी ढूंढने वाला युवा अपने हाल, अपने होने वाले बॉस या कंपनी से अपने दिल की बात कह रहा हो कि कैसे बात होती है। तो लेकिन इस नौकरी की आपाधापी में क्या हम अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े बॉस यानी प्रकृति को भूल ना जाना। चलिए इसी सोच के साथ सुनते हैं आज का पहला नगमा और फिर करते हैं इस गाने के बारे में ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर खुशी के नगमे दिल की बातें। जी दोस्तों, अभी जब हम गाना सुना नौकरी मूवी का, ये गाना किशोर साहब की आवाज़ में, इसे लिखा था शैलेंद्र जी ने और सलील चौधरी जी ने इसे म्यूज़िक को कंपोज किया था, यानी कि म्यूज़िक डायरेक्ट किया था, और मूवी थी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा। अभी जो गाना हमने सुना, ये अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी, जो सोचे बिना ठुकराओगे देखो बड़ा पछताओगे। जी हाँ, नौकरी की जब हम बात कर रहे थे तो कई बार हमारे दिल से ऐसी आश और तिहर निकलती है कि भाई ये नौकरी तो जब मुझे मिल ही जाएगी, ये नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसे दिल में सोच रहा था, दिन में मेरी बात हो रही थी, क्योंकि अब हम देख रहे कई जगह पे वाटर क्राइसिस हो रहा है, तो देखा कि मैंने कई जगह पे कई पाइप टूटा हुआ है, पानी बह रहा है, साफ पानी सड़कों पर बह रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ दूरी पर लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं। तो जून का महीना है दोस्तों, गर्मी अपने चरम पर है और हमारे देश के कई हिस्से इस वक्त जल संकट यानी कि वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हम दफ्तरों में बैठकर बड़ी बड़ी नौकरी और प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, लाखों के पैकेज की बात करते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर पीने के पानी ही ना हो तो क्या वो आलिशान नौकरी या वो पैसे हमारी प्यास बुझा पाएगा? जैसे एक नौकरी की सलीके से चलाने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही पानी को बचाने के लिए भी वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पानी को ज़ाया ना करें, अपनी गाड़ी धोते वक्त, ब्रश करते वक्त, या फिर जब हम RO के पानी को वेस्ट पानी के में फेंकते हैं, तो ज़रूर सोचिए कि पानी की हर एक बूंद कितनी कीमती। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में मैंने ये न्यूज़ सुनी थी कि बॉम्बे में यानी मुंबई में बहुत ही पानी की किल्लतें चल रही है। वहाँ पे अभी 2 दिन में 3 दिन में एक बार पीने का पानी आ रहा है, और कहा जा रहा है कि सिर्फ 40 दिनों का पानी बचा है, क्योंकि इस बार जैसे आप देख रहे हैं कि बारिश कुछ समय के लिए रुकी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इससे इस बारे में, और उससे पहले हमारे कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
2: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। सुरेश भाई बोलता हूँ जेठाना से। कैसे हो सर?
1: गुड इवनिंग सुरेश जी, हम ठीक है, आप कैसे हैं ये बताइए।
2: बस बिल्कुल अच्छे हैं, आप बोलते थे हम क्यों बेचैन हो।
1: हाँ बिल्कुल
2: अच्छे हैं, क्योंकि आप जैसे हमारे दोस्त हैं तो फिर हम इसको क्या।
1: हाँ शुक्रिया।
2: बस और हमारे अंतरिक्ष भाई नहीं है अभी तक।
1: अभी अंतरिक्ष भाई अहमदाबाद में है, उनके कुछ जी हाँ, उनकी भी नौकरी और उनके भी काम के लिए वो वहाँ है, बट शायद बहुत जल्दी लौटेंगे वो।
2: कोई बात नहीं, चलो हम तो आपके पल लेते हैं
1: जी,
2: क्योंकि ज्यादा दिन होता है बाद में भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
2: हम नहीं भूलेंगे,
1: नहीं नहीं बिल्कुल।
2: आपको और अंतरिक्ष भाई को दोनों को भी नमस्ते,
1: थैंक यू।
2: बिल्कुल सही बात बता रहे हैं सर, पानी के बारे में बता रहे हैं, कई जगह पे पानी बह रहा है, लोग देख रहे हैं, फिर भी ऐसे नहीं समझते कि उसको बंद करें तो इतना पानी बचे, और आगे पानी का बहुत जरूरत है, दिक्कत रहेगी। बारिश कम आ रही है, बारिश आ ही नहीं रही है
1: बिल्कुल, और इस बार तो बारिश वैसे भी थोड़ी लेट हो गई है।
2: हाँ लेट हो गई है, इसीलिए पानी को बचाना है, लेकिन लोग समझते हैं सर, रात को क्या करते हैं, नल खुला करके सो जाते हैं, सुबह में जल्दी पानी आता है तो पूरा पानी बह जाता है 1 घंटे का, और कितना पानी खराब होता है सोचते नहीं है। मैं बताऊँ सर, तो हमारे 4 बजे सुबह में पानी आता है, मैं 4 बजे ही उठता हूँ, लेकिन कहता हूँ ना, हमारे घर पे तो ऐसा नियम है सर कि पानी का जो कर दिया हमने तो पानी का नल बंद कर देना,
1: बिल्कुल
2: वेस्ट पानी ले जा देना, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत कीमती है।
1: बिल्कुल,
2: तो दूसरों को भी कहते हैं, हम तो बाहर जाते हैं कहीं सुबह में 6 बजे, हम 5 बजे बाहर निकलते हैं, क्योंकि किसी की जो नल चालू होता है तो मैं बंद कर ही देता हूँ, चाहे वो उठे ना उठे तो मैं ही बंद कर देता हूँ।
1: सही है,
2: सोचना है, देखना है कि भाई हम देखते हुए तो ऐसे नजरअंदाज करें तो कैसा चल सकता है।
1: बिल्कुल,
2: तो पानी को बचाना है, इसलिए आज पानी की दिक्कत रहेगी, लेकिन जब पानी नहीं होगा सर तब पता चलेगा कि भाई हमने कितना पानी व्यस्त किया, ये सब उसको मालूम पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
2: बस पानी बचाना है, जीवन बचाना है, पानी है तो जिंदगी है, वरना तो समझ लो आज कई लोग पानी के बिना तड़प रहे हैं, कितने कितने दूर पानी ले जाना पड़ लेने के लिए जाना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
2: और कई कई लोगों को तो हाँ कई कई जगह पे तो सब दो दो तीन तीन दिन के पानी आता है। देखो 3 दिन के बाद पानी आएगा तो पानी कितने कितनी वो खातरदारी करेगा,
1: बिल्कुल
2: कितना पानी को बचाएगा।
1: बिल्कुल,
2: और जिस हर रोज पानी आता है, दो बार पानी आता है, वो पानी
1: वेस्ट कर देता है। हाँ बिल्कुल,
2: तो ऐसा नहीं करना है सर, बस हम तो ऐसा ही कहेंगे कि पानी का बचाना है बस।
1: जी बिल्कुल, हम यही सभी से
2: आ गए तो गाना भी मैं दे दूँ अच्छा वाला।
1: जी बिल्कुल,
2: प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, बस वही गाना हमको पसंद आ गया है।
1: बिल्कुल, चलिए आज
2: फिर भी आपको आपने शुरुआत पानी की है तो पानी का भी कई सारे गाने हैं।
1: जी बिल्कुल,
2: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला है उसके रंग जैसा।
1: चलिए दोनों गाने आज हम कोशिश करते हैं आपके लिए प्ले करेंगे। बिल्कुल सर,
2: कोई बात नहीं सर, नमस्ते।
1: नमस्कार
2: सर, हमारे गुरीलाल जी को तो आगे गए, बहुत अच्छा गाना स्मरण वाला सुना दिया, मुजपुरी का जन्मदिन है आज
1: जी,
2: नागिन फिल्म की फरमाइश दी है, तो चलो कोई बात नहीं, हम सुनेंगे। नमस्ते सर।
1: ओके, थैंक यू सो मच सुरेश जी आपका कॉल करने के लिए, और बहुत ही अच्छी बातें कही है, पानी को बिल्कुल से बचाना है, बिकॉज अभी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, कई बार हम सोचते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि बच्चों को पानी के ट्यूबवेल में या सॉरी जो हम ट्यूब्स होती है पानी की, जो प्लास्टिक की जो होती है, उसमें हम पानी भर के उनमें खिलाते हैं, उसमें उनको नहलाते हैं, गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी यूज़ होता है क्योंकि गर्मी होती है, लोग गर्मी से परेशान होते हैं और सोचते चलो नल के नीचे फुल शावर में खड़े होकर के पानी से नहाएंगे या जो भी है, जैसे भी है, लेकिन कई बार हमें ये सोचना है कि कई जगहों पे पानी की बड़ी दिक्कत है। हमने देखा है विदेशों में भी, अफ्रीका के कई ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, लोगों को मिट्टी के कुएं में से जितना भी थोड़ा बहुत पानी मिलता है कुएं में से मटकों में से भर भर के निकालना पड़ता है। यहाँ हमारे यहाँ राजस्थान में भी कई ऐसी जगह है जहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है। आप सोचो बॉम्बे जैसी जगह पर जहाँ समुंदर है लेकिन फिर भी पीने का पानी नहीं है, यूज़ करने के लिए 3-3 दिनों में पानी मिल रहा है, तो आप सोचो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। कहते हैं कि पूरे विश्व में 70% जो वाटर है, यानी कि हमारे जो अर्थ है पृथ्वी, उसमें 70% पानी है, लेकिन वो पानी किसी यूज़ में नहीं है, वो सारा समुद्री पानी है, लेकिन जो यूज़ करने लायक है, पीने लायक है, हम अपने डेली यूज़ में जो यूज़ कर सकते हैं, वो पानी बहुत कम है। तो दोस्तों अभी समय है अपने आप को संभालना है, पानी को बिल्कुल से बचाना है, क्योंकि अभी हम अगर पानी बचाएंगे तो हमारा आने वाला जो कल है वो ज़रूर से सुरक्षित होगा। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा अगला सा और एक नगमा जो कि नौकरी के ऊपर ही है, एक छोटी सी नौकरी का। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों, बहुत ही प्यारा हमने गाना सुना, वही सेम मूवी नौकरी से किशोर कुमार जी की आवाज़ में हमने अभी ये गाना सुना फिर से। वही सलील चौधरी जी, सेम म्यूज़िक डायरेक्टर जिसे लिखा है, वो भी शैलेंद्र जी ने लिखा है। और बहुत ही प्यारे बोल है, 108वीं अर्जी मेरी अरमानों की, मतलब कितनी 108 बार अर्जी लगा चुके अपने अरमानों की, कर लो मंजूर कि बेकार सी बेरोज़गार हूँ मैं, है ना। ना तो मैं कोई कलेक्टर बनूं, ना मैं कोई बनूंगा अफसर, अपना बाबू ही बना लो मुझे, बेकार हूं मैं। मतलब कितने प्यार से, कितने शिद्दत से अपनी अर्जी को लगा रहे हैं कि मुझे अपने यहाँ काम पे लगा लो, नौकरी लगा लो, ना तो मैं कोई कलेक्टर बनने वाला हूं, ना कोई अफसर। पूरा गाना जब हम सुनते हैं तो इतने प्यारे बोल है, कितनी सादगी से, कितनी सच्चाई से, सच्चाई है इन लाइनों में। एक आम इंसान की बस इतनी सी तो ख्वाहिश होती है ना, कि छोटी सी नौकरी मिल जाए जिससे उसके परिवार सम्मान से चल सके। वो इस कायनात में, इस समाज में बहुत ज़्यादा आलिशान महलों की उम्मीद नहीं रखता। लेकिन दोस्तों, इस मासूम सी अर्जी के साथ आज हम एक और बड़ी सच्चाई और गौर करना होगा, एक और अर्जी हमें करनी होगी। एक छोटी सी नौकरी पाकर अपनी ज़िंदगी तो संवार लेते हैं, पर क्या हम उस सबसे बड़ी नौकरी के प्रति वफादार है जो इस कुदरत ने हमें सौंपी है? जी हाँ, इस धरती के संभालने की जिम्मेदारी, पानी को बचाने की जिम्मेदारी, जो हम अपने यहाँ पे जो हम वेदर को कहते हैं, माउंटेन्स, पहाड़ों, पेड़ पौधों की हम बात करते, तो उनको बचाने की जिम्मेदारी। सोचिए, एक तरफ इंसान कहता है कि तुमसे कुछ और ना मांगू तो गुनहगार हूँ मैं, लेकिन अनजाने में हम कुदरत से उसके सबसे कीमती तोहफा पानी छीन रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं। जून की इस कड़कती गर्मी में जहाँ एक तरफ इंसान एक छोटी सी नौकरी के लिए पसीना बहाता है, वहीं दूसरी तरफ पीने के साफ पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहा है। जल संकट आज हमारे दरवाजे पर आके खड़ा है। अगर आज हमने पानी नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि आपने पानी नहीं बचाया। जी हाँ दोस्त, अगर आने वाली पीढ़ी को हमें जवाब देना है तो आज ही हमें इन्हें सिखाना है, आने वाली पीढ़ी को सिखाना है कि पानी की कैसे बचत की जाए। देखा है मैंने कई जगह पे, देखा है दोस्तों, वीडियोस पे भी हम देखते रहते कि गर्मियों के समय पे लोग पानी कितना वेस्ट करते, क्योंकि पानी होता है कहीं भी हो जाता है, बस पानी अपने सिर पे डाल लेते, जो वेस्ट करने की बात करते। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, वेस्ट पानी को बिल्कुल भी नहीं करें, उतना ही यूज़ करें जितनी हमें आवश्यकता है, जितना हम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा वेस्ट ना करें, आने वाले लोगों के लिए सोचें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, बिकॉज अगला जो नगमा है वो भी बहुत ही प्यारा नगमा है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। चाहे कोई खुशी हो, चाहे गालियां दे हजार, मस्त राम बन के जिंदगी दे गुजार। या दोस्तों, अभी हमने ये गाना सुना, टैक्सी ड्राइवर मूवी का ये गाना, एसडी बर्मन जी यानी कि सचिन देव बर्मन जी इसके संगीतकार थे। आवाज़ दी थी जॉनी वॉकर साहब जी ने और किशोर कुमार जी ने। जी हाँ, ये दो आवाज़ें थी इस गाने में, जो कि एक थे हमारे जॉनी वॉकर साहब, जो सभी जानते हैं कॉमेडी किंग के नाम से, किशोर कुमार भी हमारे कॉमेडी किंग के नाम से थे, और गीतकार थे साहिर लुधियानवी जी ने। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी एक टैक्सी की तरह है जो रोज़ सुबह अपने तय सफ़र पर निकल पड़ती है, चाहे वो दफ्तर हो, 9 से 5 की नौकरी हो, या हमारे जो भी हम कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेतों में है, या ज़िंदगी की कोई और जस्तोजहद, हमारे काम से बस चलते रहना है। और जब हम ईमानदारी से अपने फ़र्ज़ निभाते हैं, तो देव आनंद साहब यानी कि एसडी बर्मन साहब की फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ये फलसफा हमारे दिल में गूंज उठता है। चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियाँ दे हज़ार, हम तो दिल के राजा हैं। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए तो एक लाइन बिल्कुल लाइफ मंत्र जैसी है। दफ्तर में चाहे बॉस नाराज़ हो, क्लाइंट की चिक चिक हो, या फिर कितनी भी कमियां निकालने हैं, अगर आप अपनी जगह सच्चे हैं और मेहनत पूरी कर रहे हैं, तो शाम को दफ्तर से निकलने वक्त दिल से यही आवाज़ आनी चाहिए, हम तो दिल के राजा हैं। तनाव को दिल पर लेने की नहीं, बिल्कुल मुस्कुराना आगे बढ़ने जाने का है दोस्तों। लेकिन इस बिंदास अंदाज के बीच आज का जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था, जल संकट, यानी कि इस पर भी यही बात कितनी सटीक बैठती है। आज हम पानी को बर्बाद करते वक्त सोचते हैं कि हमारा क्या, हम तो अपनी मर्जी के राजा हैं। कोई समझाए तो लोग कहते हैं कि चाहे कोई गालियां दे हज़ार, हम तो अपनी गाड़ी पाइप से ही धोएंगे। ये दिमाग में हर बार लोगों का, तो कई बार कोई टोकता है आखिर कि भाई अपने पानी को कम यूज़ करो, पानी नल बंद कर दो, जब पानी आप कपड़े से साफ़ कर रहे हो तो पानी वहाँ बह रहा है, उसे बंद कर दो। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ ऐसा, कोई आके मुझे बोल जाए तो मैं ऐसा क्यों करूँ, ईगो हट हो जाता है लोगों का। तो ज़रा ठहरिए, कुदरत के सामने हम राजा नहीं हैं। जी हाँ, अगर आज हमने पानी की कदर नहीं की, जैसे मैंने पहले कहा, तो कल ये प्रकृति हमसे ऐसे हिसाब लेगी कि हमारी सारी मर्जी धरी की धरी रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो दिल को, बातों को ईगो पे ना ले। अगर कोई आपसे प्यार से कह रहा है कि प्लीज़ पानी वेस्ट ना करे, तो उसे गुस्से पे या ईगो पे ना ले उसे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, प्यार से बात करके। जी हाँ, बिल्कुल बंद कर देता हूँ और बंद कर दीजिए। इसी मिजाज को राजा जैसे रखिए, पर जिम्मेदारी एक सच्चे नागरिक जैसी निभाइए, क्योंकि राजा भी कई बार अपनी प्रजा की सुनता है। तो पानी की हर एक बूंद को सहज कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। ये जो अगला नगमा है, अभी हम गाने सुनेंगे, दो बैक टू बैक नगमे सुनेंगे, क्योंकि ये जो हमारी फरमाइश थी हमारे सुरेश जी की कि दो गाने, एक तो है पानी रे पानी और एक प्यार दीवाना होता है, चलिए बैक टू बैक ये गाने सुनते हैं। लेकिन गाना सुनने से पहले हमारे कॉलर से हम बात करते हैं, हमारे कॉलर हमसे जुड़े, फिर उनसे बात आगे गाना सुनेंगे। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार, मदन लाल बोल रहा हूँ, कैसे आप?
0: बढ़िया मदन लाल जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ और चल रहा हूँ, हमें से कीजिए गया।
0: बिल्कुल सही है,
1: सोमवार को याद किया है,
0: धन्यवाद।
1: अभी ऑफलाइन से उतरे या ऑनलाइन?
0: अच्छा, अभी आप ऑनलाइन पे है, अभी आपको सभी सुन रहे हैं।
1: सुन रहे हैं तो हम भी कुछ सुना दे रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी जी जी, सुनने वाले को सभी नमस्कार और ओम शांति, और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, ओम शांति।
0: नमस्कार आपको भी
1: जी, और इस वक्त जो रेडियो से सुन रहे हैं, मोबाइल से सुन रहे हैं, सभी को भी बहुत बहुत करता हूँ। बस आज क्या सुनाएंगे, सुनाई देते कुछ न कुछ।
0: बिल्कुल, कौन सा गाना सुनना पसंद?
1: सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, सोचता हूँ कि मैं चुप रहूँ, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाए पीछा करती है, आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआए पीछा करती है। कोई भी हो, हर काम वो अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा भी प्यार भी अच्छा नहीं होता, कभी दामन चुराए तो, कभी दामन चुराए तो, प्यार के रस्से टूटे तो, प्यार के रस्से छूटे तो, रास्ते में तिर वपाई पीछा करती है, आदमी जो कहता है याद जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाए पीछा करती है, कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी फिर कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी फिर झूम कर सावन बरसता है, या मौसम पलट जाए, प्यास भी मिलती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिम रिम घटाए पीछा करती है, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाए पीछा करती है, आदमी जो लेता है आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआए पीछा करती है। नमस्कार,
0: थैंक यू सो मच मदन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये हमें प्यारा सा नगमा सुनाने के लिए।
1: जी जी यार, अभी चलते हैं रेडियो सुनेंगे
0: जी बिल्कुल,
1: और अगर मिल जाएगा तो सुन लेंगे, वरना कभी भी बहुत अगर सबकी फरमाइश है तो सुना दीजिए, हम भी सुन लेंगे
0: बिल्कुल।
1: जी नमस्कार, ओम शांति, और आपको चाहिए मत रही है, हम भी खुश है, ओम शांति,
0: थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो ये थे हमारे मदन लाल जी, बहुत ही प्यार से हमें ये पूरा गाना सुनाते हैं, सभी को अपनी आवाज़ से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस अगले नगमे की तरफ, जो कि हमारे सुरेश भाई की फरमाइश थी, सुनते हैं ये पहले बैक टू बैक दो गाने, फिर करते हैं आगे बातें।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया आप हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,
1: वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने दो प्यारे प्यारे गाने सुने बैक टू बैक कंटिन्यू। कई बार मज़ा आता है ऐसे बैक टू बैक गाने सुनने का, अच्छा लगता है कि सिर्फ हम गाने सुने, ज़्यादा बातें ना करें। जी हाँ दोस्तों, तो यही आज का हम सिलसिला रहेगा कि हम बातें नहीं करेंगे, सिर्फ गाने सुनेंगे। तो ये जो अभी हमने गाना सुना, शोर मूवी का गाना, 1972 में आया था। इसे अपनी आवाज़ से सजाया था लता जी और मुकेश जी ने। गीतकार थे इंद्रजीत सिंह और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। जी ये था पहला गाना था पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इस गाने के बारे में बताया। अब दूसरा जो गाना था प्यार दीवाना होता है, ये गाना था कटी पतंग से, 1970 में आया था और इसे अपनी आवाज़ से सजाया था किशोर कुमार जी ने। संगीतकार थे आर डी बर्मन जी, गीतकार थे आनंद बख्शी जी। जी हाँ दोस्तों, ये थे बैक टू बैक गाने। और अब वक्त है एक और नगमे को सुनने का, जो कि फरमाइश थी हमारे भूरीलाल जी की। जी हाँ, इन्होंने कहा था एक नागिन के इस ऊपर हमें गाना सुनने की इच्छा हो रही, ताकि हम भी झूम उठे इस गाने के बोल के साथ। तो चलिए सुनाते हैं उनको अपना ये फरमाइश, उनकी ये नगमे, और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने ये जो गाना सुना, नागिन मूवी का ये गाना, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सफेरा। जी हाँ, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे म्यूज़िक डायरेक्ट किया था, लिरिक्स थे, बोल थे आनंद बख्शीश जी के। और आपको अगर पता हो, याद हो, ये गाना, ये जो मूवी थी 1972-74 में शायद आई थी, और इसके दो भाग आए थे, नागिन और निगाह, दोनों में श्रीदेवी जी ने अदाकारी की थी, लेकिन एक में थे ऋषि कपूर जी और एक में थे सनी देओल जी। और अभी कुछ दिन पहले ही इसको हमने गाने को फिर से एक बार पहले भी सुना था, और तब जाके मुझे याद आया, तो उसी लिए हमने, और ये जो अभी हमने गाना सुना था, ये गाना था अमरीश पुरी साहब के सामने जब श्रीदेवी जी ये गाने को निभाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, क्योंकि ये जो अगला नगमा है, अभी कुछ ही समय पहले हमें हमारे मदन लाल जी ने सुनाया था कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है। चलिए सुनते हैं प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें।

वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही प्यारा नगमा सुना अभी हमने मजबूर मूवी से 1974 में, किशोर कुमार साहब की आवाज़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे म्यूज़िक डायरेक्ट किया था, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा था, परवीन बाबी जी, प्राण, फरीदा जलाल जी, अमिताभ बच्चन जी ने इसमें किरदार निभाया था। जी हाँ दोस्तों, आदमी कई बार कुछ कहता है, कुछ सोचता है और फिर वही चीज़ें सदाए बन के पीछा करती रहती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी बहुत ही प्यारी मूवी थी और अब वक्त है और एक गाने को आगे बढ़ाने का, लेकिन आप सभी से विदा लेने का भी, क्योंकि वक्त हो चला है। फिर मिलेंगे हम आपसे कल ठीक इसी समय 8 बजे और फिर करेंगे किसी नई टॉपिक पे बात। तब तक आप बने रहे रेडियो के साथ। अगला जो कार्यक्रम है वो है सहज स्वास्थ्य। सुनते रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य को सहज बनाना वास्तविकता में सहज है। यह कोई कठिन मार्ग नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, सिर्फ हमारे भोजन पर ध्यान दें, हमारे आहार विहार पर ध्यान दें, तो स्वास्थ्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। हम में से बहुत सारे लोग तब तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते जब शरीर का कोई अंग या स्वास्थ्य से संबंधी कोई चीज गड़बड़ी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती। अब फिर उस चीज को ठीक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी दवाइयां खानी पड़ती हैं, कितने पैसे का खर्चा होता है, कितना वक्त जाया होता है, ये हम सभी समझते हैं। इसलिए क्यों ना हम ये बेहतर कोशिश करें कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में मेहनत करें, ऐसी कोई चीज होने ही ना दें, कमी पेशी रहने ना दें जिससे स्वास्थ्य बिगड़े। सहज स्वास्थ्य की इसी कोशिश में रेडियो मधुबन आपके सामने ऐसी अनेक जानकारियां ले आ रहा है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रहे हैं, मगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ साथ अपने घर परिवार के सदस्यों को, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे समाज को स्वस्थ रखने के लिए भी अपनी अहम भूमिका को समझें। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से ये एक ऑस्टियोपैथ हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में ये प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर अनेक इनके परिवार के सदस्यों ने पीढ़ियों तक लोगों को शफा दिलाई है। आज करते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो हम ये बात समझते हैं कि जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सभी चीजों को समझते आए हैं, और आजकल के बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं, स्कूलों में, वो इसके साथ साथ विटामिन्स की भी बात सुनते आते हैं। विटामिन्स शरीर के लिए आवश्यक है, हालांकि वो बहुत कम मात्रा में हमारे लिए जरूरी है, मगर वो कम मात्रा में होते हुए भी अगर वो ना मिले तो फिर स्वास्थ्य में गड़बड़ियां होती हैं, ये बात हम समझते हैं। विटामिन्स में लोग ये कहते हैं कि भाई फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। थियरी में तो हम इन चीजों को समझते हैं, मगर ये विटामिन कौन से हैं, कहाँ से ये विटामिन मिलता है, इत्यादि चीजों को समझा जाए। अक्सर विटामिन्स की बात कही जाती है तो लोग ये कहते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ये अल्फाबेट्स के हिसाब से ये सुनने को मिलता है। तो सर्वप्रथम मैं इसी विटामिन से शुरू करना चाहूंगा, जो विटामिन ए जिसका नाम है, ये विटामिन ए क्या है, ये क्यों ये सबसे पहले इसका नंबर आता है, क्या इसके पीछे भी कोई वजह है, ये भी समझनी चाहिए।
1: ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये चार विटामिन में से एक है जो फैट में हमारे शरीर में घुलता है, विटामिन ए, डी, ई और के। हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला कि हमको ये विटामिन बहुत कम मात्रा में चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और हमको चाहिए इसलिए क्योंकि हम इसको अपने शरीर में बना नहीं सकते। सबसे पहले ये बात की जाए कि ये किनको नहीं मिलता है या इनकी कमी किसको हो सकती है। सबसे पहला, या तो आप भोजन में जो ये विटामिन सप्लाई करते हैं उसका प्रयोग एकदम नहीं करो। जिस चीज में विटामिन ए है, और सबसे कॉमनली विटामिन ए को गाजर के साथ जोड़ा जाता है, मतलब गाजर, पालक और स्वीट पोटैटो, या हम लोग जो कहते हैं, इन तीन सब्जियों के साथ इसको जोड़ा जाता है, और नॉनवेज खाने वाले इसको अंडा और मछली से जोड़ देते हैं। मगर सबसे पहले हम ये माने कि या तो हम ये जो भोजन है उसको एकदम नहीं करते, दूसरा, या तो हम बीमार हैं, हमारा पाचन तंत्र खराब है, हमको डायरिया है, हमारा एब्जॉर्प्शन पूरा खराब है, या लिवर हमारा गड़बड़ है, और या एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक है तो हमारा ये एब्जॉर्प्शन पार्ट पूरा खराब। सबसे ज्यादा इससे कौन इफेक्ट होता है, तीन आदमी, प्रेग्नेंट लेडीज, क्यों? क्योंकि वो अपने साथ एक शिशु का भी जीवन बढ़ा रही, तो उनको अपनी मात्रा इसकी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक जीवन नहीं दो जीवन को संभाल रही। दूसरा, छोटे बच्चे जो माँ का दूध छोड़ दिए हैं, बाहर जो ऊपरी भोजन है उसको बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं, वो बाहर मिट्टी में खेल रहे हैं, तो उनके पेट में बहुत कीड़े और गंदगी है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ठीक से इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और तीसरा, महिलाओं में जिनको लिवर का कोई कैंसर है या उनको लिवर डिजीजेस है, जिसकी वजह से ये विटामिन उनके शरीर में जा नहीं पाता। हम लोग को भैया जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हम उसका निवारण नहीं ढूंढेंगे। हम लोग ने जो पुराने एपिसोड में जब पानी की बात की तो आप ही ने एग्जाम्पल दिया था कि ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं कि जो सामने पानी रखा होता है तब भी नहीं पीते हैं, और जब गला सूख जाएगा एकदम आप परेशान हो जाएंगे तब पानी पिएंगे। तो उसी तरह से विटामिन हम एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन मतलब खा ही नहीं रहे हैं हफ्तों तक, तो समस्या होना शुरू। और इसका सबसे कॉमन जो सिम्टम मिलता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब आदमी एकदम ठीक से देख रहा होता है और शाम होते होते उसको धुंधला दिखना शुरू होता है, या जब रोशनी कम होती है तो उसको साफ नहीं दिखता है। बड़े आदमियों में तो तुरंत आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको तुरंत दिखता है। छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते हैं उसमें जब देखते हैं कि बच्चा चलते चलते किसी चीज से लड़ जा रहा है, दिन में तो वो एकदम अच्छे से घर में दौड़ रहा है टेबल से, पर शाम के समय वो चलते चलते किसी भी ऑब्जेक्ट से लड़ जा रहा है, तो कहते हैं अरे यार ये क्या, वो अपने हाथ से डोर को फील करने के लिए का पता चलता है, वॉल को पुश कर रहा है, तो लोग कहते हैं यार ये क्या हो गया। तो ये सबसे बड़ी कॉमन जो परेशानी होती है कि वो उसको शाम के समय दिखता नहीं है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसकी आंखें सूखने लगती है, ये सबके साथ हो सकता है। जो आपकी त्वचा है वो सूखने लगती है, आपको फोड़े फुंसी होने लगते हैं, आपका जो शरीर में घाव है वो ठीक से वो भर नहीं पाता है, आपको अगर कहीं कोई कट गया है तो वो ठीक से हील नहीं हो पा रहा है। और इसकी डेफिशिएंसी भैया यंग कपल्स में भी मिलती है जो बच्चा पैदा करना चाह रहे पर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी में भी विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है, तो इसकी डेफिशिएंसी से ये समस्या होने लगती है।
0: ये बात समझ में आती है कि विटामिन ए के नाम से शुरू होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। दोस्तों गौर करने वाली बात है कि अगर लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, अगर आपके लीवर में समस्याएं हैं तो भी इस विटामिन की कमी महसूस होती है, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो कहाँ से ये विटामिन मिलता है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके स्रोत क्या हैं, गाजर पालक इत्यादि चीज़ें हम सुनते हैं, अगर आप इन चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं करते तो क्या नुकसान होता है। डॉक्टर साहब यही प्रश्न मेरा भी है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, व्यक्ति इसका सही मात्रा में सेवन नहीं करता है, तो जैसे आपने कहा नाइट ब्लाइंडनेस होता है छोटे बच्चों में, तो ये चीज समझ में आती है, तो क्या व्यक्ति हर दिन इन चीजों का सेवन करना शुरू करे, या कैसे हमें पता चले कि भाई हम विटामिन ए का सेवन कर रहे हैं, कितनी मात्रा में हो रहा है?
1: सबसे पहली चीज, जो भी फल बहुत हरा है, सब्जी जो भी बहुत हरी है, या फल जो भी ऑरेंज या नारंगी रंग का है, वो आपको सबसे अच्छा विटामिन ए का आपको पूरक होगा, वो सोर्स होगा विटामिन ए का। तो स्वीट पोटैटो जैसे गंजी हो गई, आम हुआ आपका, एप्रिकॉट्स हुए, और कैरेट हुआ, कद्दू हुआ, फलों में मस्क मेलन या खरबूजा हुआ, आजकल भैया रेड और येलो बेल पेपर भी, मतलब जो शिमला मिर्च होता है वो भी लाल और पीले रंग का आ गया है, वो हुआ। हमारी ब्रोकली जो हरी है, स्पिनच, पालक हुई, ये इसको हमको अपने भोजन में किसी न किसी रूप में लेना चाहिए। और रोज अपने भोजन में कुछ लाल जो है उसको जरूर प्रयोग कर लें। गाजर खा लीजिए, आम खा लीजिए, आप पालक का इस्तेमाल कर लीजिए, ब्रोकली का, जो नॉनवेज खाते हैं वो मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, बहुत सारी चीजों में उनको मिल सकता है। तो सबसे पहले अपने भोजन में या कोई भी लाल चीज को जोड़ लीजिए। अगर आपने लाल चीज अपने भोजन में ले ली तो आपको विटामिन ए की कोई भी कमी नहीं होगी। कोई साइंस, कोई नंबर, कोई भी चीज छोड़ दीजिए, तो हमको अपने भोजन में लाल या नारंगी चीज जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। और नारंगी जैसे आम हुआ, संतरा हुआ, इसका प्रयोग, या हरी जैसे ब्रोकली हुआ या पालक हुआ, उसमें इसका बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है।
0: डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आती है कि भोजन बनाते समय या भोजन को जब हम खा रहे हैं, भोजन में इन चीजों को इंक्लूड कर देने मात्र से ही ये चीजें हमको मिलने लगती हैं। और ये कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है कि हम भोजन में पालक हो या गाजर हो, ये आसानी से मिलने वाली चीजें। और अलग अलग जो आपने अभी बात बताई कि सीजन में जो अलग अलग फल मिलते हैं जो नारंगी रंग के होते हैं, उन सब चीजों का इस्तेमाल करना तो कोई मुश्किल नहीं है और ना ही ये कोई महंगी चीजें हैं। मैं नहीं समझता कि भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो आम ना खा सके। प्रकृति प्रदत्त ये भारत का फल है, फलों का राजा है, और गरीब से गरीब इंसान भी कम से कम आम तो खा ही सकता है। ये सभी के लिए मुहैया होने वाली चीज है। अब दूसरे विटामिन के बारे में हम बात करें, कौन सा ऐसा और विटामिन है जिसके बारे में हम समझें कि ये भी विटामिन आवश्यक है और इस चीज को अच्छी तरीके से समझें। दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है कि विटामिन ए बहुत ही आवश्यक है और प्रकृति से हमें विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है ये चीज हमें समझ में आ रही है। हम में से अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, गाजर नहीं खाता या पालक नहीं खाते हमारे बच्चे, जब ये चीज कहते हैं तो माओं के पास अलग ऐसे तरीके हैं जो गुप्त तरीके से या किसी चीज में मिलाकर इन चीजों को ऐसे बना देती हैं जिससे बच्चों को समझ में ही ना आए और वो उनके भोजन में नेचुरल तरीके से चला जाए, उनके पेट में चला जाए और वो शरीर में अब्सॉर्ब हो सके। अक्सर मैंने ये चीज होते हुए देखा है यहाँ हमारे ग्रामीण परिवेशों में भी, ऐसे बच्चे जब पालक नहीं खाते या गाजर नहीं खाते तो माँ अक्सर उसे कद्दूकस करके या पीस के रोटी के आटे में मिला देगी और उसी आटे से रोटी बनाकर वो बच्चों को खिला देती है। तो इन तरीकों को भी सीखना जरूरी है ताकि हम अपने परिवार में विटामिन ए की कमी को ना होने दें। और खासकर जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि बच्चों में अगर विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात्रि के समय बच्चों को नहीं दिखना, शाम होते ही वो चीजों से टकराने लगे, दीवार को पकड़कर चलने की कोशिश करें, सब कुछ होता है और इन चीजों के प्रति भी जागरूक रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कुछ और चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे विटामिन ए की कमी, ये तो आपने नाइट ब्लाइंडनेस बच्चों में जो आसानी से हम समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो बात आपने बताई। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कोई चीजें हैं जो शरीर में होती हैं जो विटामिन ए की कमी से होती है, उन चीज को समझें।
1: सबसे पहले भैया, कोई भी उसको बड़ी थकान लगेगी और बच्चों में लंबाई बढ़ना या उसमें थोड़ी कमी आएगी, रात की नींद डिस्टर्ब होगी भैया, उससे पिंपल या जो हमारे एक्ने कहते हैं वो शरीर में निकलने लगेगा और हमारा इम्यून सिस्टम इससे डिस्टर्ब होता है। मतलब आदमी बड़ी जल्दी जल्दी उसको सर्दी जुकाम खांसी होने लगेगी, वो बीमार रहने लगेगा। और जो इस समय सबसे बड़ी समस्या इनफर्टिलिटी की, मतलब जो महिला पुरुष एक बच्चा चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है, वो इस विटामिन की कमी से इनफर्टिलिटी भी होती है। तो विटामिन ए का बहुत अच्छा रोल है और ये हमारे जो बाल है उसमें भी सूखापन ला देता है। तो खासकर महिलाएं जिनकी बाल बड़े सूखे रहते हैं उनमें भी ये माना जाता है कि विटामिन ए की कमी है जिसकी वजह से उनके बाल ड्राई या सूख रहे हैं। एक इसको मोटा मोटी ये समझिए कि विटामिन ए अगर शरीर में कम होगा तो सूखापन आ जाएगा, आंख सूख जाएगी, त्वचा सूख जाएगी, बाल सूख जाएगा, इम्यूनिटी सूख जाएगी आपकी। तो इसलिए अगर हम इसको पूरा लेंगे तो हमारी त्वचा भी अच्छी हो जाएगी, हमारे बाल भी अच्छे हो जाएंगे, हमें पूरी तरोताजा हम फील करेंगे, हमारी रात की नींद बड़ी अच्छी हो जाएगी और नाइट ब्लाइंडनेस की जो मैंने बात की वो नहीं होगी।
0: आजकल ये समस्याएं हम देखते हैं कि प्रायः लोग ऐसा भोजन कर लेते हैं जिसमें क्या चीज पड़ी है इस बात का ध्यान नहीं होता है डॉक्टर साहब। जैसे बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट से कोई चीज मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, कभी कभार तो लोग मैगी इत्यादि ऐसी फास्ट फूड जो पैकेट्स में बनकर आती हैं उन चीजों को खा लेते हैं। अब उसमें कोई ताजा सब्जी की बात हो या विटामिन की बात हो, विटामिन ए जो आप कह रहे हैं, पालक की बात हो, गाजर की बात हो, या ऐसी कोई चीज तो उसमें होती ही नहीं है। और कई बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनके टेस्ट बड्स के हिसाब से भोजन जो मेस में बनता है या हॉस्टल में बनता है वो पसंद नहीं आता, तो इसलिए वो ऐसा ही फास्ट फूड खा लेते हैं और इसकी वजह से ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में इन विटामिन्स की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना भी बहुत आवश्यक है।
1: हॉस्टल में रह रहा बच्चा हो या कहीं कोई काम कर रहा हो, प्लीज हफ्ते में एक दो दिन कोई भी आपको फ्रूट अच्छा लगे उसको जरूर खा लीजिए। और सबसे इजी जो फ्रूट खाना है वो बनाना है, मैंगो बहुत अच्छा विटामिन ए के लिए, तो मैंगो बहुत अच्छा है। गाजर सड़क पे बिकने लगा है, जिस तरह से खीर बिकता है उस तरह से गाजर को हल्का सा धो के छील के नमक और नींबू डाल के दे दे रहा है, उसको खा लीजिए। आपको अपने शरीर में फाइबर डालना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य कोई पैकेट में आपको बेच नहीं सकता है, इसे आपको खुद अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली बार बोला था ना कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि कोई दूसरा जिम करे और हमको उसका फायदा हो, ये नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल।
1: व्यापार में हो सकता है कि कोई दूसरा काम करे उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा हो, मगर शरीर के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा, आपको अपने मुंह में खुद उस भोजन को डालना पड़ेगा, आपको खुद चलकर उस भोजन को जलाना पड़ेगा। तो जो भी माताएं बहने, जो भी स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हो, एक चीज पर ध्यान दें, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए उनको नारंगी रंग का कोई फल हफ्ते में एक दो बार जरूर खाना है। उनको पालक ब्रोकली जरूर खाना है। विटामिन ए को कॉमनली रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल को किसी भी रूप में खा लेना है। प्लीज गोली खाने से पहले कोई फल खा लीजिए, कोई सब्जी खा लीजिए, क्योंकि जो नेचर आपको देना चाहता है वो कोई दवा की कंपनी आपको नहीं दे पाएगी। और हमारा पूरा शरीर डिजाइन किया गया है उस नेचर में से उस चीज को निकाल कर अपने शरीर के इस्तेमाल के लिए बनाने के लिए। तो प्लीज कोई भी फल, कोई भी जो सब्जियां जिसमें विटामिन ए है, प्लीज उसको खा लीजिए।
0: बहुत ही आवश्यक आज की ये बातचीत रही है जिसमें हम ये समझ पाए हैं कि विटामिन ए की आवश्यकता शरीर के लिए कितनी है, विटामिन ए कहाँ मिलता है, विटामिन ए की कमी से हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये चीजें आज हमने डॉक्टर साहब से सुनी है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज की चर्चा में जो बातें हमने सुनी है सिर्फ उन्हें सुनना ही नहीं है मगर उसे जीवन में ले आना है। हमारे आहार पद्धतियों में जो गड़बड़ियां हम करते आए हैं, अगर कोई भूल चूक हुई है या कई लंबे समय से हम उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो शायद ये सही समय है कि हम उस भूल को सुधारें, फिर से अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोकने के लिए, अगर वो बिगड़ गया है तो उसको सुधार करने के लिए, अगर आप स्वस्थ हैं ही तो आपके स्वास्थ्य को उसी रीति बरकरार करने के लिए ये चीजें बहुत आवश्यक है। विटामिन्स कम

0: मात्रा में आवश्यक है, मगर फिर भी इनका सेवन क्यों जरूरी है ये बात हमने समझा। विटामिन ए के सोर्सेस के रूप में जहां से ये स्रोत हैं विटामिन ए के, उनको समझकर उनको हर दिन भोजन में या हफ्ते में एक दिन उन नारंगी फल, नारंगी रंग के जो फल हैं, उनका सेवन करना जरूरी है। गाजर और पालक तो भारत के लगभग हर प्रांत में मिलते हैं दोस्तों, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने। आम, जब आम का सीजन है तो आम को खाएं, या फिर जो खरबूजा है जब उसका मौसम है तो उसको खाएं। इन सब चीजों पर ध्यान देने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सहज रीति से हासिल कर सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही दोस्तों। आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज की बातचीत में विटामिन ए की आवश्यकता के बारे में हमने बात की और आशा करते हैं कि आप सभी भी विटामिन ए की महत्ता को समझेंगे। खासकर हमारे घर में भोजन बनाने वाली माताएं, बहनें, या अगर भाई भी भोजन बनाते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि भोजन में कैसे न कैसे करके इस विटामिन को शामिल करने के लिए इसके स्रोतों को भोजन में ले आएं और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। आज की चर्चा में इतना ही। सहज स्वास्थ्य में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम शुरू हो गया है और परी और मनी दीदी आ गए।
2: हाँ बच्चों, और अभी जो सिलसिला चल रहा है वो परी हम बच्चों के क्वेश्चंस का हम जवाब दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन बता रहे हैं।
1: बिल्कुल मनी दीदी, तो आज आप देखो तो कल्पेश ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं हार जाता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है।
2: कोई बात नहीं कल्पेश, हारने में भी एक मजा होता है ना परी?
1: हाँ मनी दीदी, हार हमें सिखाती है कि कहाँ सुधार करना चाहिए, और इसलिए बच्चों कोशिश करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी।
2: हाँ परी, इसीलिए तो वो गीत है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की तो ये बहुत ही फेमस कविता है।
1: हाँ मनी दीदी, तो इसलिए बच्चों हार टेम्पररी होती है, इसीलिए फिर कोशिश करनी चाहिए।
2: और हार को आप अपने लिए सफलता की सीढ़ी समझ सकते हो।
1: बिल्कुल, तो चलो बच्चों, इसी प्रकार आपके कोई और सवाल हो तो जरूर हमें भेजिएगा, हम इसका हल सुनाएंगे।
2: हाँ, नंबर तो आपको पता ही है ना, 94-14-15-14-15।
1: हाँ तो चलो, अब आगे भी तो कहानियाँ सुननी है, इसलिए ये था कल्पेश के सवाल का जवाब। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: द बेस्ट राइटर अवार्ड गोज टू मिस सुरेखा।
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। गाना तो मजेदार हमने सुना, काजू वाले लड़के की कहानी सुनेंगे। एक लड़का था, उसे काजू बहुत पसंद थे, इसलिए उसकी माँ उसे थोड़े थोड़े काजू खाने के लिए देती थी। लड़का हमेशा माँ से ज्यादा काजू देने का हट करता था। उसकी माँ उसे हर बार कहती, नहीं बेटे, एक साथ ज्यादा काजू खाने नहीं चाहिए। यदि एक साथ ज्यादा काजू खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। बच्चों, लड़का सुनकर चुप हो जाता था, पर उसने माँ की बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो सोचो एक दिन क्या हुआ। एक दिन उसकी माँ बाहर गई हुई थी, लड़का घर पर अकेला था। उसने क्या किया पता है? जल्दी जल्दी काजू का डिब्बा उतारा। उस दिन घर पर उसे रोकने वाला तो कोई था नहीं, तो उसने पेट भर के काजू खाए। सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। दूसरे दिन लड़का बीमार पड़ गया, उसके पेट में जोरों की पीड़ा होने लगी। उसे इस बात का बड़ा पछतावा हुआ कि उसने माँ का कहना नहीं माना। देखा बच्चों, पछतावा करने के बाद समझ में आया कि इतना सारा काजू नहीं खाना चाहिए था। इसलिए माता पिता तुम्हारे शुभ चिंतक होते हैं, उनका हमेशा कहना मानना चाहिए, ये कहानी हमें समझाती है। तो आप भी ऐसे ही करते हैं ना, माता पिता का कहना मानते हैं कि नहीं, हमें जरूर बताना। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: तो चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की अनोखी दुनिया। और चलो अब बिना देर किए शुरू करते हैं कि आगे तेनाली राम ने कैसे उस सोमदत्त की चुनौती को हल किया, जिसमें बिना छुए ही, बिना स्पर्श किए ही दो स्वर्ण पिंडों को देखकर ही बताना है कि कौन सा खाली है और कौन सा भारी है। तो चलो बच्चों अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। महाराज ने सभा में घोषणा की कि इस समस्या के समाधान के लिए यदि कोई सभासद स्वयं आगे आना चाहता हो तो आए, अन्यथा इस समस्या का समाधान तेनाली राम करेंगे। फिर एक भी सभासद समस्या के समाधान के लिए नहीं आया। फिर तेनाली राम को महाराज ने कहा कि तेनाली राम आगे आओ और व्यापारी सोमदत्त द्वारा बताई गई समस्या को हल करो। महाराज व्यापारी सोमदत्त से कहें कि वे स्वर्ण पिंडों को अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहे लटका दे, मैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। ऐसा तेनाली राम ने कहा तो महाराज ने सोमदत्त को स्वर्ण पिंडों को कहीं लटकाने का निर्देश दिया और व्यापारी सोमदत्त ने उन स्वर्ण पिंडों को महाराज और सभासदों के आसनों के मध्य के खुले स्थान में दीवार पर दो कीले ठोककर एक रस्सी के सहारे लटका दिया और तेनाली राम की ओर देखकर कहा, अब आपकी बारी है तेनाली राम जी। तेनाली राम ने अपने आसन से बिना हिले डुले कहा, महाराज एक बार फिर सभासदों और व्यापारी से पूछ ले कि कोई भी सभासद चाहे तो व्यापारी के प्रश्न का उत्तर दे दे, व्यापारी चाहे तो अपना प्रस्ताव वापस ले ले, मैं सबको पुनर्विचार का एक अवसर देता हूँ। तो तेनालीराम की बातें सुनकर सभी सभासदों को लगा कि तेनालीराम स्वर्ण पिंडों की पहेली हल करने में असमर्थ है और वह किसी तरह अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। तो सभा में फुसफुसाहटे उभरी और शांत हो गई। तो बच्चों अब कैसे तेनालीराम उन दोनों स्वर्ण पिंडों से ये पहचानेगा कि कौन सा भारी है और कौन सा हल्का? तो चलो अब वो पता चलेगा हमें अगली कड़ी में। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। कितनी सारी प्यारी प्यारी हमने बातें की, फिर परी की कहानी सुनी, तेनाली रामा की किताब भी पढ़ी, और अब समय हो गया है पिछली कड़ी में परी ने जो पहेली पूछी थी उसका सवाल जानने का। तो परी, पिछली कड़ी में आपने क्या पूछा था?
3: बच्चों, अपना आंसर टैली कर लो। हमने पूछा था, बिना पंख के उड़ती हूँ, बिना पैर के दौड़ती हूँ, समाचार सबको देती हूँ, घर घर में पहुँचती हूँ।
2: हाँ, तो सही जवाब है चिट्ठी, यानी कि लेटर। बिना पंखों के उड़ती है और अपना समाचार सबको देती है घर घर में जाकर, तो सही जवाब है लेटर, चिट्ठी।
3: हाँ बच्चों, तो आज अब एफर्मेशन नोट कर लो, कोई पहेली नहीं है। मैं हूँ चांद सा प्यारा, सपनों का हूँ सितारा, मेहनत से मैं चमकूंगा, हर मुश्किल को मैं हराऊंगा।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा अफर्मेशन है परी। मैं हूँ चांद सा प्यारा और सपनों का हूँ सितारा, मेहनत से मैं चमकूंगा, हर मुश्किल को मैं हराऊंगा। अरे वाह, तो चलो बच्चों, 9414-1415 पर अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड करो और जल्दी से हमें भेज दो।
3: बिल्कुल बच्चों, तो चलो हम करते हैं गुड बाय। उसके पहले गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट,
3: गुड बाय। सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए,
3: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। पैसे ऐसी चीज है मेरे प्यारे श्रोता बंधु जो अच्छे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ा देती है। कैसे जरा विचार करेंगे? और जी हाँ, आज आपको सिखाएंगे आंखों का सूक्ष्म व्यायाम जो आंखों की रोशनी बढ़ाएगा और आंखों की तेजी को बढ़ाएगा। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ रेसिपी में स्पेशल। आगे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है? स्पेशल क्या सिखाने वाली हूँ और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन

गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, पैसे ऐसी चीज है मेरे प्यारे दोस्तों जो अच्छे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ देती है। कैसे, तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक बार एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपये व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपये बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर एक संबंध के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत जी ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे ही हुई है, क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत जी ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष के 99% पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना और तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा है, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया हुआ दुखी कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे, न कुछ चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो देखो कौन आए हैं? अरे ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा, ओहो 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रुंध गया, कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयां टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई को कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर के बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो करके क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई की पश्चाताप प्रेम मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपये लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपये नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपत नहीं मिटेगी। जो तपन है कृपा करके आप ये रुपये ले लीजिए।
सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार अनुज बधू भतीजे व भतीजे में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्ध रात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग झड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि पैसे ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे रिश्तों को भी तुड़वा देती है, इसलिए सोच समझ करके पैसे उधार लेना है। ठीक है, तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब आज का प्रश्न इस प्रकार है, प्रोटोकॉल के अनुसार बैठ कर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं और उनमें से 3 के नाम आपको बताना है। ठीक है, तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आइए यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे सुनाते रहे जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। कुछ समय से आपको योगा प्राणायाम ही सिखा रही हूँ, जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सूक्ष्म व्यायाम आँखों का। पर श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो,
2: हेलो दीदी, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, भूरीलाल जी कैसे हैं आप? अरे वाह क्या बात है। हाँ जी,
2: ये आते हैं हमारे योगा कराने के लिए, इसलिए मैं वहाँ भी गया था, लेकिन आते ही आपने भी प्रश्न पूछा, प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ।
1: हाँ जी दीजिए।
2: 22 आसन है, इसमें 3 आसन का नाम बता देना आपको।
1: जी
2: हाँ, तालासन आसन।
1: अरे भूरीलाल जी, प्रश्न तो अभी पूछा नहीं है मैंने, आपने मैसेज देखा है तो आप थोड़ी देर बाद जुड़ के दीजिएगा। ठीक है चलिए, दे दीजिए दे दीजिए।
2: हाँ वृक्षासन है, वृक्षासन, ध्यानासन, तालासन, ये तीनों आसन है सर।
1: अच्छा चलो ठीक है, सही गलत आप जरूर सुनेंगे।
2: हाँ ठीक है ठीक है,
1: कार्यक्रम के अंत में सुनाएंगे। ठीक है, मैंने बैठकर किए जाने वाले आसन, चलिए मैं प्रश्न तो आपको बाद में पूछूंगी और अभी मैं आपको आँखों का व्यायाम सिखा देती हूँ। देखिए आँखों का भेंगापन आ जाता है, आँख झाले आ जाते हैं और कम भी दिखाई देता है, तो आप चाहते हैं कि आपके आँखों से अच्छी तरह दिखाई दे, आँखें तरोताजा रहे, आँखों की तेजी बढ़े। अब इसके लिए देखिए मैं फोन प्रश्न पूछूंगी, उसके बाद ही आप फोन करिएगा, क्योंकि ये जो नुस्खे हैं बहुत ही अच्छे हैं और इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं बहुत जल्दी प्रश्न पूछने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं आपको आँखों का सूक्ष्म व्यायाम सिखा रही हूँ, तो आप ये व्यायाम सीख जाएंगे तो आप कम से कम जो अलग अलग स्टेप आपको सिखाऊंगी, दो दो मिनट तीन तीन मिनट आप देंगे, एक एक स्टेप रेगुलर करेंगे, तो फिर देखिएगा आप एक महीना करके देखिएगा आंखों में क्या फर्क आता है। आपको क्या करना है, स्ट्रेट खड़े होना है, ठीक है खड़े रहना है, और फिर एक बार तो पलकों को जोर जोर से बंद करना है, एकदम टाइट बंद की फिर खोली, फिर बंद की फिर खोली। कंप्यूटर पर अगर आप काम करते हैं या लगातार टीवी देख रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह पलके झपकाइए, ठीक है इससे सुस्ती बेचैनी नहीं पड़ेगी और लगातार जो आप देख रहे हैं उसका असर तो पड़ता ही है, तो उससे बच जाएंगे, इसलिए बीच बीच में आप आंखें जोर जोर से बंद करिए खोलिए। अब दूसरा व्यायाम, दूसरा सूक्ष्म व्यायाम है, आप क्या करेंगे स्ट्रेट खड़े हो जाइए, ठीक है चेहरे को एकदम सीधा रखना है। अब अपनी आँखों को, चेहरे को ऊपर नहीं उठाना है, आँखों को ऊपर उठाइए, कोशिश करिएगा आकाश की तरफ देखने का, फिर धीरे धीरे आँखों को सेंटर में ले आइए, फिर नीचे की ओर ले जाइएगा, धरती माँ की तरफ देखिएगा, फिर धीरे धीरे सेंटर की ओर ले आइए अपनी आँखों को, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह दो मिनट तीन मिनट आपको ये वाला व्यायाम करना है, ठीक है। तीसरा आपको सिखाने जा रही हूँ, फिर से आपको स्टेडी खड़े रहना है, ठीक है। अब आप चेहरा आपका सीधा रहे, आंखों को घुमाइए लेफ्ट की तरफ ले जाइए, फिर धीरे धीरे कान की तरफ देखने की कोशिश करिएगा, कान दिखेगा नहीं लेकिन इतना जोर लगाना है कि जैसे आप कान को देखना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे आंखों की पलकों को सेंटर में लाइए, फिर राइट की तरफ ले जाइए, राइट की तरफ ले जाते समय भी सेम प्रोसेस, कान की तरफ देखने की कोशिश करिएगा, नहीं दिखेगा लेकिन कोशिश करनी है, फिर धीरे धीरे पलकों को स्थिर मतलब लाते हुए सेंटर की ओर ले आइए। तो इस तरह दो तीन मिनट इस व्यायाम को करना है, इससे भी आँखों की तेजी बढ़ेगी। नंबर जिनके जैसे बहुत कम नंबर है तो वो नंबर भी ख़त्म हो जाएंगे, ज़्यादा है तो भी उनके नंबर थोड़े से कम हो जाएंगे, मतलब आंखों से थोड़ा देखने लगेगा आप, करके देखिए, देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहिएगा। अब आप क्या करेंगे, चौथे स्टेप, आप स्ट्रेट खड़े रहिएगा और अब आप पलकों को वापस परे राइट की तरफ ले जाना है, फिर धीरे धीरे घुमा करके लेफ्ट की ओर ले जाना है, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, 2-3 मिनट ये एक्सरसाइज आपको करनी है। चौथी है, आप अच्छी तरह ताली बजाइए, ताली बजाकर आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाए। देखो ताली बजाते समय हथेलियाँ गर्म हो जाती है, ये गर्म गर्म हथेली को अपने आँखों पर रखिए, इससे भी चश्मे का नंबर उतरते हैं। तो जोर जोर से ताली बजाकर अपनी दोनों हथेलियों को गर्म कर दीजिए, गर्म गर्म हथेलियों को आप अपनी आँखों पर रखिएगा, इससे भी आँखों की तेजी बढ़ेगी, नंबर कम होगा, ठीक है। और कितने जनों के ऐसा होता है कि हथेलियाँ गर्म ही नहीं होती, चाहे कितनी भी तालियाँ बजा दो, तो उनको एक कॉटन का स्वच्छ रुमाल या सॉफ्ट कपड़ा लेना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसका पकड़िए, थोड़ा सा फोल्ड करके अच्छी तरह उसको बॉल की तरह कर दीजिए, और फिर उस कपड़े के ऊपर आप अपने मुंह की भाप छोड़िए, फिर ये गरम गरम भाप अपनी आंखों पर लगाइए, दोनों आंखों पर, ठीक है। इसमें तो कोई खास मेहनत नहीं है, ताली बजाने से कितने जनों की शिकायत है कि हमारी हथेलियाँ गर्म ही नहीं होती, कितनी भी तालियाँ बजा दे वे क्या करें, हमेशा ठंडी रहती है। बहुत जनों के क्या उल्टा रहता है, गर्मी में ठंडी रहती है, सर्दी में गर्म रहती है, और बहुत जनों के तो 12 महीना ठंडी रहती है हथेलियाँ। तो उनके लिए यही है प्रोसेस कि आप सॉफ्ट मुलायम कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसको थोड़ा सा इकट्ठा करके फिर मुँह से भाप छोड़िए, फिर अपनी आँखों पर रखिए, पहले एक पर रखा फिर दूसरे पर रखा, ऐसे धीरे धीरे रखिएगा, तो ये जो मुँह के छोड़ी हुई भाप के गर्माहट है, इससे भी आँखों के नंबर उतरते हैं। तो इतने सारे फायदे आपको बताया है सूक्ष्म व्यायाम के, तो आप कोशिश जरूर करिएगा। पाई लागे न पैसा, रंग चढ़े चोखा, तो भाई लग तो कुछ नहीं रहा है, हमारा जहा भी कुछ नहीं रहा है, तो अच्छा है ना, सेहत का ध्यान तो खुद को ही रखना पड़ेगा, इसलिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, बैठकर प्रोटोकॉल के अनुसार, ठीक है, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, प्रोटोकॉल के अनुसार बैठकर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं, उनमें से 3 का नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जावे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि। और आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। आज का विषय मैं सुना चुकी हूँ, अकेली काम कर करने।
1: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
0: अकेली काम करके मैं थक जाऊं, अकेले काम करना बहुत, देखिए दुनिया में ऐसा होता है कि जिम्मेदारी एक उठाता है ना तो सारी जिम्मेदारी उसी पर थोप दी जाती है, लेकिन
1: आपको
0: एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता।
1: हाँ, तो आप तो अकेले कहाँ हो, आपके तो साथ हमें है ना।
0: विषय रखा है आपके समक्ष, अब आपको उसको स्पष्ट करना है।
1: नहीं नहीं, पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप तो अकेले का, आपके साथ तो हम है ना।
0: हम अपने लिए बोल ही नहीं रहे हैं, विषय है। अब आप अपनी राय व्यक्त करिएगा।
1: हाँ, ऐसा है, विषय के बारे में तो मैं बताना चाहूंगा कि किसी एक के ऊपर तो निर्भर रहना अच्छा नहीं है। परिवार में जितने भी सदस्य है वो मिलजुल के काम कर सकते हैं। एक के ऊपर तो फिर निर्भर रहेंगे तो फिर वो वो आपने कहा ना कि थक जाते हो, तो वो थकान आने वाली है, वो परेशान हो जाएगा। और मतलब परेशान हो, मतलब टेंशन में फिर आजकल बीमारियां भी बहुत हो रही है, तो एक के ऊपर तो प्रेशर देना काम का अच्छा नहीं है। घर में, घर की बात बताता हूँ, अगर कोई महिला खाना पका रहे तो भाई अपन इतना तो कर सकते हैं, सब्जी वगैरह काट सकते हैं, कभी करके देखिए। और जो खाना बना रही है ना उस बहन की शक्ल की और देखिए, कितना उनको खुशी मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा उनको।
0: जी
1: है ना
0: जी,
1: सही बात बोल रहा हूँ ना।
0: बिल्कुल
1: हाँ, नहीं किया तो करके देखिए, भले एक आध टमाटर काट के देखिए, मिर्ची काट के देखिए और उनकी शक्ल की और देखिए, उनको उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है, कितना सुकून मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आपसे जो हो वो काम कीजिए, मगर कीजिए, क्योंकि खाली बैठे तो शैतान, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। तो एक के ऊपर निर्भर रहना यह संभव नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबको करना चाहिए। तो वो मतलब काम और भी आसानी से हो सकता है, परंतु एक ही आदमी करेगा तो वो काम मुश्किल भी हो सकता है, सही है ना
0: जी।
1: किसी भी कार्य को आसान करना है तो सबको मिलजुल के करना
0: जी।
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए वो एक कहानी है ना कि देखिए, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है मगर उस गट्टर को कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो आप सभी मिलजुल के काम करोगे ना तो वो आपके लिए फायदे बन जाएगी। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री हरि। और प्रश्न क्या है?
0: हाँ जी, प्रश्न है, प्रोटोकॉल के अनुसार बैठ कर किए जाने वाले आसन कितने हैं और तीन नाम बताना है उनमें से। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार, जय श्री हरि। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, प्रोटोकॉल के अनुसार बैठ कर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं और इसमें से तीन के नाम आपको बताना है। हेलो,
1: ओम शांति दीदी।
0: हाँ जी, ओम शांति ज्ञानेंद्र जी, कैसे हो आप?
1: बढ़िया हैं दीदी, आप तो बढ़िया हैं?
0: हाँ जी, हम तो एकदम अच्छे हैं
1: जी।
0: जी तो
1: बैठ कर जी,
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए।
1: बैठ कर किए जाने वाले आसन एक तो है वज्रासन, एक शशकासन, उत्तान मंडूक आसन, एक वक्रासन।
0: अच्छा, देखते हैं और बाकी कितने आसन है बैठ कर किए जाने वाले?
1: चार।
0: अच्छा,
1: उत्तान मंडूक आसन,
0: ठीक है, और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसे घर में एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी जैसे एक उठाता है तो दूसरे सब अलबेले हो जाते, उसी पर जिम्मेदारी डाल देते हैं, तो क्या एक सब कुछ कर पाएगा?
1: उसपे रहती है, अगर जो जिम्मेदार आदमी रहता है वो तो उठा लेता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये अगर आदमी घर में 10 आदमी है तो वही काम 10 आदमी करते हैं, अगर एक रहे तो वो एक आदमी कर सकता है वही काम, और एक के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, और जो बड़ा रहेगा वो तो निभाएगा, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं निभा पाते हैं। बाकी एक के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, सबको मिलजुल के करना चाहिए।
0: देखिए, जीवन में हमेशा खुशनुमा रहना है, तनाव से मुक्त रहना है, तो क्या करेंगे? अकेले व्यक्ति पर जिम्मेदारी सौंप करके खुश रहेंगे या हाथ बटा कर क्या करेंगे?
1: नहीं, हाथ बटा कर तो सभी खुश रहेंगे ही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा काम आएगा सबसे और हो भी जाएगा जल्दी, कोई भी काम वो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
0: जी, तो ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आज के विषय के बारे में खैर आपने अपनी राय तो व्यक्त की है, और भी स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, जैसे 3-4 भाई है लेकिन एक ही बेटे के ऊपर घर गृहस्थी का बोझा है, ऐसा देखा है?
1: ऐसे देखे, हाँ है तो सही, ऐसा देखा है
0: जी।
1: तो वही है ना कि जो जिम्मेदार आदमी है वही उठा पाता है, बाकी और तो नहीं उठाते, फिर वही है, एक कर रहा है तो सही करने दो, फिर हमें क्या जरूरत है करने की, ये है।
0: ठीक है,
1: बाकी ऐसे करना नहीं चाहिए, सब मिलजुल के करें तो काम जल्दी भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा सबके लिए।
0: जी
1: ठीक है,
0: हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत आभार ज्ञानेंद्र जी। तो ये थे ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। प्रश्न आज का बहुत ही सुंदर है, बैठ कर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं पोर्टरकल के अंतर्गत, और उसमें से 3 का नाम बताना है। हेलो,
2: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति,
0: हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे है आप?
2: बहुत अच्छे है, कार्यक्रम का जो आज ने विषय आपने विषय रखा है बहुत अच्छा विषय है दीदी। कई कई बार क्या होता है कि परिवार में 4-5 लोग है, घर में व्यक्ति है, 2-3 भाई है, परिवार है, लेकिन मैं बताऊं दीदी कि कोई भी जिम्मेदारी एक पर नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कमाने वाला 2-3 होता है लेकिन वो कमाता तो है लेकिन पूरी जिम्मेदारी एक पर डाल देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये एक अकेला इंसान क्या कर सकता है दीदी। 2-3 जो घर में होता है तो सबको मिलजुल के कुछ सामान लाना है, कोई परिवार में कोई प्रसंग है तो सबको मिलजुल के ही करना जरूरी होता है, और कोई कोई ऐसी बात होती है कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो सब मिलते जुलते ही करना चाहिए। कई कई बार अकेले को छोड़ देता है दीदी तो वो खुद टूट जाता है, बाद में इसको संभालने वाला भी कोई नहीं रहता है, कोई संभालता भी नहीं कि चलो भाई उसने किया है वो करे, मेरे अकेले ना देना, कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो घर में सास होती है, बहू होती है, दूसरी बहू होती है, तो कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि चलो ये वो कर रही है मेरे क्या करना है, वो सब कुछ करती है तो करने दो उससे, लेकिन ऐसा नहीं, सबको मिलजुल के काम कोई भी काम करेंगे तो ये काम भी आसान हो जाएगा दीदी और परिवार में भी खुशियाँ रहेगी, वरना खिता उठाना खिताना तो होता रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति काम करता है दूसरा नहीं करता तो क्या होगा, आज परिवार में ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए आज धीरे धीरे लोग अलग हो रहे हैं, तो घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, झगड़ा होता है, लेकिन जो मिलजुल के काम करेंगे अच्छी तरह से रहेंगे तो घर में खुशियाँ ही रहेगी और जो भी पैसों की भी बचत होगी, और सबको एक कहीं जाना आना हो तो एक खुशियाँ रहती है
0: जी।
2: नमस्ते जी,
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आइए यहाँ पर एक काल विराम लेंगे, उसके बाद पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर
4: सूर्यघर। जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, उसकी वजह से हमारे जीवन में तनाव आता है। और कहते हैं ना, छोटे छोटे कारणों का अगर निवारण नहीं होता है तो वो बड़ा रूप धारण कर लेता है, और फिर छोटे छोटे टेंशन से बड़े टेंशन, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है कि जीना मुश्किल हो जाता है। और इसमें आज का विषय रखा है कि भाई अकेले के ऊपर जिम्मेदारियां थोपना कहाँ तक उचित है, तो ये आज का विषय है। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। प्रोटोकॉल के अनुसार किए जाने वाले, बैठकर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं और उनमें से तीन के नाम आपको बताना है, ठीक है? और देखिए, जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है। एक परिवार की बात जो मैंने अपनी आंखों से देखी है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक परिवार में माता पिता और उनके 6 पुत्र, तो बड़े बड़े पुत्र की 20 साल की उम्र में शादी करवा दी। अब शादी करवाने के बाद, उस समय उनका बेटा कोई कारोबार ऐसा कुछ खास नहीं करता था, दुकान खोल रखी थी, बर्तन की दुकान, ठीक है, दुकान पर बैठना, लेकिन दुकान पर इतनी ग्राहकी नहीं होती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि क्या करे क्या नहीं। और जिनके उन बेटे के जो पिताजी है वो फेरी नहीं चाहते, ऐसे फेरी करते थे, और फेरी करके आने के बाद दुकान पर बैठते थे। और बाकी बेटा बैठने वाला है तो चिंता नहीं, लेकिन दुकान नहीं चलती थी, बड़ा परिवार है और भी 5 भाई, माँ, सामाजिक खर्चे, आना जाना मेहमानों का, और दुकान चल नहीं रही है, फेरी में कोई इतनी कमाई होती नहीं है, तो करे तो क्या करे। बेटे ने कहा कि भाई मुझे कुछ अलग करना है, अलग किया, उसमें भी नहीं चल पाया, वो भी नहीं चल पाया, कपड़े का किया वो भी नहीं चल पाया, फिर अलग अलग करते करते धीरे धीरे धीरे धीरे पटरी ट्रैक पर आ गई, ठीक है, चलने लगा काम उनका, होलसेल का कुछ कर किया है तो उनका अच्छा चलने लगा। अब चलने लगा तो उसी पेड़ी पर फिर दूसरा भाई आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, मतलब सभी पेड़ी एक है। वो चल पड़ा बिजनेस तो उसमें एक संभाल रहे हैं ना, फिर सारे के सारे उसी में लग गए। अब उसी में लग गए तो कमाई तो पहले 1 रुपये की होती थी, वही आज भी 1 रुपये की हो रही है। भाई 3 लगे हैं तो 4 भाई मिल करके कर रहे, तो 4 रुपये आए तो बात अलग है कि भाई हाँ प्रोग्रेस हुई है। अब जो 1 रुपये की कमाई वो 4 की, तो घर गृहस्थी का खर्चा निकल रहा है लेकिन सामाजिक कामकाज का खर्चा तो नहीं निकल सकता, शादी ब्याह का इनका। तो फिर बड़े पुत्र ने कहा कि भाई थोड़ा अलग अलग करो बिजनेस, एक ही बिजनेस में हाथ डालने से कुछ नहीं होता है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ अलग कोशिश करता हूँ। तो बोले नहीं, हम तो यही करेंगे। वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे कि हम कुछ नया करें, क्योंकि जमी है हुई है पेड़ी, बैठने में क्या जाता है बस। तो धीरे धीरे बड़े बेटे ने जब परिवार के सामाजिक खर्चे आए तो उधार लेना शुरू कर दिया। अब सभी ये कहते कि बड़े बेटे हम क्यों उधार लेवे, और पिताजी ने बोल दिया मैं तो उधार कहीं से लेने नहीं जाऊंगा। तो बड़े बेटे ने उधार लेना शुरू कर दिया, सामाजिक खर्चे उधार लेके आते और 3-4% ब्याज पर, क्योंकि ये बातें बाद में पता चली। तो अब 3-4% जब ब्याज शुरू हो जाता है और कमाई वो की वो, जहाँ थी वहीं की वही, तो स्वाभाविक है एक दिन दिवाला निकलना ही है, नीचे बैठना ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं संभले, फिर बड़ा बेटा बोलता रहा कि भाई आप कुछ करिए, देना बहुत हो गया है, बहुत ब्याज भरना पड़ रहा है और कुछ अलग अलग करो, लेकिन कोई सुने ही नहीं और माता पिता कुछ खास फैसला लेवे ही नहीं। तो अब वो बड़ा बेटा हर समय टेंशन में, हर समय टेंशन में चलते फिरते, बस पैसे किनको देना है, कहाँ ब्याज देना है, कहाँ से लाना है, किसको देना है, वो ही उतल पुतल उतल पुतल। अब कोई सुने नहीं घर में, अंदर ही अंदर टेंशन। और एक समय ऐसा आया कि माइनर अटैक आ गया और वो बंदा इस दुनिया से चला गया। तो फिर लोगों को पता चला, जिनको बोलते थे, कहते ना हर एक के भाई कोई ना कोई दोस्त होते, परिवार वाले नहीं सुनते तो दोस्तों को कहते। फिर उन दोस्तों ने कहना शुरू किया कि अरे भाई हमको तो इन्होंने बताया था कि पारिवारिक टेंशन है, कोई सुन ही नहीं रहे और देना बहुत हो गया, अब रोज ब्याज कहाँ से भरे, रोकड़ा भी देना पड़ता है ना, अब एक से लिया है दूसरे को कैश चाहिए कि मुझे कैश और ब्याज दोनों दे दो, अब दोनों कहाँ से लाए और ब्याज भी बढ़ता जा रहा है तो कहाँ से भरे। तो ऐसा हो जाता है जिम्मेदारी।

उधार लिया, फिर दूसरे से वो आदत पड़ जाती ना, सामाजिक खर्चा बड़ा बेटा ही लाएगा बाहर से, तो बहुत ध्यान से चलिएगा, घर परिवार ऐसे ही नहीं चलता है, सबको साथ लेके चलाना होता है ना, तो जिम्मेदारी भी सभी को दी जाती है। संयुक्त परिवार की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो भाई के भी संयुक्त परिवार था, और एकल परिवार है, फिर भी क्या है, चार जने हैं, तो चार जनों में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हम कहते हैं ना, बेटा आप ये काम करो, बेटा आप वो काम करो, तो बच्चे करते हैं, एक कटोरी लेके आओ पहले, पहले वो डायरी, वो पेन लेके आओ, छोटे छोटे जब वो चलने लगते हैं नन्हे नन्हे कदमों से, तब से हम उनसे कुछ ना कुछ लेना शुरू कर देते हैं, तो बड़े होने के बाद भी उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम करवाइए। बहुत सारे परिवार में देखिए माता बहनों में क्यों झगड़े होते हैं, कि एक बहू काम कर रही है किचन में लगी हुई है तो लगी हुई है, दूसरी फोन पर लगी हुई है तो लगी हुई है, तो वो थोड़े दिन इग्नोर करेगी, रोज तो नहीं करेगी ना, वो यही कहेगी मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, क्यों मैं अकेली सभी के लिए जीऊं, अकेले के लिए इतना करूं, करो तो वो भी करो। तो कहीं ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है, एक परिवार में ऐसा भी देखा है कि दो बहुएं हैं, अब बड़ी काम में लगी रहती है और छोटी मोबाइल में, और अगर उसको कोई बोल दो कि ये काम करना है, मैं क्या नौकर हूं क्या, अरे भाई नौकर नहीं तो खुद का ही कर लो, सास ने कहा कि खुद का ही कर ले, नौकर नहीं है तो यहाँ पर तुम्हारे भी कोई नौकर नहीं है, खुद का तो कर, दो बच्चे हो गए, खुद का तो कर अब, लेकिन खुद का भी नहीं करती है, किया नहीं किया, बीच में से जैसे बड़ी बहू खाना बना देती है तो उसमें से निकाल के ले जाती है पहले से ही रूम में कि मैं कमरे में रख दूँ, अपना ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो फिर वो घर टिकता नहीं है, फिर थोड़े दिनों में अलग हो गए कि भाई अब ये काम बिल्कुल नहीं करते, और बड़ी ने कहा कि बहुत कर लिया, अब मैं भी अकेली नहीं करूँगी, स्वाभाविक है, बड़े जब बोलने लगते हैं चुपचाप काम करते हैं, और जब बोलने लगते हैं तो सबको अखरता है, लेकिन क्यों भाई, उनके साथ न्याय कर लीजिए तो उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, कर रहे थे ना, आए तब अकेले थे तो सभी को संभाल रहे थे, अब एक से दो है तो दोनों मिलके करो, और दो से तीन हो तो और भी मिलके करो, तो कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे धीरे धीरे काम सभी सीखते हैं, क्योंकि आते ही कोई काम नहीं सीखता है, कि भाई सीखे हुए नहीं आते, पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती है, पढ़ाई करते करते शादी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन देख देख के तो काम सीखा जाता है, पूछ लो अच्छा ये चीज़ कैसे बनाती है, ये कैसे बनाई जाती है, चलो आज मैं बनाती हूँ, आप खड़े रहिए मुझे गाइड करिए, तो कोई नहीं करेगा, करेगा ना, हम तो आएंगे नहीं किचन में तो पैर ही नहीं देंगे, हम क्यों बनाए, इस तरह की भावनाएं जब जन्म लेती है तो समझ लीजिए कि वो घर अब आपका टिकेगा नहीं, वो टूटना तय है। चाहे एक बेटे के ऊपर जिम्मेदारी सारी थोप दीजिए या एक बहू पर सारी जिम्मेदारी थोप दीजिए, और अगर मान लीजिए उनको अलग नहीं किया तो वो टेंशन से, आजकल तो भाई क्या कहते हैं हम सभी कि चित्ता अच्छी, चिंता से तो चित्ता अच्छी, तो वो भाई तो चली गया दुनिया को छोड़ के, ऐसे ही बहनों के भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, जो भी है, क्योंकि कह नहीं पाते, फिर बार बार झगड़ा कौन करे, अंदर ही अंदर कूटते हैं, टेंशन लेते हैं, तो स्वाभाविक बीमारियों का घर हो जाता है। इसलिए हर एक माता पिता से यही कहना चाहूँगी कि देखिए घर में आप न्याय करिए सभी के साथ, और जो जिम्मेदारी नहीं उठाता है उसको आप थोड़ा सा अलग कर दीजिए, तो अपने आप की जिम्मेदारी, कहते ना कि फिर तो क्या करेगा, फिर थोड़े ना कोई किसी के घर में जा करके खाना बना के आएगा या किसी का पूरा करेगा, थोड़े दिन करेगा, लाइफ टाइम कोई नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हर पहल की बात है, यहाँ पर ऐसे नहीं है कि खाली एक ही पक्ष है, हाँ पति पत्नी है, दोनों ही कामकाज करते हैं तो दोनों को मिलकर के घर में काम करना चाहिए, पति को ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे मैं तो पुरुष हूँ मैं क्यों करूँ, अरे भाई पुरुष हो तो क्या खाना नहीं खाते हो क्या, क्या वही आप सब कुछ करते हो जो एक महिला करती है ना, तो सबको सब कुछ चाहिए तो फिर काम भी करना चाहिए। इसलिए चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बच्ची हो, सबको अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य देना चाहिए, जिम्मेदारियां देनी चाहिए, तभी एक परिवार खुशनुमा बन सकता है। ठीक है, अब इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार बैठकर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं और उसमें से तीन के नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स

कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। फिर से एक गीत सुन करके पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह.
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से.
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड.
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से.
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही नाम बताया था स्पेशल, अब आगे बता देती हूँ क्योंकि आपने उस डेस्क की पूर्ति नहीं की है, तो स्पेशल चाउमीन सिखाने जा रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप सामग्री लिखिएगा, भाई बच्चों को ये बहुत पसंद है और कभी कभी ज़रूर बना करके खिलाइएगा, बाकी रोज़ की आदत नहीं डालनी है, हेल्थ के लिए ज़्यादा भी ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभार खिलाने में हर्जा नहीं है क्योंकि बच्चे भी थोड़ा चेंज चाहते हैं। तो आप 400 ग्राम ताज़ा नूडल्स ले लीजिएगा, फिर आप लीजिएगा पानी 5 कप, नमक 1 चम्मच और मिर्च पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच ले लीजिए, अजवाइन 2 छोटे चम्मच लेना है, फिर आप लीजिएगा 1 छोटा चम्मच चिली सॉस और 1 छोटा चम्मच सिरका लेना है। अब आप इच्छा अनुसार सब्जियां ले लीजिए 1 कप, ठीक है, सबकी स्लाइस कटी हुई स्लाइस में लीजिएगा। तो ये हो गई सामग्री जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ताज़ा नूडल्स 400 ग्राम, 5 कप पानी, 1 कप, 1 चम्मच छोटा चम्मच आता है वो नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, ठीक है, मिर्च पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, फिर आप लीजिएगा सोया सॉस 1 चम्मच, सिरका 1 छोटा चम्मच, 2 छोटे चम्मच अजवाइन, चिल्ली सॉस आप 1 छोटा चम्मच लीजिएगा और इच्छा के अनुसार सब्जियां लीजिएगा स्लाइस में कटी हुई। अब आप पानी में नमक डाल करके नूडल्स को उबालिए, पानी का उबाल आए फिर नूडल्स डालिए और थोड़ा सा पकाइए, नूडल्स सूखे हो तो थोड़ा सा देर तक पकाइए, पकाने के तुरंत बाद पानी निकाल दीजिएगा, एक छलनी भले कोई जूस की झाली हो तो उसमें डाल दीजिए ताकि पानी निकल जाए, फिर छलनी में डाल करके ठंडा पानी भी डालते रहिए, वो पानी निकालते ही ठंडा पानी डालिए, जब तक नूडल्स ठंडे नहीं हो जाए इतना पानी आपको डालना है। अब उसमें 1 चम्मच तेल डाल करके हिलाइएगा, अब कढ़ाई में आधा बड़ा चम्मच तेल डालिए, जब तेल गर्म हो जाए तो फिर आप ये सब्जियां डालिएगा जो स्लाइस करके काट रखी ना वो डालिएगा और 3-4 मिनट तक इसको फ्राई करिएगा। अब सोया सॉस, नमक, चिल्ली सॉस और सिरका मिलाइएगा और नूडल्स को तेज आंच पर ठीक है, तो ऐसे आप सोया सॉस, नमक, चिल्ली सॉस और सिरका मिला दीजिए, नूडल्स को तेज आंच पर अच्छी तरह से हिलाइएगा और लास्ट में टमाटर सॉस से सजा करके गर्मा गर्म चाउमीन आप सर्व कर सकते हैं। तो ये बन गया स्पेशल चाउमीन। अब मैं फिर से आपको विधि बता रही हूँ कैसे बनाएंगे आप चाउमीन। तो आप क्या करेंगे, पानी में नमक डाल करके पानी को उबालिए, फिर इस उबले पानी में आप नूडल्स डालिए और थोड़ी देर पकाइए, नूडल्स सूखे हुए हो तो आपको थोड़े से देर तक पकाना है, इसके बाद जब ये नूडल्स पक जाए तो तुरंत आपको पानी निकाल देना है, ठीक है, और पानी निकालने के बाद इसमें ठंडा पानी डालिएगा और पानी इतना डालिएगा कि ये नूडल्स है वो ठंडे हो जाए। अब आप कढ़ाई रखिए, गैस पर तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो ये सारी सब्जियां जो हमने धुलाई करके इनके स्लाइस करके रख रखे हैं ये सब्जियां फ्राई करिए, सब्जियां फ्राई हो जाए तो फिर आप इसमें नमक, चिल्ली सॉस और सिरका मिलाइए, नूडल्स भी डाल करके तेज आंच पर अच्छी तरह से हिलाइए और लास्ट में जब आप प्लेट में पिरसो उस समय टमाटर सॉस से सजा करके गर्मा गर्म चाउमीन सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह स्पेशल चाउमीन हमारा तैयार हो चुका है। जो भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाइएगा और भोग लगाने के बाद ही जो हम बनाते हैं वो आप स्वीकार करिए। तो इससे क्या है, भोग लगाते हैं तो हमारी भोगनाएं भागती है। तो ये सुंदर स्वादिष्ट रेसिपी आपको सिखाई है, बच्चे बड़े पसंद करते हैं, तो कभी कभार बच्चों को अपनी पसंद की चीज जरूर खिलानी चाहिए। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, प्रोटोकॉल के अनुसार बैठकर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं और उसमें से तीन के नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना।
3: को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। कुछ दिनों से आपको योगा व्यायाम ही सिखा रही हूँ, तो आप सीख रहे हैं और ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। इन्हीं में से मैं प्रश्न पूछूंगी आज भी, जैसे कि पूछा है। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई और जो रेसिपी में आपको स्पेशल चाउमीन बना करके जो बनाकर खिलाया तो नहीं है, क्योंकि भाई ये रेडियो है तो सिखाया है, महसूस किया होगा आपने उसके टेस्ट को। ऐसे कहते ना कि जितना खाने में मजा नहीं उतना तरसने में मजा है। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, वो मजा है। तो जरूर बना करके आप भी खाइएगा, अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था, बैठ कर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं और उनमें से तीन के नाम आपको बताना है। तो हमारे श्रोता बंधु जुड़े हैं, भूरीलाल जी मानपुर से जुड़े हैं, आपका जवाब गलत है। सुरेश भाई जोटाना से जुड़े हैं, आपका जवाब एकदम सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आपने विषय में राय व्यक्त की है, प्रश्न का जवाब नहीं दिया। ज्ञानेंद्र जी जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, आपने आधा जवाब सही दिया है। श्यामली बहन आबू तलेटी से आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अलका जी काबरा चित्तौड़गढ़ कपासन से आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सगुना बहन जुड़े हैं, आपने आधा जवाब सही दिया आधा जवाब गलत दिया। तो चलिए मैं आज के प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी। देखिए प्रोटोकॉल के अनुसार बैठ कर किए जाने वाले आसन सात है और उसमें से तीन के नाम आपको बता रही हूँ, भद्रासन, वज्रासन और अर्ध उष्ट्रासन। फिर किसी ने शशांक आसन भी कहा, किसी ने उत्तान मंडुका आसन भी कहा, किसी ने वक्रासन भी कहा। सही है, ये सात आसन है उसमें से तीन के। सुरेश भाई चौटाना से आपने एकदम सही जवाब दिया है, बाकी सबका आधा आधा, किसी ने तो बिल्कुल ही गलत दिया, लेकिन आपके लिए ढेर सारी तालियां जो आपने सही जवाब दिया है। फिर विषय में भी जुड़े हैं सुरेश भाई और पिंडवाड़ा वाले भी, जोटाना वाले भी, तो आप दोनों के लिए ढेर सारी तालियां। और आज का मीठा मोती आपको सुनाना चाहूंगी, आज का मीठा मोती भी बहुत ही सुंदर है जो आप सुनेंगे, उसके बाद गीत सुनेंगे। तो खुशी को हम तब तक बाहरी चीजों में खोजते रहेंगे जब तक मैं खुद को जान न लूं कि मैं हूं ही खुशनसीब आत्मा। तो ये स्वयं को स्वीकार करना है, स्वरूप बनना है, तभी खुशी महसूस कर पाएंगे। अब कमलेश बहन को आप सभी जानते हैं जो नई किरण में आते रहते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देते हैं गीतों की और बातें भी सुनाते हैं। तो आज कमलेश बहन गीत सुनाएंगे, आप लेंगे गीत का आनंद। और हमें देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा।

0: हिस्सा सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। और गीत अपने सुनने वालों की नज़र में करूंगी, वो गीत है फिल्म उम्मीद से, संगीत रवि का, गीतकार शकील बदायू ने और गाया तो रफ़ी जी ने, लेकिन मैं आपको ये गीत सुनाना चाहती हूँ। गीत है

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार श्रोता मित्रों, आपके अपने सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 एफएम द्वारा हिंसा को नो कार्यक्रम में दोस्तों, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक व पारिवारिक मानदंड के अनुसार देखते हैं तो हर क्षेत्र में महिलाओं को पीछे ही रखा जाता है। वैसे तो अक्सर सुनने में आता है कि लेडीज फर्स्ट, परंतु जब महिला अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है तो समाज से सहा नहीं जाता। तो आज ऐसा ही एक नाटक सुनेंगे जिसमें महिलाओं को कैसे पीछे रखा जाता है।
1: आज आपको ले चलते हैं आबू के आंचल में एक छोटा सा गांव है, जहां तीन सहेलियां रहती हैं, जिनका नाम आशा, रजनी और सरला है। तीनों ही अच्छी पढ़ी लिखी और खुले विचारों की होती हैं। सरला की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में है। रजनी को अपनी सहेली आशा के यहाँ जाना है, परंतु मम्मी अकेली भेजने के लिए तैयार नहीं है बेटी को। तो आइए क्या होता है आगे देखते हैं।
2: रजनी, या तू तैयार वेन कटे जा रही है?
3: मम्मी, मारी फ्रेंड आशा का पापा रिटायर्ड हुआ है, तो हवन और भजन संध्या राखी और एक छोटो सो भोजन समारोह भी राखियो, तो मैं वटे जा रही हूँ।
2: हाँ भले जा, रजनी का पापा थे बैंक जा रहे हो ना, तो रजनी ने आशा का घरे छोड़ दीजो और आता टाइम पे लेता आजो।
3: मैं कोई छोटी बच्ची को नहीं जो मन छोड़वा आनो पड़े, मैं चली जाऊं मारी रीतु। मम्मी आप कोई चिंता मत करो।
2: मैं क्यों के छोरिया ने ज्यादा पढ़ानो को नहीं, पढ़ावा तो एड़ो जवाब मिली, छोरिया ने पढ़ावो तो भी चोको चुल्लो तो संभाल नहीं पड़ी, पर थारा पापा है के माने को नहीं मारी बात। देख रजनी, लड़की अगर घर से बाहर जावे तो के पिता के भाई के पति कोई ने कोई तो साथ में होनो ही चाहिए, समझी?
4: ओफो, थारी माँ है कि बात कटे हूँ कटे लेन परीगी। चाल रजनी, मार लारे परी चाल, मुदने छोड़ दे हूँ। थारी माँ से बेस करवा कोई फायदो को नहीं।
1: सांस्कृतिक मान्यता भी कैसी होती है कि लड़की भले बड़ी और समझदार हो गई है, फिर भी वह घर से बाहर अकेली नहीं जा सकती। खैर, आशा के घर पर क्या होता है आइए देखते हैं।
0: घुंगरू।

0: अरे रजनी, आओ आओ, तू तो घणी लेट होगी भजन में। भजन तो पूरा हो गया, अब हवन की तैयारी हो रही है। चल आपा भी हवन में बैठा।
1: सॉरी आशा, थोड़ी लेट होगी, चल बेटा।
2: सेठानी जी, यजमान कटे है, पूजा में लेट हो रही है, वन बुलाओ।
3: पंडित जी पूजा चालू करो, सेठ जी तो आवता इस वे।
2: राम राम राम राम राम। पूजा तो पहले पुरुष द्वारा ही शुरू होवे न, सेठ जी का बिना पूजा क्या शुरू करा।
3: पंडित जी पूजा चालू करो, अबे तो सेठ जी भी आ गया।
2: सेठ जी आप आगे बैठो, सेठानी जी आप पाछे बैठो। हाँ तो पूजा शुरू करूँ सा। गणपति वेगा पधार जो, रिद्धि सिद्धि के संग आय विराजो, पूजा में सारो कार्य सार अक्षत समर्पयामी। सेठानी जी आप थोड़ा रुको, पहला सेठ जी ने अक्षत समर्पण करवा दो, पछे आप।
0: पंडित जी कुछ ज्यादा ही नहीं कह रहे रजनी, हर बात में पुरुष पहले और महिला बाद में, ऐसा थोड़ी होता है।
1: तू सही कह रही आशा, मैं तो आज सुबह से यो ही देखती आ रही हूँ।
4: तो देखा, सामाजिक मान्यता के अनुसार पूजा में भी महिला या तो बगल में बैठेगी या पीछे बैठेगी। शादी में पुरुष आगे चलेगा, महिला पीछे चलेगी। फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नारी का सम्मान करो, क्या इस तरह सम्मान होता है? चलिए अभी एक और परिवार में चलते हैं। वहां यह सरला रो क्यों रही है, जरा देखते हैं।
0: हेलो रजनी, अपनी सहेली सरला आई है ससुराल से, तो मिलवा चालू। तू तैयार है ना? मैं लेवा आ रही हूँ।
1: हाँ आशा, मैं तैयार हूँ।
0: अरे सरला, थारी तो नई नई शादी हुई है और तू उदास लग रही है, कई बात है?
5: मारा तो किस्मत ही फूट गया।
0: अरे सरला, तू रो क्यों रही है? ले पानी पी, तुझे शांति हो, सारी बात बता के कई हुए।
5: काहे बताऊ मैं, थारा जीजा जी शराब पीवे और सास झगड़ालू स्वभाव की, मैं तो दुखी होगी बटे जान।
0: सरला, थने तो अंकल जी अत्रो दहेज दी दो, फिर भी एड़ा लोग मिलिया। अंकल आंटी से बात की थी तू?
5: हाँ सा, सारी बात की थी, पर वाका बात करवा रो कोई फायदो कोनी, उल्टा मनी ही डांट रिया।
1: अरे थारी तो कोई गलती कोनी, फिर भी थने डांटिया क्यों?
5: मम्मी का ही क्यों जो सुन।
6: देख सरला, थारी सगली बात सुनी, पर मारी बात तो ध्यान से सुन। हारा में थोड़ो घणो तो सहन करनो ही पड़े। मने देख, जद में पढ़नी नानी घर में आई तो मने घणो ही दुख उठानो पड़ियो। सगला ही विचित्र, पर समय का लारे सब ठीक हो गयो और आज मैं खुश हूँ। तो बेटा शुरू शुरू में सहन कर ले तो पचे सब ठीक हो जाए। शुरू शुरू का 5 साल थोड़ा मुश्किल का निकले, ये 5 साल सहन कर लो तो पचे अपनी ही चाले घर में।
5: मम्मी भविष्य ने कौन देखियो, बात तो अबानो वर्तमान की है। ये शराब पीन गाली गलौज करे, यह बात मने बिल्कुल पसंद कोनी। शादी का बात दूसरी बार मैं ससुराल गई, नहीं नहीं फिर भी शर्म कोनी, पुरानी व्याह बात कई शर्म आई, मैं 18 साल इंतजार कोनी कर सकूं।
6: सरला थारो दिमाग खराब हो गयो, समाज में बात जाए तो अपनी इज्जत की धज्जा उड़ जाए। तू तो एड़ी बात करे कि जाने थने ससुराल में मार रहा है। सरला का पापा सुन रहा था कि बेटी की बात?
7: मैं सब सुन रही हूँ। सरला तू खाई चिंता मत कर, मैं बात करूँ वे लोगा सु, अगर वे नहीं सुधरे तो पछे आगे देखा काई करनो। थने ससुराल भेजने को नहीं भेजनो, एक बार तू जा हावरे। और हाँ बेटा सुन, तू एक बार सगला जना ने समझान देख, फिर भी वे कोनी सुधरे तो तू जो भी डिसीजन ले मैं थरे साथ हूँ।
5: थैंक यू पापा।
0: अंकल जी भी एड़ी बात करी, ये तो सोदो हो गयो। हावरा वाला सुधर जाए तो बेटी ससुराल में रही, नहीं सुधरी तो बेटी मायका में रही। बेटिया को जीवन तो एक कठपुतली की न्यान हो गयो, जो लोग नचावे व्यान नाचनो।
4: पारिवारिक मान्यता भी बड़ी अजीब होती है। पीड़ित खुद दुखी है लेकिन वो अपने दुख को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि माता पिता को समाज में बदनामी का डर है। इन्हीं कारणों से हिंसा को बढ़ावा मिलता है और पीड़ित अंदर ही अंदर घुट करके या तो वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। खैर, कुछ समय रहकर सरला अपने ससुराल चली जाती है। सरला अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। सरला के व्यवहार से ससुराल वालों में परिवर्तन आने लगता है और एक दिन अचानक फोन आता है सरला के पियर से आधी रात को फोन क्यों आया देखते हैं।
6: हेलो सुन सरला, तू जल्दी आ, थारा पापा के कहीं हो गयो है, हॉस्पिटल लेन जा रहा, तू जल्दी आ जी बेटा।
5: मम्मी मम्मी।
7: सरला तू चिंता मत कर, फटाफट एक दो जोड़ी कपड़ा ले ले और आपा चला।
5: अरे ये सब चढ़ा बेला क्यों हुआ है, काय हुए हमारा पापा के?
8: बेटा थारा पापा आनी दुनिया में को नहीं रहा, और तू भी रोई तो थारी मम्मी ने कौन हमारी, आगे की सोच काय करनो, बाय तो तारे है कोनी, मुखाग्नि कौन दी?
9: अरे इन्हें काई पूछनो, मुखाग्नि तो मारो बेटो जगदीश देई।
5: नहीं बड़ा पापा, मारा पापा मने कदी बेटी समझिया कोनी, हमेशा बेटा की न्याय नहीं रखी, और बेटो नहीं है तो काई बेटी मुखाग्नि नहीं दे सके, मारा पापा ने मुखाग्नि मैं ही देऊंगा।
9: ठीक है बेटा, जेडी थारी मर्जी।
4: अक्सर लोगों का कहना होता है कि अगर पिता को मुखाग्नि बेटा देता है तो उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बेटियां भी अपने पिता को मुखाग्नि दे सकती हैं, जैसे कि सरला ने किसी की परवाह नहीं की और एक बेटे का रोल अदा किया। तो इस तरह हम पारिवारिक बदलाव ला सकते हैं।
10: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
11: तो सुना दोस्तों आपने तीन सहेलियों की कहानी, जिसमें तीनों की अलग अलग कहानी है, परंतु सरला ने पुरानी परंपराओं को तोड़ करके एक नया इतिहास बनाया है। तो अंधविश्वास को कटाक्ष करता हुआ इस नाटक को आपने सुना है। अगर आपने भी समाज में इस तरह की बातें देखी है या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो आप भी रेडियो मधुबन के साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। आज का विषय भी नाटक का बहुत ही अच्छा था कि सामाजिक परिवेश, संस्कृति व पारिवारिक मानदंड के अनुसार देखते हैं तो हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ अलग अलग प्रकार की हिंसा होती है। तो इस कार्यक्रम को आप सुन करके जो भी आपको महसूस हुआ हो तो आप फोन कॉल्स कर सकते हो, हमें बता सकते हो। तो यहीं पर हम आपसे अनुमति चाहेंगे और अगली बार लेकर के आएंगे और भी नया नाटक एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। अपनी खुशी

अपनी खुशी ने कोनी दबानो है दबानो है समझदारी तू एक दूजा को साथ निभा।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

मां रोज की तरह आज भी सुबह गुनगुनी धूप में चिड़ियों से बातें करती हुई बगीचे में रखे पुराने लोटे को चमका रही थी। पता नहीं उस पुराने लोटे में ऐसा क्या था कि उसे चमकते ही मां के चेहरे की भी चमक लौट आती थी। लोटे की चमक को देख गुनगुनाने लगती थी, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मां की आंखों की चमक को देखकर आज सुमित से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, मां आप रोज इस पुराने लोटे को चमकाती और खुश होती हो, इसे चमकाने से क्या फायदा? अब ये तो कोई काम का भी नहीं रहा है, बस बगीचे में पानी डालने के तो काम आता है, रोज रोज नहीं भी घिसोगी तो भी चल जाएगा। बेटा तू नहीं समझेगा, रहने दे क्या करेगा जानकर, छोड़ मैं और मेरा लोटा ही भला, तुम अपना काम करो। अरे तुम्हें पुराने लोटे से क्या लेना, बस समझ ले मुझे अच्छा लगता है, मुझे इससे खुशी मिलती है, मां ने कहा। नहीं मां आज तो तुझे बताना ही होगा कि इस लोटे के पीछे क्या राज है जो तुम्हें इतनी खुशी देता है, सुमित ने बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। अच्छा इतनी जिद कर रहा है तो सुन, बहू ने जरूर इस लोटे को घर में रखने लायक नहीं समझा, लेकिन पता है मेरी शादी में देने के लिए मेरे मां पिताजी जो पहला बर्तन खरीद कर लाए थे ना, वो यही लोटा था, तो इस लोटे में मेरी शादी की सारी खुशियां समाई हुई हैं। शादी के बाद जब ससुराल आई तो तेरे परदादा परदादी दादा दादी इसी लोटे में जल भर के घंटों भगवान की पूजा करते थे। इस लोटे से जुड़ी कई यादें हैं और वो यादें मेरे लिए बहुत कीमती हैं बेटा। मैं इस लोटे को केवल मांझती नहीं हूं बल्कि अपनी पुरानी यादों को भी चमकाती हूं, और जब इससे पेड़ पौधों को पानी देती हूं तो लगता है कि इन पेड़ों के रूप में मेरे अपने पूर्वजों को जल तर्पण कर रही हूं। इसमें मेरी मां की ममता, मेरे पिता की मेहनत, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और ससुराल की शान छुपी हुई है। इतना कहके मां फिर लोटे को निहारने लगी। मां की बात सुन सुमित सोचने लगा, हमारी पीढ़ी के लोगों में पूर्वजों के प्रति प्रेम और निष्ठा कहां चली गई? हमने केवल एक लोटे को ही घर से बाहर नहीं किया, अपितु पूर्वजों की यादों संस्कारों और संस्कृति को पुराना समझ बाहर निकाल फेंका है। दोस्तों आप सुन रहे थे देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी की लिखी लघु कथा पुराना लोटा। हां कई बार ये पुरानी चीजें हमें अखरती हैं जो कि सहेज कर रखी गई होती हैं हमारे मां पापा दादा दादिया और बड़ों के द्वारा। हमें लगता है कि हम कब तक संभाल करके रखेंगे, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ चीजें नहीं है, चीजों से जुड़ी हुई न जाने कितनी यादें हैं। बस चूंकि यादें चीजों से जुड़ी हैं इसीलिए ये चीजें आज भी पुराने ट्रंक संदूक और अटैचियों में रखी हुई हैं। खैर पुरानी चीजों से ही संस्कृति संस्कार यादें प्रेम निष्ठा ये सब जुड़ा हुआ भी होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शायद हम उनके माइंडसेट में पहुंच नहीं पाते और डिटैच होकर के कई बार कह देते हैं, अरे बेचो ना इन चीजों को, बस एक अनजानापन है वो। मैं ये नहीं कहता कि हम उनकी भावनाओं के प्रति सम्मान नहीं करते, हमें केवल चीजें दिख रही होती हैं लेकिन चीजों के पीछे जो जुड़ी हुई यादें हैं उन तक पहुंचने के लिए इस लघु कथा ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का काम किया है मैं समझता हूं। ये कहानी आपको पसंद आई हो सभी तक पहुंचाएं ताकि ये पुल बना रहे, समझ बनी रहे, प्यार और सम्मान बना रहे। थैंक यू सो मच। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बनाएंगे, सफलता बनाएंगे। पूरा करेंगे जो हुआ शुरू।

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है मधुबन अनप्लग्ड और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ ऐसे स्पेशल गेस्ट जुड़ते हैं जिनसे जब हम बातचीत करते हैं तो न सिर्फ उनके हुनर के बारे में बल्कि संगीत से जुड़े कई एक्सपीरियंस हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। और संगीत तो है ही ऐसा जो जादू की दुनिया में जैसे ले जाता है। और आज हमारे साथ हैं अलीशा, बहुत सुंदर गाती हैं और बहुत अच्छा लगता है उन्हें गाना। आइए उनका स्वागत करते हैं। अलीशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ अलीशा, आप मुझे सुन पा रहे हो?

0: अलीशा आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ कोई बात नहीं, अभी शायद आप सुन पाएंगे क्लियरली, है ना? अभी हम कंटिन्यू करते हैं. ओके ओके. तो दोस्तों आप सुन रहे हैं अलीशा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डेफिनेटली कभी कभी जब हम दूर होते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत साथ भी देती है. और म्यूज़िक के लिए तो एक बून की तरह है, क्योंकि हम देखते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कितने सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी प्रतिभा इसी टेक्नोलॉजी के कारण बाहर आ पाई है, नहीं तो शायद कहीं छुपी रह जाती. तो अलीशा सबसे पहले आप हमारे दोस्तों को कुछ अपने बारे में बताइए.
1: ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही हूँ विद पीसीएम स्ट्रीम, और मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट भी है तो मैं थोड़ा गाती भी हूँ, ऐसा है ये मेरा इंटरेस्ट.
0: ओके तो आपको

0: गाना अच्छा लगता है। और क्या पढ़ाई कर रहे हो आप
1: दीदी? हेलो।
0: हाँ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
1: हेलो,
0: आप मेरी आवाज सुन पा रहे
1: हैं?
0: अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। आप एक बार अपनी पढ़ाई आप क्या कर रहे हैं वो बताइए हमारे दोस्तों को।
1: मलेशिया है और मैं क्लास 12th में हूँ। मेरे पास स्ट्रीम PCM से मैं क्लास 12th कर रही हूँ और दून वैली पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, मुजफ्फरनगर। तो अभी स्टडीज में यही है।
0: ओके, और गाने में आपको कब से शौक है आपको गाने का?

0: से ही इंटरेस्ट तो देखिए है, बट वही होता है ना कि बच्चे थोड़े नादान भी होते हैं, तो उसी के साथ साथ कभी बीच में कर लिया फिर छोड़ दिया, तो ये सारा कॉन्सेप्ट तो चलता ही रहता है। लेकिन इंटरेस्ट तो मेरे को है ही, हमेशा से बचपन से ही इंटरेस्ट है।
1: ओके तो अलीशा, कोई गाना है जो आप हमारे दोस्तों को अभी सुनाना चाहोगे, जो आपको बहुत पसंद है?
0: मैं सबसे पहले ना भजन सुनाना चाहूंगी आपको, एक चित्र विचित्र जी का, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, तो ये
1: ओके थैंक यू, आपने बहुत अच्छा गाना चुना। चलिए सुने आपकी आवाज में ये गाना।
0: जी बिल्कुल।

0: थैंक यू सो मच।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूब, बहुत ही भावना के साथ गाया आपने ऋषा। और अब क्या फील कर रहे थे जब आप गा रहे थे तो?
0: मुझे तो वैसे गाजर रानी ऐसा लग रहा था जैसे मैं सामने उनको देख के गा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे राधा रानी के लिए गा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल पैसे बैठ के उनके सामने, जैसे मंदिर में जाके गाते हैं, तो वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत अच्छा था।
1: ओके, तो जैसा आपने कहा कि जैसे आपको सामने ही एकदम महसूस हो रहे थे, आप ऐसे गा रहे थे, तो अलीशा जैसे आप जब कोई भजन गाते हैं तो मतलब किसको देख के आपने सीखा, या कोई है जिन्होंने जो आपको सिखाते हैं, या आप खुद ही सीखते हैं?
0: एक्चुअली पहले तो शुरुआत तो पापा से ही हुई क्योंकि घर पे, बट पापा के जो गुरुजी हैं वो अभी तो नहीं है खैर, लेकिन उनसे मेनली मेरी शुरुआत हुई 9 साल की उम्र से। तो ऐसा है कि पापा के जो गुरुजी हैं और मेरे जो गुरुजी हैं वो एक ही हैं, तो उन्होंने ही ये भजन सिखाना शुरू किया क्योंकि उनको भजन, वो एक भजन गायक मेनली थे, वो जागरण बहुत ज्यादा किया करते थे अपने समय में, तो भजन का तो शुरुआत वहां से हुई।
1: अच्छा।
0: और पापा घर पे तो बीच बीच में हेल्प करते ही हैं, कुछ पूछना है, प्रैक्टिस होनी है, क्योंकि जब गुरु जी के सामने जाते हैं तो काफी चीजें हमें फाइंड करके ही जाना होता है, तो मेनली पापा और उनका दोनों का ही रहता है।
1: तो अच्छा, एक और अगर मैं आपसे बात पूछूंगी, जैसे आपके पापा गाते हैं और गुरुजी तो हैं ही जिनसे आप सीखते आ रहे हैं, तो मतलब क्या आपको कुछ बचपन की ऐसी कोई मेमोरी है जो आपको लगा कि हाँ मुझे गाना अच्छा लगने लगा तब से आप सुनते थे, कोई ऐसी मेमोरी है आपके पास?
0: बचपन से मुझे बचपन से ही ना मतलब सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं बहुत छोटी थी ऐसे 3-4 साल की उम्र में, तो टीवी पे उस टाइम पे राधा रानी के, कृष्ण जी के बहुत सारे भजन आते थे जो अभी तो नहीं आते हैं, तो ऐसा था कि वहां से सुनना शुरू किया। और पापा इतना ज्यादा गाते हैं हमारे घर पे कि उनका बस वो गाते ही रहते हैं, तो वो वहीं से ही कि वो गाते हैं, वो क्या गाते हैं, कैसे गाते हैं। और ऐसा भी होता था बचपन में कि पापा गाना गा रहे हैं तो उसकी एक बीच की लाइन उन्होंने बोली और फिर वो हमने बोल दी, उनको पता भी नहीं था कि हम बोलने वाले हैं, बट एकदम से ऐसे करते थे कि मैं बोल देती थी बीच में। तो ऐसे ऐसे करके शुरू किया, और ये छोटी छोटी ऐसी मेमोरीज हैं कि वो गाते थे, मैं बीच में मैंने गा दिया, तो ये होता था। फिर पापा को लगता था चलो अच्छा ठीक है तुम्हें ये वाला सॉन्ग रेडी कराते हैं, तो ये ऐसे रहा है बचपन से।
1: ओके, तो जैसा आपने कहा कि बचपन से रहा और उनको पता भी नहीं चलता था, कभी कभी आप बीच में वो शब्द बोल देते थे
0: हाँ
1: या गा
0: जी
1: देते थे,
0: जी
1: तो आपको मतलब आपने मतलब वो आपने देख के पापा को गाना शुरू किया, आपको कब ये लगा
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: मैं सच में एक अच्छे सिंगर की तरह गाना चाहती हूँ, या मैं इसको आगे ले जाना चाहती हूँ, या सीखना चाहती हूँ?
0: मेनली तो जब भी मैं 7th क्लास में थी 2019 में, मेरे को लगा क्योंकि जब भी मैं स्कूल में थी तो हमारे यहाँ पे ना हमारे सिटी का एक कंपटीशन हो रहा था, वो भी रेडियो कंपटीशन ही था, यहाँ के रेडियो से था वो, SD रेडियो। तो वहाँ पे वो हमारे स्कूल में आए और उनको ये था कि वो आपका ऑडिशन लेंगे ये सब, तो मेरे को था कि मुझे भी इसमें पार्ट लेना है और उसके लिए सीखना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जाके बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करना है ऐसा। तो वहां से काफी ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करना और फिर आगे आगे अभी 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड ऐसे ऐसे करके आगे जाना, तो प्रैक्टिस तो मेरी वहां से शुरू हुई है। और मैंने एक एल्बम भी रिकॉर्ड की थी
1: वाह,
0: बट वो रिलीज हो पाई कुछ वजह से, वो भी
1: ओके,
0: भजनों की ही एल्बम थी वैसे,
1: अच्छा।
0: और वो भी मैंने रिकॉर्ड की थी, तो ये था।
1: नहीं बिल्कुल, जैसे एक आर्टिस्ट है उनके लाइफ में कई तरह की सिचुएशंस आती हैं, लेकिन उनका जो हुनर है वो तो हमेशा साथ रहता है, जैसा आपने बताया कि वो रिलीज़ नहीं हो पाया किसी वजह से, लेकिन डेफिनेटली आप
0: जी
1: आगे इसको करियर की तरह परस्यू करना चाहते हैं, म्यूज़िक को, आप अपने संगीत को? ओके,
0: बिल्कुल, मैं करना चाहती हूँ
1: चल
0: ऐसा, बिल्कुल एज अ कैरियर मैं लेना चाहती हूँ उसको।
1: वंडरफुल. मुझे लगता है हमारे जो रेडियो मधुबन के लिसनर्स हैं वो भी बहुत लकी हैं, क्योंकि भाई आपको एक उभरते हुए सितारे को सुनने को मिल रहा है और आगे चल के शायद और सुनने को मिलेगा. तो फिर याद आता है ना कभी कभी, अरे अरे इनको तो हमने बहुत सालों पहले रेडियो पे सुना था. तो शायद कुछ इस तरह की यादें अभी क्रिएट हो रही हैं. बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं अलीशा. कोई और आपका पसंदीदा गीत है जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे आज?
0: जी, एक पुराना गीत है, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
1: क्या
0: तो मैं
1: बात है,
0: ये सुनूंगी.
1: बहुत बहुत सुंदर गीत. मैं तो मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना. चलिए आपकी आवाज में सुनते हैं अलीशा.
0: जी बिल्कुल.

0: यू।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत ही सुंदर गाना गाए और तालियां तो बनती हैं, ये सारी आपके लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है, क्योंकि हमारे जो श्रोता मित्र हैं, जो लिसनर्स हैं, वो इस वक्त तो आपको कह नहीं पाएंगे, लेकिन उनके दिल की आवाज़ उन तालियों के रूप में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत प्यारा गाया। और ये बहुत सुंदर गाना आपने चूज़ किया, ये क्यों चूज़ किया या कैसे चूज़ किया, आप बताएंगे कुछ इस बारे में, गाने के बारे में?
0: एक्चुअली मैंने नहीं चूज किया, क्योंकि गुरुजी जब तैयार कराते थे ना, तो वो ही चूज करते थे कि कौन सा गाना तैयार कराएंगे इस बार।
1: अच्छा,
0: तो ये उन्होंने ही चूज किया, उन्होंने ही तैयार कराया, तो
1: वाह।
0: ये ऐसे बात है।
1: तो मतलब वो आपकी आवाज़ को समझ के और फिर वो गीत की खूबसूरती को समझ के वो उस प्रकार से वो आपके लिए चूज़ करते होंगे गाना।
0: हाँ जी।
1: अच्छा अलीशा, क्योंकि आप अभी आज के जनरेशन के हैं और ये गाने तो काफ़ी पुराने हैं, तो क्या आपको मतलब इस तरह के गाने अच्छे लगते हैं, या आप सिर्फ गाते हैं, या आपको एक्चुअली सुनना भी पसंद है?
0: मुझे अच्छे लगते हैं। मैं हमारे घर पे ना ओल्ड सॉन्ग्स मैं ज्यादा सुनती हूँ। कभी भी ऐसे सॉन्ग चलाते हैं तो हम लोग मेनली ओल्ड सॉन्ग्स ही सुनते हैं। वो तो ऐसे होता है कि रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको नए सॉन्ग सुनने होते हैं, आपको तैयार करना होता है। अदरवाइज मुझे ओल्ड सॉन्ग्स ही पसंद है। उनकी फील, उनके जो वर्ड्स होते हैं, जो शायरी होती है, वो उस टाइम की एक अलग ही बात थी। अभी वो नहीं है। आप शायरी भी देखो तो उतना नहीं होता है, और सॉन्ग में इतनी ज्यादा फील भी नहीं होती है। तो पहले होती थी, बहुत ही ज्यादा फील से सॉन्ग को गाया जाता था, बहुत ही फील से सॉन्ग को लिखा जाता था। तो वो वाली फील अभी नहीं है। मुझे तो पुराने सॉन्ग सुनने ही ज्यादा पसंद है। ये तो
1: अच्छा,
0: पता नहीं ऐसा है क्यों, बट ये मुझे पुराने
1: हाँ
0: सॉन्ग अच्छे लगते हैं ज्यादा।
1: नहीं, जो आपने बात कही, शायद वो महसूस तो होता है, क्योंकि वो जो लिखे हुए भी वो शब्द भी हैं, वो ऐसा लगता है कि आप वो गाने सुन रहे हैं तो सीधा आपके मन के अंदर जा रहे हैं। बहुत ही
0: बिल्कुल
1: कमाल की लिखावट, मतलब एक से एक राइटर्स भी हुए, लिरिसिस्ट भी हुए, मतलब जिनके अगर बात करें तो करते ही जाएंगे शायद। कोई आपका
0: जी।
1: फेवरेट गाना है इनमें से, जो आपको जिसकी लाइंस बहुत अच्छी लगती है?
0: मैं एक्चुअली आपको बताऊं ना, मुझे ये ही सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने
1: रहे ना
0: आज ये
1: रहे
0: सुन
1: हम,
0: लिया। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये सॉन्ग।
1: वाह क्या बात। हाँ मतलब
0: जी
1: आप बहुत सुंदर गीत है डेफिनेटली। और जैसा आपने कहा कि पुराने गाने, इसीलिए कई बार हम सब पुराने गाने सुनना बहुत पसंद करते हैं, और जब अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो सच में एक से एक
0: जी
1: पुराने गाने याद आते हैं, और कई बार तो नए नहीं याद आते हैं उनमें से, लेकिन पुराने ज़रूर याद आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा अलीशा, आप जैसे आप अपने फादर को भी सुनते हैं और वो भी गाते हैं, तो कुछ उनके बारे में भी बताइए कि उनको क्या पसंद है, या वो किस तरह से रियाज करते हैं, और कुछ अपने रियाज के बारे में भी बताइए।
0: पापा ने जब गाना शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो वो जगदीप सिंह जी को, रफी साहब को, किशोर कुमार साहब को, इन सबके सॉन्ग्स गाया करते थे अपनी शुरुआत में। और वैसे ही उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने वो ही सॉन्ग उनके सबसे पहले प्रिपेयर करने स्टार्ट किए। धीरे धीरे फिर 2016 में पापा ने अपनी फर्म बनाई है मुजफ्फरनगर में, के इवेंट्स के नाम से। तो सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग का हमारे थ्रू होता है। तो उसको अभी क्या होता है कि पब्लिक की क्या डिमांड है, उसके साथ साथ भी सिंगर को प्रिपरेशन करना पड़ता है कि अब कभी भी कोई भी फरमाइश आ जाए। तो फिर उसी हिसाब से पापा अभी प्रेजेंटली बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स भी गाते हैं। तो उन्होंने मतलब मोस्टली सारा ही सॉन्ग्स की थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर रखी है। मतलब हर जॉनर का सॉन्ग वो गाते हैं, ये ऐसा बोल सकते हैं उनके लिए। और रियाज भी उन्होंने किया शुरू से। मतलब 4 4 घंटे, 5 5 घंटे वो बस हारमोनियम के साथ बैठे रहते थे, एक ही स्वर की प्रैक्टिस इतना घंटे करते थे। ऐसा मैंने जो बचपन में सुना है, बचपन में देखा है उनको,
1: क्या
0: वो
1: बात।
0: एक ही सर पे 4 घंटे लगे हुए हैं, 5 घंटे ऐसा उनका रहता था। तो धीरे धीरे साथ में मैंने भी बैठना शुरू किया, फिर उन्होंने मुझे भी सिखाना शुरू किया स्वर पे कैसे ठहरते हैं, स्वर के ठहराव की क्या अहमियत है। स्वर पे जब आप एक ही स्वर पे बहुत देर तक रुकते हैं तो आपकी आवाज में मजबूती आती है, आपकी आवाज लहकती नहीं है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिंगर्स के लिए।
1: ओके।

0: लगती है वो बहुत ही ज्यादा सुनने में अजीब सा लगता है। टिक्का टिक के गाना जिसको बोलते हैं नॉर्मली, अगर हम बोले टिक के गाना, ठहराव से गाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है सॉन्ग गाते टाइम। आपकी आवाज, आपको गाना कहीं है, आप गा कहीं रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे फिर मैंने साथ में पापा की शुरू किया, उसके बाद सरगम पलटे ये सब धीरे धीरे आगे आते हैं, वो ऐसे करके। और अभी भी हम लोग साथ में बैठते हैं तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कब बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस का सिनेरियो रहता है।
1: तो आप और आपके पापा साथ में रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं?
0: हाँ जी,
1: लेकिन 4-5 घंटे, मतलब इतना समय आपने दिया है कला को, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने बात कही कि पता ही नहीं चलता, मेरे ख्याल से आप रम जाते हैं उस कला में, आपको प्यार होता है उस कला से, तभी ऐसा संभव है, वरना पॉसिबल
0: जी
1: नहीं है। और ठहराव की आपने बात की, मतलब एक सुर लगाना वो
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: जी
1: इम्पोर्टेंट है। तो आजकल कई लोग हैं जो गाने देख के गाने सीखते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि सुर का अभ्यास भी करें तो उससे ठहराव आएगा आवाज़ में। आपकी बहुत अच्छी टिप है ये। और अलीशा, और कौन सा गाना है, कोई और है आपके पसंदीदा गानों की लिस्ट में से जो आप हमारे श्रोताओं को आज सुनाएंगे?
0: मैं अभी आपको एक गजल सुनाना चाहूंगी जगजीत सिंह जी की, होठों से छू लो तुम।
1: वाह,
0: आई थिंक वैसे तो ये सबने सुनी है, बहुत कॉमन है बट बहुत प्यारी गजल है और मेरी फेवरेट गजल है।
1: नहीं, कुछ कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको जितनी बार सुने और मन करता है उतना सुनने का, तो ये उनमें से एक है डेफिनेटली। और ज़रूर हम आपकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे। अगर आप एक घूंट पानी पीना हो तो आप पी लीजिए, क्योंकि आप लगातार बात भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं। तो अगर
0: नहीं, ठीक है, ऐसे ठीक है,
1: ओके, चलिए
0: ओके,
1: फिर आपकी आवाज़ में सुनते हैं जगजीत सिंह जी की गाई हुई ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल।
0: ठीक।

0: यू सो मच।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और एक सॉफ्टनेस है आपकी आवाज़ में। सुर और गीत की जो खनक है वो तो है ही, लेकिन और रूहानियत से गाते हैं आप अलीशा। तो बहुत बहुत बहुत ही प्यारा गाया आपने, मतलब हम उसमें एकदम खो गए थे, ऐसा गाया आपने। बहुत सुंदर, और हम सबको पता
0: थैंक
1: चल रहा है कि
0: यू।
1: आप कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने टैलेंटेड हैं। तो बहुत सारी विशेज भी हैं आपके साथ कि आप आगे और खूब अच्छा करें अपने करियर में, लेकिन आपसे कुछ और
0: थैंक
1: बातें
0: यू।
1: भी करना चाहते हैं हम। अलीशा, जैसा आपने ये गाना गाते हैं, आप रियाज करते हैं, लेकिन आपका स्कूल भी होता है और उसमें भी, मतलब आप जब हायर स्टडीज़ करते हैं तो बहुत सारी पढ़ाई आपको करने होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है, ट्यूशन्स भी होते हैं, तो फिर आप इतना समय कैसे दे पाते हो फिर म्यूज़िक को?
0: एक्चुअली मेरा स्कूल नॉन अटेंडिंग है। मैं नॉन अटेंडिंग कर रही हूँ, तो स्कूल का टाइम मेरा बच जाता है, स्कूल मुझे जाना होता नहीं। बाकी 4 आवर्स मेरे जाते हैं ट्यूशन में, 4 to 8। तो और उसके बाद फिर उसका होमवर्क भी होता है, फिर अपनी लर्निंग भी होती है, रिविजन भी होता है। तो टाइम निकालना हो तो जाता है वैसे बहुत मुश्किल, लेकिन निकालना ही होता है, क्योंकि अगर बीच में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फिर आपकी वॉइस खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। और ये चीज मैंने पहले फेस भी किया है काफी बार, क्योंकि मुझे स्टडीज से भी बहुत ज्यादा लगाव है, जितना म्यूजिक से है, चाहे थोड़ा स्टडीज से ज्यादा होगा बचपन से ही। तो मैं पहले भी ऐसा कर देती थी कई बार, कि सपोज मेरा एग्जाम है तो 15 days to 20 days एग्जाम में चले जाते हैं, तो उसमें सिर्फ आप स्टडी कर रहे हो, आपका रियाज नहीं हो पाया, तो ऐसा भी हो जाता है। पहले ऐसा हो जाता था काफी बारी, लेकिन उसके बाद अभी ये समझ आया कि फिर वो ना 15 to 20 days में बहुत ही पीछे आ जाती है आपकी वॉइस। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो लाइक जीरो सा हो जाता है कुछ, तो उसे तो टाइम देना ही पड़ता है। फिर चाहे आपको 1 आवर देना है, बट देना ही है। जिस दिन
1: रेगुलर।
0: आपके पास टाइम, हाँ, जिस दिन आपके पास टाइम है तो आप फिर कितना भी टाइम दो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 आवर देना तो इम्पोर्टेंट रहता ही है। ये है ही। बाकी देखो, स्कूल का वर्क तो कभी कंप्लीट होता नहीं है।
1: चलता रहता
0: स्कूल
1: है।
0: का वर्क, ट्यूशन का होमवर्क है, वो तो कभी पूरा नहीं होता, उसको तो एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार तो क्लास में जाके ही थोड़ा सा होमवर्क टाइम बचा के करते हैं, ये भी करना पड़ता है, क्योंकि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कहीं आना है, कहीं जाना है, वो सारी चीजें भी रहती हैं। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा हो जाता है मुश्किल, बट फिर भी कर लेते हैं सब
1: वो कहते हैं ना,
0: थोड़ा
1: जहाँ
0: बड़ी
1: चाह
0: से।
1: है वहाँ राह है, तो आप राह बना लेते हैं क्योंकि आपको म्यूजिक से इतना प्यार है, उसलिए। अच्छा अलीशा, जैसा
0: जी
1: आपने बताया, बिल्कुल आप समय भी निकालते हैं, आप रियाज भी करते हैं, तो एग्ज़ाम्स और पढ़ाई भी आप उतने ही अच्छे से करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उसको आपने नेगलेक्ट कर दिया है, आपको वो भी पसंद है, तो ये भी अच्छी बात आपने बताई। क्योंकि कई बार ना हम ऐसा भी सोचते हैं कि कोई कला है, विशेषता है, तो पढ़ाई ना करें या छोड़ दें, कई बार इस तरह के ख्याल भी आते हैं बच्चों के मन में, और जो ग्रेजुएशन करते हैं या फिर स्कूलिंग करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, जब ये है तो इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन देखिए आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तो यानी संभव है वो करना भी, पॉसिबल है दोनों को ही उतनी शिद्दत से करना, ये
0: जी
1: है ना, इससे समझ में आता है। अच्छा अलीशा, आप जैसे म्यूज़िक को, मतलब आपको बहुत प्यार है म्यूज़िक से, आपको लगता है, मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी म्यूज़िक हमारा मूड चेंज करने की भी ताकत रखता है, या मोटिवेट करता है, या फिर काम डाउन, जैसे आजकल बहुत बच्चों में एंग्जाइटी होती है ना, आजकल हम स्कूल में भी देख रहे हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं, तो आपको लगता है म्यूज़िक इन चीज़ों में कुछ रोल प्ले कर सकता है?
0: बिल्कुल करता ही है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनका मूड ऑफ हुआ तो उनको एक चीज ये होती है कि हम सैड सॉन्ग सुनेंगे, हमारा मूड ऑफ है हम सैड सॉन्ग सुनेंगे, है ना, ऐसा होता है, उनका उससे वाइब मैच हो जाता है। लेकिन वो उसको क्या करता है ना, वो उसको और नर्वस कर देता है। अभी मूड ऑफ है, फिर उसके बाद वो रोने लग जाएंगे वो सॉन्ग सुन के, कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, कुछ ऐसा वो सॉन्ग में ढूंढ लेते हैं, ये मेरे लिए बना है। बहुत बारी ऐसा होता है, मैंने
1: बिल्कुल।
0: ये चीज नोटिस की है। लेकिन अगर आप नर्वस हो तो आप कोई ऐसा मोटिवेशन वाला सॉन्ग भी सुन सकते हैं, मस्ती वाला सॉन्ग भी सुन सकते हैं, थोड़ा
1: ओके
0: हंसी खुशी का सॉन्ग सुन सकते हैं ना, मजाक का, और काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं सॉन्ग में भी, थोड़ी मजाक मस्ती वो सब होता है, आप वो सुने तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है, म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारा मूड कैसा हो जाता है म्यूजिक को सुन के, ऐसा होता है जनरली हम मूवीज में भी देखते हैं, तो अगर आप
1: तो जैसा कि बता रहे थे कि म्यूज़िक में भी अगर हम देखते हैं, लेकिन मूड की बात कर रहे हैं अलीशा, और अलीशा से हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो म्यूज़िक है कभी कभी वो हमें हमारी सिचुएशन को चेंज करने की भी ताकत रखता है, और कभी कभी तो भाई वो ऐसा बन जाता है ज़रूरी कि बस आप पूछे मत, हमें वो गाने सुनने होते हैं और वो हमें काम डाउन कर देते हैं। लेकिन कभी गाना भी अच्छा है, कभी सुनना भी अच्छा है, दोनों ही प्रकार की बातें हैं जो हमारे जीवन में असर डालती हैं।

तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर और लौट कर आएंगे और अलीशा से बातें करेंगे और एक बहुत सुंदर सा गाना भी सुनेंगे. तो हमारे साथ बने रहिएगा. और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन के साथ या कार्यक्रम मधुबन अनप्लग के साथ, आप गाने के शौकीन हैं या आपके कोई दोस्त हैं जो गाते हैं, तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए आपका नाम, आपके गाँव का नाम, रेडियो मधुबन के नंबर जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415. जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: 8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड और मधुबन अनप्लग्ड पर इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं हम. और हमारे साथ जुड़ी हैं अलीशा और बहुत सुंदर सा उन्होंने गाना भी सुनाया था. अब मैं उनसे एक और बात पूछना चाहती हूँ. अलीशा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप बहुत ही सुंदर गा रहे हैं और मुझे लगता है ये चीज़ तो आपको हर कोई बोलता रहता होगा, आपके फ्रेंड्स या घर पे भी सब लोग.
1: हाँ, बोलते तो हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सी वॉइस है, हमें बहुत अच्छी लगती है, तो ये तो सुनने के लिए मिलता ही रहता है
0: मिलता रहता है. अच्छा, कोई एक ऐसी
1: जी.
0: बात है जो किसी ने बोली हो और आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगी हो आपके लिए, कोई कोई ऐसी बात कभी आपको महसूस हुई?
1: हाँ, पापा बोलते हैं कि जब भी आपको कोई बोले कि आप बहुत अच्छा गा रहे हो या तारीफ करे, तो ठीक है, उसने आपकी तारीफ की, आप उसको थैंक यू बोलो, बट आप ये मत सोचो कि हम बहुत अच्छा गाने लगे हैं. आप हमेशा ये सोचो कि हमें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा रिफाइनिंग करनी है, क्योंकि म्यूजिक की कोई लिमिट्स तो है नहीं. आप कितना भी रिफाइन कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग को और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ज्यादा उसमें क्लैरिफिकेशन ला सकते हैं. पापा का ये बोलना है कि अगर किसी ने तारीफ की है तो उसको बस थैंक यू बोलो, लेकिन अपने प्रिपरेशन पे लगे रहो रेगुलर बेसिस पे.
0: मेहनत करते रहो. और जैसा आपने कहा कि कला की कोई सीमा नहीं है, तो मतलब जितना सीखते जाएं सीखते जाएं सीखते जाएं, उम्र बीत जाएगी लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा सीखना कभी. तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, ये एक विशेषता भी है आर्टिस्ट की, हम देखते हैं हमारी संस्कृति भी है, बहुत विनम्र चित्त होते हैं बहुत आर्टिस्ट जो होते हैं, वो माना भी जाता है. और आपने वो आपकी बात से कह भी दिया, आपके पिताजी ने भी वो बात कह दी, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है. इस रीति को, संस्कृति को, इस ह्यूमिलिटी को आगे बढ़ाते की कोशिश वो कर रहे हैं. अच्छा अलीशा, जाते जाते आपकी उम्र के जो लोग संगीत पसंद करते हैं, क्या उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे?
1: ओके. मेरी जनरेशन के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने आजकल ये एक चीज देखी है, जैसे कि अभी क्या करते हैं, थोड़ा नर्वस है तो वो थोड़ा ना नर्वस वाला ही सॉन्ग सुनते हैं. ये भी है, मतलब लाइक कोई नर्वस है, अब उसको सॉन्ग सुनना है तो वो नर्वस ही सॉन्ग सुनेगा. वो उसके बजाय कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस डूइंग, कि आप थोड़ा अच्छा प्यारा सा कोई मेडिटेशन का सॉन्ग सुने, और अच्छा है,
0: जो आपको रिलैक्स
1: मेडिटेशन
0: करे.
1: करें नर्वस है, क्योंकि म्यूजिक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके माइंड पे. मैं अपने फ्रेंड्स को भी देखती हूँ ना, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और क्योंकि म्यूजिक एक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, और आज की जनरेशन का जो म्यूजिक अभी जो बन रहा है उसमें उतना आप कह सकते हैं उतनी फील नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, उतना फील नहीं है. और काफी मैंने देखा है अपने साथ के लोगों को कि बहुत पुराना सॉन्ग होता है उसको रीमेक करके भी लेके आते हैं, तो बोलते हैं देखो तुमने ये सॉन्ग सुना क्या, ये अभी अभी नया सॉन्ग आया है. तो मेरे को बड़ा वो लगता है, अरे आपने पहले नहीं सुना कि पहले कितने अच्छे तरीके से गाया गया था उसको, कितने अच्छे तरीके से उसको गाया उन्होंने, लिखा उन्होंने. तो आज की जनरेशन को मैं ये बोलूंगी, क्योंकि आज की जनरेशन के बच्चे पुराने गाने सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपको गजल नहीं सुनना चाहते हैं, क्लासिकल तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं. तो ये सारी चीजें अगर थोड़ा थोड़ा भी चेंज करें तो बहुत अच्छा रहेगा आज के बच्चों के लिए, उन्हें बहुत अच्छा भी फील होगा, क्योंकि ये इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फील है. इन गजल आप सुनो, आप क्लासिकल सुनो, एक अलग ही फील आपको मिलेगी जो आज के सॉन्ग्स में तो बिल्कुल नहीं मिल सकती. तो मैं ये बोलना चाहूंगी अपनी जनरेशन के लिए.
0: कि आप पुराने गाने सुनिए, क्लासिकल सुनिए, मेडिटेशन वाले गाने सुनिए. आप ट्राई तो करके
1: बिल्कुल
0: देखिए, तो
1: सुनिए,
0: आपको महसूस होगा कि आपको अच्छा लग रहा है, बट ट्राई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा. अच्छा अलीशा,
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला, आपने हमारे साथ गाने शेयर किए और बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, आपकी सोच को जान के. जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई गाना सुनाना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल. मेरा अभी प्रेजेंट टाइम का एक फेवरेट सॉन्ग है, थोड़ा न्यू जनरेशन के लिए भी हो जाएगा,
0: बिल्कुल
1: जान निसार एक सॉन्ग आया था,
0: ओके
1: तो केदारनाथ मूवी से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये सुनाना चाहूंगी।
0: तो चलिए दोस्तों, अलीशा जी की आवाज़ में सुनते हैं ये गाना और आपसे लेते हैं इजाज़त। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अलीशा, आपका गाना हो जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: एक मिनट, इसको कट कर सकते हैं क्या यहाँ पे?
1: जी आप इस वक्त लाइव प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं, दो पंक्तियाँ भी, फिर हम भले प्रोग्राम को क्लोज करेंगे।
0: ओके ओके ओके ओके, एक मिनट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य को सहज बनाना वास्तविकता में सहज है। यह कोई कठिन मार्ग नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, सिर्फ हमारे भोजन पर ध्यान दें, हमारे आहार विहार पर ध्यान दें, तो स्वास्थ्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। हम में से बहुत सारे लोग तब तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते जब शरीर का कोई अंग या स्वास्थ्य से संबंधी कोई चीज गड़बड़ी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती। अब फिर उस चीज को ठीक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी दवाइयां खानी पड़ती हैं, कितने पैसे का खर्चा होता है, कितना वक्त जाया होता है, ये हम सभी समझते हैं। इसलिए क्यों ना हम ये बेहतर कोशिश करें कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में मेहनत करें, ऐसी कोई चीज होने ही ना दें, कमी पेशी रहने ना दें जिससे स्वास्थ्य बिगड़े। सहज स्वास्थ्य की इसी कोशिश में रेडियो मधुबन आपके सामने ऐसी अनेक जानकारियां ले आ रहा है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रहे हैं, मगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ साथ अपने घर परिवार के सदस्यों को, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे समाज को स्वस्थ रखने के लिए भी अपनी अहम भूमिका को समझें। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से ये एक ऑस्टियोपैथ हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में ये प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर अनेक इनके परिवार के सदस्यों ने पीढ़ियों तक लोगों को शफा दिलाई है। आज करते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो हम ये बात समझते हैं कि जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सभी चीजों को समझते आए हैं, और आजकल के बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं, स्कूलों में, वो इसके साथ साथ विटामिन्स की भी बात सुनते आते हैं। विटामिन्स शरीर के लिए आवश्यक है, हालांकि वो बहुत कम मात्रा में हमारे लिए जरूरी है, मगर वो कम मात्रा में होते हुए भी अगर वो ना मिले तो फिर स्वास्थ्य में गड़बड़ियां होती हैं, ये बात हम समझते हैं। विटामिन्स में लोग ये कहते हैं कि भाई फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। थियरी में तो हम इन चीजों को समझते हैं, मगर ये विटामिन कौन से हैं, कहाँ से ये विटामिन मिलता है, इत्यादि चीजों को समझा जाए। अक्सर विटामिन्स की बात कही जाती है तो लोग ये कहते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ये अल्फाबेट्स के हिसाब से ये सुनने को मिलता है। तो सर्वप्रथम मैं इसी विटामिन से शुरू करना चाहूंगा, जो विटामिन ए जिसका नाम है, ये विटामिन ए क्या है, ये क्यों ये सबसे पहले इसका नंबर आता है, क्या इसके पीछे भी कोई वजह है, ये भी समझनी चाहिए।
1: ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये चार विटामिन में से एक है जो फैट में हमारे शरीर में घुलता है, विटामिन ए, बी, ई और के। हमारे शरीर के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला कि हमको ये विटामिन्स बहुत कम मात्रा में चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और हमको चाहिए इसलिए क्योंकि हम इसको अपने शरीर में बना नहीं सकते। सबसे पहले ये बात की जाए कि ये किनको नहीं मिलता है या इनकी कमी किसको हो सकती है। सबसे पहला, या तो आप भोजन में जो ये विटामिन सप्लाई करते हैं उसका प्रयोग एकदम नहीं करो। जिस चीज में विटामिन ए है, और सबसे कॉमनली विटामिन ए को गाजर के साथ जोड़ा जाता है, मतलब गाजर, पालक और स्वीट पोटैटो, या हम लोग जो कहते हैं, इन तीन सब्जियों के साथ इसको जोड़ा जाता है, और नॉनवेज खाने वाले इसको अंडा और मछली से जोड़ देते हैं। मगर सबसे पहले हम ये माने कि या तो हम ये जो भोजन है उसको एकदम नहीं करते हैं, दूसरा, या तो हम बीमार हैं, हमारा पाचन तंत्र खराब है, हमको डायरिया है, हमारा एब्जॉर्प्शन पूरा खराब है, या लिवर हमारा गड़बड़ है, और या एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक है, तो हमारा ये एब्जॉर्प्शन पार्ट पूरा खराब। सबसे ज्यादा इससे कौन इफेक्ट होता है, तीन आदमी, प्रेग्नेंट लेडीज, क्यों? क्योंकि वो अपने साथ एक शिशु का भी जीवन बढ़ा रही, तो उनको अपनी मात्रा इसकी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक जीवन नहीं दो जीवन को संभाल रही। दूसरा, छोटे बच्चे जो माँ का दूध छोड़ दिए हैं, बाहर जो ऊपरी भोजन है उसको बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं, वो बाहर मिट्टी में खेल रहे, तो उनके पेट में बहुत कीड़े और गंदगी है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ठीक से इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और तीसरा, महिलाओं में जिनको लिवर का कोई कैंसर है या उनको लिवर डिजीजेस है, जिसकी वजह से ये विटामिन उनके शरीर में जा नहीं पाता। हम लोग को भैया जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हम उसका निवारण नहीं ढूंढेंगे। हम लोग ने जो पुराने एपिसोड में जब पानी की बात की तो आप ही ने एग्जाम्पल दिया था कि ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं कि जो सामने पानी रखा होता है तब भी नहीं पीते हैं, और जब गला सूख जाएगा एकदम आप परेशान हो जाएंगे तब पानी पिएंगे। तो उसी तरह से विटामिन हम एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन मतलब खा ही नहीं रहे हैं हफ्तों तक, तो समस्या होना शुरू। और इसका सबसे कॉमन जो सिम्टम मिलता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आदमी एकदम ठीक से देख रहा होता है और शाम होते होते उसको धुंधला दिखना शुरू होता है, या जब रोशनी कम होती है तो उसको साफ नहीं दिखता है। बड़े आदमियों में तो तुरंत आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको तुरंत दिखता है, छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते हैं उसमें जब देखते हैं कि बच्चा चलते चलते किसी चीज से लड़ जा रहा है, दिन में तो वो एकदम अच्छे से घर में दौड़ रहा है टेबल से, पर शाम के समय वो चलते चलते किसी भी ऑब्जेक्ट से लड़ जा रहा है, तो कहते हैं अरे यार ये क्या, वो अपने हाथ से डोर को फील करने के लिए का पता चलता है, वॉल को पुश कर रहा है, तो लोग कहते हैं यार ये क्या हो गया। तो ये सबसे बड़ी कॉमन जो परेशानी होती है कि वो उसको शाम के समय दिखता नहीं है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसकी आंखें सूखने लगती है, ये सबके साथ हो सकता है, जो आपकी त्वचा है वो सूखने लगती है, आपको फोड़े फुंसी होने लगते हैं, आपका जो शरीर में घाव है वो ठीक से वो भर नहीं पाता है, आपको अगर कहीं कोई कट गया है तो वो ठीक से हील नहीं हो पा रहा है। और इसकी डेफिशिएंसी भैया यंग कपल्स में भी मिलती है, जो बच्चा पैदा करना चाह रहे पर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी में भी विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है, तो इसकी डेफिशिएंसी से ये समस्याएं होने लगती है।
0: ये बात समझ में आती है कि विटामिन ए, विटामिन ए के नाम से शुरू होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। दोस्तों गौर करने वाली बात है कि अगर लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, अगर आपके लीवर में समस्याएं हैं तो भी इस विटामिन की कमी महसूस होती है, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो कहाँ से ये विटामिन मिलता है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके स्रोत क्या हैं, गाजर पालक इत्यादि चीज़ें हम सुनते हैं, अगर आप इन चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं करते तो क्या नुकसान होता है। डॉक्टर साहब यही प्रश्न मेरा भी है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, व्यक्ति इसका सही मात्रा में सेवन नहीं करता है, तो जैसे आपने कहा नाइट ब्लाइंडनेस होता है, छोटे बच्चों में तो ये चीज़ समझ में आती है, तो क्या व्यक्ति हर दिन इन चीज़ों का सेवन करना शुरू करे, या कैसे हमें पता चले कि भाई हम विटामिन ए का सेवन कर रहे हैं, कितनी मात्रा में हो रहा है?
1: सबसे पहली चीज, जो भी फल बहुत हरा है, सब्जी जो भी बहुत हरी है, या फल जो भी ऑरेंज या नारंगी रंग का है, वो आपको सबसे अच्छा विटामिन ए का आपको पूरक होगा, वो सोर्स होगा विटामिन ए का। तो स्वीट पोटैटो जैसे गंजी हो गई, आम हुआ आपका, एप्रिकॉट्स हुए और कैरेट हुआ, कद्दू हुआ, फलों में मस्क मेलन या खरबूजा हुआ, आजकल भैया रेड और येलो बेल पेपर भी, मतलब जो शिमला मिर्च होता है वो भी लाल और पीले रंग का आ गया है, वो हुआ, हमारी ब्रोकली जो हरी है, स्पिनच, पालक हुई, ये इसको हमको अपने भोजन में किसी न किसी रूप में लेना चाहिए। और रोज अपने भोजन में कुछ लाल जो है उसको जरूर प्रयोग कर लें। गाजर खा लीजिए, आम खा लीजिए, आप पालक का इस्तेमाल कर लीजिए, ब्रोकली का, जो नॉनवेज खाते हैं वो मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, बहुत सारी चीजों में उनको मिल सकता है। तो सबसे पहले अपने भोजन में या कोई भी लाल चीज को जोड़ लीजिए। अगर आपने लाल चीज अपने भोजन में ले ली तो आपको विटामिन ए की कोई भी कमी नहीं होगी। कोई साइंस, कोई नंबर, कोई भी चीज छोड़ दीजिए, तो हमको अपने भोजन में लाल या नारंगी चीज जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। और नारंगी जैसे आम हुआ, संतरा हुआ, इसका प्रयोग, या हरी जैसे ब्रोकली हुआ या पालक हुआ, उसमें इसका बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है।
0: डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आती है कि भोजन बनाते समय या भोजन को जब हम खा रहे हैं, भोजन में इन चीजों को इंक्लूड कर देने मात्र से ही ये चीजें हमको मिलने लगती हैं, और ये कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है कि हम भोजन में पालक हो या गाजर हो, ये आसानी से मिलने वाली चीजें, और अलग अलग जो आपने अभी बात बताई कि सीजन में जो अलग अलग फल मिलते हैं जो नारंगी रंग के होते हैं, उन सब चीजों का इस्तेमाल करना तो कोई मुश्किल नहीं है, और ना ही ये कोई महंगी चीजें हैं। मैं नहीं समझता कि भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो आम न खा सके। प्रकृति प्रदत्त ये भारत का फल है, फलों का राजा है, और गरीब से गरीब इंसान भी कम से कम आम तो खा ही सकता है। ये सभी के लिए मुहैया होने वाली चीज है। अब दूसरे विटामिन के बारे में हम बात करें, कौन सा ऐसा और विटामिन है जिसके बारे में हम समझें कि ये भी विटामिन आवश्यक है और इस चीज को अच्छी तरीके से समझें। दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है कि विटामिन ए बहुत ही आवश्यक है, और प्रकृति से हमें विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है ये चीज हमें समझ में आ रही है। हम में से अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, गाजर नहीं खाता या पालक नहीं खाते हमारे बच्चे, जब ये चीज कहते हैं तो माओं के पास अलग ऐसे तरीके हैं जो गुप्त तरीके से या किसी चीज में मिलाकर इन चीजों को ऐसे बना देती हैं जिससे बच्चों को समझ में ही ना आए और वो उनके भोजन में नेचुरल तरीके से चला जाए, उनके पेट में चला जाए और वो शरीर में अब्जॉर्ब हो सके। अक्सर मैंने ये चीज होते हुए देखा है यहाँ हमारे ग्रामीण परिवेशों में भी, ऐसे बच्चे जब पालक नहीं खाते या गाजर नहीं खाते तो माँ अक्सर उसे कद्दूकस करके या पीस के रोटी के आटे में मिला देगी और उसी आटे से रोटी बनाकर वो बच्चों को खिला देती है। तो इन तरीकों को भी सीखना जरूरी है ताकि हम अपने परिवार में विटामिन ए की कमी को ना होने दें। और खासकर जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि बच्चों में अगर विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात्रि के समय बच्चों को नहीं दिखना, शाम होते ही वो चीजों से टकराने लगें, दीवार को पकड़कर चलने की कोशिश करें, सब कुछ होता है, और इन चीजों के प्रति भी जागरूक रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कुछ और चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे विटामिन ए की कमी, ये तो आपने नाइट ब्लाइंडनेस बच्चों में जो आसानी से हम समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो बात आपने बताई। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कोई चीजें हैं जो शरीर में होती हैं जो विटामिन ए की कमी से होती है, उन चीज को समझें।
1: सबसे पहले भैया, कोई भी उसको बड़ी थकान लगेगी, और बच्चों में लंबाई बढ़ना या उसमें थोड़ी कमी आएगी, रात की नींद डिस्टर्ब होगी भैया, उससे पिंपल या जो हमारे एक्ने कहते हैं वो शरीर में निकलने लगेगा, और हमारा इम्यून सिस्टम इससे डिस्टर्ब होता है। मतलब आदमी बड़ी जल्दी जल्दी उसको सर्दी जुकाम खांसी होने लगेगी, वो बीमार रहने लगेगा। और जो इस समय सबसे बड़ी समस्या इनफर्टिलिटी की, मतलब जो महिला पुरुष एक बच्चा चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है, वो इस विटामिन की कमी से इनफर्टिलिटी भी होती है। तो विटामिन ए का बहुत अच्छा रोल है, और ये हमारे जो बाल है उसमें भी सूखापन ला देता है। तो खासकर महिलाएं जिनकी बाल बड़े सूखे रहते हैं उनमें भी ये माना जाता है कि विटामिन ए की कमी है, जिसकी वजह से उनके बाल ड्राई या सूख रहे हैं। एक इसको मोटा मोटी ये समझिए कि विटामिन ए अगर शरीर में कम होगा तो सूखापन आ जाएगा, आंख सूख जाएगी, त्वचा सूख जाएगी, बाल सूख जाएगा, इम्यूनिटी सूख जाएगी आपकी। तो इसलिए अगर हम इसको पूरा लेंगे तो हमारी त्वचा भी अच्छी हो जाएगी, हमारे बाल भी अच्छे हो जाएंगे, हमें पूरी तरोताजा हम फील करेंगे, हमारी रात की नींद बड़ी अच्छी हो जाएगी और नाइट ब्लाइंडनेस की जो मैंने बात की वो नहीं होगी।
0: आजकल ये समस्याएं हम देखते हैं कि प्रायः लोग ऐसा भोजन कर लेते हैं जिसमें क्या चीज पड़ी है इस बात का ध्यान नहीं होता है डॉक्टर साहब। जैसे बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट से कोई चीज मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, कभी कभार तो लोग मैगी इत्यादि ऐसी फास्ट फूड जो पैकेट्स में बनकर आती हैं उन चीजों को खा लेते हैं। अब उसमें कोई ताजा सब्जी की बात हो या विटामिन की बात हो, विटामिन ए जो आप कह रहे हैं, पालक की बात हो, गाजर की बात हो, या ऐसी कोई चीज तो उसमें होती ही नहीं है। और कई बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनके टेस्ट बड्स के हिसाब से भोजन जो मेस में बनता है या हॉस्टल में बनता है वो पसंद नहीं आता, तो इसलिए वो ऐसा ही फास्ट फूड खा लेते हैं और इसकी वजह से ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में इन विटामिन्स की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना भी बहुत आवश्यक है।
1: हॉस्टल में रह रहा बच्चा हो या कहीं कोई काम कर रहा हो, प्लीज हफ्ते में एक दो दिन कोई भी आपको फ्रूट अच्छा लगे उसको जरूर खा लीजिए। और सबसे इजी जो फ्रूट खाना है वो बनाना है, मैंगो बहुत अच्छा विटामिन ए के लिए, तो मैंगो बहुत अच्छा है। गाजर सड़क पे बिकने लगा है, जिस तरह से खीर बिकता है उस तरह से गाजर को हल्का सा धो के छील के नमक और नींबू डाल के दे दे रहा है, उसको खा लीजिए। आपको अपने शरीर में फाइबर डालना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य कोई पैकेट में आपको बेच नहीं सकता है, इसे आपको खुद अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली बार बोला था ना कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि कोई दूसरा जिम करे और हमको उसका फायदा हो, ये नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: व्यापार में हो सकता है कि कोई दूसरा काम करे उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा हो, मगर शरीर के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा, आपको अपने मुंह में खुद उस भोजन को डालना पड़ेगा, आपको खुद चलकर उस भोजन को जलाना पड़ेगा। तो जो भी माताएं बहने, जो भी स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हो, एक चीज पर ध्यान दें, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए उनको नारंगी रंग का कोई फल हफ्ते में एक दो बार जरूर खाना है। उनको पालक ब्रोकली जरूर खाना है। विटामिन ए को कॉमनली रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल को किसी भी रूप में खा लेना है। प्लीज गोली खाने से पहले कोई फल खा लीजिए, कोई सब्जी खा लीजिए, क्योंकि जो नेचर आपको देना चाहता है वो कोई दवा की कंपनी आपको नहीं दे पाएगी। और हमारा पूरा शरीर डिजाइन किया गया है उस नेचर में से उस चीज को निकाल कर अपने शरीर के इस्तेमाल के लिए बनाने के लिए। तो प्लीज कोई भी फल, कोई भी जो सब्जियां जिसमें विटामिन ए है, प्लीज उसको खा लीजिए।
0: बहुत ही आवश्यक आज की ये बातचीत रही है जिसमें हम ये समझ पाए हैं कि विटामिन ए की आवश्यकता शरीर के लिए कितनी है, विटामिन ए कहाँ मिलता है, विटामिन ए की कमी से हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं। ये चीजें आज हमने डॉक्टर साहब से सुनी है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज की चर्चा में जो बातें हमने सुनी है सिर्फ उन्हें सुनना ही नहीं है मगर उसे जीवन में ले आना है। हमारे आहार पद्धतियों में जो गड़बड़ियां हम करते आए हैं, अगर कोई भूल चूक हुई है या कई लंबे समय से हम उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो शायद ये सही समय है कि हम उस भूल को सुधारें, फिर से अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोकने के लिए, अगर वो बिगड़ गया है तो उसको सुधार करने के लिए, अगर आप स्वस्थ हैं ही तो आपके स्वास्थ्य को उसी रीति बरकरार करने के लिए ये चीजें बहुत आवश्यक है। विटामिन्स कम मात्रा में आवश्यक हैं मगर फिर भी इनका सेवन क्यों जरूरी है ये बात हमने समझा। विटामिन ए के सोर्सेस के रूप में जहां से ये स्रोत हैं विटामिन ए के, उनको समझकर उनको हर दिन भोजन में या हफ्ते में एक दिन उन नारंगी फल, नारंगी रंग के जो फल हैं उनका सेवन करना जरूरी है। गाजर और पालक तो भारत के लगभग हर प्रांत में मिलते हैं दोस्तों, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने। आम, जब आम का सीजन है तो आम को खाएं, या फिर जो खरबूजा है जब उसका मौसम है तो उसको खाएं। इन सब चीजों पर ध्यान देने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सहज रीति से हासिल कर सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही दोस्तों। आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज की बातचीत में विटामिन ए की आवश्यकता के बारे में हमने बात की और आशा करते हैं कि आप सभी भी विटामिन ए की महत्ता को समझेंगे। खासकर हमारे घर में भोजन बनाने वाली माताएं, बहनें, या अगर भाई भी भोजन बनाते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि भोजन में कैसे न कैसे करके इस विटामिन को शामिल करने के लिए इसके स्रोतों को भोजन में ले आएं और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। आज की चर्चा में इतना ही। सहज स्वास्थ्य में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप क्यों नहीं खेल रहे हो?
1: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
0: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
1: पर वो
0: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
2: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा? ये तो चल नहीं सकता।
0: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
3: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
4: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: हेलो बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम शुरू हो गया है और परी और मनी दीदी आ गए।
7: हाँ बच्चों, और अभी जो सिलसिला चल रहा है वो परी हम बच्चों के क्वेश्चंस का हम जवाब दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन बता रहे हैं।
6: बिल्कुल मनी दीदी, तो आज आप देखो तो कल्पेश ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं हार जाता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है।
7: कोई बात नहीं कल्पेश, हारने में भी एक मजा होता है ना परी?
6: हाँ मनी दीदी, हार हमें सिखाती है कि कहाँ सुधार करना चाहिए, और इसलिए बच्चों कोशिश करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी।
7: हाँ परी, इसीलिए तो वो गीत है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हरिवंश राय बच्चन जी की, तो ये बहुत ही फेमस कविता है।
6: हाँ मनी दीदी, तो इसलिए बच्चों हार टेम्पररी होती है, इसीलिए फिर कोशिश करनी चाहिए।
7: और हार को आप अपने लिए सफलता की सीढ़ी समझ सकते हो।
6: बिल्कुल, तो चलो बच्चों, इसी प्रकार आपके कोई और सवाल हो तो जरूर हमें भेजिएगा, हम इसका हल सुनाएंगे।
7: हाँ, नंबर तो आपको पता ही है ना, 94-14-15-14-15।
6: हाँ तो चलो, अब आगे भी तो कहानियाँ सुननी है, इसलिए ये था कल्पेश के सवाल का जवाब। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
7: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। गाना तो मजेदार हमने सुना, काजू वाले लड़के की कहानी सुनेंगे। एक लड़का था, उसे काजू बहुत पसंद थे, इसलिए उसकी माँ उसे थोड़े थोड़े काजू खाने के लिए देती थी। लड़का हमेशा माँ से ज्यादा काजू देने का हट करता था। उसकी माँ उसे हर बार कहती, नहीं बेटे, एक साथ ज्यादा काजू खाने नहीं चाहिए। यदि एक साथ ज्यादा काजू खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। बच्चों, लड़का सुनकर चुप हो जाता था, पर उसने माँ की बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो सोचो एक दिन क्या हुआ। एक दिन उसकी माँ बाहर गई हुई थी, लड़का घर पर अकेला था। उसने क्या किया पता है? जल्दी जल्दी काजू का डिब्बा उतारा। उस दिन घर पर उसे रोकने वाला तो कोई था नहीं, तो उसने पेट भर के काजू खाए। सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। दूसरे दिन लड़का बीमार पड़ गया, उसके पेट में जोरों की पीड़ा होने लगी। उसे इस बात का बड़ा पछतावा हुआ कि उसने माँ का कहना नहीं माना। देखा बच्चों, पछतावा करने के बाद समझ में आया कि इतना सारा काजू नहीं खाना चाहिए था। इसलिए माता पिता तुम्हारे शुभ चिंतक होते हैं, उनका हमेशा कहना मानना चाहिए। ये कहानी हमें समझाती है, तो आप भी ऐसे ही करते हैं ना?

माँ पिता का कहना मानते हैं कि नहीं, हमें जरूर बताना। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: तो चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की अनोखी दुनिया। और चलो अब बिना देर किए शुरू करते हैं कि आगे तेनाली राम ने कैसे उस सोमदत्त की चुनौती को हल किया, जिसमें बिना छुए ही, बिना स्पर्श किए ही दो स्वर्ण पिंडों को देखकर ही बताना है कि कौन सा खाली है और कौन सा भारी है। तो चलो बच्चों अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। महाराज ने सभा में घोषणा की कि इस समस्या के समाधान के लिए यदि कोई सभासद स्वयं आगे आना चाहता हो तो आए, अन्यथा इस समस्या का समाधान तेनाली राम करेंगे। फिर एक भी सभासद समस्या के समाधान के लिए नहीं आया। फिर तेनाली राम को महाराज ने कहा कि तेनाली राम आगे आओ और व्यापारी सोमदत्त द्वारा बताई गई समस्या को हल करो। महाराज व्यापारी सोमदत्त से कहें कि वे स्वर्ण पिंडों को अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे लटका दे, मैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। ऐसा तेनाली राम ने कहा तो महाराज ने सोमदत्त को स्वर्ण पिंडों को कहीं लटकाने का निर्देश दिया और व्यापारी सोमदत्त ने उन स्वर्ण पिंडों को महाराज और सभासदों के आसनों के मध्य के खुले स्थान में दीवार पर दो कीले ठोककर एक रस्सी के सहारे लटका दिया और तेनाली राम की ओर देखकर कहा, अब आपकी बारी है तेनाली राम जी। तेनाली राम ने अपने आसन से बिना हिले डुले कहा, महाराज एक बार फिर सभासदों और व्यापारी से पूछ ले कि कोई भी सभासद चाहे तो व्यापारी के प्रश्न का उत्तर दे दे, व्यापारी चाहे तो अपना प्रस्ताव वापस ले ले, मैं सबको पुनर्विचार का एक अवसर देता हूँ। तो तेनालीराम की बातें सुनकर सभी सभासदों को लगा कि तेनालीराम स्वर्ण पिंडों की पहेली हल करने में असमर्थ है और वह किसी तरह अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। तो सभा में फुसफुसाहटे उभरी और शांत हो गई। तो बच्चों अब कैसे तेनालीराम उन दोनों स्वर्ण पिंडों से ये पहचानेगा कि कौन सा भारी है और कौन सा हल्का? तो चलो अब वो पता चलेगा हमें अगली कड़ी में। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। कितनी सारी प्यारी प्यारी हमने बातें की, फिर परी की कहानी सुनी, तेनालीरामा की किताब भी पढ़ी, और अब समय हो गया है पिछली कड़ी में परी ने जो पहेली पूछी थी उसका सवाल जानने का। तो परी, पिछली कड़ी में आपने क्या पूछा था?
3: बच्चों, अपना आंसर टैली कर लो। हमने पूछा था, बिना पंख के उड़ती हूँ, बिना पैर के दौड़ती हूँ, समाचार सबको देती हूँ, घर घर में पहुँचती हूँ।
2: हाँ, तो सही जवाब है चिट्ठी, यानी कि लेटर। बिना पंखों के उड़ती है और अपना समाचार सबको देती है घर घर में जाकर, तो सही जवाब है लेटर, चिट्ठी।
3: हाँ बच्चों, तो आज अब एफर्मेशन नोट कर लो, कोई पहेली नहीं है। मैं हूँ चांद सा प्यारा, सपनों का हूँ सितारा, मेहनत से मैं चमकूंगा, हर मुश्किल को मैं हराऊंगा।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा अफर्मेशन है परी। मैं हूँ चांद सा प्यारा और सपनों का हूँ सितारा, मेहनत से मैं चमकूंगा, हर मुश्किल को मैं हराऊंगा। अरे वाह, तो चलो बच्चों, 9414-1415 पर अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड करो और जल्दी से हमें भेज दो।
3: बिल्कुल बच्चों, तो चलो हम करते हैं गुड बाय। इसके पहले गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट,
3: गुड बाय। सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए,
3: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM पर,
3: सपनों की।

मीठे बच्चे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। आज है 23 जून 2026 और हम सभी बच्चे सुनेंगे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सर्वप्रथम अपने स्वधर्म की स्मृति दिलाई है। बाबा कहते, जब तुम बच्चे ओम शांति कहते हो तो अपने शांति स्वधर्म में स्थित होना है। जितना शांत स्वधर्म में स्थित होंगे उतना ही और आत्माओं को भी शांति के प्रकंपन दे सकेंगे। साथ ही साथ बाबा हम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान भी पक्का कराते हैं कि बच्चे इस ड्रामा के अंदर जो कुछ होता है उसमें कल्याण समाया हुआ है। इसलिए तुम बच्चों को चिंता नहीं करनी है। ड्रामा की भावी को हम सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? इस ड्रामा की भावी में आगे चलकर के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है और उसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध

आई है वह अब तक किसी भी ऋषि मुनि देवी देवताओं ने किसी को नहीं पढ़ाई, वो पढ़ाई बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं और नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। इतनी ऊंची पढ़ाई हमें पढ़ाते। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। उत्तर है, तुम जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, ये मनुष्य की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। हम सभी ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हैं। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। कितना सिंपल तरीके से बाबा समझाते हैं। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। ये शरीर हमको यहां मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे, तो अपने को आत्म समझ, शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं। बस ये कहते आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन मैं आत्मा हूं ये नहीं जानते, ये भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना शास्त्र में, एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है, हम आत्माएं शांत स्वरूप है। यहां आई है पार्ट बजाने। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो शांत में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति, इनको तुम ढूंढते नहीं। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहां पाठ बजा रहे हो, बाप द्वारा मालूम पड़ा है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। इन 84 जन्म के चक्र का कोई को पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सुवैश्यवंशी, सुशूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। यह है ही सदगति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक है
अभी जान गए।

देखो हमको बाबा आकर 21 जन्म के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो, कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो। परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। पूछते ना तुम बीके क्या जानते हो, तो कहो कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाप रचयिता को जानते हो। उनको पूछो अगर तुम अपने आप को ब्राह्मण समझते हो या ब्रह्मा के बच्चे हैं तो सृष्टि चक्र को तो जरूर जानते होंगे, बाप रचयिता को जानते हो। पूछो उनको, ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे, तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्र में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो। इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं, यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलमिटीज आदि सब होगी। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं, ये हमको मिलता है। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता, रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों के भी रानी होती है, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती है। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो, यहां तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। सब गुण यहां धारण करने हैं, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख नहीं सकते। शिव बाबा को दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख नहीं सकते, लक्ष्मी नारायण जैसा भी बनना है। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी
फिर राक्षस आदि दिखाए हैं, ये कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं सर्व गुण संपन्न सोले कला संपूर्ण, उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं, मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु ये पता ही नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ ये कोई भी नहीं जानते। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना ये किसको भी पता नहीं है। कहते हैं ये भावी बनी बनाई है, किसकी भावी है वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए, ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्यंत को जानना चाहिए, सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, अखबार में आया होगा कि श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़ी सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता ये किसको भी पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम युग, परंतु मनुष्य ने समझ लिया युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है, वहां तो कुछ होता ही नहीं। यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशी ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है, किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया, अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, शुरू शुरू में साकार में बाबा ने बहुत साक्षात्कार बच्चों को कराया भिन्न भिन्न प्रकार के, कैसे राज्य ट्रांसफर होता है ये भी साक्षात्कार में देखा है। बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है, जैसे किसको राजाएं दी जाती है वैसे ही देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं, वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम दैवी स्वभाव वाला बनते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना ना सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधु आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूं। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है, स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग है, सूर्यवंशियों का अलग चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी बौद्धी सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं, मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती है। ये बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम है फर्स्ट।
बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे, छोटे छोटे बिरादरियां तो लाखों होंगे। यहां तो मुख्य है चार बिरादरियां। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूछते हैं, इससे सिद्ध है इन्हों की बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं है। सूर्यवंशियों से ऊंच कोई बिरादरी होती नहीं। हम ऊंच ते ऊंच बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह है। कर्जा भी ये लेते रहते हैं, भारत ही आज सबसे ज्यादा दुखी है। कर्जा भी लेते रहते, कितने शाहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गंवा बैठे हैं। यह है दुख धाम, यह है ही दुख धाम। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे कहां, शांति धाम में। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी है हम मुक्ति में जाए, सुख को कागविष्ठा समान समझते हैं, उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो, द्वापर से नाम बदली कर दिया है, देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में हैं, अब फिर पावन दुनिया में जाना है। ये पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में लून यानी आटे में नमक। ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते, हमने ये यज्ञ रचा है, इसमें क्या करो, इस यज्ञ में तन मन धन सब स्वाहा करते हो, अर्थात जीते जी मरते हो। ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है, ये ज्ञान सिर्फ अभी मिलता है, बाद में भी नहीं मिलता। ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जो बाकी थोड़ा बहुत स्मृति में रहता है, स्मृति आती है, उस अनुसार शास्त्र बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है, सबको यही राज समझाना है। दूसरी पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है, सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने मस्तक द्वारा
तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना तीसरा न कोई। तीसरा नेत्र खुला रखना, उसके लिए याद रखना तीसरा न कोई। आज का स्लोगन है प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। आज का व्यक्त इशारा है सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते जो जैसा कर्म करता है वैसा उनका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता ये दोनों गुण आवश्यक है। अगर सरलता है सहनशीलता नहीं है तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अच्छा ओम।

ओम शांति। हम सभी बाबा के योगी बच्चे गृहस्थ जीवन में रहते हुए, संगठनों में रहते हुए, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे बनकर जीवन व्यतीत करते हैं। संसार में तो सभी लोग रहते हैं, हम ब्रह्मावत्स भी यदि उनकी तरह बंधनों में फंसे हुए, ग्रस्त में लिप्त, कर्मों के बंधन में बहुत ज्यादा लिप्त रहेंगे तो हमारे ज्ञानी होने का फायदा ही क्या होगा। हम ज्ञानी हैं, हमें निमित्त भाव से जीवन में जीना है। धन है, ये सब प्रभु देन है, बाबा ने हमें दिया है इस परिवार को चलाने के लिए, दैट्स ऑल। धन में आसक्त हो जाना, धन ही सब कुछ है, धन धना धन धन, मन मना भव की जगह यही हो जाए तो इससे हमारी अलौकिक स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। हम गृहस्थ में रहते हैं, दो चीजें और होती हैं, परिवार के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना और काम काज करना। कार्य तो सबको करना है, चाहे कोई गृहस्थ में हो या समर्पित जीवन में होता हो, कार्यरत तो सभी हैं, पर कार्य करते उनसे न्यारे रहना, हर कर्म को अपना बंधन न बना देना, कार्य भी ऐसे भाव से करना मानो हम निर्लिप्त हों, ये कमल समान न्यारी और प्यारी स्थिति है। कार्य किया और देह से न्यारे हो गए, ऐसा अभ्यास कि इस देह में आए, कार्य करने के लिए अवतरित हुए, कार्य किया फिर वापिस परम धाम चले गए, ये है सर्वश्रेष्ठ कमल समान स्थिति। ऐसे ही सबके साथ रहते हैं। अब सबके साथ जब मनुष्य रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी मोह ममता लगाव बन ही जाता है। जिनको उसने जन्म दिया है उनसे ब्लड कनेक्शन होने के कारण उसका मोह बना ही रहता है। लेकिन ब्लड कनेक्शन तो सबके ही हैं, लेकिन आत्मिक कनेक्शन बनाना ये अलौकिकता है, ये कमल समान न्यारी स्थिति है। तो आइए हम सभी ये आदर्श प्रस्तुत करें कि संसार में रहते हुए भी हम मानो संसार में नहीं रहते, संसार में रहते हुए भी हम अपने धाम में रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से काम धंधा करने के लिए 15-20 दिन के लिए किसी दूसरे शहर में गया हो बिजनेस पर्पज से, उसको कैसी स्मृति है, घर मेरा वहां है, यहां मैं आया हूं, कैसे वो वहां से डिटैच रहेगा। इसी तरह हमें भी ये प्रैक्टिस करनी है, घर मेरा ब्रह्मलोक है और इस धरा पर मैं पार बजाने के लिए आत्मा अवतरित होकर आई हूं। तो इस अभ्यास से हमारे नयन भी कमल समान बन जाएंगे, इसलिए देवताओं के अंग अंग के साथ कमल शब्द जोड़ा जाता है, कमल नयन, कमल मुख, कमल चरण, हस्त कमल। तो हम अपने नैनों को कमल बनाएं, और नैनों को कमल बनाने का अर्थ है अब इस देह को न देखकर, देह को देखते हुए भी इसमें चमकती हुई आत्मा को ही देखें। मुख से शब्द बोलें, लेकिन वही बोलें जो अमृत तुल्य हों। कानों से सुने, अच्छी बातें ही सुने, कर्म करते निर्लेप रहें। कर्मेंद्रियां इस संसार के विभिन्न रसों में रहें, लेकिन किसी भी रस में वो लिप्त ना हो, ये है कमल समान न्यारी और प्यारी स्थिति। तो आज सारा दिन हम ये दो अभ्यास करेंगे।